अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को फिल्म अनुराग में। और कार्यक्रम के अंत में आइए सुनाते हैं आपको बाहरों की मंजिल फिल्म का गीत, जिसे आवाज दी है पूर्णिमा और अमित कुमार ने।

0: अरे सा तो ठीक से लगाओ।
1: सा सा सा सा सा सा सा
0: सा। अब गाओ।
2: अरे ये गाएगा क्या, इसके पास बोल तो है नहीं, सिर्फ धुन है।
0: अच्छा तो बोल मैं देती हूँ, जरा धुन तो सुनाओ।

दोस्तों आप आनंद लीजिए इस गीत का और मुझे यानी अर्चना बिसारिया को भोर सुहानी कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए। आपसे जल्द मुलाकात होगी। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 24वीं तिथि यानी 15 सितंबर 2026। सुबह के 5:53 और 30 सेकंड हुए हैं। हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम अब आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल है। अब आपको जानकारी देते हैं हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ ही देर बाद यानी 6:10 पर भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम होगा अर्पण। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत सुबह 6:44 पर आप सुनेंगे अयोध्या कांड का भाग 54। गोल्ड सुप्रभात कार्यक्रम का समय रहेगा सुबह 7:10। आज सवेरे कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा सुबह 7:30। म्यूजिकल दिल लगी ये कार्यक्रम हम आपके लिए रहेंगे सुबह 8:45 पर, और दिल का मेल बॉक्स कार्यक्रम का आनंद आप ले सकेंगे सुबह 10:30 पर।

तस्वीर कार्यक्रम में सुबह 11:10 पर आपको जानकारी दी जाएगी अंडमान और निकोबार के स्वराज द्वीप के बारे में। आकाशवाणी एफएम गोल्ड वुमेन एंड फैमिली शो यानी घर संसार कार्यक्रम को आप सुनेंगे दिन के 12:10 पर। कलाकार बेमिसाल ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं दोपहर 1:10 पर। और आज के हमारे कलाकार होंगे राजकुमार कोहली। संगीत.com कार्यक्रम का आनंद आप ले सकते हैं दोपहर 2:30 पर। मन भावन कार्यक्रम होगा 3:10 पर।

और फिल्मी गीतों का आनंद लिया जा सकता है शाम 4:10 पर। परिक्रमा कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 4:30 और शाम 5:10 पर आनंद लीजिए कार्यक्रम गाते गुनगुनाते का।

विश्लेषण कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 6:10 और मार्केट मंत्रा प्रसारित किया जाएगा शाम 6:30 पर। सुर्खियों में कार्यक्रम हम आपके लिए लाएंगे शाम 7:10 पर और सांझ ढली कार्यक्रम आप सुनेंगे 7:25 पर। रात 8:10 पर मधुरिमा कार्यक्रम होगा। स्पोर्ट्स स्कैन आप सुन सकते हैं रात 8:30 पर और स्पॉटलाइट 9:15 पर। मनी टॉक प्रोग्राम का वक्त रहेगा रात 9:30 और मंथन कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा 9:45 पर। रात 10:10 पर विश्व दर्पण कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा और 10:30 पर आनंद लीजिए कार्यक्रम हर सिंगार का। और रात 11:40 का वक्त रहेगा गीत मेरे मन मीत कार्यक्रम का। तो ये थी हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है। 6 बजने को है, अब से कुछ ही देर में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि अधिकांश राष्ट्राध्यक्षों की उपस्थिति से दुनिया ने भारत के मजबूत नेतृत्व और विभिन्न देशों को एक मंच पर लाने की क्षमता देखी। डॉ जयशंकर ने बताया कि सम्मेलन में 11 सदस्य देशों, 10 साझेदार देशों, 4 क्षेत्रीय संगठनों और 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित कुल 32 प्रतिनिधि मंडल शामिल हुए। उन्होंने कहा कि वैश्विक ध्रुवीकरण के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष जैसे सबसे जटिल मुद्दे पर भी आम सहमति बनना महत्वपूर्ण उपलब्धि है। डॉ जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स देशों ने स्पष्ट रूप से माना है कि आतंकवाद का कोई भी कृत्य आपराधिक कृत्य है। अमेरिका के एक विश्लेषक ने नई दिल्ली में आयोजित 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को बहुत सफल बताया है। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र अलग अलग विचारों वाले देशों के बीच आम सहमति बनाने की भारत की क्षमता को दर्शाता है। अटलांटिक काउंसिल में दक्षिण एशिया मामलों के वरिष्ठ फेलो माइकल कुगलमैन ने कहा कि ये घोषणा पत्र भारत की बढ़ती वैश्विक समन्वय क्षमता और ब्रिक्स की बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाता है। प्रतिष्ठित विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 आज गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में शुरू होने जा रहा है। दक्षिण एशिया में पहली बार आयोजित हो रहे इस सम्मेलन का संयुक्त उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल करेंगे। भारत ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण को इस वर्ष 31 दिसंबर तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति को मंजूरी दे दी है। विद्युत मंत्रालय ने बताया कि मुजफ्फरपुर ढालकेबार लाइन के जरिए 600 मेगावाट तक और टनकपुर महेंद्रनगर लाइन के जरिए 54 मेगावाट विद्युत आपूर्ति की स्वीकृति दी गई है।
2: हाल ही में बाढ़ से नेपाल में जल विद्युत अवसंरचना को काफी नुकसान हुआ है, जिससे उसकी घरेलू बिजली निर्माण क्षमता कम हो गई है और बिजली की अतिरिक्त आवश्यकता हो गई है। सोमवार से मिली मंजूरी से नेपाल को मुश्किल समय में बिजली की जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी और भारत और नेपाल के बीच गरीबी और लंबे समय से चले आ रहे ऊर्जा सहयोग को और मजबूत करने में सहायता मिलेगी। मंत्रालय ने कहा है कि भारत नेपाल की सहायता करने और ऊर्जा क्षेत्र में आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को नई दिल्ली के यशो भूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। ये वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को एक मंच पर लाने तथा सहयोग, नवाचार, विनिर्माण, निवेश और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने का प्रमुख मंच है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर कहा कि पार्टी की जीत झूठ की गूंज पर सच्चाई की जीत का साक्ष्य है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा है कि न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों के निवारण के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा विकसित तंत्र मजबूत, सक्रिय और समयबद्ध है। उन्होंने न्यायपालिका में लगातार सुधार और अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में कल आयोजित 6ठे राम जेठमलानी स्मृति व्याख्यान में मुख्य भाषण देते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सुधार को नियमित प्रक्रिया का हिस्सा होना चाहिए। झारखंड में सीआईडी ने झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की 14वीं प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं के मामले में एक कोचिंग सेंटर संचालक संजीत कुमार को गिरफ्तार किया है। रांची के रातू रोड इलाके में शिवांगन कोचिंग सेंटर चलाने वाले संजीत कुमार पर आरोप है कि उसने एजेंट के तौर पर उम्मीदवारों से परीक्षा पास कराने का वादा कर पैसे वसूले थे। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. Government has notified rules specifying that banks and payment system providers cannot impose charges on UPI transactions of up to 2,000 rupees. Finance Ministry issued a gazette notification yesterday under the Payment and Settlement Systems Act 2007. It listed UPI transactions of up to 2,000 rupees and debit card payments made through RuPay as electronic payment modes for which customers cannot be charged. The notification comes after concerns were raised over possible charges on UPI payments following the passage of Taxation and Other Laws Amendment Act in Parliament that proposed changes to the legal framework governing payment systems. However, the notification states that transactions up to 2,000 rupees will remain charge-free, leaving scope for levying charges on transactions above this threshold limit. Prime Minister Narendra Modi will inaugurate the fifth edition of Semicon India 2026 at Yashobhoomi, New Delhi on Thursday. The event will bring together over 600 exhibitors, 300 international companies and delegations from more than 40 countries. The exhibition will feature six country pavilions, 12 state government pavilions and a dedicated startup pavilion. Semicon India is India's premier semiconductor conference and exhibition, jointly organized by the India Semiconductor Mission, the Ministry of Electronics and Information Technology and SEMI. It serves as a flagship platform for bringing together the global semiconductor and electronics ecosystem, advancing collaboration, innovation, manufacturing, investment and talent development. Chief Justice of India, Justice Suryakant, has described the mechanism developed by the Supreme Court and High Courts to address complaints against judges as robust, very responsive and timely. Delivering keynote address at 6th Ram Jethmalani Memorial Lecture in New Delhi, he stressed the need for continuous reform and great

0: मंगलवार की खूबसूरत प्रभात मंगल की मुक्ता के साथ। जी हाँ, आइए करते हैं अर्पण। सर्वप्रथम श्री हनुमान का ध्यान करके।
1: श्री गुरु चरण सरोज रज निज

जिसने शिव से लय साध ली, उसकी बुराइयों का विलय हो गया। संत कहते हैं कि देह का अभिमान और भौतिक उपलब्धियों पर गर्व ही इंसान के सभी विकार और लतों की जड़ है। हे मानव, तू अपने अहंकार, लोभ, मोह और क्रोध की भावनाओं को समर्पित कर दे और ईश्वर की स्मृति में रहकर जब तू शिव की स्मृति में जीवन जिएगा तो देखना तेरी सोच, तेरी दृष्टि और तेरे कर्म सात्विक होते चले जाएंगे, तेरे दुर्गुण दूर होंगे और तू धीरे धीरे शांत और आनंदमय जीवन की ओर बढ़ता चला जाएगा। यही शिव के साथ लय बिठाना है।

कभी गौर करके देखें तो अपने पूरे जीवन हम विषय सुख की लालच में मानसिक और शारीरिक विपत्तियां सहन करते ही बिता जाते हैं। कुछ मनचाहा मिलते ही एक पल उसका सुख और अगले ही पल एक नई कामना का जन्म और मन फिर बेचैन। ज्ञानी कहते हैं कि हे मानव, ये मान ले कि संसार में कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जो पूर्ण और सभी अभावों को हमेशा के

0: जी हाँ, अर्पण में है शुक्राना। शुक्राने का ये भाव देता है जीवन में आनंद, इसीलिए हम कहते हैं करते रहिए अर्पण। 6:32 और ठीक 54 सेकंड हो चले हैं। आप आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर हैं।
1: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। जब सब कुछ इसकी कृपा से है तो फिर चिंता किस बात की, क्यों ना करते रहें हर क्षण अर्पण।

जब सब कुछ तू कर रहा है, जब जो हो रहा है तेरी रजा में हो रहा है, तो फिर चिंता किस बात की? फिर तो केवल चिंतन है, मनन है, अर्पण है इसकी रजा को। 6:44 और ठीक 5 सेकंड हो चले हैं। आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर आप सुन रहे थे अर्पण, और अब समय हो चला है श्री रामचरितमानस के पाठ का। आइए मिलकर श्रवण करते हैं श्री रामचरितमानस का पाठ।

पुत्र वियोग में राजा दशरथ का देहांत हो चुका है। शोक संतप्त अयोध्यावासी और महलों में रानियां विलाप कर रही हैं। सभी लोग कैकेयी की भर्त्सना कर रहे हैं, जिसने जैसे संसार भर की दृष्टि ही छीन ली है। किंतु जगत अपनी गति से चलता रहता है। कुलगुरु वशिष्ठ ने समयानुकूल वचनों द्वारा ज्ञान विज्ञान के प्रकाश से सबके शोक का अंधकार दूर कर तेल भरी नौका में राजा के पार्थिव शरीर को रखवाया। फिर ननिहाल से भरत तथा शत्रुघ्न को तत्काल बुलाने के लिए दूत भेजे, किंतु उन्हें आदेश दिया कि वहां महाराज की मृत्यु का समाचार उन्हें न सुनाए। दोनों भाइयों से मात्र इतना कहना है कि कुलगुरु ने बुला भेजा है। इधर अयोध्या में जब से अनर्थ प्रारंभ हुए, तभी से भरत को अपशकुन होने लगे थे। उन्हें भयंकर स्वप्न आते और नींद उचट जाने पर अशुभ कल्पनाएं मन में जगने लगती थीं। वो अनिष्ट शांति के लिए तरह तरह के उपाय करते, दान पुण्य तथा भगवान शंकर से माता पिता और भाइयों के कुशल क्षेम की प्रार्थना करते। दूतों से संदेश सुनकर दोनों भाई वायुवेग से अयोध्या लौट चले। नगर में प्रवेश करते ही चारों ओर उन्हें अपशकुन दिखने लगे।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का पाठ। आइए अब संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में समाचार सुनें।

0: प्रकरणे पश्चिम बंगालात अभियुक्तः दिलीप पासवानः न्यायिक अभिरक्षायां प्रेषितः। भारतस्य मुख्य न्यायाधीशेन सूर्यकान्तेन न्यायाधीशानां विरुद्धं परिवादानां निवारणाय सर्वोच्च न्यायालयेन उच्च न्यायालयैश्च विकसिता व्यवस्था सुदृढा अतीव प्रत्युत्तरशीला समयोचिता च वर्णिता। अनेनैव तेन न्यायपालिकायां निरन्तर परिष्कारस्य अधिक पारदर्शकतायाश्च आवश्यकतायां बलं प्रदत्तम्। ह्यः नवदिल्ल्यां प्रत्यक्ष न्याय प्रदानं न्यायव्यवस्थायाः स्तम्भरूपेण पारदर्शिता जनविश्वासश्च इति विषयमाधृत्य आयोजिते षष्ठे राम जेठमलानी स्मृति व्याख्याने मुख्य भाषणं कुर्वन् मुख्य न्यायाधीशः अवोचत् यत् परिष्कारः एव शाश्वत नियमो भवेत्। समुद्र सुरक्षां प्रति संशयमुत्पादयन् अमेरिका ईरान देशयोः प्रत्यग्रह विवादः समुद्भूतः। ईरानीय सैन्यदलेन आख्यातं यत् तैलपोतः सुरक्षा सीमाम् अतिक्रम्य जलसुरंगेन विस्फुटः। परम् अमेरिका देशस्य मध्य कमाण्ड विभागेन अस्य खण्डनं कुर्वता प्रतिपादितं यत् ईरानीय ड्रोन इत्यनेन एव अस्य पोतस्य उपरि आक्रमणं विहितम्। नेपालस्य विद्युत् संकटम् अपाकर्तुं भारत सर्वकारः अग्रे आगतः। भारतेन दिसम्बर मासस्य 31 दिनांकं यावत् प्रतिदिनं विद्युत् निर्यातम् अन्वामोदी। नेपाले आप्लावेन जलविद्युत् परियोजनाः विनष्टाः सञ्जाताः। प्रकृतिकोपस्य संकेतं ददत् भारतीय ऋतुविज्ञान विभागः प्रत्यपादयत् यत् अद्य दिल्ली हरियाणा असम प्रभृति राज्येषु अतिवृष्टिः भविष्यति। विभागेन अनेन प्रतिपादितं यत् दक्षिण भारते अपि अतिवृष्टिः भविष्यति। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। सरकार ने कहा है कि बैंक 2000 रुपए तक के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई लेन देन और रूपे डेबिट कार्ड से भुगतान पर कोई भी शुल्क नहीं लगा सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने यूपीआई लेन देन पर शुल्क से जुड़े नियमों को स्पष्ट करने के लिए भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम के अंतर्गत इन बदलावों को अधिसूचित किया है। ये नियम ग्राहकों और छोटे व्यापारियों दोनों पर समान रूप से लागू होगा। मंत्रालय ने कहा है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते में किए जाने वाले यूपीआई लेन देन पूरी तरह मुफ्त रहेंगे। अगर भविष्य में कभी भी डिजिटल लेन देन पर कोई शुल्क जैसे मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लगाया भी गया तो वे केवल दुकानदारों पर लगेगा, ग्राहकों पर नहीं। हालांकि ये शुल्क भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड लेन देन पर लागू MDR से काफी कम होंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति, विजन महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है। नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की सह अध्यक्षता करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में वियतनाम महत्वपूर्ण साझेदार है। अमेरिका के एक विश्लेषक ने भारत की अध्यक्षता में आयोजित 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को सफल बताया है। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र अलग अलग विचारों वाले देशों के बीच आम सहमति बनाने की भारत की क्षमता को दर्शाता है। एटलांटिक काउंसिल में दक्षिण एशिया मामलों के वरिष्ठ फेलो माइकल कुगलमैन ने कहा कि ये घोषणा पत्र भारत की बढ़ती वैश्विक समन्वय क्षमता और ब्रिक्स की बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाता है। भारत ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण को इस वर्ष 31 दिसंबर तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति को मंजूरी दे दी है। विद्युत मंत्रालय ने बताया है कि मुजफ्फरपुर ढालकेबार लाइन के जरिए 600 मेगावाट तक और टकनपुर महेंद्रनगर लाइन के जरिए 54 मेगावाट विद्युत आपूर्ति की स्वीकृति दी गई है।
2: हाल ही में बाढ़ से नेपाल में जल विद्युत अवसंरचना को काफी नुकसान हुआ है, जिससे उसकी घरेलू बिजली निर्माण क्षमता कम हो गई है और बिजली की अतिरिक्त आवश्यकता हो गई है। सोमवार से मिली मंजूरी से नेपाल को मुश्किल समय में बिजली की जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी और भारत और नेपाल के बीच करीबी और लंबे समय से चले आ रहे ऊर्जा सहयोग को और

0: मजबूत करने में सहायता मिलेगी। मंत्रालय ने कहा है कि भारत नेपाल की सहायता करने और ऊर्जा क्षेत्र में आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
1: प्रतिष्ठित विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 आज गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में शुरू होने जा रहा है। दक्षिण एशिया में पहली बार आयोजित हो रहे सम्मेलन का संयुक्त उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव तथा गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल करेंगे। सम्मेलन का विषय है चक्रीय अर्थव्यवस्था जन और समृद्धि के लिए परिवर्तन। इसमें 65 से अधिक देशों के 2000 से अधिक हितधारक भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि राजस्थान के लोगों ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वे डबल इंजन सरकार के अंतर्गत सुशासन और विकास की नीतियों का पूरा समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी बृहस्पतिवार को नई दिल्ली के यशो भूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। यह वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिकी क्षेत्र को एक मंच पर लाने तथा सहयोग, नवाचार, विनिर्माण, निवेश और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने का प्रमुख मंच है। झारखंड में सीआईडी ने झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की 14वीं प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं के मामले में कोचिंग सेंटर संचालक संजीत कुमार को गिरफ्तार किया है। रांची के रातू रोड इलाके में शिवांगन कोचिंग सेंटर चलाने वाले संजीत कुमार पर आरोप है कि उसने एजेंट के तौर पर उम्मीदवारों से परीक्षा पास कराने का वायदा कर पैसे वसूले थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. Government has notified rules specifying that banks and payment system providers cannot impose charges on UPI transactions of up to 2,000 rupees. Finance Ministry issued a gazette notification yesterday under the Payment and Settlement Systems Act 2007. It listed UPI transactions of up to 2,000 rupees and debit card payments made through RuPay as electronic payment modes for which customers cannot be charged. The notification comes after concerns were raised over possible charges on UPI payments following the passage of Taxation and Other Laws Amendment Act in Parliament that proposed changes to the legal framework governing payment systems. However, the notification states that transactions up to 2,000 rupees will remain charge-free, leaving scope for off-levying charges on transactions above this threshold limit. Chief Justice of India, Justice Suryakant, has described the mechanism developed by the Supreme Court and High Courts to address complaints against judges as robust, very responsive and timely. Delivering keynote address at 6th Ram Jethmalani Memorial Lecture in New Delhi, he stressed the need for continuous reform and greater transparency in the judiciary.
3: That the mechanism which Supreme Court and the High Courts have developed is one of the robust, very responsive and very timely also. Given a choice, a judicial officer, when passes an interlocutory order or if he adjourns a case or when he passes a final decree, at every stage he will invite a complaint. I will leave it to public domain and it's a very seriously debatable issue that should those complaints, every complaint be brought to on a platform, on a website or you need to have an internal, very strong mechanism which must with complete objective activity, dispassionate approach and in a very responsible manner must deal with it.
2: Prime Minister Narendra Modi will inaugurate the 5th edition of Semicon India 2026 at Yasho Bhumi, New Delhi on Thursday. The event will bring together over 600 exhibitors, 300 international companies and delegations from more than 40 countries. The exhibition will feature 6 country pavilions, 12 state government pavilions and a dedicated startup pavilion. Prime Minister Narendra Modi has expressed gratitude to the people of Rajasthan following the BJP's victory in the urban local body elections. In a social media post, the Prime Minister said the party's win is a testament to the triumph of truth over the echo of lies. Mr. Modi said the people of Rajasthan have once again made

जी हाँ, प्रभात धीरे धीरे हुई है। इसे गोल्ड सुप्रभात बनाएंगे आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर मंगल की मुक्ता के साथ। जीवन की चाय का आनंद लेते हैं। सबसे पहले अहम को उबालते हैं, अपनी चिंताएं भाव बनाकर उड़ा देते हैं, अपने दुखों को घुल जाने देते हैं और फिर अपनी गलतियों को छानकर खुशियों का स्वाद लेते हैं। देखिएगा, इस चाय के साथ हर प्रभात होगी गोल्ड सुपर।

की यात्रा ही तो है हमारा ये जीवन। बस करना हमें है ये है कि इस यात्रा को सुखमय बनाना है। इस यात्रा में ऐसी यादें भरनी हैं जो यात्रा खत्म होने पर आए तो फिर उन यादों के साथ अपने अंतिम क्षण बिताएं। जी हाँ, हर सुबह पॉजिटिविटी, सकारात्मकता, ऊर्जा, यही संदेश तो देती है सूर्य की किरणों के साथ। अगर आपने आज मिस किया है सूर्योदय तो आपको बता दें कि 6:05 का समय था जब हुआ था सूर्योदय, और आज सूर्यास्त का समय है 6:26 का। तापमान की अगर बात करें तो आज का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स दिखा रहा है पूसा में इस वक्त 110, मंदिर मार्ग में 109, पंजाबी बाग 137 है और अशोक विहार में 127 है। पूरा दिन तकरीबन बादल रहने की उम्मीद है, हल्की फुल्की बारिश की भी संभावना आज दिल्ली में बताई जा रही है।

जी हाँ, बहुत कुछ लुभावने ऑफर्स आपको मिलेंगे, ठंडी ठंडी हवा मिलेगी, कुछ ऐसे गीत मिलेंगे जो कहेंगे आपसे बिस्तर नहीं छोड़ना है, लेकिन जनाब अगर उठेंगे नहीं, बढ़ेंगे नहीं, तो जीवन की रवानगी का आनंद कैसे लेंगे, कैसे बनाएंगे अपनी प्रभात को गोल्ड सुप्रभात। आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर हैं आप, सुन रहे हैं गोल्ड सुप्रभात।

जनाब सुबह का वक्त है, आपकी कुछ कमाई करवा दें। अब आप सोचेंगे घर से बिना निकले कैसे कुछ कमा सकते हैं। कमा सकते हैं आप। आपको पता है खुशी बिल्कुल मुफ्त मिलती है लेकिन होती बहुत अनमोल है। तो फिर करना क्या है, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए, थोड़ा सा खुश हो जाइए और घर बैठे कर लीजिए कमाई, और वो कमाई होगी आपकी सेहत की। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और फिलहाल मंगल की मुक्ता को दीजिए इजाजत। गोल्ड सुप्रभात कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं, और अब कुछ ही देर बाद समय हो चला है समाचार सेवा प्रभाग के कार्यक्रम आज सवेरे का। नमस्कार।

0: नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। जो खुद को जीतता है वो सबसे शक्तिशाली योद्धा है। एक नए दिन की नई सुबह में आकाशवाणी गोल्ड पर हम आपके साथ जुड़ चुके हैं न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे लेकर। मैं हूं मनोज और मेरे साथ है मेरी सहयोगी रेनु कटारिया। नमस्कार रेनु।
1: नमस्कार मनोज, एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। एंड एज ऑलवेज वी ब्रिंग यू आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे, वेयर इन वी आर गोइंग टू गिव यू द लेटेस्ट इन नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज, मेट्रो सिटी अपडेट्स, एज वेल एज सम हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस डे, जिसमें की बहुत कुछ रहेगा।
0: जी हाँ,
1: दैट इज द 15th ऑफ सितंबर।
0: शुरुआत कर रहे हैं ऐसी खबर से जो रोजाना डिजिटल पेमेंट करने वाले लाखों लोगों से जुड़ी है। अगर आप रोजमर्रा की खरीदारी के लिए यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। 2000 रुपए तक के यूपीआई लेन देन पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। सरकार ने कहा है कि बैंक और पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर इस सीमा तक यूपीआई पेमेंट पर कोई सीधा या अप्रत्यक्ष शुल्क नहीं लगा सकते। यही नियम 2000 रुपए तक के रुपए पावर्ड डेबिट कार्ड पेमेंट पर भी लागू होगा। वित्त मंत्रालय ने पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट के तहत इन बदलावों को अधिसूचित किया है। सरकार ने यह भी साफ किया है कि व्यक्ति से व्यक्ति यानी P2P UPI पेमेंट आगे भी पूरी तरह मुफ्त रहेंगे। तो रोजाना UPI इस्तेमाल करने वालों के लिए संदेश बिल्कुल साफ है, UPI पेमेंट मुफ्त रहेंगे और यूजर्स पर कोई सामान्य या ब्लैंकेट चार्ज नहीं लगाया जाएगा।
1: That's great news, Manoj. So let's go ahead with technology news and India's big push towards becoming a global semiconductor hub. Prime Minister Narendra Modi will inaugurate Semicon India 2026 at Yashobhoomi in New Delhi on Thursday. The three-day event will bring

0: Together, more than 600 exhibitors, 300 international companies and delegations from over 40 countries. The focus will be on semiconductor manufacturing, new technology, investment, innovation and skill development. In simple terms, the event is all about strengthening India's role in the global chip industry.
1: और हाईटेक चिप्स की दुनिया से अब बढ़ते हैं एक ऐसी तकनीक की ओर जो भारत के हाईवे पर आपातकालीन सेवाओं को और तेज और बेहतर बनाने में मदद कर रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI अपनी 1033 हेल्पलाइन को और बेहतर बनाने जा रहा है। इस अपग्रेडेड सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रियल टाइम लोकेशन ट्रैकिंग और स्मार्ट इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे हेल्पलाइन पर फोन करने वाले व्यक्ति की लोकेशन जल्दी पता लगाने, अलग अलग भारतीय भाषाओं को समझने और सही मदद जल्द भेजने में आसानी होगी। 1033 हेल्पलाइन 24 घंटे उपलब्ध रहती है और मेडिकल इमरजेंसी, वाहन खराब होने, एम्बुलेंस, क्रेन, पेट्रोल वाहन, टोल प्लाजा और फास्ट टैग से जुड़ी समस्याओं में सहायता देती है।
0: And from smart highways to smart skies, where drones are taking center stage in Rajasthan. The Indian Air Force's first Dronathon 2026 began yesterday at the Pokhran Field Firing Range in Jaisalmer. The three-day event is aimed at strengthening India's self-reliance in drone technology and improving the Air Force's unmanned systems capabilities. Indian companies, startups and innovators are demonstrating drones as well as anti-drone systems. The main focus is not only on using drones but also on developing technologies that can detect and counter them. It is another sign of how rapidly unmanned technology is becoming an important part of modern defense, Manoj.
1: जी हाँ, तकनीक युद्ध के मैदान की तस्वीर बदल सकती है, लेकिन समाज में बदलाव के लिए जागरूकता और लोगों की भागीदारी भी उतनी ही जरूरी है। और इसी से जुड़ी अगली खबर है सरकार के नशा विरोधी अभियान से। नशा मुक्त भारत अभियान देश भर में लगातार विस्तार कर रहा है। सरकार के अनुसार इस अभियान से अब तक 34,54,00,000 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। इनमें 13,70,00,000 से अधिक युवा और 10,64,00,000 महिलाएं शामिल हैं। इसके अलावा 1,67,000 से ज्यादा नशा मुक्ति मित्र इस अभियान का हिस्सा बने हैं। देश भर में 31,40,000 से ज्यादा जागरूकता गतिविधियां भी आयोजित की जा चुकी हैं। सरकार का लक्ष्य है कि इस महीने के अंत तक 10,00,00,000 से अधिक लोगों को नशे के खिलाफ राष्ट्रव्यापी शपथ से जोड़ा जाए। संदेश साफ है, नशे के खिलाफ लड़ाई सिर्फ सरकार की नहीं बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है।
0: And Manoj, a very quick reality check, because in the age of artificial intelligence, not every video we see online is real, and our listeners really need to pay attention to this news. The Press Information Bureau has warned people about a fake social media video claiming that the government will provide free cars to people earning less than 50,000 rupees. PIB has clarified that the video is AI generated and fake. There has been no such announcement by Prime Minister Narendra Modi. The message for social media users is simple: before believing or forwarding a sensational government related claim, please check whether it comes from an official source or not.
1: और अब रुक करते हैं जम्मू की ओर, जहां सिनेमा और संस्कृति एक साथ दिखाई देंगे। जम्मू फिल्म फेस्टिवल का पांचवां संस्करण 17 सितंबर यानी बृहस्पतिवार को जम्मू में एक कर्टेन रेजर कार्यक्रम के साथ शुरू होगा। यह कार्यक्रम सुबह 11 बजे राइटर्स क्लब अभिनव थिएटर में आयोजित किया जाएगा। फिल्म फेस्टिवल का उद्देश्य फिल्मकारों, कलाकारों, रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों और सिनेमा प्रेमियों को एक मंच पर लाना है। साथ ही जम्मू कश्मीर की समृद्ध संस्कृति और रचनात्मक पहचान को भी दुनिया के सामने रखने की कोशिश की जाएगी। यानी सिनेमा यहाँ सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि संस्कृति और संवाद का माध्यम भी बनेगा।
0: जी, वेरी ट्रू। एंड नाउ लेट्स टर्न टू टूरिज्म। एज इंडियाज रिच हेरिटेज एंड नेचुरल ब्यूटी टेक सेंटर स्टेज on the international platform. Karnataka is showcasing its tourism attractions at the Arabian Travel Market in Dubai, which is being held from September 14 to 17. The state's tourism stall highlights its rich culture, heritage, beaches and the Western Ghats.

0: popular destinations like Mysuru, Hampi, Badami, Belur and Halebiru are also being showcased to international visitors. Karnataka is also displaying selected products under the One District, One Product initiative. The state hopes its participation will attract more international tourists and put Karnataka's diverse tourism experiences on the global map.
1: और अब पर्यटन के रंगों और संस्कृति से आगे बढ़ते हैं क्रिकेट की रोमांच की ओर। टीम इंडिया एक बार फिर T20 फॉर्मेट में मैदान पर उतरने के लिए तैयार है। मैन इन ब्लू आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरा T20 इंटरनेशनल मैच खेलेगी। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। भारत 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे है। टीम इंडिया ने रविवार को खेले गए पहले मुकाबले में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया था। आज भारत की नजरें सीरीज पर कब्जा करने पर होगी, जबकि अफगानिस्तान की टीम मुकाबला बराबर करने के इरादे से मैदान में उतरेगी। सीरीज का तीसरा और आखिरी T20 मुकाबला भी गुरुवार को दिल्ली में ही खेला जाएगा।
0: जी, एंड फाइनली फ्रॉम क्रिकेट वी टर्न टू द वर्ल्ड ऑफ कॉम्पिटिटिव शूटिंग वेयर प्रिसिशन, फोकस एंड अ स्टेडी हैंड आर द कीज टू सक्सेस। इंडियाज 20 मेंबर शूटिंग टीम इज टेकिंग पार्ट इन द ISSF Junior World Cup Shotgun in Porpeto, Italy. The competition will continue until September 19. Asian trap champion Sabira Harris is leading the Indian team. A total of 218 shooters from 30 federations are taking part in the competition. India had a strong showing at the Junior World Cup in Cairo earlier this year, winning 16 medals including 5 gold medals. Now the Indian shooters are ready to take aim once again and bring home more medals.
1: Yep. और अब रुक करते हैं महानगरों के समाचारों का। पहले दिल्ली की खबर। दिल्ली नगर निगम द्वारा गहन प्रवर्तन अभियान के अंतर्गत शहर के सभी 12 जोनों में 40 स्थानों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। इसके साथ ही 8 संपत्तियों को सील किया गया और लागू भवन मानदंडों और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर 14 ध्वस्तीकरण आदेश पारित किए गए। इसके साथ ही नगर निगम अपनी निरंतर प्रवर्तन और निरीक्षण पहल के अंतर्गत दिल्ली में पेइंग गेस्ट PG आवासीय भवनों का व्यापक फील्ड सर्वेक्षण भी कर रही है। इसका उद्देश्य एक व्यापक डेटाबेस तैयार करना तथा आगे की कार्रवाई की रूपरेखा तय करना है। अब तक किए गए सर्वेक्षण के अंतर्गत दिल्ली में लगभग 2453 ऐसे भवनों की पहचान की गई है जहां पीजी सुविधाएं संचालित हो रही हैं। दिल्ली की एक और खबर। दिल्ली में मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम और नियंत्रण को लेकर स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने कल निगमायुक्त को पत्र लिखकर आवश्यक और कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। श्रीमती शर्मा ने नागरिकों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए निगम के सभी संबंधित अधिकारियों को मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए सख्त तथा समयबद्ध निर्देश जारी किए जाने की बात कही। उन्होंने निगमायुक्त से कहा कि विशेष रूप से ये निर्देश दिए जाएं कि सभी 12 जोनों में मच्छर प्रजनन स्थलों की नियमित जांच कर तत्काल आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित हो। उन्होंने जल भराव वाले क्षेत्रों, संवेदनशील स्थानों और हॉटस्पॉट क्षेत्रों में नियंत्रित फॉगिंग तथा एंटी लार्वा गतिविधियों को तेज करने की बात भी कही।
0: जी, एंड मूविंग ऑन टू चेन्नई मेट्रो, आई हैव सम वेरी नाइस न्यूज। द ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन अलोंग विद द एनवायरमेंटलिस्ट फाउंडेशन ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड द वॉल ई ब्लू ग्रीन चेन्नई इनिशिएटिव टू ब्यूटिफाई सिटी वॉल्स। रेजिडेंट्स, यूथ एंड स्ट्रीट आर्टिस्ट आर पेंटिंग वॉल्स विद थीम्स ऑफ वाइल्ड लाइफ, वेटलैंड्स एंड अर्बन नेचर। द प्रोजेक्ट एम्स टू ब्यूटिफाई नेबरहुड्स, स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट प्रोटेक्टिंग नेचर एंड प्रिवेंट इलीगल पोस्टर्स, ग्रेफिटी एंड लिटरिंग। The initiative will soon be expanded to other parts of the city. And more news. Following the National Green Tribunal's order to stop idol immersion at Foreshore Estate and Nilankarai during Ganesh Chaturthi, authorities are looking for alternative locations. Artificial ponds in the southern suburbs are among the options being considered. Officials from the Greater Chennai Corporation, Collectorate and Tamil Nadu Pollution Control Board met to identify suitable immersion sites. And there's last news from Chennai Metro. The Tamil Nadu government signed 2 MOUs yesterday with global

0: में राज्य भर से 432 गणेश मंडलों ने आवेदन जमा किए हैं। इस प्रतियोगिता का आयोजन संस्कृति विभाग और पीएल देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी द्वारा किया जाता है। ठाणे जिले से सबसे अधिक 52 आवेदन प्राप्त हुए हैं। पिछले वर्ष इस प्रतियोगिता का विस्तार तालुका स्तर तक किया गया था और इस वर्ष पहली बार इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक बढ़ाया गया है। भारत भर के शहरों से आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जबकि जापान, श्रीलंका, जर्मनी, नाइजीरिया और सिंगापुर से अंतर्राष्ट्रीय प्रविष्टियां प्राप्त हुई हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय श्रेणियों में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 25 सितंबर है। महाराष्ट्र की एक और खबर, महाराष्ट्र में प्रोफेसरों की भर्ती के लिए अनिवार्य राज्य पात्रता परीक्षा SET अब 25 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय के SET विभाग ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से संशोधित तिथि की घोषणा की। परीक्षा पहले 27 सितंबर को निर्धारित थी।
1: And Manoj, yesterday we began with Ganesh Chaturthi. तो बहुत ही अच्छा हमारा एक माहौल हो गया है, but always in the end it comes down to a problem जिसके लिए solution सारे state governments लेती हैं, and that is the immersion of the idol.
0: Resurgent.
1: जी, so thousands of devotees visited Bengaluru's historic Dodda Ganapati temple on Ganesh Chaturthi yesterday, and built in the 16th century by Kempe Gowda. The temple has a massive 18-foot high and 16-foot wide monolithic Ganesha idol. The idol was decorated with flowers, fruits and leaves, and devotees performed prayers and abhishekam. The Greater Bengaluru Authority has arranged 42 lakes, temporary ponds and 659 mobile tanks for eco-friendly idol immersion. Ganesh Chaturthi was also celebrated at the historic South Adaka Mahaganapati and Idaka Gunji temples in Karnataka.
0: अब कोलकाता पश्चिम बंगाल चलते हैं। पश्चिम बंगाल विद्युत विभाग ने आगामी दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान राज्य भर में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय लागू कर दिए हैं। विद्युत राज्य मंत्री गार्गी दास घोष ने सोमवार को विधाननगर स्थित विद्युत भवन में कोल इंडिया लिमिटेड, पूर्वी रेलवे, दक्षिण पूर्वी रेलवे, पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड PGCIL, पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड WBSETCL, पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड WBSEDCL, कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन CESC और इंडिया पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड IPCL के प्रतिनिधियों के साथ हुई समन्वय बैठक के बाद इस निर्णय की घोषणा की। बिजली आपूर्ति में किसी भी प्रकार की बाधा से निपटने के लिए 3,500 मोबाइल वैन तैनात की गई है। विद्युत भवन में 24 घंटे चलने वाला एक नियंत्रण कक्ष होगा, जिस पर 8900793503 और 8900793504 नंबरों के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है। WBSEDCL के उपभोक्ता टोल फ्री नंबर 1912 के माध्यम से भी अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। और अब महानगरों के मौसम का हाल जानते हैं। पहले दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के मौसम का हाल। दिल्ली में आज आम तौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होगी। यहां का न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मुंबई की बात करें तो मुंबई में आज आम तौर पर बादल छाए रहेंगे और मध्यम बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कोलकाता में आज आम तौर पर बादल छाए रहने के आसार हैं। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और अब चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु के मौसम का हाल जानते हैं रेनु कटारिया से।
1: Thank you, Manoj. Chennai will have a generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature will be around 27 degrees Celsius. where the maximum is expected to be around 34 degrees. Bengaluru will have rain or thunder showers would occur towards the evening or night. The minimum temperature will be around 21 degrees Celsius, while the maximum may reach 32 degrees. And Hyderabad will also have generally cloudy sky with the intermittent rain. The minimum temperature

0: temperature will be around 23 degrees Celsius, while the maximum may reach 29 degrees Celsius.
1: श्रोताओं, 15 सितंबर को पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी मना रही है।
0: जी, टू अंडरस्टैंड मनोज व्हाई दिस डे मैटर्स, वी गो बैक टू द ईयर 2007 व्हेन यूनाइटेड नेशंस पास्ड अ लैंडमार्क रेजोल्यूशन टू चैंपियन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, ह्यूमन डिग्निटी एंड ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस वर्ल्ड वाइड।
1: ये दिन हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र सिर्फ हर 5 साल में वोट डालना नहीं है, बल्कि ये हर नागरिक को समानता, न्याय और अपनी आवाज उठाने का बुनियादी अधिकार देता है।
0: एंड मनोज, ग्लोबली इंडिया स्टैंड्स आउट एज द अल्टीमेट लिविंग टेस्टमेंट टू द स्पिरिट, विद ओवर 1.4 बिलियन पीपल एंड काउंटलेस कल्चर्स, आवर नेशन डेमोंस्ट्रेट्स एवरी डे हाउ डाइवर्सिटी एंड डेमोक्रेसी थ्राइव हैंड इन हैंड।
1: वैदिक काल की सभा और समिति से लेकर आधुनिक भारत तक हमारी सोच हमेशा से जन कल्याण और संवाद की रही है, इसीलिए भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है।
0: एंड टुडे दिस डेमोक्रेटिक स्ट्रेंथ पावर्स आर ग्रैंडेस्ट नेशनल विजन, विकसित भारत एट 2047। इट इज द इंजन ड्राइविंग डिजिटल एक्सेस, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल एम्पावरमेंट टू द लास्ट पर्सन इन द लाइन।
1: एक विकसित राष्ट्र का निर्माण तभी संभव है जब हम अपने अधिकारों के साथ साथ नागरिक कर्तव्यों को भी समझें और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाएं।
0: So dear listeners, on this day of democracy, let us take pride in our constitutional values and actively contribute towards a resilient, progressive India.
1: आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
0: जी,
1: और अब समय है इतिहास में दर्ज आज की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के जिक्र का। आज 15 सितंबर है, देश और दुनिया के इतिहास में आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है।
0: Yes, in the year 1830, the Liverpool and Manchester Railway opened in England, becoming the world's first intercity fully steam-powered passenger railway to operate entirely with scheduled services.
1: 1959 में आज ही के दिन भारत की राष्ट्रीय सार्वजनिक प्रसारण सेवा दूरदर्शन का पहला प्रायोगिक प्रसारण नई दिल्ली में औपचारिक के रूप से शुरू हुआ था।

0: मनोज, दिस ब्रिंग्स अस बैक टू आवर चाइल्डहुड डेज, जब हम सिर्फ दूरदर्शन देखा करते थे।
1: एंटीना युग में हमें
0: जी
1: ले जा रहा है।
0: बिल्कुल। सो इन द ईयर 1971 द एनवायरमेंटल कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन ग्रीन पीस वाज फाउंडेड इन वैंकूवर कनाडा, लॉन्चिंग इट्स फर्स्ट एनवायरमेंटल कैंपेन टू प्रमोट इकोलॉजिकल पीस ऑन दिस डे।
1: 1997 में आज ही के दिन लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने इंटरनेट डोमेन नाम google.com का आधिकारिक रूप से पंजीकरण कराया था, जिसने डिजिटल दुनिया के सूचना परिदृश्य को पूरी तरह से बदल दिया।
0: And the 27th Summer Olympic Games officially opened with a spectacular ceremony in Sydney, Australia, celebrating global sportsmanship in the year 2000 on this day.
1: और अब याद करते हैं उन महान विभूतियों को जिनका जन्मदिन, जयंती या पुण्यतिथि है।
0: जी, so today we are going to first remember Dame Agatha Christie, who was an English author known for her 66 detective novels and 14 short story collections, particularly those revolving around fictional detectives Hercule Poirot, with the novel debut being The Mysterious Affair at Styles in 1920, Tommy and Tuppence, Miss Marple, and she was a writer during the golden age of detective fiction and has been called the Queen of Crime, a nickname now trademarked by her estate, or the Queen of Mystery.
1: आज पुण्यतिथि है विश्वनाथ नारायण लवांडे की। उनका जन्म 21 फरवरी 1923 को पुराना गोवा नगर में हुआ था। वे गोवा मुक्ति संग्राम के प्रमुख नेता और स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने गोवा को पुर्तगाली साम्राज्य से मुक्त कराने के लिए कड़ा संघर्ष किया।
0: Today we are paying tributes to Richard Wright, the legendary English musician, keyboardist and founding member of the progressive rock band Pink Floyd.

0: एक कविता। जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता है, सुंदर दिखने लगता है। झपटता बाज फन उठाए सांप, दो पैरों पर खड़ी कांटों सी नन्ही पत्तियां खाती बकरी, दबे पांव झाड़ियों में चलता चीता, डाल पर उल्टा लटक फल कुतरता तोता, या इन सब की जगह आदमी होता। जब भी कोई भूख से लड़ने खड़ा हो जाता है, सुंदर दिखने लगता है। ये काव्य रचना है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। आज जयंती है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। उनका जन्म 15 सितंबर 1927 को जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ था। वे प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार थे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना तीसरे सप्तक के महत्वपूर्ण कवियों में से एक थे। कविता के अतिरिक्त उन्होंने कहानी, नाटक और बाल साहित्य भी रचा। उनकी रचनाओं का अनेक भाषाओं में अनुवाद भी हुआ। आकाशवाणी में सहायक निर्माता, दिनमान के उप संपादक तथा पराग के संपादक रहे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का साहित्यिक जीवन काव्य से प्रारंभ हुआ, तथापि चर्चे और चरखे स्तंभ में दिनमान में छपे आपके लेख विशेष लोकप्रिय रहे। 1983 में कविता संग्रह खूंटियों पर टंगे लोक के लिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
1: And today we are remembering Jean Renoir, the master French film director and pioneer of poetic realism cinema, celebrated for classic films such as The Grand Illusion and The Rules of the Game. But here we are going to listen to the greatest dance sequence of all times from his movie The River in 1951, the first color film shot in India.
2: Lo and behold, he was the young man she loved. She was very happy.
0: आज जयंती है खुमार बाराबंकवी की। उनका जन्म 15 सितंबर 1919 को पीर बटावन मोहल्ला बाराबंकी उत्तर प्रदेश में हुआ था। वे भारतीय शायर थे। सन 1945 में मुशायरे में शिरकत की गरज से खुमार जिगर मुरादाबादी और मजरूह सुल्तानपुरी के साथ बंबई गए थे। एआर करदार ने जब उनका कलाम सुना तो अपनी फिल्म शहनशाह में गीत लिखने की फरमाइश की, जो खुमार ने कबूल कर ली। उस फिल्म में नौशाद ने संगीत दिया था। कुछ और गाने भी उनके बड़े लोकप्रिय हुए। आइए सुनते हैं उनका लिखा एक गीत।
3: तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती।
0: आज जयंती है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की। उनका जन्म 15 सितंबर सन 1876 को हुगली जिले के देवानंदपुर गांव में हुआ था। वे बांग्ला के अमर कथा शिल्पी और सुप्रसिद्ध उपन्यासकार थे। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय अकेले ऐसे भारतीय कथाकार भी हैं जिनकी अधिकांश कालजयी कृतियों पर फिल्में बनी तथा अनेक धारावाहिक सीरियल भी बने। आइए सुनते हैं उनकी फिल्मों के कुछ गीत।

0: कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है। मैं तो पीता हूँ कि बस सांस ले सकूं।
1: गाओ मेरे मन, चाहे सूरज चमके रे चाहे लगा हो ग्रहण।
2: क्यों पीते हो इतना कि बर्दाश्त ही न कर पाओ?
3: कौन कम वक्त बर्दाश्त करने को पीता?
4: हम तो पीते हैं कि

0: पर बैठ सके।
1: किससे पूछो?
2: ये हवाएं गुनगुनाएं।
3: आज जन्मदिन है अभिनेत्री रम्या कृष्णन का। उनका जन्म 15 सितंबर 1970 को चेन्नई तमिलनाडु में हुआ है। उन्होंने मात्र 13 वर्ष की उम्र में अभिनय की दुनिया में कदम रखा और 1983 से लगातार अभिनय कर रही हैं। उन्हें एस राजामौली की फिल्म बाहुबली में राज माता शिवगामी देवी के किरदार से सबसे अधिक लोकप्रियता मिली।
4: இந்த கூட்டத்தினால் மகிழ்மதிக்கு அழுக்கு படிந்து விட்டது ரத்தத்தினால் சுத்தம் செய்
5: அமரேந்திர பாஹுபலி நஹி ரஹே அப் ஆப்கே மஹாராஜ் ஹே
6: மஹேந்திர பாஹுபலி
3: நாயகி மேஹி। और अब समय आपसे विदा लेने का हो गया है तो अनुमति दीजिए कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की। अगर आप आज सवेरे कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर।
7: थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन डियर लिसनर्स, हैव अ सुपर्ब डे।
3: नमस्कार।
8: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। सरकार ने कहा 2,000 रुपए तक के यूपीआई भुगतान पर बैंक कोई शुल्क नहीं लेंगे। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 का आज से गुजरात के गांधीनगर में शुभारंभ। भारत और कनाडा के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते पर अगले दौर की बातचीत शुरू। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों के निवारण के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा विकसित तंत्र को मजबूत और कारगर बताया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की और भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज शाम दिल्ली में। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने कहा है कि बैंक 2,000 रुपए तक के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई लेनदेन और रूपे डेबिट कार्ड से भुगतान पर कोई भी शुल्क नहीं लगा सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने यूपीआई लेनदेन पर शुल्क से जुड़े नियमों को स्पष्ट करने के लिए भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम के अंतर्गत इन बदलावों को अधिसूचित किया है। एक रिपोर्ट।
9: वित्त मंत्रालय ने कहा है कि यह नियम ग्राहकों और छोटे व्यापारियों दोनों पर समान रूप से लागू होंगे। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते में किए जाने वाले यूपीआई लेनदेन पूरी तरह मुफ्त रहेंगे। अगर भविष्य में कभी डिजिटल लेनदेन पर कोई शुल्क जैसे मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लगाया भी गया तो वह केवल दुकानदारों पर लगेगा, ग्राहकों पर नहीं। हालांकि ये शुल्क भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड लेनदेन पर लागू MDR से काफी कम होंगे। सरकार का यह स्पष्टीकरण भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 में हालिया संशोधन के बाद यूपीआई लेनदेन पर शुल्क की आशंकाओं के बीच आया है। समाचार कक्ष से जया भारती।
8: प्रतिष्ठित विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 आज गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में शुरू होने जा रहा है। दक्षिण एशिया में पहली बार आयोजित हो रहे इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव तथा गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल संयुक्त रूप से करेंगे। सम्मेलन का विषय है चक्रीय अर्थव्यवस्था, जन और समृद्धि के लिए परिवर्तन। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इसमें 65 से अधिक देशों के 2,000 से अधिक हितधारक भाग लेंगे।
10: 2 दिवसीय वर्ल्ड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम में विश्व भर से पर्यावरण विशेषज्ञ, नीति निर्माता, उद्योजक और शोधकर्ताओं हिस्सा ले रहे हैं। इस फोरम का मुख्य उद्देश्य पुरानी सामग्रियों और उत्पादों के पुनरुपयोग, रिसाइकलिंग और पुनर्चक्रण के माध्यम से सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। इस आयोजन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग, हरित ऊर्जा, रोजगार, वित्त और स्टार्टअप इकोसिस्टम जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर 4 प्लेनरी और 16 विषय आधारित सत्र आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही आयोजित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो में 125 से अधिक प्रदर्शक अपने व्यावहारिक सर्कुलर समाधानों का भी प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद 17 और 18 सितंबर को दुनिया भर में 80 विशेष

0: एक्सीलेटर सत्र आयोजित किए जाएंगे। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: भारत और कनाडा ने प्रस्तावित व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के लिए नई दिल्ली में चौथे दौर की वार्ता शुरू कर दी है। दोनों देश वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $50 अरब तक बढ़ाने के प्रयास में हैं। 5 दिन की ये वार्ता कल से शुरू हुई, जो 18 सितंबर तक चलेगी। इसमें वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार, मूल स्थान के नियम तथा तकनीकी व्यापार बाधाओं सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। एक रिपोर्ट।
0: दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2024-25 में $8.66 अरब से घटकर वर्ष 2025-26 में $7.95 अरब रह गया, जो 8.22% कम है। भारत से कनाडा को प्रमुख निर्यात में दवाइयां, लोहा और इस्पात, समुद्री खाद्य, सूती परिधान, इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन शामिल हैं, जबकि कनाडा से भारत के प्रमुख आयात में दालें, मोती और अर्धकीमती पत्थर, कोयला, उर्वरक, कागज और कच्चा तेल शामिल हैं। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबेतकिन ने भारत और दक्षिण अमरीका के प्रमुख व्यापार समूह मरकोसुर के बीच तरजीही व्यापार समझौते के विस्तार के लिए बातचीत शुरू करने की घोषणा की है। दोनों मंत्रियों ने वर्तमान समझौते में आपसी हित के क्षेत्रों को शामिल करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है। नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की सह अध्यक्षता करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में वियतनाम महत्वपूर्ण साझेदार है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं, तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों के निवारण के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा विकसित तंत्र को सुदृढ़, सक्रिय, समयबद्ध और बेहद कारगर बताया है। कल नई दिल्ली में राम जेठमलानी स्मृति व्याख्यान के 6वें संस्करण में उन्होंने ये बात कही।
4: Given a choice, a judicial officer,
5: अगर किसी न्यायिक अधिकारी को अंतरिम आदेश देने पर, मामले की सुनवाई टालने पर या अंतिम आदेश पारित करने पर शिकायत का सामना करना पड़े, तो हर चरण में उसके खिलाफ शिकायत आ सकती है। यह गंभीर बहस का विषय है कि क्या ऐसी हर शिकायत को किसी सार्वजनिक मंच या वेबसाइट पर रखा जाना चाहिए, या फिर इसके लिए न्यायपालिका के भीतर ही एक मजबूत व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था में पूरी निष्पक्षता और बिना किसी पूर्वाग्रह के शिकायतों पर विचार किया जाना चाहिए।
1: मुख्य न्यायाधीश ने न्यायपालिका में निरंतर सुधार और अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। ये वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र को एक मंच पर लाने तथा सहयोग, नवाचार, विनिर्माण, निवेश और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने का प्रमुख मंच है। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने कहा कि राजस्थान के लोगों ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वे डबल इंजन सरकार के अंतर्गत सुशासन और विकास की नीतियों का पूरा समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोगों के बीच प्रेम और सद्भावना बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जिनसे हृदय में प्रेम, सौहार्द और सद्भावना का विकास हो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रही दिशा सालियान की

0: मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। दिशा सालियान की 8 जून 2020 को एक इमारत की 12वीं मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई थी। बम्बई उच्च न्यायालय के आदेश के बाद ये प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, उनके सुरक्षाकर्मी डिनो मौर्या, रोहन रॉय, सूरज पंचोली, रिया चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती और पुलिस अधिकारियों सचिन वाजे तथा परमबीर सिंह सहित कई लोगों के नाम हैं। झारखंड में सीआईडी ने झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की 14वीं प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं के मामले में एक कोचिंग सेंटर संचालक संजीत कुमार को गिरफ्तार किया है। रांची के रातू रोड इलाके में शिवांगन कोचिंग सेंटर चलाने वाले संजीत कुमार पर आरोप है कि उसने एजेंट के तौर पर उम्मीदवारों से परीक्षा पास कराने का वायदा कर पैसे वसूले थे। पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर गहरा गया है। यमन के ईरान समर्थित हाउसी विद्रोहियों ने दक्षिणी सऊदी अरब के एक सैन्य हवाई अड्डे पर कई मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं। सऊदी गठबंधन के अनुसार इस हमले में 13 नागरिक घायल हुए हैं, जिसके बाद 4 पड़ोसी शहरों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। दूसरी तरफ हाउसी विद्रोहियों ने लाल सागर के पास देश के पश्चिमी तट पर अपनी स्थिति मजबूत करना शुरू कर दिया है। इस बढ़ते तनाव के कारण खाड़ी देशों ने ईरान के साथ होने वाली बातचीत को फिलहाल टाल दिया है। जानकारों का मानना है कि यदि ये टकराव और बढ़ा तो लाल सागर के रास्ते होने वाली दुनिया की तेल आपूर्ति बड़ी मुसीबत में पड़ सकती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन एक दूसरे के ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने पर सहमत हो गए हैं। हालांकि उन्होंने इसे लागू कराने से जुड़ी जानकारी नहीं दी। सोशल मीडिया मंच ट्रुथ सोशल पर पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन रूस के ऊर्जा ठिकानों पर हमला नहीं करने और रूस भी ऐसा ही करने पर सहमत हुआ है। हालांकि पोस्ट में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किन ऊर्जा प्रतिष्ठानों को इस समझौते के दायरे में रखा जाएगा या क्या दोनों पक्षों ने कोई शर्त रखी है। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनावों से पहले डाक से मतदान प्रतिबंधित करने की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना को खारिज कर दिया है। न्यायाधीशों ने एक संघीय न्यायाधीश के उस आदेश को बरकरार रखा है जिसमें डाक सेवा को डाक मतपत्रों से जुड़े नए नियमों को लागू करने से अस्थायी रूप से रोक दिया गया था। न्यायाधीश सैमुअल एलिटो और क्लेरेंस थॉमस ने संक्षिप्त आदेश से असहमति जताई। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में भी दिनभर ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा और राजस्थान में बिजली चमकने की आशंका है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज दिल्ली में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। तीसरा और अंतिम मुकाबला दिल्ली में ही बृहस्पतिवार को होगा। भारत ने पहले T20 मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। एशियाई ट्रैप चैंपियन निशानेबाज सबीरा हारिस के नेतृत्व में 20 सदस्यीय भारतीय दल आज से इटली में ISSF जूनियर विश्व कप शॉटगन में भाग लेगा। प्रतियोगिता का समापन 19 सितंबर को होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRnews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद प्रियंका। आज अधिकांश अखबारों ने रक्षा मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट को प्रमुखता से दिया है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर चीन ने घटाई सैन्य तैनाती, देश फिर से चौकस। दैनिक भास्कर ने लिखा है, रिपोर्ट में तकनीकी बदलाव का रोड मैप बताया गया। ऑपरेशन सिंदूर से सबक, ड्रोन के 9 फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट शुरू होंगे। अमर उजाला ने भारत चीन में भरोसा और बढ़ा शीर्षक से चीन के विदेश मंत्री का बयान दिया है, सुधार और नई ऊंचाई की ओर बढ़ रहे रिश्ते। नव भारत टाइम्स की खबर है, साइबर ठगी के आरोप पर बैंक खाते से लेन देन पर 60 दिन तक लग सकेगी रोक, आरबीआई ला रहा नियम। हिंदुस्तान के आर्थिक पन्ने की खबर है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने

0: अपने करोड़ों अंशधारकों को दी बड़ी राहत, पीएफ की सूचनाएं अब व्हाट्सएप पर मिलेंगी। ईपीएफओ पोर्टल या उमंग ऐप पर बार बार लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को आसान हिंदी में समझ सकेंगे लोग। कल हिंदी दिवस पर न्यायालय की नई पहल को दैनिक जागरण सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। लोक सत्य ने लिखा है, जन सूचना सेवा में सरल हिंदी सारांश के साथ ऑडियो वीडियो बुलेटिन भी मिलेंगे। जनसत्ता की ये खबर ध्यान खींचती है। लंदन में टेम्स नदी के तट पर पहली बार हुई गंगा आरती, हजारों लोग शामिल हुए, वाराणसी के घाटों जैसी दिखी झलक।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कहा, 2000 रुपए तक के यूपीआई भुगतान पर बैंक कोई शुल्क नहीं लेंगे। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 का आज से गुजरात के गांधीनगर में शुभारंभ। भारत और कनाडा के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते पर अगले दौर की बातचीत शुरू। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों के निवारण के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा विकसित तंत्र को मजबूत और कारगर बताया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की। और भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज शाम दिल्ली में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। UPI payments of up to 2,000 rupees to remain free of bank charges. World Circular Economy Forum 2026 to begin today at Gandhinagar in Gujarat. India and Canada begin next round of talks on proposed trade pact. Chief Justice of India Justice Suryakant says mechanism developed by Supreme Court and High Courts to deal with complaints against judges is robust and very responsive. CBI registers FIR in celebrity manager Disha Salian death case. And in men's cricket, second T20 international between India and Afghanistan to be played this evening in Delhi. And now the news in detail. Government has notified rules specifying that banks and payment system providers cannot impose charges on UPI transactions of up to 2,000 rupees. The Finance Ministry issued a gazette notification yesterday under the Payment and Settlement Systems Act 2007. It listed UPI transactions of up to 2,000 rupees and debit card payments made through RuPay as electronic payment modes for which customers cannot be charged. More from our correspondent.
3: According to the gazette notification issued by the Finance Ministry, no bank or system provider can impose any direct or indirect charge on a person making or receiving payments through RuPay-powered debit cards and UPI. The notification specifically categorized RuPay-powered debit cards and UPI transactions of up to 2,000 rupees as electronic modes of payment. The Ministry has notified the changes under the Payment and Settlement System Act to clarify the rules regarding charges on UPI transactions. Last month, the government clarified that consumers will not be charged for making payments through the UPI, while any future merchant discount rate will be limited to select transactions above a specified threshold. The Finance Ministry also said that all person-to-person P2P UPI transactions will continue to remain free and there will be no blanket MDR on merchants. It further said that such charges would be significantly lower than MDR applicable to debit card or credit card transactions. The clarification come amid concerns over the possibility of charges being imposed on UPI users following a recent amendment to the Payment and Settlement System Act 2007. This is Dilnashi Arzu, Akashwani News, Delhi.
2: The prestigious World Circular Economy Forum, WCEF 2026, is set to begin today at Mahatma Mandir in Gandhinagar, Gujarat. The conference, which is being held for the first time in South Asia, will be jointly inaugurated by Union Minister for Environment, Forest and Climate Change, Bhupendra Yadav, and Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel. Held under the theme Circular Economy, Transition for People and Prosperity, the event will bring together over 2,000 stakeholders from more than 65 countries. We have a report.
4: The stage is set at Mahatma Mandir in Gandhinagar for the World Circular Economy Forum 2026, marking a major milestone in promoting sustainable economic transitions across South Asia.

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कलीम अहमद। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। यूपीआई के जरिए 2000 रुपए तक की अदायगी बैंक चार्जेस से मुस्तस्ना रहेगी। आलमी सर्कुलर इकोनॉमी फोरम 2026 आज गुजरात के गांधीनगर में शुरू हो रहा है। भारत और कनाडा ने मुजवजा तजारती मुआहदे पर अगले दौर की बातचीत शुरू की। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि जजों के खिलाफ शिकायत से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स का तैयार करदा निजाम मजबूत और इंतहाई मुअसर है। सीबीआई ने आजहानी अदाकार सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में एफआईआर दर्ज की है। और मर्दों की क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के दरमियान दूसरा टी20 बैन अलाक्वामी मैच आज शाम दिल्ली में खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। हुकूमत ने ऐलान किया है कि बैंक 2000 रुपए तक के यूपीआई लेन देन पर कोई चार्जेज आयद नहीं कर सकते। इसमें रुपए डेबिट कार्ड्स के जरिए 2000 रुपए तक की अदायगी भी शामिल है। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: वजारत खजाना की तरफ से जारी किए गए गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक कोई भी बैंक या सिस्टम प्रोवाइडर इन इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से अदायगी करने या रकम वसूल करने पर किसी भी फर्द पर कोई बराह रास्त या बिलवास्ता चार्ज आयद नहीं कर सकता। वजारत ने अदायगी और तस्वीर के निजाम से मुतालिक कानून के तहत ये तब्दीलियां मुतारिफ कराई हैं ताकि यूपीआई लेन देन पर आए चार्जेस के ताल्लुक से जवाबित को वाजे किया जा सके। इस नोटिफिकेशन में खासतौर पर रुपए डेबिट कार्ड्स और 2000 रुपए तक की यूपीआई लेन देन को अदायगी के इलेक्ट्रॉनिक तरीकों के जुमरे में रखा गया है। गुज़श्ता माह हुकूमत ने वाजे किया था कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई के जरिए रकम की अदायगी पर कोई चार्ज वसूल नहीं किया जाएगा और मुस्तकबिल में कोई भी मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR एक मखसूस हद से ज्यादा मुंतखब अदायगियों तक महदूद रहेगा। वजारत खजाना ने यह भी बताया कि तमाम फर्ज से फर्द के दरमियान होने वाली यूपीआई अदायगी मुफ्त रहेंगी। ये वजाहत अदायगी और तस्वीर के निजाम से मुतालिक कानून 2007 में की गई हालिया तरमीम के बाद यूपीआई सार्फिन पर चार्जेस आयद किए जाने के इम्कान के ताल्लुक से तशवीश के दौरान सामने आई है। दिल्ली से दिलनशी आरजू की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए कौनैन हैदर।
0: बावकार आलमी सर्कुलर इकोनॉमी फोरम WCEF 2026 गुजरात के गांधीनगर में वाके महात्मा मंदिर में शुरू होने जा रहा है। ये कॉन्फ्रेंस जनूबी एशिया में पहली बार मुनक़िद की जा रही है। माहौलियात, जंगलात और आबोहवा की तब्दीली के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव और गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल मुश्तरका तौर पर इस कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। सर्कुलर इकोनॉमी लोगों और खुशहाली के लिए मुंतकली के मौजू के तहत मुनक़िद होने वाले इस प्रोग्राम में 65 से ज्यादा मुल्कों के 200 से ज्यादा शराकतदार हिस्सा लेंगे। तफसील हमारे नामा निगार से।
2: गांधीनगर के महात्मा मंदिर में आलमी सर्कुलर इकोनॉमी फोरम 2026 के लिए स्टेज पूरी तरह तैयार है। ये जनूबी एशिया में पायदारी इक्तसादी तब्दीली के फरोग के जानिब एक अहम संगे मेल है। फोरम का मकसद दोबारा इस्तेमाल, मरम्मत और रिसाइकिलिंग पर जोर देते हुए आलमी सर्कुलर इकोनॉमी को फरोग देना है ताकि अशिया और साजो सामान को दोबारा काबिल कदर माशी वसाइल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। दो रोज़ा फोरम के दौरान 4 मुकम्मल इजलास और 16 मौजूआती इजलास मुनक़िद किए जाएंगे। इनमें मस्नूई जहानत AI, माहौलियात के लिए साजगार तवनाई, पायदार मालियात, गवर्नेंस और स्टार्टअप इकोसिस्टम जैसे अहम मौजूद शामिल होंगे। इसके अलावा 125 से ज्यादा नुमाइश कारों पर मुश्तमिल एक बैन अलाक्वामी एक्सपो भी मुनक़िद होगी जिसमें सर्कुलर बिजनेस मॉडल के लिए जदीद और अमली हल पेश किए जाएंगे। इस आलमी प्रोग्राम का मुश्तरका इनेकाद माहौलियात, जंगलात और आबोहवा की तब्दीली की वजारत, आलूदगी की रोकथाम की मरकजी बोर्ड, फिनलैंड के इनोवेशन फंड सितारा और हुकूमत गुजरात कर रहे हैं। माहौलियात के मरकजी वजीर मुमलकत कीर्ति वर्धन सिंह और फिनलैंड के माहौलियात के वजीर सारी मुल्ताला कल इख्तितामी इजलास में शिरकत करेंगे। इसके बाद 17 और 18 सितंबर को दुनिया भर में मुनाकिद होने वाले 80 रफ्तार बढ़ाने वाले इजलास होंगे। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
0: भारत और कनाडा ने नई दिल्ली में मुजवजा जामे इक्तसादी शराकत दारी मुआहदे के लिए चौथे दौर के मुजाकरात का आगाज कर दिया है। दोनों ममालिक का मकसद 2030 तक बाहमी तजारत को 50 अरब अमरीकी डॉलर तक बढ़ाना है। 5 रोजा मुजाकरात जो कल शुरू हुए 18 सितंबर तक जारी रहेंगे। इनमें अशिया और खिदमात की तजारत और तकनीकी तजारती रुकावटों समेत दीगर अहम उमूर पर बातचीत होगी। दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी तजारत में 8.22% की कमी हुई है और ये 2025-26 में 7.95 अरब अमरीकी डॉलर रही, जबकि 2024-25 में ये 8.66 अरब अमरीकी डॉलर थी। कनाडा को भारत की अहम बरामदात में अद्वियात, लोहा और स्टील, समुद्री गजाई अशिया, सूती मलबूसात, इलेक्ट्रॉनिक्स और केमिकल्स शामिल हैं, जबकि भारत कनाडा से बुनियादी तौर पर दालें, जवाहरात और बेशकीमत पत्थर, कोयला, खाद, कागज और खाम तेल दरामद करता है। कनाडा को भारत के अहम खिदमात शोबे के बरामदात में टेली कम्युनिकेशन, कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन सर्विसेज और दीगर कारोबारी खिदमात शामिल हैं। कनाडा में 4,25,000 से ज्यादा भारतीय तलबा और भारत निजाद अफराद की एक बड़ी तादाद मौजूद है। CEPA मुजाकरात का तीसरा दौर जुलाई में कनाडा के शहर ओटावा में मुनक़िद हुआ था। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने जजों के खिलाफ शिकायत से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट्स की जानिब से तैयार किए गए निज़ाम को मजबूत, मौसर और बरवक्त करार दिया है। नई दिल्ली में मुनक़िदा छठे राम जेठ मलानी यादगार लेक्चर देते हुए उन्होंने अदलिया में मुसलसल इस्लाहात और ज्यादा शफाफियत की जरूरत पर जोर दिया। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि इस्लाहात को मामूल का हिस्सा रहना चाहिए और कोई भी इदारा जुमूद का शिकार रहने पर फख्र नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि अदलिया ने खुद भी तनकीद की अहमियत को तस्लीम किया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस मौकफ को दोहराया कि इदारा तनकीद से ना तो गुरेज करता है और न ही उसे करना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालती निज़ाम के मुनसिफाना, बाखबर और तामीरी जायजे के लिए तनकीद एक दरख्शां आईनी जमहूरियत की जायज और ज़रूरी खसूसियत है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि कोई अदालत खुद को अवामी जाँच पड़ताल से बालातर रख कर अवाम का एतमाद हासिल नहीं कर सकती। इसके बजाय उसे जांच, सवालात और जरूरत पड़ने पर तनकीद के लिए हमेशा खुला रहना चाहिए। उन्होंने अवामी एतमाद और अवामी मंजूरी के दरमियान फर्क भी वाजह किया। उन्होंने कहा कि हकीकी अवामी एतमाद उस वक्त कायम होता है जब मुकदमा हारने वाले अफराद भी ये यकीन बरकरार रखें कि अदालती अमल मुनसिफाना था। मरकजी तहकीकाती ब्यूरो CBI ने आजहानी अदाकार सुशांत सिंह राजपूत के मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में एक FIR दर्ज की है। दिशा सालियान की मौत 8 जून 2020 को एक इमारत की 12वीं मंजिल से गिरने के बाद हो गई थी। ये FIR बॉम्बे हाईकोर्ट के हुक्म के बाद दर्ज की गई है। इस FIR में कई अफराद के नाम शामिल हैं, जिनमें साबिक वजीर आला उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, उनके सिक्योरिटी अहलकार डीनू मौर्या, रोहन

0: सूरज पंचोली, रिया चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती और पुलिस अफसरान सचिन वैज और परमवीर सिंह शामिल हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आइंदा जुमेरात को नई दिल्ली के यशोभूमि सेमिकॉन इंडिया 2026 के पांचवें एडिशन का इफ्तिताह करेंगे। ये प्रोग्राम 600 से ज्यादा नुमाइशकारों, 300 बैन अलाक्वामी कंपनियों और 40 से ज्यादा ममालिक के वफूद को यकजा करेगा। नुमाइश में 6 ममालिक के पवेलियन, 12 रियासती हुकूमतों के पवेलियन के अलावा एक खसूसी स्टार्टअप पवेलियन भी होगा। सेमिकॉन इंडिया भारत की सबसे अहम सेमीकंडक्टर कॉन्फ्रेंस और नुमाइश है, जिसका इनेकाद मुश्तरका तौर पर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत कर रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शहरी मुकामी बलदियाती इदारों के इंतखाबात में बीजेपी की कामयाबी के बाद राजस्थान के अवाम का शुक्रिया अदा किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर आजम ने कहा कि पार्टी की कामयाबी झूठ की बाजगश्त पर सच की फतह का सबूत है। जनाब मोदी ने कहा कि राजस्थान के अवाम ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो डबल इंजन हुकूमत के तहत अच्छी हुक्मरानी और तरक्की की पॉलिसियों की मुकम्मल हिमायत करते हैं। भारतीय कौमी शाहराहों की अथॉरिटी NHAI कौमी शाहराहों पर सफर करने वाले लोगों को तेज तर और बेहतर इमदाद फराहम करने की खातिर अपनी मौजूदा नेशनल हाईवे हेल्पलाइन 1033 को जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता करेगी। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों की वजारत ने बताया कि इसे मसनूई जहानत, बरवक्त लोकेशन ट्रेकिंग और हंगामी हालात में मदद फराहम करने से मुतालिक जदीद निजाम के साथ के इस्तेमाल के साथ अपग्रेड किया जाएगा। इससे कॉलर की लोकेशन का पता लगाने, अलग अलग जबानों में मौसूल होने वाली कॉल्स को समझने और किसी मुकाम पर फौरी मदद भेजने में मदद मिलेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन एक दूसरे के तवानाई की तनसीबात पर हमले रोकने पर मुत्तफिक हो गए हैं। अगरचे सदर ट्रंप ने इसके आगाज की तारीख, मुद्दत और इस पर अमल दरामद से मुतालिक तफसील फराहम नहीं की, ये बात सदर ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कही है। क्रेमलिन ने रूस की ईंधन की पैदावार से मुतालिक तनसीबात पर हमले रोकने के लिए सदर ट्रंप की यूक्रेन से अपील का खैर मकदम किया है। यमन के ईरानी हिमायत याफ्ता हौसियों ने सऊदी अरब पर हमलों का एक नया सिलसिला शुरू किया है। इस दौरान यमनी हुक्काम ने कहा है कि ग्रुप ने बुहरे अहमर के करीब मुल्क के मगरबी साहिल से मुत्तसिल मुकामात पर अपनी पोजीशन मजबूत करना शुरू कर दी है। इस दौरान खलीजी अरब मुल्कों ने ईरान के साथ होने वाली तयशुदा बातचीत मुलतवी कर दी है। इससे खदशात बढ़ गए हैं कि मशरक वस्ता में जारी तनाजा मजीद फैल सकता है और आलमी सतह पर तेल की सप्लाई को खतरा लाहिक हो सकता है। हौसियों ने कहा है कि उन्होंने जनूबी सऊदी के खमीस मुशैत में एक फौजी फिजाई अड्डे पर दर्जनों मिसाइल और ड्रोन दागे। इनके मुताबिक हमलों में तैयारों के हैंगर्स, रडार सिस्टम, रनवेज और असलहा जखीरा करने वाले इलाकों को निशाना बनाया गया। मर्दों के क्रिकेट में भारत आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दूसरे T20 बैन अलाक्वामी मैच में अफगानिस्तान का सामना करेगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम को फिलहाल सीरीज में 1-0 की सबकत हासिल है। इतवार को खेले गए पहले T20 बैन अलाक्वामी मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया था। अफगानिस्तान ने मुकर 20 ओवर्स में 8 विकेट पर 156 रन बनाए थे। भारत ने 13 ओवर्स 4 गेंदों में 3 विकेट पर 157 रन बनाकर मैच आसानी से जीत लिया था। एशियाई ट्रैप चैंपियन सबीरा हारिस की क्यादत में 20 रुकनी भारतीय शूटिंग दस्ता आज से इटली के पोरपेटो में होने वाले ISSF जूनियर वर्ल्ड कप शॉटगन में हिस्सा लेगा। यह टूर्नामेंट इस माह की 19 तारीख को खत्म होगा। भारत की टीम 5 मेडल मुकाबलों में हिस्सा लेगी, जिनमें मर्द और खवातीन के ट्रैप और स्कीट मुकाबलों के अलावा मिक्स्ड टीम ट्रैक मुकाबला भी शामिल है। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
1: शुक्रिया कलीम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात की शह सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। रोजनामा प्रताप लिखता है, वजीर आजम नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को दिल्ली के यशोभूमि में सेमीकॉन इंडिया 2026 के पांचवें एडिशन का इफ्तिताह करेंगे। इसी अखबार ने वजीर आजम के इंसानी पहलू पर मबनी किताब मोदी कथा के 17 सितंबर को इजरा से मुतालिक खबर को भी अपने पहले सफ़े पर अहमियत के साथ शाये किया है। अखबार के मुताबिक वजीर आजम नरेंद्र मोदी के यौम पैदाइश पर منعقد

चार्जेस से मुस्तस्ना रहेगी। आलमी सर्कुलर इकोनॉमी फोरम 2026 आज गुजरात के गांधीनगर में शुरू हो रहा है। भारत और कनाडा ने मुजवजा तिजारती मुआहदे पर अगले दौर की बातचीत शुरू की। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि जजों के खिलाफ शिकायत से निमटने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स का तैयार करदा निजाम मजबूत और इंतहाई मुअसर है। सीबीआई ने आजहानी अदाकार सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में एफआईआर दर्ज की है। और मर्दों की क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के दरमियान दूसरा T20 बैन अलाक्वामी मैच आज शाम दिल्ली में खेला जाएगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।

तुम्हारे साथ रहकर अक्सर मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि दिशाएं पास आ गई हैं, हर रास्ता छोटा हो गया है, दुनिया सिमटकर एक आंगन सी बन गई है जो खचा खच भरी है, एकांत कहीं भी नहीं, न बाहर न भीतर। जी हां, ये प्रेम का जश्न है। आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर ये है म्यूजिकल दिल लगी मुक्ता के साथ।

0: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
1: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
2: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
3: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
0: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
4: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
5: हर बिछड़े दोस्त, हर अकेलेपन की कोफ्त, हर अधूरी मोहब्बत, हर छोटी मोटी जरूरत को शुक्रिया कहना जरूरी है। हो सकता है हर हार किसी बड़ी जीत की तैयारी हो, हर कहीं देरी से कोई कर रहा तुम्हारी लखवाली हो, इसलिए हर वक्त शुक्रिया कहना बहुत जरूरी है। जनाब, एक बार थैंक यू कहकर तो देखें, बहुत हल्का हो जाएगा जीवन। एक बार शुक्राना करके तो देखें, शिकायतें शिकवे अपने आप खत्म हो जाएंगे और यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से।

जी हाँ, आपके साथ तो नहीं चल सकते, लेकिन आपके रास्ते को सुकून भरा और आसान जरूर बना सकते हैं म्यूजिकल दिल लगी के माध्यम से। फिलहाल इस राह में आपकी जो हमराही होने वाली

हैं वो रहेंगी नाज। मंगल की मुक्ता को दीजिए इजाजत, कुछ ही देर बाद हिंदी और अंग्रेजी में होंगे समाचार और 9:10 पर एक बार फिर म्यूजिकल दिल लगी लिए होंगे हम आपके साथ आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर। जुड़े रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए। करेंगे बहुत जल्द आपसे मुलाकात। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। सरकार ने कहा है कि बैंक 2000 रुपए तक के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई लेन देन और रुपे डेबिट कार्ड से भुगतान पर कोई भी शुल्क नहीं लगा सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने यूपीआई लेन देन पर शुल्क से जुड़े नियमों को स्पष्ट करने के लिए भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम के अंतर्गत इन बदलावों को अधिसूचित किया है। एक रिपोर्ट।
1: वित्त मंत्रालय ने कहा है कि यह नियम ग्राहकों और छोटे व्यापारियों दोनों पर समान रूप से लागू होंगे। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते में किए जाने वाले यूपीआई लेन देन पूरी तरह मुफ्त रहेंगे। अगर भविष्य में कभी डिजिटल लेन देन पर कोई शुल्क जैसे मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लगाया भी गया तो वह केवल दुकानदारों पर लगेगा, ग्राहकों पर नहीं।
0: प्रतिष्ठित विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 आज गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में शुरू होने जा रहा है। दक्षिण एशिया में पहली बार आयोजित हो रहे इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव तथा गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल संयुक्त रूप से करेंगे। सम्मेलन का विषय है चक्रीय अर्थव्यवस्था, जन और समृद्धि के लिए परिवर्तन। भारत और कनाडा ने प्रस्तावित व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के लिए नई दिल्ली में चौथे दौर की वार्ता शुरू कर दी है। दोनों देश वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $50 अरब तक बढ़ाने के प्रयास में हैं। 5 दिन की ये वार्ता कल से शुरू हुई जो 18 सितंबर तक चलेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है। नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की सह अध्यक्षता करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में वियतनाम महत्वपूर्ण साझेदार है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों के निवारण के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा विकसित तंत्र को सुदृढ़, सक्रिय, समयबद्ध और बेहद कारगर बताया है। कल नई दिल्ली में राम जेठमलानी स्मृति व्याख्यान के 6वें संस्करण में उन्होंने ये बात कही। साथ ही मुख्य न्यायाधीश ने न्यायपालिका में निरंतर सुधार और अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। यह वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिकी क्षेत्र को एक मंच पर लाने तथा सहयोग, नवाचार, विनिर्माण, निवेश और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने का प्रमुख मंच है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कृषि आधारित लोक पर्व नुआखाई के अवसर पर देशवासियों, विशेषकर ओडिशा के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि नुआखाई केवल एक पारंपरिक पर्व नहीं है, बल्कि सामुदायिक भोज और मित्रों तथा परिजनों के मिलन के माध्यम से सामाजिक और पारिवारिक आत्मीयता का प्रतीक भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोगों के बीच प्रेम और सद्भावना बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जिनसे हृदय में प्रेम, सौहार्द और सद्भावना का विकास हो। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन एक दूसरे के ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने पर सहमत हो गए हैं। हालांकि उन्होंने इसे लागू कराने से जुड़ी

नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड विद एन अमेजिंगली ब्यूटिफुल मॉर्निंग। 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट और पक्की वाली दोस्त नाज़।

लेकर हाजिर हूँ आपका फेवरेट मॉर्निंग शो म्यूजिकल दिल लगी, जहाँ ढेर सारी बातों के बीच एंजॉय करेंगे एक से बढ़कर एक सॉन्ग से फुली लोडेड आज की प्लेलिस्ट। तो कुल मिलाकर माहौल होगा रिफ्रेशिंग विद ढेर सारी बातें, तो बने रहिए साथ और सुबह की इस ताजी हवा के साथ एंजॉय कीजिए ये धमाकेदार ट्रैक।

देखिए जनाब, 15 सितंबर की एक खिली खिली सुबह आपके सामने एक नया कैनवस लेकर आई है, जिस पर भरने हैं आपको नए रंग और बनाना है आज के दिन को अपने लिए कुछ खास। कुछ नया करना चाहते हैं तो ज्यादा सोचिए मत, और अगर कुछ करते करते थक गए हैं तो थम जाइए, गहरी सांस लीजिए और फिर सोचिए कि क्या करना है, क्यों करना है और कैसे करना है। और जब इन सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएं तो कर डालिए जो भी करना है, पूरी पूरी शान से।

अच्छा, जब आप अपने गोल यानी लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे होते हैं ना, तो रास्ते में चुनौतियां आना एकदम लाजमी है। और समझदारी किस बात में है? हार मानने के बजाय अपनी कोशिशों को कर दीजिए दोगुना और थाम लीजिए डिसिप्लिन यानी अनुशासन का साथ। ये हो गया तो डेस्टिनी यानी किस्मत को तो आपके पाले में आना ही पड़ेगा, है ना? राष्ट्रकवि हरिवंश राय बच्चन जी ने भी तो यही कहा है कि तू न थकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। और आइए इसी बात पर सुनते हैं फिल्म अग्निपथ से ये अगला गाना।

तो झूम के गाना है और हो सके तो थोड़ा बहुत डांस भी कर लेना है और करना है अपना पूरा फोकस उन खुशियों भरे मौकों पर जो आज की सुबह ने हमें दिए हैं। तारीख है आज 15 सितंबर और दिन है मंगलवार। मौसम है सुहाना, हल्के बादल ला सकते हैं कभी भी बारिश की हल्की फुहार। मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा 33 डिग्री के आसपास, जबकि न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI आज दर्ज किया गया है 157। तो इस बदलते मौसम में रखना है खुद का ख्याल और फिलहाल क्या करना है, एंजॉय करना है ये मौसम वाला गाना। फिर जब लौटेंगे तो जानेंगे क्या कहता है आज के दिन का इतिहास विद मी यानी नाज।

15 सितंबर यानी आज की तारीख साक्षी है। भारत के विकास, तकनीक और संचार के क्षेत्र में दर्ज हुए कुछ बहुत ही ऐतिहासिक माइलस्टोन्स की, जिनमें सबसे पहले बात नेशनल इंजीनियर्स डे यानी राष्ट्रीय अभियंता दिवस की। आज ही के दिन भारत के महान सिविल इंजीनियर और भारत रत्न डॉक्टर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया जी का जन्म हुआ था। देश के बांधों, सिंचाई प्रणालियों और इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्होंने नई दिशा दी और इसीलिए इनके जन्मदिन को हम अपने देश के सभी इंजीनियर्स के समर्पण और नवाचार को सलाम करने का मौका मानते हैं। और जनाब, बात यहीं खत्म नहीं होती। आज का दिन भारतीय मीडिया और मनोरंजन के इतिहास में भी स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है।

15 सितंबर 1959 को ही भारत में राष्ट्रीय टेलीविजन नेटवर्क यानी दूरदर्शन की हुई थी शुरुआत। ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन से शुरू हुआ वो सफर आज हमारे बचपन की खूबसूरत यादों और भारतीय संस्कृति का अटूट हिस्सा बन चुका है। तो इस शानदार सफर के नाम एक एनर्जेटिक गाना तो बनता है ना।

0: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो? इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
2: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
3: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
4: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
5: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
6: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
1: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
7: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: आप सब ये

म्यूजिकल दिल लगी चल रहा है प्रोग्राम जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर विद मी यानी नाज। जहां बातों के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे और जानते हैं आज के दिन से जुड़ी कुछ और भी खासियतें जो आज यानी 15 सितंबर का दिन को बड़ा खास बना देती हैं। दुनिया भर में आज का दिन इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी यानी अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस साल की ऑफिशियल थीम है रेजिंग हैंड्स एंड वॉइसेस, यानी हाथ मिलाकर आवाज उठानी है और अपने लोकतंत्र के माध्यम से समाज में आपसी विश्वास को करना है मजबूत। और साहित्य के प्रेमियों के लिए भी आज का दिन है बहुत खास, क्योंकि आज जन्म दिवस है हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि, नाटककार और एकांकी विधा के जनक डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का। 15 सितंबर 1905 को जन्मे डॉक्टर वर्मा जी ने अपनी कालजयी रचनाओं जैसे रेशमी टाई और दीपदान से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए उन्होंने लिखा था कि जीवन का सच्चा सौंदर्य संघर्ष और उच्च आदर्शों में निहित है, जो इंसान को विषम परिस्थितियों में भी डगमगाने नहीं देता। कम शब्दों में कितनी सटीक बात कही है ना, जैसे कि ये अगला गाना ये भी तो कुछ यही कहता है।

0: और जिंदगी क्या कहती है,
1: क्या वो कहना चाहती है जिसे हम समझ नहीं पाते, ये हमें बताया है एक और साहित्य की महान विभूति, बांग्ला के महान उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने, जिनकी भी आज यानी 15 सितंबर को जन्मतिथि है। साल 1876 में जन्मे शरत चंद्र जी ने देवदास, परिणिता, चरित्रहीन और श्रीकांत जैसी अमर कृतियों से भारतीय साहित्य को वैश्विक पहचान दिलाई। मानवीय संवेदनाओं, प्रेम और समाज के पिछड़े वर्गों के दर्द को उकेरने में उनका कोई सानी नहीं था। और मनुष्यता का महत्व क्या है, ये बताते हुए शरत बाबू ने लिखा था कि संसार में सबसे बड़ा धर्म है मनुष्य की वेदना को समझना और बिना किसी स्वार्थ के उसके आंसुओं को पोंछना।

और इसके साथ ही आज का दिन सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से भी बहुत खास है, क्योंकि आज है ऋषि पंचमी का पर्व, जो हमारे प्राचीन सप्त ऋषियों के ज्ञान, त्याग, मार्गदर्शन और सद्विचारों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक अवसर है।

सूरज की किरणें लाती हैं नई रोशनी का पैगाम। ऊर्जा के इस असीम स्रोत से रोशन हो हर एक धाम। स्वच्छ ऊर्जा अपनाएं, आत्मनिर्भरता का दीप जलाएं। आओ मिलकर एक सुंदर और समृद्ध भारत बनाएं। और बिल्कुल यही संदेश देता है भारत सरकार का एक अहम और दूरदर्शी अभियान, जिसका नाम है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। जी हाँ दोस्तों, आज के दौर में जहाँ बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है, वहीं पर्यावरण संरक्षण भी हमारी प्राथमिकता है और हमेशा होनी भी चाहिए। इसी दिशा में एक क्रांतिकारी कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत देश के करोड़ों घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए भारी सब्सिडी दी जा रही है, जिससे हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का लाभ उठाया जा सकता है। ये योजना न सिर्फ आपके बिजली के बिल को शून्य करने में मदद करती है, बल्कि हमारे देश को क्लीन और ग्रीन एनर्जी की ओर भी तेजी से लेकर जा रही है। तो आइए मिलकर सौर ऊर्जा को अपनाएं और अपने घर को रोशन करने के साथ साथ अपने पर्यावरण को बचाने में भी

हिस्ट्री की बुक में बात अगर इंटरनेशनल पेजेस की करें तो आज ही के दिन साल 1890 में दुनिया की मशहूर सस्पेंस और क्राइम थ्रिलर लेखिका अगाथा क्रिस्टी का जन्म हुआ था, जिनकी किताबों ने पूरी दुनिया के पाठकों को दशकों तक बांधे रखा। सचमुच कितना कमाल है ना आज का दिन, जिसे हमें और भी खास बनाना है। कैसे? अपनी सोच और कुछ कमाल की कोशिशों से। और इसी उम्मीद और जिम्मेदारी के साथ म्यूजिकल दिलगी के आज के सफर को हमें थामना होगा यहीं। मुलाकात होगी आपसे अब ठीक 10:30 यानी 10:30 पर। दिल का मेलबॉक्स रहेगा प्रोग्राम, जहां बोलूंगी सिर्फ मैं नहीं बल्कि आप भी कहेंगे अपने दिल की बात ईमेल्स और व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए। उससे पहले सुनिएगा हिंदी और अंग्रेजी में देश और दुनिया से जुड़ी हर जरूरी खबर, और फिलहाल एंजॉय कीजिए मेरे साथ ये ट्रैक।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। सरकार ने कहा है कि बैंक 2000 रुपए तक के एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई लेनदेन और रुपे डेबिट कार्ड से भुगतान पर कोई भी शुल्क नहीं लगा सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने यूपीआई लेनदेन पर शुल्क से जुड़े नियमों को स्पष्ट करने के लिए भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम के अंतर्गत इन बदलावों को अधिसूचित किया है। एक रिपोर्ट।
1: वित्त मंत्रालय ने कहा है कि यह नियम ग्राहकों और छोटे व्यापारियों दोनों पर समान रूप से लागू होंगे। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते में किए जाने वाले यूपीआई लेनदेन पूरी तरह मुफ्त रहेंगे। अगर भविष्य में कभी डिजिटल लेनदेन पर कोई शुल्क जैसे मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लगाया भी गया तो वह केवल दुकानदारों पर लगेगा, ग्राहकों पर नहीं। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: प्रतिष्ठित विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 आज गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में शुरू होने जा रहा है। दक्षिण एशिया में पहली बार आयोजित हो रहे इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव तथा गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल संयुक्त रूप से करेंगे। सम्मेलन का विषय है चक्रीय अर्थव्यवस्था, जन और समृद्धि के लिए परिवर्तन। भारत और कनाडा ने प्रस्तावित व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के लिए नई दिल्ली में चौथे दौर की वार्ता शुरू कर दी है। दोनों देश वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $50 अरब तक बढ़ाने के प्रयास में है। 5 दिन की ये वार्ता कल से शुरू हुई जो 18 सितंबर तक चलेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है। नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की सह अध्यक्षता करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में वियतनाम महत्वपूर्ण साझेदार है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों के निवारण के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा विकसित तंत्र को सुदृढ़, सक्रिय, समयबद्ध और बेहद कारगर बताया है। नई दिल्ली में कल राम जेठमलानी स्मृति व्याख्यान के 6वें संस्करण में उन्होंने ये बात कही। साथ ही मुख्य न्यायाधीश ने न्यायपालिका में निरंतर सुधार और अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री बृहस्पतिवार को नई दिल्ली के यशो भूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। ये वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को एक मंच पर लाने तथा सहयोग, नवाचार, विनिर्माण, निवेश और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने का प्रमुख मंच है। झारखंड में सीआईडी ने झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC की 14वीं प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं के मामले में एक कोचिंग सेंटर संचालक संजीत कुमार को गिरफ्तार किया है। रांची के रातू रोड इलाके में शिवांगन कोचिंग सेंटर चलाने वाले संजीत कुमार पर आरोप है कि उसने एजेंट के तौर पर उम्मीदवारों से परीक्षा पास कराने का वादा कर पैसे वसूले थे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन एक दूसरे के ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने पर सहमत हो गए हैं, हालांकि उन्होंने इसे लागू कराने से जुड़ी जानकारी नहीं दी। सोशल मीडिया मंच ट्रूथ सोशल पर पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन रूस के ऊर्जा ठिकानों पर हमला नहीं करने और रूस भी ऐसा ही करने पर सहमत हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कृषि आधारित लोक पर्व नुआखाई के अवसर पर देशवासियों, विशेषकर ओडिशा के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि इस पर्व से आपसी सद्भाव और सौहार्द और मजबूत होगा। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज दिल्ली

0: India lead the three-match series 1-0 after a convincing 7-wicket win in the opening match on Sunday. And that is the end of this news bulletin.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 का आज से गुजरात के गांधीनगर में शुभारंभ। भारत और कनाडा के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते पर अगले दौर की बातचीत शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, रूस और यूक्रेन एक दूसरे के ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने पर सहमत। और भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज शाम दिल्ली में। अब समाचार विस्तार से। प्रतिष्ठित विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 आज गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में शुरू होने जा रहा है। दक्षिण एशिया में पहली बार आयोजित हो रहे इस सम्मेलन का संयुक्त उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव तथा गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल करेंगे। सम्मेलन का विषय है चक्रीय अर्थव्यवस्था, जन और समृद्धि के लिए परिवर्तन। हमारी संवाददाता ने बताया कि इसमें 65 से अधिक देशों के 2000 से अधिक हितधारक भाग लेंगे।
2: दो दिवसीय वर्ल्ड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम में विश्व भर से पर्यावरण विशेषज्ञ, नीति निर्माता, उद्योजक और शोधकर्ताओं हिस्सा ले रहे हैं। इस फोरम का मुख्य उद्देश्य पुरानी सामग्रियों और उत्पादों के पुनरुपयोग, रिसाइकलिंग और पुनर्चक्रण के माध्यम से सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। इस आयोजन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग, हरित ऊर्जा, रोजगार, वित्त और स्टार्टअप इकोसिस्टम जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर 4 प्लेनरी और 16 विषय आधारित सत्र आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही आयोजित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो में 125 से अधिक प्रदर्शक अपने व्यावहारिक सर्कुलर समाधानों का भी प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद 17 और 18 सितंबर को दुनिया भर में 80 विशेष एक्सीलेटर सत्र आयोजित किए जाएंगे। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: भारत और कनाडा ने प्रस्तावित व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के लिए नई दिल्ली में चौथे दौर की वार्ता शुरू कर दी है। दोनों देश वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 50 अरब डॉलर तक बढ़ाने के प्रयास में हैं। 5 दिन की ये वार्ता कल से शुरू हुई, जो 18 सितंबर तक चलेगी। इसमें वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार, मूल स्थान के नियम तथा तकनीकी व्यापार बाधाओं सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। एक रिपोर्ट।
3: दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2024-25 में 8 अरब 66 करोड़ डॉलर से घटकर वर्ष 2025-26 में 7 अरब 95 करोड़ डॉलर रह गया, जो 8.22% कम है। भारत से कनाडा को प्रमुख निर्यात में दवाइयां, लोहा और इस्पात, समुद्री खाद्य, सूती परिधान, इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन शामिल हैं, जबकि कनाडा से भारत के प्रमुख आयात में दालें, मोती और अर्धकीमती पत्थर, कोयला, उर्वरक, कागज और कच्चा तेल शामिल हैं। विश्व दर्पण के लिए सरफिरोजी।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबेतकिन ने भारत और दक्षिण अमेरिका के प्रमुख व्यापार समूह मर्कोसुर के बीच तरजीही व्यापार समझौते के विस्तार के लिए बातचीत शुरू करने की घोषणा की है। दोनों मंत्रियों ने वर्तमान समझौते में आपसी हित के क्षेत्रों को शामिल करने पर सहमति व्यक्त की। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये भारत का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है, जो 3 दिन तक चलेगी।
4: सेमिकॉन इंडिया वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को एक मंच पर लाने तथा सहयोग, नवाचार, विनिर्माण, निवेश और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने का प्रमुख मंच है। इस बार सम्मेलन में 600 से अधिक पार्टनर्स, 300 से ज्यादा विदेशी कंपनियां और 40 से अधिक देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। इसमें भारत के 12 राज्यों और 6 देशों के

0: विशेष स्टॉल भी लगाए जाएंगे। इसका उद्देश्य दुनिया की बड़ी कंपनियों को भारत में आमंत्रित करना है ताकि वे यहां आकर निवेश करें, अपनी तकनीक लाएं और भारत को कंप्यूटर चिप बनाने का एक बड़ा ग्लोबल हब बनाएं। 3 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में नए स्टार्टअप और बड़ी कंपनियां मिलकर बिजनेस के नए मौके तलाशेंगी। इससे भारत में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और सेमीकंडक्टर निर्माण के मामले में भारत दुनिया भर में एक भरोसेमंद देश के रूप में उभरेगा। विश्व दर्पण के लिए जया भारती।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है। नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की सह अध्यक्षता करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में वियतनाम महत्वपूर्ण साझेदार है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन एक दूसरे के ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने पर सहमत हो गए हैं। सोशल मीडिया मंच ट्रुथ सोशल पर पोस्ट में श्री ट्रंप ने ये जानकारी दी। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दोनों देश एक दूसरे के ऊर्जा संयंत्रों पर हमला नहीं करने की शर्तों पर सहमत हुए हैं। हालांकि उन्होंने इस समझौते को लागू कराने या इसके दायरे से जुड़ी कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी है। ये भी नहीं बताया गया है कि क्या दोनों पक्षों ने कोई शर्त रखी है। रूस ने राष्ट्रपति ट्रंप के दावे पर फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यदि सहयोगी देश यूक्रेन के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर हमला न करने की रूस की वास्तविक प्रतिबद्धता सुनिश्चित कर सके तो यूक्रेन भी रूसी क्षेत्र पर हमले रोकने के लिए तैयार है। विश्व दर्पण के लिए मैं मनोज।
1: अमेरिका में एक संघीय न्यायाधीश ने विदेशी विद्यार्थियों संपर्क कार्यक्रम के अंतर्गत देश में रह रहे लोगों और विदेशी मीडिया कर्मियों के देश में रहने की अवधि सीमित करने से जुड़े ट्रंप प्रशासन के नियम पर रोक लगा दी है। मैसाचुसेट्स के न्यायाधीश एफ डेनिस सेलोर द फोर्थ ने प्रशासनिक प्रक्रिया अधिनियम की धारा 705 के अंतर्गत नियम पर रोक लगाने के याचिकाकर्ताओं के अनुरोध को इसके लागू होने से ठीक एक दिन पहले स्वीकार कर लिया। इस नियम के तहत एफ और जे श्रेणी के गैर अप्रवासियों को उनके अकादमिक या संपर्क कार्यक्रमों की अवधि के लिए प्रवेश दिया जाएगा जो अधिकतम 4 वर्षों तक सीमित होगा। इसके बाद देश छोड़ने के लिए 30 दिनों का समय मिलेगा। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनावों से पहले डाक से मतदान प्रतिबंधित करने की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना को खारिज कर दिया है। न्यायाधीशों ने एक संघीय न्यायाधीश के उस आदेश को बरकरार रखा है जिसमें डाक सेवा को डाक मतपत्रों से जुड़े नियमों को लागू करने से अस्थायी रूप से रोक दिया गया था। पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर गहरा गया है। यमन के ईरान समर्थित हाउसी विद्रोहियों ने दक्षिणी सऊदी अरब के एक सैन्य हवाई अड्डे पर कई मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं। सऊदी गठबंधन के अनुसार इस हमले में 13 नागरिक घायल हुए हैं जिसके बाद 4 पड़ोसी शहरों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। दूसरी तरफ हाउसी विद्रोहियों ने लाल सागर के पास देश के पश्चिमी तट पर अपनी स्थिति मजबूत करना शुरू कर दिया है। इस बढ़ते तनाव के कारण खाड़ी देशों ने ईरान के साथ होने वाली बातचीत को फिलहाल टाल दिया है। वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड के नेताओं ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिससे यूनाइटेड किंगडम के टूटने का खतरा पैदा हो सकता है। स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड की प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने कल वेल्स की राजधानी कार्डिफ में बैठक में संयुक्त समझौते पर आत्मनिर्णय के अपने अधिकार पर बल दिया। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज दिल्ली में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। तीसरा और अंतिम मुकाबला दिल्ली में ही बृहस्पतिवार को होगा। श्रृंखला के पहले मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर भारत 1-0 से आगे है। एशियाई ट्रैप चैंपियन निशानेबाज सबीरा हारिस के नेतृत्व में 20 सदस्यीय भारतीय दल आज से इटली में ISSF जूनियर विश्व कप शॉटगन में भाग लेगा। प्रतियोगिता का समापन 19 सितंबर को होगा। भारतीय टीम 5 पदक स्पर्धाओं में चुनौती पेश करेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 का आज से गुजरात के गांधीनगर में शुभारंभ। भारत और कनाडा के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते पर अगले दौर की बातचीत शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, रूस और यूक्रेन एक दूसरे के ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने पर सहमत। और भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज शाम दिल्ली में। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम सायरा मुज्तबा विद वर्ल्ड न्यूज। The headlines. World Circular Economy Forum 2026 to begin today at Gandhinagar in Gujarat. India and Canada begin next round of talks on proposed trade pact. Prime Minister Narendra Modi to inaugurate 5th edition of Semicon India 2026 in New Delhi on Thursday. US President Donald Trump says Russia and Ukraine agreed to stop attacking each other's energy sites. And in men's cricket, second T20 international between India and Afghanistan to be played this evening in Delhi. And now the news in detail. The prestigious World Circular Economy Forum, WCEF 2026, is set to begin today at Mahatma Mandir in Gandhinagar, Gujarat. The conference, which is being held for the first time in South Asia, will be jointly inaugurated by Union Minister for Environment, Forest and Climate Change, Bhupendra Yadav, and Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel. Held under the theme, Circular Economy, Transition for People and Prosperity, the event will bring together over 2,000 stakeholders from more than 65 countries. We have a report.
4: The stage is set at Mahatma Mandir in Gandhinagar for the World Circular Economy Forum 2026, marking a major milestone in promoting sustainable economic transitions across South Asia. The forum aims to drive global circularity by emphasizing the reuse, refurbishing and recycling of materials to reintegrate them as valuable economic resources. Over the next 2 days, the forum will host 4 plenary sessions and 16 thematic sessions covering key areas such as application of AI, green energy, sustainable finance, governance and startup ecosystem. Additionally, an international expo featuring over 125 exhibitors will showcase innovative and practical solutions for circular business models. The global event is jointly organized by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Central Pollution Control Board, Finnish Innovation Fund CITRA and Government of Gujarat. Aparna Khunt, Akashwani News, Ahmedabad.
3: India and Canada have begun the fourth round of negotiations for the proposed Comprehensive Economic Partnership Agreement, CEPA, in New Delhi, as both sides seek to boost bilateral trade to $50 billion by 2030. The 5-day talks, which began yesterday, will continue until September 18 and cover key areas including trade in goods and services, rules of origin and technical trade barriers, among others. Bilateral trade between both the countries declined 8.22% to $7.95 billion in 2025-26 from $8.66 billion in 2024-25. India's major exports to Canada include pharmaceuticals, iron and steel, seafood, cotton garments, electronics and chemicals, while key imports include pulses, pearls and semi-precious stones, coal, fertilizers, paper and crude oil. India's main services sector exports to Canada include telecommunications, computer and information services, and other business services. Canada is also home to more than 4,25,000 Indian students and a large Indian origin community. The third round of CEPA negotiations was held in Ottawa in July. Prime Minister Narendra Modi will inaugurate the 5th edition of Semicon India 2026 at Yashobhoomi, New Delhi on Thursday. The event will bring together over 600 exhibitors, 300 international companies and delegations from more than 40 countries. The exhibition will feature 6 country pavilions, 12 state government pavilions and a dedicated startup pavilion. Semicon India is India's premier semiconductor conference and exhibition, jointly organized by the India Semiconductor Mission, the Ministry of Electronics and Information Technology, and SEMI. It serves as a flagship platform for bringing together the global semiconductor and electronics ecosystem, advancing collaboration, innovation, manufacturing, investment, and talent development. The three-day conference program will feature high-level keynotes, panel discussions, and strategic sessions focusing on emerging trends and critical areas across the semiconductor and electronics ecosystem, including semiconductor manufacturing and technology. The event provides a key opportunity for Indian and international companies to explore partnerships, investment opportunities, technology collaborations, and supply chain linkages, further strengthening India's position as a trusted global semiconductor partner. This is Akashvani. You're listening to World News. We bring you the top international news and updates from around the globe. Welcome back. US President Donald Trump has said Russia and Ukraine have agreed to stop attacking each other's energy sites. Trump's announcement came after he urged Ukrainian President Volodymyr Zelensky to stop targeting Russian diesel-producing facilities, arguing that the strikes are contributing to fuel shortages and putting additional pressure on global energy markets. Over the recent months, Ukraine has carried out a series of long-range drone attacks on Russian oil refineries and other energy facilities. The Kremlin has welcomed Trump's call for Ukraine to hold strikes on Russia's fuel-producing facilities. Kremlin spokesman Dmitry Peskov said that countries with influence over Ukraine could encourage Kyiv to show greater flexibility, which he said would make a significant contribution to efforts to resolve the conflict. Ukrainian President Volodymyr Zelensky said Ukraine is ready to halt strikes on Russian territory if its allies can secure a genuine Russian commitment not to attack Ukraine's critical infrastructure. Yemen's Iran-backed Houthis launched a fresh wave of attacks on Saudi Arabia, while Yemeni officials said the group has begun strengthening its positions along the country's western coast near the Red Sea. Meanwhile, Gulf Arab countries postponed planned talks with Iran, raising fears that the conflict in the Middle East could spread further and threaten global oil supplies. The Houthis said they had fired dozens of missiles and drones at a military airbase in Khamis Mushet in southern Saudi Arabia. They said the attacks targeted aircraft hangars, radar systems, runways, and ammunition storage areas in retaliation for Saudi airstrikes in Yemen. Saudi authorities issued emergency alerts in Khamis Mushet and three other southern cities. The Saudi-led coalition in Yemen said 13 civilians were injured in the Houthi attacks. The leaders of Wales, Scotland, and Northern Ireland have signed a pact that could threaten to lead to the breakup of the United Kingdom. The leaders of the main political parties in Scotland, Wales, and Northern Ireland have asserted their right to self-determination in a joint agreement signed in a rare meeting in the Welsh capital, Cardiff, yesterday. The Scottish National Party, SNP, Plaid Cymru in Wales, and Sinn Féin, which supports Irish unity in Northern Ireland, wants greater autonomy and eventually independence from the United Kingdom. The first ministers of the three semi-autonomous regions of the UK told Prime Minister Andy Burnham and his government to prepare for constitutional change and that their future lies with the European Union. However, Burnham's spokesperson dismissed the threat, saying that the Prime Minister strongly believes in the union and is more focused on reducing the cost of living than on constitutional debates. In men's cricket, India will take on Afghanistan in the second T20 International at the Arun Jaitley Stadium in Delhi today. The match will begin at 7:30 p.m. Indian Standard Time. India lead the three-match series 1-0 after a convincing 7-wicket win in the opening match on Sunday. Despite the early loss of Sanju Samson, Abhishek Sharma played a blistering innings of 82 off 32 balls, supported by Ishan Kishan's 42 as India chased down target of 157 set by Afghanistan for the loss of 3 wickets in 13.4 overs. Earlier put into bat, Afghanistan posted 156 runs for the loss of 8 wickets in the stipulated 20 overs. The third match of this series will be played at the same venue on Thursday. And a 20-member Indian shooting contingent led by Asian trap champion Sabira Harris will compete in the ISSF Junior World Cup Shotgun in Italy from today. The tournament will conclude on the 19th of this month. The Indian team will compete across 5 medal events, including men's and women's trap and skeet, besides the mixed team trap event. Sabira Harris will be among India's leading medal contenders. She had won a mixed trap bronze with Olympian Kenan Chennai at the ISSF World Cup in Cyprus last year. And now, before we close, here are the highlights of the bulletin once again. World Circular Economy Forum 2026 to begin today at Gandhinagar in Gujarat. India and Canada begin next round of talks on proposed trade pact. Prime Minister Narendra Modi to inaugurate 5th edition of SEMICON India 2026 in New Delhi on Thursday. US President Donald Trump says Russia and Ukraine agreed to stop attacking each other's energy sites. And in men's cricket, second T20 international between India and Afghanistan to be played this evening in

ताजी है सुबह और मीठी सी है धूप, हर दिल में छुपा है जज्बात का एक रूप। आपके अल्फाज सजाएंगे आज की ये महफिल, क्योंकि आपके प्यार भरे ईमेल्स और मैसेजेस से ही तो धड़कता है FM गोल्ड का ये दिल। गुड मॉर्निंग वंस अगेन एंड नमस्कार के साथ आदाब भी कबूल फरमाइए फ्रॉम मी यानी आपकी होस्ट और पक्की वाली दोस्त नाज। घड़ी ने कर दिया है इशारा 10:30 का और जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं, शुरू हो चुका है प्रोग्राम दिल का मेल बॉक्स, वो मेल बॉक्स जिसकी चाबी है सिर्फ आपके पास, आपकी म्यूजिकल फरमाइशों और खूबसूरत बातों की शक्ल में जो आप हमें हर रोज लिखकर भेजते हैं। कहां और कैसे ये आपको याद दिला रही हूँ, fmgoldairdelhi@gmail.com पर करना है ईमेल या फिर व्हाट्सएप मैसेज अगर आप भेजना चाहते हैं तो। नंबर ध्यान से नोट कर लीजिए 9868686753। तो मत कीजिए देर और जल्दी से लिख भेजिए अपना नाम, कहां से लिख रहे हैं, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं और साथ ही खूबसूरत शेरो शायरी या फिर कोई अच्छी सी बात, कोई अच्छा सा संदेश लिखकर जल्दी से भेज दीजिए। तब तक मैं सुनाती हूँ आपको एक बड़ा ही खूबसूरत गाना जिसकी फरमाइश हमें भेजी है बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार जी ने गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से।

इंसान ने वक्त से पूछा, मैं हार क्यों जाता हूं? वक्त ने कहा, धूप हो या छांव हो, काली रात हो या बरसात हो, चाहे कितने भी बुरे हालात हो, मैं हर वक्त चलता रहता हूं, इसीलिए मैं जीत जाता हूं। तो भी मेरे साथ चल, कभी नहीं हारेगा। और ये शत प्रतिशत सही। और पते की बात लिखकर भेजी है हमें ऊपर कोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंद शहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और परिवार के सभी सदस्यों ने मिलकर बहुत बहुत शुक्रिया कह रहे हैं हम आपको इस मैसेज के लिए। और इसी के साथ अगला मैसेज जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल और प्रिया का, दिशानी और निमित आहूजा भी इसमें शामिल हैं। प्रोग्राम सुन रहे हैं और गानों को एंजॉय कर रहे हैं और ये जानकर हमें बहुत खुशी हो रही है। अगला मैसेज शामिल कर लेते हैं, चलिए दुर्गाई सेलू से चंदू कुलकर्णी, हेमलता और सी आर कुलकर्णी जी ने भेजा है ये मैसेज। प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए हैं और एक बहुत ही खूबसूरत गीत की इन्होंने फरमाइश भी हमें लिखकर भेजी है। चलिए अगला मैसेज, गिरना भी जीवन की एक कहानी है, हर ठोकर में छुपी नई रवानी है, रास्ते अगर कठिन हो तो क्या, मंजिल पाने की यही निशानी है, थक जाओ तो थोड़ा ठहर जाना, मगर अपने सपनों से मत मुड़ जाना, अंधेरा चाहे जितना गहरा हो, सुबह का आना तय होता है भाई। जयराम खोरवाल, सचिन, अमन और दीपांशु ने ये मैसेज हमें लिखकर भेजा है होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से। और बहुत ही प्यारा मैसेज, बहुत ही अच्छी बात आपने लिखकर भेजी है। इसी के साथ अगला मैसेज मुझे नजर आ रहा है गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से, जो कि आया है दातार सिंह शेखावत जी ने भेजा है। संगीता कवर, तुषार सिंह, रिकी शेखावत हमें सुन रहे हैं लगातार और किसी भी गीत में शामिल होना चाहते हैं, तो अगले गीत में आप शामिल हैं, यकीन कीजिए मेरा। अगला मैसेज जो अब शामिल होने जा रहा है वो आया है नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से, महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी ने भेजा है मैसेज और पूछा है आप कैसे हैं जी। जी मैं तो बहुत अच्छी हूँ और आपका मैसेज पढ़कर और भी अच्छी हो गई हूँ। और चलिए फिर इसी बात पर अगला गाना सुन लेते हैं, बहुत ही प्यारा गाना है ये भी। और अगेन ये फरमाइश हमारे पास आई है जयराम खोरवाल, सचिन, अमन, दीपांशु जी की ओर से ही होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से।

0: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
1: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
2: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
3: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
0: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
4: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
0: आप सब

नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू ने भेजा ये मैसेज हमें और हम कह रहे हैं थैंक यू सो मच। अगला मैसेज इसी के साथ चलिए अब शामिल कर लेते हैं। नितिन और मयंक शर्मा जी का कलानौर से आया है। नरेंद्र शर्मा और किरण शर्मा भी इसमें शामिल हैं। लिखा है कि कुछ रिश्तों को मुलाकात की जरूरत नहीं पड़ती, बस याद करते ही चेहरे पर मुस्कान छा जाती है। बिल्कुल सही बात है और उम्मीद है कि आप आज मुझे याद कर रहे होंगे। तो देखिए मैं आ गई, हमारी मुलाकात भी हो गई और आपके साथ साथ मेरे चेहरे पर भी ढेर सारी मुस्कान है क्योंकि आपके मैसेजेस और ईमेल्स लगातार आ रहे हैं। लेकिन जैसे कि है प्रोग्राम की रवायत, हमें फरमाइशें भी पूरी करनी है, तो चलिए एक अच्छा सा मैसेज पढ़ती हूँ और उन्हीं की फरमाइश पूरी करती हूँ जिन्होंने ये मैसेज भेजा है। लिखा है कि कौवा माने क्रो कोयल की आवाज को दबा सकता है मगर खुद की आवाज को मधुर नहीं बना सकता। ठीक उसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति सज्जन को बदनाम तो कर सकता है मगर खुद सज्जन नहीं बन सकता। बिल्कुल सही बात है और ये मैसेज हमें भेजा है सतीश अनेजा, बिमला अनेजा जी ने चंडीगढ़ सिटी से। साथ ही पूजा खटक, बिमला देवी और शंभु दयाल खटक इस मैसेज में शामिल है जाखोद राजस्थान से। और ये रहा जनाब आपका फरमाइशी गाना।

और मुझे है खबर कि आगे क्या होने वाला है। भाई आपके मैसेजेस इतने सारे आए हुए हैं, उन्हें प्रोग्राम में शामिल करूंगी और क्या। देखिए प्रस्तुति तो आप बहुत अच्छी दे रही हैं, लेकिन ना हमारा ईमेल शामिल कर रही है ना व्हाट्सएप मैसेजेस, ये क्या बात हुई। ये नाराजगी मुझे दूर करनी है। धर्मेंद्र छीपा जी की ये नाराजगी है। कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार इनके साथ शामिल है। भोपालगढ़ राजस्थान से सीधा आया है ये मैसेज। और अगला मैसेज गौरी शंकर जी का नागलोई से आया है। लिखा है कि नाज बेटा एक बात तो है, बड़ों का आशीर्वाद दिखाई नहीं देता लेकिन काम जरूर करता है। बिल्कुल सही बात है जी, और आपका आशीर्वाद मुझ पर, एफएम गोल्ड के पूरे परिवार पर बना हुआ है, ऐसी मुझे आशा है। रेगुलर लिसनर है हमारे और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जुड़े रहने के लिए। इसी के साथ अगला मैसेज शामिल करते हैं। एक और नाराजगी मुझे नजर आई है अभी। सलीम अख्तर साहब की रेशमा बेगम अलीगढ़ से आया है मैसेज कि मैडम हमारा मैसेज शामिल क्यों नहीं हो रहा है। भाई क्या बात है। तो चलिए उम्मीद है आपकी भी नाराजगी मैंने दूर कर दी होगी। और इसी के साथ चलिए अगला मैसेज अब ईमेल्स का रुख कर लेते हैं। लिखा है कि किसी को रुलाकर कभी कोई हंस नहीं पाया। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। किसी को रुलाकर कभी कोई हंस नहीं पाया, ये विधि का विधान है जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। बोधराज खोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश और गीतिका का ये मैसेज अगेन उत्तम नगर दिल्ली से। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सेम नाम से दो दो मैसेज आ रहे हैं, ये चीटिंग मत कीजिए जी। संदीप मक्कड़ जी का भी मैसेज हम शामिल कर लेते हैं। ज्योति, मन्नत और भरत मक्कड़ इनके साथ शामिल हैं। धर्मवीर जी भी शामिल हैं, दिल्ली वाले हैं। ये पिंगा वाला चौक गोराया जलंधर पंजाब से आया है मैसेज। अच्छा, दिल्ली वाला पिंगा चौक एक जगह का नाम है शायद जहां से इन्होंने ये मैसेज लिखा है। और लिखा है कि मैडम हम भी है लाइन में, क्या आप हमें शामिल नहीं करेंगी। ऐसा कैसे हो सकता है जी, जहां तक मेरी नजरें जाती हैं मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं सभी मैसेजेस को शामिल कर पाऊं, कर सकूं, बस फिर भी इतने सारे मैसेजेस आप करते हैं कि कुछ तो छूट ही जाते हैं, उसके लिए माफी। और अगला मैसेज इसी के साथ लखनऊ उत्तर प्रदेश से। मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना नाज, नवाजिश शेख, दानिश, अमन आफरीदी और राधा नामदेव भी इनके साथ शामिल हैं इस मैसेज में। और एनी सॉन्ग, कोई भी गाना आप प्ले कर दीजिए, हम उसमें शामिल हैं, ये इन्होंने लिखकर भेजा है। और ये बहुत ही अच्छी बात आपने कही है, क्योंकि अगला गाना जो हम सुनने वाले हैं ना, बहुत ही प्यारा गाना है और सिर्फ आप ही नहीं हम सब उसमें शामिल हैं। बिट्टू भाटिया जी का भी मैसेज पढ़ लेते हैं। रीटा, रजत और मयंक भाटिया इनके साथ शामिल हैं। झज्जर हरियाणा से भेजा है मैसेज और प्रोग्राम को सुन रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। कृष्ण जटोलिया जी का मैसेज मैंने खोल लिया है। लिख रहे हैं कि नाज, नाम ही इतना खास है जैसे चांदनी में चांद का एहसास है। क्या बात है, मुस्कुरा दे तो महफिल खिल उठे, नाज की मुस्कान में कुछ ऐसी ही बात है। सच में आपके मैसेजेस पढ़ते हुए ना, खास तौर पे इस प्रोग्राम की अगर मैं बात करूं तो लगातार मेरे चेहरे पर मुस्कान बनी ही रहती है, क्योंकि इतने प्यारे प्यारे, इतने खूबसूरत मैसेजेस जो आप भेजते हैं, पूरा क्रेडिट आपको है। अगला मैसेज भी एक नाराजगी से भरा है। बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, डब्बू सम्राट और चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता, केशु और रिधान खुराना इसमें शामिल है। लिख रहे हैं कि हम भी रेगुलर ट्यून इन हैं, अभी तक नो रिप्लाई, कोई नाराजगी है क्या। एनी सॉन्ग में मेल पढ़ दीजिए। चलिए पढ़ दिया मैंने जैसा आपने कहा। और इसी के साथ अगला मैसेज अनिल मोहन जी का, ये भी किसी भी गीत में शामिल होना चाहते हैं। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से आया है मैसेज। उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक इनके साथ शामिल है। और देखिए घड़ी जो है ना, उसे मैं रोक नहीं पा रही हूँ, कितनी भी कोशिश कर लूं, बहुत तेजी से वक्त बीत रहा है। अगली फरमाइश भी पूरी करनी है जो कि आज के प्रोग्राम का आखिरी गाना होगा, लेकिन उससे पहले चलिए एक दो मैसेजेस जल्दी से वक्त चुरा लेती हूँ और पढ़ देती हूँ। एसपी गोयल जी का मैसेज है। लिखा है, सुरीली यादों का एक हंसी कारवा लाया हूँ, एफएम गोल्ड के मंच पर दिल का अरमान लाया हूँ, जो सीधे दिल को छू जाए वो पैगाम लाया हूँ, ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम लाया हूँ। अच्छा, तो ये गीत सुनना चाहते हैं आप, क्या बात है।
किशोर दा की आवाज का जादू फिर से जगा दीजिए, इस फरमाइशी तराने से महफिल सजा दीजिए। गुजारिश है मेरी, इस नगमे को आज जरूर सुना दीजिए, रेडियो के सब दीवानों का दिल बहला दीजिए, माफ कर दीजिए प्लीज, क्योंकि अब वक्त बहुत कम बचा है। अगर थोड़ी देर पहले मैंने आपका ये मैसेज पढ़ लिया होता ना, तो कसम से ये गाना आज जरूर प्ले होता, लेकिन अगली बार के लिए मैं इसको पेंडिंग रख रही हूँ। अगली बार ये फरमाइश जरूर मैं पूरी करूंगी। सतप्रकाश सनोठिया जी रोहिणी से ये मैसेज, और अब जल्दी से प्ले करती हूँ अगला गाना, जिसकी फरमाइश हमें लिखकर भेजी है मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज, बेबी चाहत और सादिया ने। दादा बाबू रोड गिरीडीह झारखंड से आई है ये फरमाइश। ठीक है, तो एंजॉय करते हैं ये गाना, और अब आपसे मुलाकात होगी ठीक 11:10 पर, और प्रोग्राम कौन सा होगा ये आप जानते हैं, तस्वीर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। सरकार ने कहा है कि बैंक 2000 रुपए तक के एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई लेनदेन

0: और रुपे डेबिट कार्ड से भुगतान पर कोई भी शुल्क नहीं लगा सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने यूपीआई लेनदेन पर शुल्क से जुड़े नियमों को स्पष्ट करने के लिए भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम के अंतर्गत इन बदलावों को अधिसूचित किया है। एक रिपोर्ट।
1: वित्त मंत्रालय ने कहा है कि यह नियम ग्राहकों और छोटे व्यापारियों दोनों पर समान रूप से लागू होंगे। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते में किए जाने वाले यूपीआई लेनदेन पूरी तरह मुफ्त रहेंगे। अगर भविष्य में कभी डिजिटल लेनदेन पर कोई शुल्क जैसे मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लगाया भी गया तो वह केवल दुकानदारों पर लगेगा, ग्राहकों पर नहीं। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: प्रतिष्ठित विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 की बैठक गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में शुरू हो गई है। दक्षिण एशिया में पहली बार आयोजित हो रहे इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव तथा गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने संयुक्त रूप से किया। सम्मेलन का विषय है चक्रीय अर्थव्यवस्था, जन और समृद्धि के लिए परिवर्तन। भारत और कनाडा ने प्रस्तावित व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के लिए नई दिल्ली में चौथे दौर की वार्ता शुरू कर दी है। दोनों देश वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 50 अरब डॉलर तक बढ़ाने के प्रयास में हैं। कल से शुरू हुई 5 दिन की ये वार्ता 18 सितंबर तक चलेगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति, विजन महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है। नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में वियतनाम महत्वपूर्ण साझेदार है। प्रधानमंत्री बृहस्पतिवार को नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। ये वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को एक मंच पर लाने तथा सहयोग, नवाचार, विनिर्माण, निवेश और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने का प्रमुख मंच है। झारखंड में सीआईडी ने झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC की 14वीं प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं के मामले में एक कोचिंग सेंटर संचालक संजीत कुमार को गिरफ्तार किया है। रांची के रातो रोड इलाके में शिवांगन कोचिंग सेंटर चलाने वाले संजीत कुमार पर आरोप है कि उसने एजेंट के तौर पर उम्मीदवारों से परीक्षा पास कराने का वादा कर पैसे वसूले थे। ग्रामीण विकास विभाग और पेंशन निधि नियामक तथा विकास प्राधिकरण ने पेंशन दायरे का विस्तार करने के लिए पेंशन सखियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि इस समझौते के अंतर्गत दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान के माध्यम से दूर दराज के क्षेत्रों में पेंशन संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन एक दूसरे के ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने पर सहमत हो गए हैं, हालांकि उन्होंने इसे लागू कराने से जुड़ी जानकारी नहीं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन रूस के ऊर्जा ठिकानों पर हमला न करने और रूस भी ऐसा ही करने पर सहमत हुआ है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने ट्रंप प्रशासन द्वारा विदेशी छात्रों और पत्रकारों के रहने की अवधि पर लगाई गई सख्त सीमाओं के नियम पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि इस नीति को लागू करने से अमेरिका की अर्थव्यवस्था और उच्च शिक्षा प्रणाली को भारी नुकसान हो सकता है। भारत रत्न मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती पर आज राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस मनाया जा रहा है। वे भारत के महानतम इंजीनियरों में से एक थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने एम विश्वेश्वरैया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. India and Canada have begun the fourth round of negotiations for the proposed comprehensive

नमस्कार, आदाब और स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने रेडियो स्टेशन एफएम गोल्ड पर, जिसे ट्यून किया है आपने 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त नाज। प्रोग्राम शुरू हो चुका है तस्वीर। दोस्तों, आज है तारीख 15 सितंबर, जो कि बड़ी खास है क्योंकि आज देश भर में मनाया जा रहा है नेशनल इंजीनियर्स डे। लेकिन आज एफएम गोल्ड पर हम इंसानी इंजीनियरिंग की नहीं, बल्कि कुदरत की, उस शानदार इंजीनियरिंग की बात करेंगे जिसे देखकर दांतों तले उंगली दब ही जाती है। तो बारिशों को देते हुए विदाई और ठंडक भरी गुलाबी हवाओं की दस्तक पर चलिए खोलते हैं दिल के दरवाजे और निकल पड़ते हैं साथ एक ऐसे सफर पर जहां खूबसूरत नजारे होंगे और साथ होगा कुछ सदाबहार तरानों का भी। किसी शायर ने कितना सच कहा है ना, ये जिंदगी एक खूबसूरत सफर है, बस चलने का अंदाज आना चाहिए। और आज जिस तरफ हम चल रहे हैं वो है भारत के दक्षिण पूर्व में फैला एक नीलम जैसा मैजिकल आर्किपेलागो, माने खूबसूरत द्वीप समूह, और नाम है जिसका अंडमान और निकोबार। और वहां पहुंचकर जहां हम ठहरेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, उस जगह का नाम है स्वराज द्वीप। एक ऐसी जगह जहां आसमान और समंदर लगभग एक ही रंग में घुल जाते हैं। तो चलिए हम भी चले चलते हैं वहीं, यानी स्वराज द्वीप, किशोर दा के साथ इस हसीन सफर को एंजॉय करते हुए।

वाह क्या बात है। ठीक ऐसी ही मस्ती भरी वाइब्स के साथ चलिए अब जानते हैं कि नीले समंदर के इस अजूबे यानी स्वराज द्वीप तक पहुंचना कैसे है। अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो सबसे पहले लैंड कीजिएगा अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर के वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, और वहां से स्वराज द्वीप पहुंचने का रास्ता बड़ा ही कमाल है। पोर्ट ब्लेयर की फिनिक्स बे जेट्टी से आपको मिलेंगी कटमरां यानी हाई स्पीड क्रूज या फिर गवर्नमेंट फेरी भी।

समंदर की लहरों के बीच लगभग 1.5 से 2 घंटों का ये सफर इतना खूबसूरत होता है कि रास्ते में उछलती डॉल्फिन्स और पानी के ऊपर उड़ती फ्लाइंग फिशेस देखकर आपका दिल खुशी से झूम उठेगा। और ऐसे में अगर ये गाना आपके ईयरफोन्स में बज रहा हो तो यकीनन सोने पर सुहागा हो जाएगा।

और लीजिए जनाब, लहरों से अटखेलियां करते हुए हमारी एंट्री हो चुकी है अंडमान निकोबार के खूबसूरत स्वराज द्वीप में। वैसे आपको बता दूं कि साल 2018 से पहले इस द्वीप को दुनिया हैवलॉक आइलैंड के नाम से जानती थी, लेकिन फिर 30 दिसंबर 2018 को इस जगह का नाम स्वराज द्वीप रख दिया गया। और ऐसा क्यों हुआ ये भी सुन लीजिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा पोर्ट ब्लेयर में 30 दिसंबर साल 1943 को पहली बार आजाद भारत का तिरंगा फहराने की ऐतिहासिक घटना को याद करते हुए ऐसा किया गया था। असल में उस दौरान ये नेताजी का ही सुझाव था कि इस जगह का नाम शहीद द्वीप या फिर स्वराज द्वीप रखा जाए। और यहाँ कदम रखते ही सबसे पहली जगह जो आपके होश उड़ा देगी वो है राधा नगर बीच। टाइम मैगजीन इसे एशिया का सबसे खूबसूरत बीच घोषित कर चुकी है और इसे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन भी मिल चुका है। यहाँ की मखमली सफेद रेत, फिरोजी नीला पानी और किनारे पर खड़े ऊंचे ऊंचे महुआ के पेड़, सच में ऐसा लगता है जैसे किसी चित्रकार ने बड़ी मेहनत और हुनर के साथ कोई तस्वीर रची हो।

कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

तस्वीर सुन रहे हैं आप विद आरजे नाज, जहां सैर हो रही है आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के स्वराज द्वीप की। राधानगर बीच के शांत नजारों के बाद अगर आपका दिल थोड़े एडवेंचर के लिए धड़क रहा हो तो सीधा रुख कीजिएगा एलिफेंट बीच का। यहां पहुंचने के दो रास्ते हैं, या तो बोट से जाइए या फिर हरे भरे जंगलों के बीच से 2 किलोमीटर का शानदार ट्रैकिंग ट्रैक चुनिए। एलिफेंट बीच बेसिकली वाटर स्पोर्ट्स का हब है, और सबसे बड़ी बात, यहां का अंडर वाटर वर्ल्ड। अगर आप स्कूबा डाइविंग या स्नॉर्कलिंग करते हैं तो पानी के अंदर रंग बिरंगे कोरल रीफ, क्लाउन फिशेस और समुद्री कछुए यहां आपका वेलकम करेंगे।

और हाँ, जिन्हें तैरना नहीं आता वो यहाँ पर सी वॉक कर सकते हैं, यानी समंदर की तलहटी पर पैदल चलकर जलपरी वाली फीलिंग आप आराम से ले सकते हैं।

नीले पानी की बात हो और साथी के तौर पर किशोर दा की आवाज हो तो मजा दोगुना नहीं कई हजार गुना बढ़ जाता है, है ना। अच्छा, स्वराज द्वीप की एक और खासियत है जो मुझे अब आपको बतानी है, और वो है यहाँ का काला पत्थर बीच। जैसा नाम, ठीक वैसा ही इस जगह का काम है। इस बीच की खासियत ये है कि यहाँ सफेद रेत के साथ साथ काले रंग की बड़ी बड़ी चट्टानें भी फैली हुई हैं, जो नीले पानी के साथ एक अमेजिंग सा कंट्रास्ट बनाती हैं। सुबह सुबह यहाँ से सनराइज देखना किसी थेरेपी से कम नहीं है। भीड़ भाड़ से दूर अगर आप शांति से बैठकर कोई किताब पढ़ना चाहते हैं या लहरों के बीच मीठा मीठा संगीत सुनना चाहते हैं तो काला पत्थर बीच आपके लिए एकदम परफेक्ट जगह है।

और चलिए, घूमना फिरना जब काफी हो गया है तो अब बात थोड़ी बहुत शॉपिंग की भी कर लेते हैं, जहां स्वराज द्वीप के लोकल मार्केट से आप खरीद सकते हैं समंदर के नायाब तोहफे। जी हाँ, सीप और शंख से बने खूबसूरत शोपीस, नारियल के खोल से बने कप और हैंडीक्राफ्ट्स, और अंडमान की खास पडॉक वुड यानी लकड़ी से बनी खूबसूरत कलाकृतियां। ये सब आपके घर और आपकी जिंदगी में चार चांद लगा देंगे। और हाँ, यहाँ मिलने वाली पर्ल ज्वेलरी तो एकदम लाजवाब होती है, तो लेडीज डोंट मिस दैट एट एनी कंडीशन।

और जनाब, अब वक्त हो चला है सबसे जरूरी काम का, यानी पेट पूजा का। स्वराज दुई पाए हैं और यहाँ का सी फूड अगर आप नहीं चख पाए किसी भी वजह से, तो समझिए ट्रिप अधूरी रह गई आपकी। नारियल के दूध और ताजे मसालों में बनी कोकोनट प्रॉन्स करी, तंदूरी फिश और ग्रिल्ड क्रैब यहाँ की खासियतें हैं, जिनका जायका आपको उंगलियां चाटने पर मजबूर कर देगा। और हमारे वेजिटेरियन दोस्तों के लिए ताजा नारियल पानी, रसीले अनानास और बीच साइड शेक्स के साथ साथ साउथ इंडियन, बंगाली और नॉर्थ इंडिया से इंस्पायर्ड डिशेस हर कहीं अवेलेबल हैं यहाँ, यानी स्वराज द्वीप पर।

और अब आप सुनिए मेरी यानी नाज की बात और जानिए स्वराज द्वीप की सबसे बड़ी मैजिकल मिस्ट्री यानी जादुई रहस्य के बारे में। अच्छा, क्या आपने कभी रात के अंधेरे में समंदर के पानी को सितारों की तरह चमकते देखा है? अगर नहीं तो आपकी डेस्टिनेशन है आज एकदम सही, क्योंकि स्वराज द्वीप के मैंग्रोव जंगलों में रात के वक्त नाइट काइकिंग होती है, जहां पानी में मौजूद बायोलुमिनेंस यानी सूक्ष्म जीव जब छपछपाते हैं तो कुछ नीले रंग की रोशनी उत्सर्जित करते हैं।

तो ऐसे में जैसे ही आप पानी पर चप्पू चलाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा मानो आप पानी में नहीं बल्कि तारों से भरे नीले आसमान में नाव चला रहे हैं। वाकई ये नजारा आप चाहे भी तो भी कभी भुला नहीं पाएंगे।

तो तस्वीर में आज हमने मिलकर दीदार किया स्वराज द्वीप के उस पारदर्शी नीले संसार का, जहां की लहरें हर पल एक नई दास्तान सुनाती हैं। जाते जाते बस इतना सा मैसेज हम सब के लिए कि जब भी इस खूबसूरत द्वीप पर जाएं, तो कुदरत की इस अनमोल धरोहर को साफ सुथरा ही रहने दें। प्लास्टिक या कचरा जहां फेंकना चाहिए सिर्फ वहीं डालें, और वापसी में साथ लेते जाएं ढेर सारी यादों का कारवां।

0: फिर मिलोगे कभी इस बात।
1: और इसी के साथ अब लेनी होगी आपसे विदा, इस वादे के साथ कि फिर किसी नए सफर पर फिर होंगे हम साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए FM गोल्ड।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि सतत विकास ढांचे में चक्रीय अर्थव्यवस्था सिद्धांतों को समाहित करने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने पुनर्उपयोग, मरम्मत और संरक्षण की अपनी प्राचीन पद्धतियों को समकालीन नीतियों में आधुनिक रूप दिया है। उन्होंने ये बात गुजरात में गांधीनगर के महात्मा मंदिर में विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच WCEF 2026 के 10वें संस्करण के उद्घाटन समारोह में कही। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इसका संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। ये सम्मेलन भारत में पहली बार आयोजित हो रहा है। 65 से अधिक देशों के 2000 से अधिक हितधारक इसमें भाग ले रहे हैं।

0: का विषय है चक्रीय अर्थव्यवस्था जन और समृद्धि के लिए परिवर्तन। सरकार ने कहा है कि बैंक 2000 रुपए तक के एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई लेनदेन और रुपे डेबिट कार्ड से भुगतान पर कोई भी शुल्क नहीं लगा सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने यूपीआई लेनदेन पर शुल्क से जुड़े नियमों को स्पष्ट करने के लिए भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम के अंतर्गत इन बदलावों को अधिसूचित किया है। एक रिपोर्ट।
1: वित्त मंत्रालय ने कहा है कि यह नियम ग्राहकों और छोटे व्यापारियों दोनों पर समान रूप से लागू होंगे। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते में किए जाने वाले यूपीआई लेनदेन पूरी तरह मुफ्त रहेंगे। अगर भविष्य में कभी डिजिटल लेनदेन पर कोई शुल्क जैसे मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लगाया भी गया तो वह केवल दुकानदारों पर लगेगा, ग्राहकों पर नहीं। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: भारत और कनाडा ने प्रस्तावित व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के लिए नई दिल्ली में चौथे दौर की वार्ता शुरू कर दी है। दोनों देश वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 50 अरब डॉलर तक बढ़ाने के प्रयास में हैं। कल से शुरू हुई 5 दिन की ये वार्ता 18 सितंबर तक चलेगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति, विजन महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है। नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में वियतनाम महत्वपूर्ण साझेदार है। प्रधानमंत्री बृहस्पतिवार को नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। ये वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को एक मंच पर लाने तथा सहयोग, नवाचार, विनिर्माण, निवेश और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने का प्रमुख मंच है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा उपचुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने रेजीनगर सीट से शाखाराव सरकार को उम्मीदवार बनाया है, जबकि नंदीग्राम विधानसभा सीट से हसीरानी रथ पार्टी की उम्मीदवार होंगी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रही दिशा सालियान की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। दिशा सालियान की 8 जून 2020 को एक इमारत की 12वीं मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई थी। ये प्राथमिकी बम्बई उच्च न्यायालय के आदेश के बाद दर्ज की गई है। भारत का राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन आज अपना 67वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस लोक सेवा प्रसारक की शुरुआत 1959 में ऑल इंडिया रेडियो के अंतर्गत एक प्रायोगिक टेलीविजन सेवा के तौर पर हुई थी। दूरदर्शन अपनी कई बेहतरीन सेवाओं जैसे सैटेलाइट और डायरेक्ट टू होम सर्विस के जरिए 100% आबादी तक पहुंचने वाला माध्यम है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक की शुरुआती बढ़त खत्म हो गई और दोपहर के सत्र में वो गिरावट के साथ ट्रेंड कर रहे थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आंगन।
1: नमस्कार। समय की सुई जब आगे बढ़ती है तो पीछे छूट जाती हैं कई यादें और साथ आ जाती हैं कई नई बातें। ऐसी ही कुछ पुरानी यादों और नई बातों को लेकर आज हम फिर आपके बीच हाजिर हुए हैं कार्यक्रम घर आंगन में। मैं हूँ श्रुति पुरी। ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं FM गोल्ड 100.1 MHz पर। इंद्रप्रस्थ चैनल पर ये प्रसारण 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर भी सुना जा सकता है। और जो श्रोता डिजिटल माध्यम से जुड़े हैं वे ये कार्यक्रम AIR न्यूज लाइव 24x7 यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। डॉक्टर मोक्ष गुंडम विश्वरैया कहा करते थे कि काम ही पूजा है। ये छोटी सी पंक्ति अपने आप में एक पूरा जीवन दर्शन है। उनका ये भी मानना था कि धन नहीं बल्कि चरित्र की ऊंचाई ही असली बड़प्पन है। और आज की तारीख भी कुछ ऐसी ही प्रेरणा लिए हुए है। 15 सितंबर का दिन दूरदर्शन दिवस के रूप में मनाया जाता है। साल 1959 में आज ही के दिन भारत में दूरदर्शन का प्रसारण आरंभ हुआ था और कुछ सालों बाद नियमित प्रसारण आरंभ हो गया। सोचिए उस दौर को जब घर में टेलीविजन होना किसी उत्सव से कम नहीं था। छत पे लगा एंटीना मोहल्ले की शान हुआ करता था और शाम होते ही पड़ोसी टीवी देखने इकट्ठा हो जाया करते थे। एक छोटे से डिब्बे ने धीरे धीरे पूरे देश को अपने भीतर समेट लिया था। और अब समय है आज के प्रश्न का। जैसा कि आजकल आप सभी देख रहे हैं, बुखार, खांसी, वायरल और डेंगू जैसी बीमारियां मौसम बदलने के साथ पनप रही हैं। ऐसे में स्वच्छता अपने घर में, परिवेश में, यानी हर स्तर पर ज़रूरी है। तो हमारा आज का सवाल है आपसे ये कि अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखने के लिए आपका क्या कर्तव्य है और आप इसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं। हमें अपने जवाब हमारी ईमेल आईडी fmgoldga@gmail.com, ईमेल आईडी दोबारा सुनिए fmgoldga@gmail.com पर तुरंत लिख भेजिए और आनंद लीजिए अब इस गीत का।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार को अभी आप सुन रहे थे फिल्म रॉकी में। श्रोताओं, आज का दिन राष्ट्रीय इंजीनियरिंग दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन भारत रत्न डॉक्टर मोक्ष गुंडम विश्वरैया की जयंती है। आपका जन्म साल 1861 में मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ था। उन्हें आधुनिक भारत के महान इंजीनियरों में गिना जाता है। उनका नाम आते ही मन में सबसे पहले कृष्णराज सागर बांध और मैसूर की जल प्रणाली प्रबंधन प्रणाली का ख्याल आता है। उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जो योगदान दिया वो आज भी कई पीढ़ियों को प्रेरित करता है। और आज का दिन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस भी है। हर नागरिक की आवाज़ मायने रखती है और लोकतंत्र की मजबूती जन भागीदारी से ही बनती है। और साहित्य की दुनिया के लिए आज का दिन बेहद खास है। बांग्ला के महान उपन्यासकार शरणचंद चट्टोपाध्याय की आज जयंती है। उन्होंने देवदास और परिणीता जैसी रचनाएं दी जो आज भी पाठकों के दिल में बसती हैं। और हिंदी साहित्य जगत के जाने माने डॉक्टर राजकुमार वर्मा का जन्म भी आज ही के दिन साल 1905 में हुआ था। वे हिंदी नाट्य साहित्य के उन स्तंभों में गिने जाते हैं जिनकी एकांकी विधा पूरी दुनिया में एक पहचान बन गई। श्रोताओं, आज ऋषि पंचमी भी है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाने वाला ये व्रत सप्त ऋषियों को समर्पित है। ये गणेश चतुर्थी के अगले दिन और हड़ताल का तीज के बाद आता है। कई परिवारों में आज के दिन विशेष रूप से बिना हल जोते उगे अनाज का सेवन किया जाता है और घर की स्त्रियां सप्त ऋषियों का आशीर्वाद पाने के लिए व्रत रखती हैं। तो देखा आपने कैसे एक ही तारीख में विज्ञान, लोकतंत्र, साहित्य और आस्था चारों एक साथ मिल जाते हैं और एक नए उत्सव को जन्म देते हैं। और हम उस उत्सव में आपके साथ हैं इस गीत के साथ।

विरासत फिल्म में अभी आप कविता कृष्णमूर्ति और उदित नारायण को सुन रहे थे। श्रोताओं, गणपति बाप्पा मोरिया की गूंज पूरे देश में एक जैसी है और गणपति बाप्पा घर घर में विराजित हो चुके हैं। आज दूसरा दिन है, पर आपको पता है कि हर राज्य में गणपति बाप्पा को मनाने का अपना ही अंदाज है। महाराष्ट्र में ये उत्सव अपनी पूरी भव्यता के साथ मनाया जाता है। घर घर और सार्वजनिक पंडालों में मूर्ति स्थापना, ढोल ताशों की गूंज और भावभीनी विदाई के साथ। गोवा में इसे चवथ कहते हैं। वहां की खासियत है कि दूर रह रहे परिवारीजन भी विसर्जन से पहले घर लौट आते हैं। कर्नाटका में पहले गौरी पूजा होती है और फिर उसके बाद गणपति का स्वागत किया जाता है और साथ में कुडुबू जैसे पारंपरिक पकवानों का भोग भी लगता है। हैदराबाद के खैरताबाद गणेश अपनी विशाल प्रतिमा के लिए देश भर में मशहूर हैं। यह परंपरा एक छोटी सी 1 फुट की प्रतिमा से शुरू हुई थी, जो आज 60 फुट से भी ऊंची प्रतिमा तक पहुंच गई है। तमिलनाडु में इसे विनायक चतुर्थी या पल्लैयार चतुर्थी कहते हैं और कोझू कट्टई का भोग गणपति को विशेष रूप से अर्पित किया जाता है। कहीं ये 10 दिन का भव्य उत्सव होता है तो कहीं 12 दिन की सादगी भरी पूजा। पर बप्पा के लिए प्रेम हर जगह उतना ही गहरा है। यही तो भारत की खूबसूरती है। भाषा अलग, रीति अलग, पर आस्था एक। और जब विदाई की घड़ी आती है तो हर प्रदेश में एक ही पुकार सुनाई देती है, गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ।

शंकर महादेवन को अभी आप सुन रहे थे फिल्म विरुद्ध में। और श्रोताओं, आपके बहुत सारे मेल हमारे पास आए हैं और अब हम उनको शामिल भी कर रहे हैं। सबसे पहला मेल हमारे पास आया है नवीन भाटिया जी का, मोतीनगर दिल्ली से। ये लिखते हैं कि कचरे वाली गाड़ी आती है डेली, उसी में कचरा डालते हैं और रोड पर लेकर नहीं जाते हैं। हमें चरणदास जी लिख रहे हैं, राजू अग्रवाल, केशव और प्रियांशी, ये सभी चौधरीवास हरियाणा से लिख रहे हैं कि नमस्कार। आपके नमस्कार कहते ही आवाज़ पहचान गया था। और साथ ही ये लिखते हैं कि हमारे घर में आगे एक बहुत बड़ा सा चौक है, हम रोज़ाना 30 मिनट वहाँ पर सफर

सफाई करके आते हैं, तो बहुत अच्छा काम करते हैं आप राजू अग्रवाल जी। अगर आप अपने घर के आगे के चौक की भी सफाई करते हैं तो आप अपने आसपास के परिवेश को भी स्वच्छ रखते हैं। और अफरोज शेख लिख रहे हैं कि घर का कचरा इकट्ठा ना होने दें, कपड़ों को भी इकट्ठा करके ना रखें क्योंकि इसमें भी मच्छर छुप जाते हैं। साफ सफाई का ख्याल रखना भी जरूरी है। ये बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जो मैले कपड़े होते हैं या धुले हुए कपड़े भी अगर बाहर पड़े हों तो उसमें भी मच्छर इकट्ठा हो जाते हैं। और ये योगांशु कुमार जी लिखते हैं, योगांशु कौशिक जी, तो ये लिखते हैं, नमस्कार मैम, मैं आपका कार्यक्रम सुनता हूँ और मेरे पिताजी 1 सितंबर 2001 से जब से रिटायर्ड हुए हैं तब से FM गोल्ड सुनते हैं। और आगे लिख रहे हैं कि मैं स्वच्छता रखने के लिए कभी कूड़ा करकट इधर उधर नहीं डालता हूँ, उसे डस्टबिन में ही डालता हूँ और बच्चों को भी यही सिखाता हूँ। और आज जब मैं अपने गाँव जाता हूँ तो वहाँ पर भी जाकर साफ सफाई का पूरा ख्याल रखता हूँ, लोगों को भी ये बताता हूँ कि साफ सफाई रखनी है। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं आप योगांशु जी, हम सभी को इस मुतालिक ध्यान तो रखना ही चाहिए। अगला मेल हम ले रहे हैं सुदर्शन मुखी जी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, ये लिखते हैं कि आपका कार्यक्रम सुन रहे हैं और स्वच्छ रहो, स्वस्थ रहो, सदा खाओ स्वस्थ हो जाओ, सादा खाओ स्वस्थ हो जाओ, मच्छर भगाओ बीमारी भगाओ। बहुत अच्छी बात लिखी है आपने। देखिए आपने इस अंदाज में उसको तुकबंदी में लिखा है कि कितनी भी हम कोशिश करें हमें मच्छर कहीं ना कहीं दिख ही जाते हैं, लेकिन उनको भगाना हमारा कर्तव्य है। और इन्होंने आगे लिखा है कि न रखो घर में खुला पानी, फिर नहीं चले मच्छर की मनमानी। बिल्कुल ठीक बात है और बहुत अच्छा लिखा है आपने सुदर्शन मुखी जी, बहुत अच्छा सुझाव दिया है। और हमें एक राजेश्वर, डॉक्टर राजेश्वर राव जी का भी मेल आया है और उन्होंने लिखा है कि जो गार्बेज है वो लोगों के द्वारा ही जनरेट किया जाता है और ये कॉरपोरेशन तो इसको हमेशा जो है समेटने का ही काम करती है। तो माई वेस्ट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस बात को लेकर इन्होंने जोर दिया है। और इन्होंने कहा है कि जो सेग्रीगेशन है हमें करना चाहिए गीले कूड़े का और सूखे कूड़े का, स्टोरेज नहीं करनी चाहिए, टाइमली उसका एक सही जगह पर उसका निस्तारण भी हमें करना चाहिए। बहुत अच्छी बात लिखी है आपने डॉक्टर राजेश्वर राव जी, आप भी हमें नियमित मेल करते रहते हैं, हमें अच्छा लगता है। गौरी शंकर जी का मेल हमें आया है और इन्होंने लिखा है, राम राम बेटा, इस मौसम में मच्छरों की भरमार हो जाती है जिससे बीमारियां फैलती हैं, तो घर में पानी का ध्यान रखना चाहिए, कहीं भी इकट्ठा नहीं होना देना चाहिए और बुखार में कई दिनों तक नहीं तो पीछा नहीं छोड़ता और ध्यान रखना ज़रूरी है। और ये गौरी शंकर जी नांगलोई से हमें लिख रहे थे। श्रोताओं, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने कही हैं और बिल्कुल ठीक बात है क्योंकि घर में बच्चे भी होते हैं और बच्चों को भी ये चीज़ें समझानी बहुत ज़रूरी हैं। और देखिए ना, अगर हम बचपन की बात कर रहे हैं तो मुझे आपको एक बार फिर से मैं चाहती हूँ आपको बचपन में ले चलूँ क्योंकि बचपन में जो हम रेल का सफ़र करते थे ना और उसमें अगर सीटी की आवाज़ सुनाई नहीं देती थी तो ऐसा लगता था कुछ अधूरा है। बचपन में स्टेशन पर खड़े होकर हम अक्सर उस सीटी की आवाज़ का इंतज़ार किया करते थे, मानो किसी जादुई पल की शुरुआत हो रही हो। और रेल की सीटी सुनते ही जैसे मन में एक अलग सा उत्साह भर जाता था। पर क्या आपको पता है कि सीटी सिर्फ इशारा भर नहीं बल्कि एक पूरी भाषा है। भारतीय रेल में हर सीटी का अपना एक तय संकेत कोड होता है। अगर चालक एक छोटी सीटी बजाता है तो इसका मतलब है कि उसे किसी और इंजन की मदद की ज़रूरत नहीं है, और अगर वो एक छोटी और एक लंबी सीटी बजाए तो इसका अर्थ है कि उसे पीछे लगे इंजन से सहायता चाहिए। जब ट्रेन खड़ी हो और चालक दो छोटी सीटी बजाए तो इसका मतलब है कि वो गार्ड से ट्रेन चलाने की अनुमति मांग रहा है। लगातार लंबी सीटी का मतलब है कि ट्रेन किसी स्टेशन को बिना रुके ही पार कर रही है ताकि प्लेटफॉर्म पर खड़े लोग
सतर्क हो जाएं। कुछ खास मौकों पर रुक रुक कर बजने वाली सीटी ये संकेत देती है कि आगे रास्ता साफ नहीं है।

या पटरी पर कोई रुकावट है, और अगर कभी कोई आपात स्थिति बने जैसे किसी यात्री ने चेन खींच दी है तो उसका भी अपना अलग सीटी संकेत होता है। यानी जो सीटी हमें बचपन में सिर्फ एक रोमांचक आवाज़ लगती थी, वो असल में चालक और गार्ड के बीच में एक पूरा संवाद है। रेल की पटरियों के किनारे लगे जो पीले बोर्ड होते हैं ना, उन पर जो W का निशान भी होता है, वो भी चालक को यही याद दिलाता है कि आगे सीटी बजानी है। वाकई ये जानकारी दिलचस्प है ना। अगली बार जब आप किसी स्टेशन पर खड़े होकर ये सीटी सुनेंगे तो शायद उसका मतलब समझने की कोशिश ज़रूर करेंगे, है ना। दोस्त फिल्म में अभी आप किशोर कुमार को सुन रहे हैं।

श्रोताओं, छोटे बच्चों की दुनिया बड़ी अनोखी होती है। आपको बताएं कि वे बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह जाते हैं जो बड़े लोग बोलकर भी नहीं बता पाते, शब्दों में भी नहीं कह पाते। ऐसे में ये जिम्मेदारी हम सब की बनती है कि उनके भीतर पनप रही इस कोमल समझ को सही दिशा दें, उन्हें सहानुभूति और संवेदनशीलता के रूप में पल्लवित होने दें। आज के दौर में बच्चों की परवरिश की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि पढ़ाई और प्रतिस्पर्धा की दौड़ में कहीं संवेदनशीलता पीछे न छूट जाए। सबसे पहला और सबसे असरदार तरीका है घर का माहौल। बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। अगर घर में बड़े एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं और ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं तो बच्चा स्वाभाविक रूप से यही सीखता है। बच्चों को कहानियां सुनाना भी सहानुभूति बढ़ाने का एक अच्छा तरीका है। जब

और सबसे जरूरी बात यह है कि बच्चों की भावनाओं को कभी छोटा या नजरअंदाज न किया जाए। जब बच्चों को ये भरोसा होता है कि उनकी भावनाओं को समझा जाता है, तभी वो दूसरों की भावनाओं को समझने के लिए भी खुला रहता है। सच में सहानुभूति कोई पाठ्यक्रम नहीं, बल्कि रोजमर्रा के छोटे छोटे पलों से सीखी जाती है, और यही छोटे पल आगे चलकर एक संवेदनशील समाज की नींव बनते हैं।

आशा भोसले और गीता दत्त को अभी आप फिल्म सुजाता में सुन रहे थे। दोस्तों, आजकल तो हर किसी की कलाई पर या जेब में मोबाइल फोन में समय दिख जाता है और एक पल में पता चल जाता है कि घड़ी में कितने बजे हैं। पर जरा सोचिए उस दौर के बारे में जब ना कलाई पर घड़ी होती थी न जेब में मोबाइल फोन। तब समय का हिसाब रखना अपने आप में कला हुआ करती थी। हमारे बुजुर्ग सूरज की परछाई देखकर समय का अंदाजा लगा देते थे। धूप घड़ी यानी सन डायल का इस्तेमाल तो प्राचीन भारत में भी होता था। इसके अलावा गांवों में मुर्गे की बांग होने से सुबह का पता चलता था। समय के साथ इंसान ने इस अनुमान को यंत्रों में बदलना शुरू किया। यूरोप में 14वीं शताब्दी के आसपास पहली यांत्रिक घड़ी बननी शुरू हुई, जो साल 1656 में डच वैज्ञानिक क्रिश्चियन ह्यूनसेंग ने पेंडुलम वाली घड़ी का आविष्कार किया, जो अपने समय की सबसे सटीक टाइम कीपिंग डिवाइस मानी जाती थी। यहीं से घड़ी के आधुनिक सफर की नींव पड़ी और फिर आया दीवार घड़ी या टेबल घड़ी का दौर। पेंडुलम वाली घड़ियां हर घर की शान हुआ करती थी। उनकी टिक टिक की आवाज मानो घर

शहर में जीवंत होने का प्रमाण होती थी। हर घंटे बजने वाला घंटा पूरे मोहल्ले को ये याद दिलाता था कि समय क्या हुआ है। कलाई घड़ी का चलन आने के बाद तो ये एक स्टेटस सिंबल बन गई। शादी में दूल्हे को घड़ी देना एक परंपरा बन गई थी और स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए पहली घड़ी मिलना किसी बड़े उपहार से कम नहीं होता था। महापुरुषों के जीवन में भी घड़ी का अपना ही अलग महत्व रहा है। आज के दौर में घड़ी का रूप पूरी तरह से बदल चुका है। अब कलाई पर बंधी स्मार्ट वॉच सिर्फ समय नहीं बताती है बल्कि दिल की धड़कन नापती है, कदमों को गिनती है, फोन के संदेश तक दिखा देती है। फिर भी उन पुरानी घड़ियों के टिक टिक में जो सुकून था ना, वो आज भी बहुतों के मन में बसा हुआ है। ठीक कह रही हूँ ना? अपनी घड़ी देखिए और आंकिए वो किस जमाने की घड़ी है।

श्रोताओं, आज का ये सफर सच में बहुत रंगों से भरा रहा। बीता हुआ हर पल एक नई कहानी छोड़ जाता है और हर आवाज अपने भीतर कोई ना कोई संदेश समेटे रहती है। बस जरूरत होती है उसे सुनने, उसे महसूस करने की। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सफर को यहीं विराम देते हैं और आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम घर आंगन। मैं थी श्रुति पुरी, इजाजत दीजिए। जल्द ही नई दोपहर, नई बात,

एक नए विषय और एक नई सोच के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने अपनों का ख्याल रखिए, अपना भी ख्याल रखिए। नमस्कार और सुनते रहिए हमारा ये गीत अलका याग्निक, साधना सरगम और सपना मुखर्जी की आवाज़ में फिल्म त्रिदेव से।

0: और आंगन।
1: आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा, आपका घर आंगन।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि सतत विकास ढांचे में चक्रीय अर्थव्यवस्था सिद्धांतों को समाहित करने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने पुनर्उपयोग, मरम्मत और संरक्षण के अपनी प्राचीन पद्धतियों को समकालीन नीतियों में आधुनिक रूप दिया है। उन्होंने ये बात गुजरात में गांधीनगर के महात्मा मंदिर में विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच WCF 2026 के 10वें संस्करण के उद्घाटन समारोह में कही। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इसका संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। ये सम्मेलन भारत में पहली बार आयोजित हो रहा है। 65 से अधिक देशों के 2000 से अधिक हितधारक इसमें भाग ले रहे हैं। इसका विषय है चक्रीय अर्थव्यवस्था, जन और समृद्धि के लिए परिवर्तन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा उद्योगों के बीच साझेदारी भारत को रक्षा विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। श्री सिंह ने नई दिल्ली में DRDO उद्योग सहभागिता सम्मेलन विमर्श 2026 को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि DRDO ने मिसाइल से लेकर रडार, लड़ाकू विमान से लेकर पनडुब्बियों और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में अपनी क्षमता साबित की है। श्री सिंह ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में

0: रक्षा क्षेत्र में किए गए सुधार अभूतपूर्व हैं।
1: अभी पिछले कुछ वर्षों में हमने डिफेंस सेक्टर में जो रिफॉर्म्स देखे हैं, मैं कह सकता हूं कि वह अनप्रेसिडेंटेड है। हमारे प्रधानमंत्री के विजन और लीडरशिप में हमने कई गेम चेंजिंग फैसले लिए हैं, चाहे वह पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट हो, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव हो, आईडेक्स हो, अदिति हो, या फिर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट का 25% प्राइवेट सेक्टर के लिए एलोकेशन का फैसला हो।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि संघर्षों और विरोधाभासों से जूझ रही दुनिया में नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता उल्लेखनीय है। भारतीय विश्व मामलों की परिषद ICWA के रजत जयंती समारोह में उन्होंने सर्वसम्मति से अपनाई गई नई दिल्ली घोषणा को बड़ी उपलब्धि बताया। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि भारत वैश्विक चुनौतियों पर अपने दृष्टिकोण को अधिक आत्मविश्वास के साथ व्यक्त कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश के हित तेजी से दुनिया भर से जुड़ रहे हैं और भारत से विश्व की अपेक्षाएं भी बढ़ी हैं। सरकार ने कहा है कि बैंक 2000 रुपये तक के एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI लेनदेन और रुपये डेबिट कार्ड से भुगतान पर कोई भी शुल्क नहीं लगा सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने UPI लेनदेन पर शुल्क से जुड़े नियमों को स्पष्ट करने के लिए भुगतान तथा निपटान प्रणाली अधिनियम के अंतर्गत इन बदलावों को अधिसूचित किया है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा उपचुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने रेजीनगर सीट से शाखाराव सरकार को उम्मीदवार बनाया है, जबकि नंदीग्राम विधानसभा सीट से हसीरानी रथ पार्टी के उम्मीदवार होंगी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रही दिशा सालियान की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। दिशा सालियान की 8 जून 2020 को एक इमारत की 12वीं मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई थी। ये प्राथमिकी बम्बई उच्च न्यायालय के आदेश के बाद दर्ज की गई है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने ट्रंप प्रशासन द्वारा विदेशी छात्रों और पत्रकारों के रहने की अवधि पर लगाई गई सख्त सीमाओं के नियम पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि इस नीति को लागू करने से अमेरिका की अर्थव्यवस्था और उच्च शिक्षा प्रणाली को भारी नुकसान हो सकता है। भारत का राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन आज अपना 67वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस लोक सेवा प्रसारक की शुरुआत 1959 में ऑल इंडिया रेडियो के अंतर्गत एक प्रायोगिक टेलीविजन सेवा के तौर पर हुई थी। भारत और अफगानिस्तान के बीच 2020 क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 147 अंक गिरकर 74,635 पर और निफ्टी 74 अंक की गिरावट के साथ 23,324 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Defense Minister Rajnath Singh has said measures have been taken to ensure that India does not remain dependent on imports in the defense sector but moves towards self-reliance. Addressing the DRDO Industry Synergy Meet Vimarsh 2026 in the national capital today, Mr. Singh said self-reliance should become a part of the nation's character and attitude.
1: अभी पिछले कुछ वर्षों में हमने डिफेंस सेक्टर में जो रिफॉर्म्स देखे हैं।
3: द रिफॉर्म्स विटनेस्ड इन द डिफेंस सेक्टर ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स आर अनप्रेसिडेंटेड एंड सेवरल गेम चेंजिंग डिसीजंस हैव बीन टेकन। दिस इंक्लूड द पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट, द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, आईडेक्स, अदिति एंड द डिसीजन टू एलोकेट 25% ऑफ द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट टू द प्राइवेट सेक्टर।
1: और इसके परिणाम आप सबने महसूस भी किए।
2: The Defence Minister said the partnership between DRDO and industry can make India a global hub for defence manufacturing. Mr. Singh said over the years DRDO has demonstrated its capabilities in every field from missiles to radars, combat aircraft to submarines, electronic warfare system to artificial intelligence. Minister for Environment, Forest and Climate Change Bhupendra Yadav has underlined India's commitment to embedding circular economy principles into its sustainable development framework. Addressing the inaugural session of the 10th edition of the World Circular Economy Forum 2026 in Gandhinagar, Gujarat today, the minister stressed

बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। 1:11:02 और ये वक्त रहता है कलाकार बेमिसाल का, जाने माने फिल्म मेकर राजकुमार कोहली का जिक्र होगा आज कलाकार बेमिसाल का ये सफर तय करते हुए। कहते हैं कि फिल्म के पोस्टर पर उनका नाम देखकर ही दर्शक टिकट खरीद लिया करते थे। मनोरंजन से भरपूर मल्टी स्टारर फिल्म बनाने के लिए उन्हें जाना जाता रहा। मसाला फिल्में बनाने के पीछे उनकी यही सोच रही कि भाई एक आम दर्शक जो दिन भर कठिन परिश्रम करने वाला है वो सिनेमा में सुकून तलाशने के लिए आता है। खूबसूरत हीरोइनें, बलशाली हीरो, मधुर गाने, थोड़ा सा रोमांस और जोरदार

फाइट सीन। बस इसी इन्हीं सब चीजों को देखकर वो अपनी थकान भूल जाते हैं। ढेर सारे नामी स्टार्स को लेकर उनकी फिल्मों में एक साथ जो हुआ करते थे ना, एक साथ इतने स्टार्स को लेने का बजट और साहस उन्हीं में था साहब, राजकुमार कोहली साहब, लेजेंड फिल्म मेकर। आकाशवाणी दिल्ली पर इस तरह की उनसे जुड़ी और भी बहुत सारी बातें होती रहेंगी। सुनते रहे 100.1 आकाशवाणी गोल्ड। अंजलि है आपके साथ।

जाने माने फिल्म मेकर राजकुमार कोहली की बातें इस वक्त हो रही है। कलाकार बेमिसाल का ये सफर तय हो रहा है यहाँ पर आकाशवाणी गोल्ड पर। राजकुमार कोहली को बड़ी सफलता मिली फिल्म नागिन से। 1976 की ये फिल्म है। सुनील दत्त, फिरोज खान, जितेंद्र, मुमताज, रीना रॉय, रेखा, विनोद मेहरा, योगिता बाली, कबीर बेदी जैसे तमाम बड़े सितारे इस फिल्म में मौजूद रहे। फिल्म सुपरहिट रही और मल्टी स्टारर फिल्मों का एक तरह से चलन शुरू हो गया। राजकुमार कोहली के हाथ भी हिट फिल्मों का फॉर्मूला लग गया। ढेर सारे स्टार्स लो फॉर्म, जैसे बोलते हैं ना, एक आसान सी फॉर्मुलेटिक आसान सी कहानी और कुछ फाइट सीन, कुछ मेलेडियस सॉन्ग, बस एक हिट फिल्म बना डालो। लेकिन ये जो सारा काम था ना, आसान नहीं था, और ये जो काम था बस राजकुमार कोहली ही कर पाए। और एक और ही बहुत ही बेहतरीन सा गाना, अगर आपने फिल्म नागिन देखी है तो ज़रूर आपको ये फिल्म और इसका गीत संगीत तो बेहद पसंद आया होगा।

जी हाँ, नागिन फिल्म का ये गीत आपको भी ज़रूर याद आ गया होगा, और बहुत ही, जैसे बोलते हैं ना, इसका पूरा का पूरा इस फिल्म की कहानी और बहुत ही मनोरंजक, बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी थी कि नज़र हटाए नहीं हटती, और गाने, डायलॉग्स, सचमुच सब कुछ अपने, जैसे बोलते हैं, आगोश में लपेट लेते हैं। और नागिन के बाद इनकी आई जानी दुश्मन 1979 की फिल्म, इसी तरह बदले की आग 82 की फिल्म, नौकर बीवी का 1983 की ये फिल्म रही, राज तिलक 1984 की फिल्म, 1987 की फिल्म इंसानियत के दुश्मन, 1988 में इनकी आई साजिश 20 साल बाद जैसी सफल फिल्में राजकुमार कोहली साहब ने बनाई। इनकी फिल्मों में कमल हासन, मिथुन चक्रवर्ती, राजकुमार, डिंपल कपाड़िया जैसे सितारे भी नजर आए। राजकुमार कोहली क्योंकि बड़ा नाम थे, बड़े बड़े स्टार्स इनके साथ जो होते हैं ना काम करने के इच्छुक रहे, और उनकी फिल्मों को हिट फिल्मों की गारंटी माना जाता था।

जाने माने फिल्म मेकर राजकुमार कोहली का इस वक्त जिक्र हो रहा है आकाशवाणी गोल्ड 100.1 पर। 1963 में ये मुंबईया फिल्मों की तरफ इन्होंने रुख कर लिया अपना। उससे पहले पंजाबी फिल्मों से इनकी शुरुआत हुई थी। प्रेमनाथ और निशी

0: लेकर इन्होंने पहली फिल्म बनाई और उसके बाद दारा सिंह और निशी को लेकर लुटेरा फिल्म 1965 में बनाई। प्रेम चोपड़ा को भी इन्होंने पहली बार हीरो के रूप में पर्दे पर उतारा। बड़े कैनवास और सेटअप वाली कहानियों को पर्दे पर भव्य ढंग से उतारने में वो सक्षम साबित हुए। मल्टी स्टारर फिल्मों को बिना लेट लतीफी के अपने निर्धारित सही समय पर बनाकर दिखाया। राजकुमार कोहली साहब ने ये उनका गजब का प्रबंधन रहा।
1: दिल खरोश, हमले की तैयारी करो,
2: जल्दी करो।

दिग्गज फिल्ममेकर राजकुमार कोहली कोरा और काला गोरा और काला ये उनकी पहली हिंदी हिट मूवी रही जिसमें राजेंद्र कुमार हेमा मालिनी रेखा मुख्य भूमिकाओं में दिखे। राजेंद्र कुमार फिल्म में डबल रोल में दिखे और ये वही साल रहा जब हेमा जी की डबल रोल वाली फिल्म सीता और गीता भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। उन दिनों फिल्म गोरा और काला के वक्त राजेंद्र कुमार टॉप स्टार थे और राजकुमार कोहली ने 10 साल बाद पंजाबी और कम बजट की फिल्में प्रोड्यूस करने के बाद अपनी पहली बड़ी फिल्म में कामयाबी का स्वाद चखा। इसके बाद उन्होंने

नागिन फिल्म का प्लॉट तैयार किया। रीना रॉय को फिल्म में नागिन की भूमिका के तौर पर रखा गया और रीना रॉय के पूरे करियर में उन्हें इस किरदार से जो शोहरत मिली ना, वो उनके किसी और किरदार के मुकाबले सबसे ज्यादा थी। इस फिल्म की मिली कामयाबी का सहरा तो सभी कलाकारों के नाम रहा ही, साथ ही राजकुमार कोहली भी फिल्म इंडस्ट्री पर पूरी तरह से छा गए थे।

सुन रहे हैं आप आकाशवाणी गोल 100.1 और बातें हम कर रहे हैं प्रसिद्ध फिल्म मेकर राजकुमार कोहली साहब की। फिल्म नागिन का हमने जिक्र किया और इसके बाद उनकी फिल्म जानी दुश्मन भी दर्शकों के बीच काफी हिट साबित रही। एक अच्छी हॉरर मूवी के तौर पर आज भी ये फिल्म लोगों के जहन में रहती है और इसका एक गीत चलो रे डोली उठाओ कहार फिल्म की सिचुएशन के अनुसार तो बहुत पसंद किया ही गया, लेकिन इस फिल्म के इस गीत को बाद में भी शादी ब्याहों के माहौल में खूब पसंद किया जाता रहा। और इसके अलावा भी फिल्म के जो बाकी गीत थे ना वो भी बहुत जैसे सराहे गए, पसंद किए गए और लोगों के जहन में आज तक बसे हुए हैं। जाने माने फिल्म मेकर राजकुमार कोहली साहब की एक सबसे बड़ी खासियत क्या रही?

पता है उनकी एक खासियत थी कि फिल्म जो इंडस्ट्री थी फिल्मी दुनिया में उनकी गहरी पैठ, दर्जनों बड़े अभिनेता उन्हें एक साथ डेट्स दिया करते थे और कई अभिनेताओं के साथ तो उनके घरेलू रिश्ते भी बन गए थे। इसके पीछे रहा उनका अच्छा मिलनसार मधुर स्वभाव। कहते हैं कि फिल्म पत्रकारों के बीच ये किस्सा भी मशहूर था कि राजकुमार कोहली खुद बैग लेकर कलाकारों के घर जाते थे और अपने हाथ से उन्हें तय फीस दिया करते थे। इससे उन्हें एकदम, जैसे बोलते ना, खरा कारोबारी का किताब मिला हुआ था।

14 सितंबर 1930 को इनका जन्म हुआ था। राजकुमार कोहली साहब, पिता भी इनके फिल्म निर्माता रहे, बचपन से इन्हें भी फिल्मों का शौक रहा। पंजाबी फिल्म अभिनेत्री निशी से इनकी शादी हुई, जिनसे राजकुमार कोहली की मुलाकात 1963 की फिल्म पिंड दी कुड़ी के सेट पर हुई थी। जाने माने निर्माता निर्देशक राजकुमार कोहली, जिन्होंने हिंदी सिनेमा को कई यादगार फिल्में दी, मल्टी स्टारर और हॉरर

इसी के साथ अंजलि आपसे लेगी इजाजत, लेकिन 2:30 पर आपकी और मेरी एक बार फिर से होगी मुलाकात यही 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर। सुनते रहें तब तक आकाशवाणी गोल्ड, और कुछ ही देर में आप सुनेंगे उर्दू खबरें, उसके बाद अंग्रेजी और हिंदी में समाचार।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं माजिद अली। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि हुकूमत दिफा के शोबे में खुद इन्हेसारी को यकीनी बनाने के इकदाम कर रही है। माहौलियात के वजीर भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत मुस्तकिल तरक्की के हिस्से के तौर पर सर्कुलर मईशत को फरोग देने का पाबंद है। आलमी सर्कुलर मईशत फोरम 2026 का गांधीनगर में आगाज हो गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इंजीनियरों को मुल्क की तामीर के कर्मयोगी के तौर पर सराहा है। अमरीकी अदालत ने गैर मुल्की तलबा और सहाफियों से मुतालिक ट्रंप इंतजामिया के नए वीजा जाब्तों पर रोक लगा दी है। और मर्दों के क्रिकेट में आज शाम दिल्ली में दूसरे T20 बैन अल-अक़वामी मैच में भारत का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज कहा है कि DRDO और सनत के दरमियान शराकत दारी से भारत दिफाई साजो सामान तैयार करने वाले मुल्क के तौर पर एक आलमी मरकज बन सकता है। कौमी राजधानी में DRDO सनत तालमेल मीटिंग विमर्श 2026 से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि पिछले कई वर्षों में DRDO ने मिसाइल से लेकर राडार तक, जंगजू तैयारों से लेकर आबदोजों तक, इलेक्ट्रॉनिक जंगी हथियारों से लेकर मस्नूई जहानत तक हर मैदान में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया है। जनाब सिंह ने कहा कि DRDO आज दिफा के शोबे में तहकीक व तरक्की के लिए आला तरीन तंजीम है। अलबत्ता उन्होंने खासतौर पर कहा कि हुकूमत या DRDO की कोशिशें दिफा के शोबे में तहकीक व तरक्की के लिए काफ़ी नहीं हैं। उन्होंने कहा कि यह एक मुश्तरक कोशिश है और शराकत दारी विमर्श 2026 का कलीदी पैगाम है।
1: अभी पिछले कुछ वर्षों में हमने डिफेंस सेक्टर में जो रिफॉर्म देखे हैं, मैं कह सकता हूं कि वह अनप्रेसिडेंटेड है। हमारे प्रधानमंत्री के विजन और लीडरशिप में हमने कई गेम चेंजिंग फैसले लिए हैं, चाहे वो पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट हो, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव हो, IDEX हो, अदिति हो, या फिर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट का 25% प्राइवेट सेक्टर के लिए एलोकेशन का फैसला हो,

0: जनाब सिंह ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में दिफा के शोबे में असलाहत की गई हैं जो बेमिसाल हैं और बहुत से अक्सर तब्दीली लाने वाले फैसले भी किए गए हैं। जनाब सिंह ने कहा कि खुद इनसारी का ये मतलब नहीं है कि मुल्क में महज कुछ कलपुर्जे मिजाइल हथियार या प्लेटफॉर्म तैयार कर लिए जाएं। माहौलियात जंगलात और आबो हवा के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने सर्कुलर मईशत के उसूलों को भारत की तरक्की से मुतालिक फ्रेमवर्क में तब्दीली करने के अज़्म को दोहराया है। वजीर मौसूफ ने जोर देकर कहा कि भारत ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में अशिया को दोबारा इस्तेमाल करने, इनकी मरम्मत करने और तहफुजाती इकदार के गहरे कदीम सकाफती तौर तरीकों को जदीद शक्ल दी है। वह आज गांधीनगर में महात्मा मंदिर में आलमी सर्कुलर मईशत फोरम WCEF 2026 के 10वें एडिशन के इफ्तिताही जलसे से खिताब कर रहे थे। गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल ने फोरम का इफ्तिताह किया जिसका इनेकाद भारत में पहली बार किया जा रहा है। 65 से ज्यादा मुल्कों के 2000 से ज्यादा मुतालिका फरीकैन इस फोरम में शिरकत कर रहे हैं। फोरम का मौजू है सर्कुलर मईशत अवाम और खुशहाली के लिए यकसर तब्दीली। इस आलमी तकरीब का मुश्तरका इनेकाद माहौलियात जंगलात और आबो हवा में तब्दीली की वजारत, आलूदगी पर काबू पाने वाले मरकजी बोर्ड, फिनलैंड का इख्तराई फंड सित्रा और गुजरात सरकार कर रहे हैं। आज इंजीनियरों का कौमी दिन मनाया जा रहा है। यह दिन हर साल 15 सितंबर को मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के यौम पैदाइश के मौके पर मनाया जाता है। उनका शुमार भारत के अजीम इंजीनियरों में होता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर एम विश्वेश्वरैया को खिराज अकीदत पेश किया। जनाब मोदी ने एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें उन्होंने ख्यालात और उमंगों को ठोस उसूलियाबियों में बदलने में इंजीनियरों के रोल को उजागर किया। उन्होंने इंजीनियरों को मुल्क की तरक्की के समत काम करने वाला कर्मयोगी करार दिया।
1: महान इंजीनियर्स की हमारी विरासत में एक ऐसा रत्न भी हमें मिला जिसके कार्य आज भी लोगों को अचंभित कर रहे हैं और वे थे भारत रत्न डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया। उन्हीं की याद में 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। उनके पद चिन्हों पर चलते हुए हमारे देश के इंजीनियर पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान बना चुके। मैं इस अवसर पर सभी इंजीनियरों को उनकी निर्माण शक्ति को आदरपूर्वक नमन करता हूं।
0: पेश है हमारे नामानिगार की एक रिपोर्ट।
2: इंजीनियर्स भारत की यकसर तब्दीली, मुल्क के अहम बुनियादी ढांचे की तश्कील और मालूमात पर मबनी इख्तरा के पीछे एक बड़ी ताकत हैं। बांधों, सड़कों और इमारतों की तामीर से लेकर डिजिटल तब्दीली लाने तक वो एक जदीद मुल्क की तामीर में अहम रोल अदा करते हैं। एम विश्वेश्वरैया इंजीनियरिंग में अपने कायदाना ताउन के लिए जाने जाते हैं जिन्होंने इख्तराई डिजाइन, दुरंदेश मनसूबा बंदी और काबिल अमल तरीक़ेकार फराहम करके मुल्क के बुनियादी ढांचे को यकसर तब्दील किया है। उन्होंने 1932 में कृष्ण राजा सागर डैम तामीर किया जो मैसूर के चीफ इंजीनियर्स के तौर पर एशिया का सबसे बड़ा पानी का जखीरा है। उन्होंने 1908 के बाद उस्मान सागर और हिमायत सागर जैसे पानी के जखीरे भी डिजाइन किए। रिशु जायसवाल की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं महताब आलम।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज रात पर मबनी समाजी त्यौहार नौखाई के मौके पर मुल्क और खासतौर पर ओडिशा के अवाम को मुबारकबाद पेश की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर जमहूरिया ने कहा कि नौखाई महज एक रिवायती त्यौहार नहीं है बल्कि ये समाजी तकरीबात और दोस्तों अहबाब के साथ जमा होकर समाजी और कुनबजाती मेल जोल की एक निशानी भी है। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने आज कहा है कि ऐसे वक्त में जबकि पूरी दुनिया तनाज़ात से दो चार है, नई दिल्ली में ब्रिक्स सरबराह मीटिंग का कामयाब इनेकाद यकीनी तौर पर एक काबिल सताइश बात है। आलमी मामलात की भारतीय कौंसिल ICWA की सिल्वर जुबली के मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने नई दिल्ली एलामिया को मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर किए जाने को एक बड़ी कामयाबी बताया। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि ICWA 2047 तक विकसित भारत का हदफ हासिल करने में एक अहम रोल अदा करेगा। भारत का सरकारी ब्रॉडकास्टर दूरदर्शन आज अपना 67वां यौम तासीस मना रहा है। इस सरकारी ब्रॉडकास्टर ने 1959 में तजर्बाती तौर पर ऑल इंडिया रेडियो के तहत टीवी नशरिया शुरू किया था। दहाइयों के अरसे में ये ब्रॉडकास्टर इत्तलात पहुंचाने, सकाफत को महफूज रखने और कौमी यकजहती का एक अहम प्लेटफॉर्म बन गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: 15 सितंबर 1959 को क्याम के बाद दूरदर्शन ने भारत के ब्रॉडकास्टिंग दौर की शुरुआत की। उस वक्त के सदर जमहूरिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पहले नशरिये का इफ्तिताह किया। 1975 तक यह ऑल इंडिया रेडियो का हिस्सा रहा। यकम अप्रैल 1976 के दिन एक अहम लम्हा उस वक्त आया जब दूरदर्शन को अमली अख्तियार देकर ऑल इंडिया रेडियो से इलाहदा कर दिया गया। दिल्ली में एशियाई खेलों के इनेकाद के साथ 1982 में रंगीन टेलीविजन आने के बाद दूरदर्शन देखने वालों की तादाद में मजीद इजाफा हुआ। दिल्ली से शिवांग मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं महताब आलम।
0: उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली ने आज जमुना नदी को साफ सुथरा करने और ताजा करने के किशाव कसीर मकसदी बांध प्रोजेक्ट से मुतालिक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। इस मुआहदे पर नई दिल्ली में मरकजी वजीर दाखला अमित शाह की मौजूदगी में दस्तखत किए गए। इस मौके पर जल शक्ति के वजीर CR पाटिल, मरकजी दाखले सेक्रेटरी, पानी के वसाइल के मरकजी सेक्रेटरी और मुतालिक रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज भी मौजूद थे। अमरीका के एक वफाकी जज ने ट्रंप इंतजामिया के उस नए कानून पर आर्जी पाबंदी आयद कर दी है जिसमें गैर मुल्की तलबा और सहाफियों के क्याम की मुद्दत पर सख्त पाबंदी लगाने की बात कही गई थी। इस फैसले से बैन अल-अक़वामी तलबा को राहत मिलने की तवक्को है। मैसाचुसेट्स के डिस्ट्रिक्ट जज ने कहा कि इस पॉलिसी के नफाज से अमरीका की मईशत और आला तालीमी सिस्टम को बड़ा नुकसान पहुंचने का इम्कान है। क्रिकेट में दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दूसरे T20 बैन अल-अक़वामी मैच में भारत का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। यह मैच आज शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। भारत 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे है। और आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि हुकूमत दिफा के शोबे में खुद इनसारी को यकीनी बनाने के इकदाम कर रही है। माहौलियात के वजीर भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत मुस्तकिल तरक्की के हिस्से के तौर पर सर्कुलर मईशत को फरोग देने का पाबंद है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इंजीनियरों को मुल्क की तामीर के कर्मयोगी के तौर पर सराहा है। अमरीकी अदालत ने गैर मुल्की तलबा और सहाफियों से मुतालिक ट्रंप इंतजामिया के नए वीजा जाब्तों पर रोक लगा दी है। और मर्दों के क्रिकेट में आज शाम दिल्ली में दूसरे T20 बैन अल-अक़वामी मैच में भारत का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: Exchange visitors, while journalists would have been permitted to stay for a maximum of 240 days. However, journalists from China would have been subject to a 90-day limit. The Intermeteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall over Haryana, Punjab, Tamil Nadu, Delhi, Kutch, South Interior Karnataka, Puducherry, Kerala, Sub-Himalayan, West Bengal, Sikkim, Assam, Arunachal Pradesh and Meghalaya today. The weather agency has predicted thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over the Andaman and Nicobar Islands, Bihar, Jammu and Kashmir and Ladakh, Jharkhand, Odisha and Rajasthan for the next 2 to 3 days. Similar conditions are likely to prevail over Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Gujarat, Lakshadweep, Madhya Pradesh, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Telangana, Uttar Pradesh and Uttarakhand till Thursday. In men's cricket, India will take on Afghanistan in the second T20 International at the Arun Jaitley Stadium in Delhi at 7:30 this evening. India lead the three-match series 1-0 after a convincing 7-wicket win in the opening match on Sunday. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.5% lower in the afternoon session today. The Sensex dropped 337 points to 74,445, while the Nifty was down 130 points to 23,268 when reports last came in. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Defence Minister Rajnath Singh says government taking steps to ensure self-reliance in defence sector. Chief Ministers of Uttar Pradesh, Uttarakhand, Himachal Pradesh, Haryana, Rajasthan and Delhi signed Kishau Multipurpose Dam Project Agreement for rejuvenation of Yamuna River. India committed to promoting circular economy as part of sustainable development, says Environment Minister Bhupendra Yadav. World Circular Economy Forum gets underway in Gandhinagar. Prime Minister Narendra Modi hails engineers as Karma Yogis of nation building. U.S. court blocks Trump administration's new visa rules for foreign students and journalists. IMD forecasts heavy rainfall over Punjab, Delhi, Kutch, Tamil Nadu, Assam and Meghalaya today. And in men's cricket, India to take on Afghanistan in second T20 International in Delhi this evening. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा सरकार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने यमुना नदी के पुनरुद्धार के लिए किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा भारत सतत विकास के अंतर्गत चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच की बैठक गांधीनगर में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंजीनियरों को राष्ट्र निर्माण का कर्मयोगी बताया। अमरीकी अदालत ने विदेशी छात्रों और पत्रकारों के लिए ट्रंप प्रशासन के नए वीजा नियमों पर रोक लगा दी है। मौसम विभाग ने आज पंजाब, दिल्ली, कच्छ, तमिलनाडु, असम और मेघालय में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज शाम दिल्ली में अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। श्री सिंह ने नई दिल्ली में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन उद्योग सहभागिता सम्मेलन विमर्श 2026 को संबोधित करते हुए ये बात कही।
2: अभी पिछले कुछ वर्षों में हमने डिफेंस सेक्टर में जो रिफॉर्म्स देखे हैं, मैं कह सकता हूं कि वह अनप्रेसिडेंटेड है। हमारे प्रधानमंत्री के विजन और लीडरशिप में हमने कई गेम चेंजिंग फैसले लिए हैं, चाहे वह पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट हो, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव हो, आईडेक्स हो, अदिति हो, या फिर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट का 25% प्राइवेट सेक्टर के लिए एलोकेशन का फैसला हो।
1: श्री सिंह ने डीआरडीओ तथा उद्योग के बीच साझेदारी भारत को रक्षा विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
2: TDF के माध्यम से स्टार्टअप्स को ग्रांट्स दिए जा रहे हैं और अनेक टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन स्टेज तक पहुंच चुकी हैं। आईडेक्स ने भी डिफेंस इनोवेशन के लिए एक नया इकोसिस्टम भी तैयार किया है, जहां स्टार्टअप्स हमारी वास्तविक ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स के आधार पर सॉल्यूशंस विकसित कर रहे हैं। अब DRDO और इंडस्ट्री की पार्टनरशिप केवल प्रोडक्शन तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए, रिसर्च, डिजाइन, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन और मैन्युफैक्चरिंग की पूरी वैल्यू चेन में साझेदारी हमें बढ़ानी हो।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि संघर्षों और विरोधाभासों से जूझ रही दुनिया में नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता उल्लेखनीय है। भारतीय विश्व मामलों की परिषद ICWA के रजत जयंती समारोह में उन्होंने सर्वसम्मति से अपनाई गई नई दिल्ली घोषणा को बड़ी उपलब्धि बताया। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत वैश्विक चुनौतियों पर अपने दृष्टिकोण को अधिक आत्मविश्वास के साथ व्यक्त कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश के हित तेजी से दुनिया भर से जुड़ रहे हैं।
3: इंडिया टुडे, भारत का संबंध आज कहीं अधिक व्यापक देशों और क्षेत्रों से है। हमारी जिम्मेदारियां और दुनिया की भारत से अपेक्षाएं दोनों बढ़ी हैं। भारत वैश्विक चुनौतियों पर अपने दृष्टिकोण को अधिक आत्मविश्वास के साथ व्यक्त कर रहा है। भारत की वैश्विक भूमिका बढ़ने के साथ अंतर्राष्ट्रीय मामलों में हमारी बौद्धिक भागीदारी को भी उसी गति से आगे बढ़ना होगा।
4: आवर इंटेलेक्चुअल एंगेजमेंट विद इंटरनेशनल अफेयर्स मस्ट कीप पेस।
1: उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने आज यमुना नदी के पुनरुद्धार के लिए किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, केंद्रीय गृह सचिव, केंद्रीय जल संसाधन सचिव और संबंधित राज्यों के मुख्य सचिव भी उपस्थित थे। इससे पहले इसी वर्ष जून में गृहमंत्री अमित शाह ने इस संबंध में इन प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी। बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि केशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना की 90% लागत केंद्र सरकार द्वारा जबकि शेष 10% लागत 6 भागीदार राज्यों द्वारा वहन की जाएगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in पर भी उपलब्ध है।
5: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सतत विकास ढांचे में चक्रीय अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों को समाहित करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया है। गुजरात में गांधीनगर के महात्मा मंदिर में आयोजित विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच WCEF 2026 के 10वें संस्करण के उद्घाटन में श्री यादव ने कहा कि विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व, EPR विनियमों और मिशन लाइफ जैसी पहलें चक्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण कदम है।
6: अंडर द EPR मैकेनिज्म,
7: EPR व्यवस्था के अंतर्गत EPR प्रमाण पत्रों का हस्तांतरण पुनर्चक्रणकर्ताओं को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करता है, जिससे क्षमता विस्तार, तकनीकी उन्नति और पुनर्चक्रण गतिविधियों में वृद्धि को बढ़ावा मिलता है। ये सभी मिलकर संपूर्ण पुनर्चक्रण मूल्य श्रृंखला में रोजगार सृजन और आजीविका में योगदान करते हैं। विभिन्न EPR ढांचों के अंतर्गत 83,000 से अधिक उत्पादक और 4,802 पुनर्चक्रणकर्ता पंजीकृत हैं।
1: गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसका संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। ये सम्मेलन भारत में पहली बार आयोजित हो रहा है। 65 से अधिक देशों के 2000 से अधिक हितधारक इसमें भाग ले रहे हैं। इसका विषय है चक्रीय अर्थव्यवस्था, जन और समृद्धि के लिए परिवर्तन। एक रिपोर्ट।
8: गांधीनगर में आयोजित विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व यानी कि EPR विनिमयों और मिशन लाइफ जैसे पहलों को भारत की चक्रीय अर्थव्यवस्था यात्रा के लिए महत्वपूर्ण बताया। ब्रिक्स नई दिल्ली घोषणा पत्र, भारत यूरोपीय संघ सहकार में चक्रियता के बढ़ते महत्व का उल्लेख करते हुए केंद्रीय मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि चक्रियता की शुरुआत अपने घर से होनी चाहिए। समारोह को संबोधित करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि विकास, पारिस्थितिकी, समृद्धि और स्थिरता को एक साथ आगे बढ़ना होगा। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, फिनिश इनोवेशन फंड सिट्रा और गुजरात सरकार के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस दो दिवसीय मंच में AI के अनुप्रयोग, हरित ऊर्जा, टिकाऊ वित्त सुशासन और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र जैसे विषयों पर 4 पूर्ण सत्र और 16 विषयगत सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार से कहा कि नए सदस्यों की नियुक्ति होने तक अर्ध न्यायिक निकायों के सेवानिवृत्त होने वाले पीठासीन अधिकारियों और सदस्यों का कार्यकाल करीब 1 महीने तक बढ़ाने पर विचार किया जाना चाहिए, जिससे कामकाज प्रभावित न हो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रही दिशा सालियान की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। दिशा सालियान की 8 जून 2020 को एक इमारत की 12वीं मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई थी। ये प्राथमिकी बम्बई उच्च न्यायालय के आदेश के बाद दर्ज की गई है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा उपचुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने रेजीनगर सीट से शाखाराव सरकार को उम्मीदवार बनाया है, जबकि नंदीग्राम विधानसभा सीट से हसीरानी रथ पार्टी की उम्मीदवार होंगी। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के रात्रि भोज में कांग्रेस शासित 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की अनुपस्थिति की आलोचना की। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा नेता और सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि राजनीतिक और वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब भारत और राष्ट्रहित की बात आती है तो किसी भी प्रकार के मतभेद की कोई भी जगह नहीं होनी चाहिए। आज राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस हर साल 15 सितंबर को भारत के महानतम इंजीनियरों में से एक मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। एक रिपोर्ट।
9: इंजीनियर्स भारत के विकास की सबसे बड़ी ताकतों में से एक हैं। विदेश के जरूरी बुनियादी ढांचे को तैयार करने के साथ साथ नई तकनीकों और ज्ञान के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। एम विश्वेश्वरैया इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने नई तकनीकों, दूरदर्शी योजना और व्यवहारिक समाधानों के जरिए देश के बुनियादी ढांचे के विकास में बड़ा योगदान दिया। आज जब भारत तेजी से तकनीकी विकास और बदलाव के एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है, तब इंजीनियर्स की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। ऋषु के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंजीनियरों को राष्ट्र निर्माण का कर्मयोगी बताया। प्रधानमंत्री ने डॉ एम विश्वेश्वरैया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि एम विश्वेश्वरैया एक इंजीनियरिंग प्रतिभा थे, जिनकी राष्ट्र निर्माण की दूरदृष्टि नागरिकों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी।
10: महान इंजीनियर्स की हमारी विरासत में एक ऐसा रत्न भी हमें मिला, जिसके कार्य आज भी लोगों को अचंभित कर रहे हैं, और वे थे भारत रत्न डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया। उन्हीं की याद में 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। उनके पद चिन्हों पर चलते हुए हमारे देश के इंजीनियर पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। मैं इस अवसर पर सभी इंजीनियरों को उनकी निर्माण शक्ति को आदरपूर्वक नमन करता हूं।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृहमंत्री अमित शाह ने भी एम विश्वेश्वरैया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRNews हिंदी और पब्लिक पर @AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: अमेरिका की एक संघीय अदालत ने ट्रंप प्रशासन द्वारा विदेशी छात्रों और पत्रकारों के रहने की अवधि पर लगाई गई सख्त सीमाओं के नियम पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि इस नीति को लागू करने से अमेरिका की अर्थव्यवस्था और उच्च शिक्षा प्रणाली को भारी नुकसान हो सकता है। ट्रंप प्रशासन ने इस साल जुलाई में इस नियम को अंतिम रूप दिया था। भारत का राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन आज अपना 67वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस लोक सेवा प्रसारक की शुरुआत 1959 में ऑल इंडिया रेडियो के अंतर्गत एक प्रायोगिक टेलीविजन सेवा के तौर पर हुई थी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दूरदर्शन अपनी कई बेहतरीन सेवाओं जैसे सैटेलाइट और डायरेक्ट टू होम सर्विस के जरिए 100% आबादी तक पहुंचने वाला माध्यम है।
11: 15 सितंबर 1959 को दूरदर्शन की स्थापना के साथ भारत में टेलीविजन प्रसारण की शुरुआत हुई। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसी दिन दूरदर्शन के पहले प्रसारण का उद्घाटन किया था। वर्ष 1982 में दिल्ली एशिया खेलों के दौरान रंगीन टेलीविजन की शुरुआत ने दूरदर्शन के प्रसारण और दर्शकों की संख्या को नई ऊंचाई दी। वर्तमान में दूरदर्शन के 35 सैटेलाइट चैनल और 66 स्टूडियो केंद्र हैं। ये 24 से अधिक भाषाओं और विभिन्न बोलियों में कार्यक्रम प्रसारित करता है। दूरदर्शन ने रामायण, महाभारत, हम लोग, बुनियाद, चाणक्य, मालगुडी डेज, शक्तिमान, चित्रहार, फौजी सर्कस और उड़ान जैसे कई लोकप्रिय और यादगार धारावाहिक भी प्रसारित किए। आरजू के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: मौसम विभाग ने आज हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, दिल्ली, कच्छ, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पुदुच्चेरी, केरलम, पश्चिम बंगाल के तराई

0: क्षेत्र सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार के बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत और बचाव कार्य जारी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज प्रभावित परिवारों को वित्तीय सहायता जारी की। एक रिपोर्ट।
1: राज्य के 15 जिलों के 88 प्रखंडों में करीब 49 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्रीय दल के बिहार दौरे को लेकर उनकी गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत हुई है।
2: आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक टीम बनाने का निर्देश दिया है। गृह मंत्री जी का फोन आया था कि हम लोग एक केंद्रीय टीम केंद्रीय मंत्री के स्तर पर बिहार शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में आएगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ, शुभकामना देता हूँ।
1: आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
0: भारत और अफगानिस्तान के बीच 2020 क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। पहले मैच में रविवार को भारत ने 7 विकेट से जीत हासिल की थी। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। तीसरा मैच बृहस्पतिवार को दिल्ली में ही होगा। घरेलू शेयर बाजार दोपहर के सत्र में 0.5% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 337 अंक गिरकर 74,445 पर आ गया, जबकि निफ्टी 130 अंक गिरकर 23,268 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने यमुना नदी के पुनरुद्धार के लिए किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, भारत सतत विकास के अंतर्गत चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच की बैठक गांधीनगर में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंजीनियरों को राष्ट्र निर्माण का कर्म योगी बताया। अमरीकी अदालत ने विदेशी छात्रों और पत्रकारों के लिए ट्रंप प्रशासन के नए वीजा नियमों पर रोक लगा दी है। मौसम विभाग ने आज पंजाब, दिल्ली, कच्छ, तमिलनाडु, असम और मेघालय में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज शाम दिल्ली में अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आकाशवाणी गोल्ड 100.1 और 2:30 38 सेकेंड फिल्में, गीत संगीत और उनसे जुड़ी कुछ मनोरंजक बातें, यही कुछ साझा होता है आपके साथ संगीत.com के इस सफर पर। ज्वेल थी फिल्म आपने जरूर देखी होगी, नहीं देखी तो देखिएगा जरूर, जबरदस्त सस्पेंस मूवी है, लास्ट तक फिल्म आपको बांध कर रखती है और इस फिल्म से जुड़ी कुछ रोचक बातें भी हैं। सबसे पहले उसकी स्क्रिप्ट पर अगर कुछ गौर करें तो आर के नारायण कहानीकार लेखक अक्सर देवानंद से मिलने जाया करते थे और उन्हें कुछ अपनी स्टोरीज सुनाया करते थे ताकि उन पर फिल्म बन सके। इसी तरह उन्होंने एक स्टोरी सुनाई जिसमें लास्ट तक जो नेगेटिव करेक्टर है ना उसका पता ही नहीं चलता। गोल्डी यानी कि विजय आनंद देव साहब के छोटे भाई वो स्टोरी को अपनी तरह से पेश किया करते थे और कहानी लिखना और उसके लिए फिल्म, उस पर फिल्म बनाना या फिल्म के लिए उसको स्क्रिप्ट राइटिंग करना एकदम अलग काम होता था। फिल्म के लिए पटकथा लिखना एकदम डिफरेंट काम हो जाता है। ज्वेल थीफ की पटकथा लिखने से पहले विजय आनंद काफी पशुपेश में रहे, दुविधा में रहे, क्योंकि फिल्म गाइड के बाद जो कि इतनी बड़ी सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी उनकी, और सभी कुछ उनसे वैसे ही प्रोजेक्ट की उम्मीद कर रहे थे। स्क्रीन प्ले राइटर के रूप में

जयानंद साहब ने काफी मेहनत किया करते थे और पूरी फिल्म जो होती थी ना, फिल्मी स्क्रिप्ट, कोई कहानी अगर राइटर लेकर आता था तो उसे उस पर जैसे बोलते पटकथा, वो अपने तरीके से लिखते थे और अपनी ही तरह से उसे तैयार किया करते थे और उस पर काफी टाइम लगाया करते थे, काफी यानी कि मेहनत किया करते थे। खैर, ज्वेल थीफ की स्टोरी तैयार हो गई और इस पर हम एक और बात करें कि भाई ये बहुत, जैसे बोलते हैं ना, ज्वेल थीफ बहुत मेहनत के साथ इसकी पटकथा लिखी गई थी। देव साहब के भाई गोल्डी साहब, विजयानंद साहब ने इसकी पटकथा तैयार की थी। एक गीत सुन लेते हैं और फिर इससे जुड़ा एक और किस्सा आप तक पहुंचाते हैं। संगीत.com, अंजलि है आपके साथ।

फिल्म ज्वेल थीफ, और इसमें मुख्य किरदारों में हमें नजर आए एवरग्रीन देव साहब, देवानंद जी, और वैजयंती माला और अशोक कुमार इस फिल्म में हमें दिखे, और भी बहुत सारे कलाकार थे लेकिन मुख्य भूमिकाओं में ये तीन दिग्गज कलाकार हमें दिखाई दिए। फिल्म की हीरोइन वैजयंती माला थी, लेकिन सबसे पहले जिस हीरोइन को दिमाग में रखकर इसकी स्क्रिप्ट तैयार हुई थी, या फिर स्क्रिप्ट लिखते वक्त जिस हीरोइन का दिमाग में जहन में ख्याल आया था, वो रही सहरा बानो। सायरा बानो को एज ए हीरोइन फिल्म में लेने का प्लान था, लेकिन सायरा बानो और दिलीप कुमार का तभी निकाह हुआ था फिल्म जब बन रही थी या बनाने की प्लानिंग हो रही थी, तो उस वक्त वो फिल्म करने में असमर्थ रही। और फिर नाम आया वैजयंती माला साहब का, मैं वैजयंती माला जी का, और उन्हें लेने का विचार किया गया। और गोल्डी जी यानी कि विजय आनंद फिल्म की स्क्रिप्ट सुनाने के लिए वैजयंती माला जी से मिलने के लिए गए, और वहां पर भी एक इंटरेस्टिंग किस्सा ये हुआ कि पूरी की कहानी सुनने के बाद वैजयंती माला बोली कि भाई आखिर इसमें फिल्म में विलेन है कौन। साथ ही बैठे डॉक्टर बाली ने कहा कि भाई लो, डॉक्टर बाली जो कि बाद में उनके पति बने, उस वक्त तक उनके पति नहीं थे, और उन्होंने कहा कि लो पूरी रामायण सुन ली है आपने, और अब पूछ रही हो कि कौन क्या है फिल्म में, यानी कि इतनी सस्पेंस थ्रिलर मूवी है ज्वेल थीफ। देखी है तो दोबारा देखिएगा, और नहीं देखी तो 100% आप इस फिल्म को देखिएगा। मधु जैसे बोलते हैं वैजयंती माला जी के गीत तो आपने सुन ही लिया, लेकिन इन्हीं पर फिल्म आया, मधुमती फिल्म का एक गीत आप तक पहुंच रहा है। बहुत ही गजब की मूवी है मधुमती भी, 1958 की ये मूवी, और बहुत ही शानदार ये गीत सुनिए। मधुमती फिल्म का ये गीत वैजयंती माला और सखियों पर फिल्माया गया है।

आकाशवाणी गोल्ड 100.1 संगीत.com का ये सफर तय हो रहा है यहाँ पर। और अब बात कर रहे हैं वर्सेटाइल एक्ट्रेस वहीदा रहमान जी की। जब जब पर्दे पर आती हैं, अपनी अदाकारी, डांस और ब्यूटी से लोगों का दिल जीत लेती हैं। वहीदा रहमान भरतनाट्यम में पारंगत हैं, पर जानते हैं उन्हें ये डांस सीखने के लिए पहले अपनी कुंडली तैयार करवानी पड़ी थी। दरअसल हुआ यूं कि जो वहीदा रहमान जी ने खुद एक शो के दौरान बताया था कि गुरुजी ने डांस सिखाने के लिए मना कर दिया क्योंकि मैं मुस्लिम हूं, पर मुझ पर भी धुन सवार थी कि मैं कि मुझे भाई डांस तो सीखना ही है। और मैं बार बार अपने एक दोस्त को गुरुजी को मनाने के लिए भेजती रही। तब एक दिन गुरुजी ने मेरी कुंडली मंगवाई। चूंकि हम लोगों में कुंडली तैयार नहीं करवाते, इसलिए फिर गुरुजी ने मेरी डेट ऑफ बर्थ अनुसार मेरी कुंडली बना डाली। और तब उन्होंने आश्चर्य से ये सभी कुछ बताया। क्या बताया? यही सब कुछ जो बाद में हिस्ट्री बन गया। वहीदा रहमान एक बहुत ही जबरदस्त मंझी हुई टैलेंटेड अदाकार रही है। चलिए इन्हीं पर फिल्माया गया एक गीत शतरंज फिल्म से सुन लेते हैं। पहुंच रहा है आप तक, बहुत ही प्यारा सा गीत है लता जी की आवाज में।

1968 में वहीदा रहमान और राजकुमार की फिल्म नील कमल रिलीज हुई। पुनर्जन्म पर आधारित थी फिल्म की कहानी और इस फिल्म को लोगों ने काफी पसंद किया था। फिल्म के सारे गाने जो थे ना सुपर डुपर हिट हुए थे और फिल्म भी काफी अच्छी खासी सक्सेसफुल रही थी। खासकर ये गाना तुझको पुकारे मेरा प्यार मोहम्मद रफी साहब की आवाज में पुराने हिंदी फिल्मी गानों में सबसे यादगार गानों में गिना जाता है। ये गाना मोहम्मद रफी साहब की दर्द भरी आवाज, साहिर लुधियानवी के दिल में उतर जाने वाले शब्द और संगीतकार रवि की खूबसूरत धुन ने इस गाने को ऐसा बना दिया कि दशकों तक लोग इसे भूल नहीं पाए हैं। आज हमें फिर याद आ गया ये गीत फिल्म नीलकमल से, संगीतकार रवि और गीत के बोल साहिर लुधियानवी के।

1964 की फिल्म वो कौन थी। मुख्य कलाकार रहे इस फिल्म में मनोज कुमार और साधना। इसी फिल्म से जुड़ा है मनोज कुमार की फिल्मी जिंदगी का एक किस्सा। बताया जाता है कि मनोज कुमार ने एक दिन मुंबई ताज होटल के बाहर एक भिखारी महिला को देखा। उसकी शक्ल और व्यक्तित्व ने उन्हें ऐसा प्रभावित किया कि उन्होंने उस महिला को फिल्म के रहस्यमयी माहौल के लिए एकदम सटीक पाया। अपना ये विचार उन्होंने निर्देशक राज खोसला को बताया और इसके बाद फिल्म के एक छोटे से हिस्से के लिए उस महिला को लिया गया। वो कौन थी फिल्म एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है और बहुत बड़ी सफल फिल्म साबित हुई। इससे मनोज साहब की एक बात तो सामने आती है कि वो अभिनय के लिए जहां भी उन्हें किरदार के अनुसार सही चेहरा या व्यक्तित्व तो दिखाई देता था वो उसकी संभावना तलाशते थे। इसी फिल्म से सुन लेते हैं एक बहुत ही बेहतरीन बहुत ही मधुर सा गीत लता जी की आवाज में। और इस गीत के बोल लिखे हैं राजा मेहंदी अली खान ने, संगीतकार हैं मदन मोहन साहब।

इसी के साथ अंजलि आपसे ले रही है इजाजत, लेकिन आप कहीं मत जाइए, सुनते रहे हमेशा आकाशवाणी गोल्ड 100.1। आकाशवाणी गोल्ड पर एंटरटेनमेंट का यह सफर जारी रहेगा और आपके साथ रहेंगे अपराजिता।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। श्री सिंह ने नई दिल्ली में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन उद्योग सहभागिता सम्मेलन विमर्श 2026 को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री सिंह ने कहा कि डीआरडीओ तथा उद्योग के बीच साझेदारी भारत को रक्षा विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
1: टीडीएफ के माध्यम से स्टार्टअप्स को ग्रांट्स दिए जा रहे हैं और अनेक टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन स्टेज तक पहुंच चुकी हैं। आईडेक्स ने भी डिफेंस इनोवेशन के लिए एक नया इकोसिस्टम भी तैयार किया है, जहां स्टार्टअप्स हमारी वास्तविक ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स के आधार पर सॉल्यूशंस विकसित कर रहे हैं। अब डीआरडीओ और इंडस्ट्री की पार्टनरशिप केवल प्रोडक्शन तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। रिसर्च, डिजाइन, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन और मैन्युफैक्चरिंग की पूरी वैल्यू चेन में साझेदारी हमें बढ़ानी हो।
0: रक्षा मंत्री ने कहा कि डीआरडीओ ने मिसाइल से लेकर रडार, लड़ाकू विमान से लेकर पनडुब्बियों और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली से लेकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक हर क्षेत्र में अपनी क्षमता साबित की है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने आज यमुना नदी के पुनरुद्धार के लिए किशाऊ बहुद्देशीय बांध परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल, केंद्रीय गृह सचिव, केंद्रीय जल संसाधन सचिव और संबंधित राज्यों के मुख्य सचिव भी उपस्थित थे। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सतत विकास ढांचे में चक्रीय अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों को समाहित करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया है। गुजरात में गांधीनगर के महात्मा मंदिर में आयोजित विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच WCF 2026 के 10वें संस्करण के उद्घाटन में श्री यादव ने कहा कि विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व, EPR विनियमों और मिशन लाइफ जैसी पहलें चक्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण कदम है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसका संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। ये सम्मेलन भारत में पहली बार आयोजित हो रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि शिक्षा जीवन में सुधार लाने के सबसे बेहतर माध्यमों में से एक है। चेन्नई में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस समय पूरी दुनिया में अनिश्चितता का माहौल है। उन्होंने कहा कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों में युद्ध जैसी स्थिति के कारण आर्थिक परिस्थितियां भी अस्थिर दिखाई दे रही हैं। हालांकि श्रीमती सीतारामन ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत और स्थिर गति से आगे बढ़ रही है तथा देश की आर्थिक वृद्धि दर 7.8% है। वित्त मंत्री ने कहा कि तमिलनाडु में कई अंतर्राष्ट्रीय निवेश हुए हैं जो देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं।

आज राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस हर साल 15 सितंबर को भारत के महानतम इंजीनियरों में से एक मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंजीनियरों को राष्ट्र निर्माण का कर्मयोगी बताया। प्रधानमंत्री ने डॉ एम विश्वेश्वरैया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि एम विश्वेश्वरैया एक इंजीनियरिंग प्रतिभा थे जिनकी राष्ट्र निर्माण की दूरदृष्टि नागरिकों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृहमंत्री अमित शाह ने भी एम विश्वेश्वरैया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने ट्रंप प्रशासन द्वारा विदेशी छात्रों और पत्रकारों के रहने की अवधि पर लगाई गई सख्त सीमाओं के नियम पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि इस नीति को लागू करने से अमेरिका की अर्थव्यवस्था और उच्च शिक्षा प्रणाली को अधिक नुकसान हो सकता है। ट्रंप प्रशासन ने इस साल जुलाई में इस नियम को अंतिम रूप दिया था। भारत का राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन आज अपना 67वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस लोक सेवा प्रसारक की शुरुआत 1959 में ऑल इंडिया रेडियो के अंतर्गत एक प्रायोगिक टेलीविजन सेवा के तौर पर हुई थी। भारत और अफगानिस्तान के बीच 2020 क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। पहले मैच में रविवार को भारत ने 7 विकेट से जीत हासिल की थी। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

कभी गम में हंसाते हैं, कभी खुशियों में रुलाते हैं। ये हिंदी फिल्मों के गाने ही तो हैं जो हर जज्बात को जिंदगी बनाते हैं। AIR FM गोल्ड 100.1 पर ऐसे ही गानों को लेकर आ गई हूँ स्टूडियो में मैं अपराजिता, आपके अपने मनभावन में, जहां आप ही की रिक्वेस्ट के ट्रैक्स हम पहुंचाएंगे आप तक। अब रिक्वेस्ट करने के लिए आपको भी थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, थोड़ा एफर्ट डालना होगा। बस एफर्ट इतना है कि आपको ईमेल करना है या अपना फोन उठाकर व्हाट्सएप। ईमेल करने का आईडी आप जानते हैं, लेकिन अगर नए हैं, नए लिसनर हैं, तो पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। और ईमेल आईडी जल्दी से नोट कर लीजिए, fmgoldaiadelhi@gmail.com। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868686 8753 9868686 8753। तो आप कीजिए रिक्वेस्ट, तब तक मैं सुनवा रही हूं आपको दिल तो पागल है का टाइटल ट्रैक।

बहुत सारे आपके मैसेजेस हमें मिल रहे हैं और पहला मैसेज किसका आया ये ढूंढने में भी मुझे अभी थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ और स्क्रॉल डाउन करके पहुंच रही हूँ आपके फर्स्ट मैसेज तक जो कि मेरे ऑनर होने से पहले से आने लगे हैं। तो लुबना अंसारी का मैसेज हमारे पास पहुंचा है। सबा, बुशरा, हीना, गुलिस्ता, नंदिनी, अंजलि, आप सब मथुरा से हमें आदाब लिखकर भेजते हैं। सतीश अनेजा का भी मैसेज आया है, नैनो में बदरा छाई ये गाना आप सुनना चाहते हैं। और बहुत ही कलरफुल मैसेज है चंडीगढ़ से भेजा है आपने बिमला अनेजा के साथ भी, और इमोजीज में दिल, फूल, रेडियो, गुलदस्ते सब कुछ आ रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।

फिल्म इज्जत से आप एक गाना सुनना चाहते हैं और तहसील नरसिंहगढ़ से, मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव दिव्या, सुमन कोमल परी, कृतिका रमेश चंद्र डांगी सब हमारे साथ हैं, प्रोग्राम को सुन रहे हैं। मस्कीन दादा का भी मैसेज हमें मिलता है, आपके साथ हैं तुलसी, वीना, आशीष, चैतन्य, मेगा मस्कीन और चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना। लूटमार फिल्म से गाना सुनने की रिक्वेस्ट आपने लिख भेजी है। धर्मेंद्र छीपा भी हैं भोपालगढ़ राजस्थान से हमारे साथ, कपिल छीपा, ईशान छीपा, पूजा परिहार आपके साथ हैं और जानी दुश्मन फिल्म से गाना आप सुनना चाहते हैं। तो साथ ही मैसेज आ जाता है हमारे पास गोविंद वैष्णव का, और ये मैसेज मुझे लग रहा है मैं पढ़ चुकी हूं और फिर से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने एक बार मैसेज कर दिया है तो प्लीज बार बार हमें मैसेज ना भेजें, क्योंकि आप ही के जो साथी हैं ना उनके मैसेज कहीं इस चक्कर में खो जाते हैं और फिर वो नाराज हो जाते हैं और फिर नाराजगी भरी ईमेल मुझे यहां पढ़नी पड़ती है। कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा गुप्ता और रिमझिम गुप्ता पिपरिया से हमारे साथ हैं। साबिर परवाना का भी मैसेज हमें मिलता है, जान की बाजी फिल्म से आप एक गाना सुनना चाहते हैं और मैसेज आया है हमारे पास इरफान कुरैशी का भी, प्यार भरा आदाब। इरफान कुरैशी, रिहान कुरैशी, फैजान, शहादत, सऊद आपके साथ हैं। गंज डुंडवारा से आप प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं। सतीश अनेजा हैं हमारे साथ और साथ में हैं मेहर अरोड़ा भी, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा आपके साथ है। छोटी सी बात फिल्म से गाना सुनना चाहते हैं। फिलहाल मैं गाना किसका प्ले कर रही हूं, सुहाग फिल्म से हमारे पास रिक्वेस्ट आई है हरजिंदर, एंजल, सोनू और पप्पी भाटिया की, और आप सुनना चाहते हैं जमशेदपुर से ये गाना। तो पहुंचा रही हूं आप तक ये बहुत ही खूबसूरत गाना। आर्यन वर्मा भी प्रोग्राम सुन रहे हैं और आर्यन के साथ हैं अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र वर्मा, भाई राजकुमार बोडाना, सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, ऋतु और मुकेश जगताप।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

स्वागत आप सभी का मन भावन में। मैं हूं आपके साथ अपराजिता। चैनल आपका अपना आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और जैसा कि आप जानते हैं, ये है एक रिक्वेस्ट बेस्ड शो और इसमें आप अपनी पसंद के गाने सुन सकते हैं अब से लेकर 4 बजे तक। वैसे तो ये शो 3:10 पर शो शुरू हो चुका है और आपकी पसंद के गाने हम आप तक पहुंचा भी रहे हैं। fmgoldaiardaily@gmail.com पर आप ईमेल कर सकते हैं और 9868868753 पर व्हाट्सएप मैसेज। तो अगला जो गाना होगा वो गोविंद वैष्णव, मुस्कान वैष्णव, दिव्या सुमन, कोमल परी, कृतिका, रमेश चंद्र डांगी आपकी पसंद का होगा। आपने मध्य प्रदेश से हमें अनाड़ी फिल्म से गाने की रिक्वेस्ट लिखकर भेजी है। बिल्कुल आप तक ये गाना हम सुनवाएंगे, पहुंचाएंगे। और उससे पहले जान लेते हैं कि और कौन आपके दोस्त हैं जो हमारे साथ आज मैसेज के जरिए जुड़े हुए हैं। महाराष्ट्र से रुपेश संगई, महेश संगई, प्रज्ञेश, प्रीतेश और पूरा संगई परिवार हमें सुन रहा है। और मैसेज आता है क्रांति फिल्म से एक गाना सुनने का, तो ये मैसेज हमें भेजा है मोहम्मद साबिर, मोहम्मद जाहिद, मोहम्मद साजिद अली, शाहिद अली। और इसके बाद बहुत सारे मैसेज आ गए हैं हमारे पास। अभी मैं वैसे बता दूं आपको कि व्हाट्सएप मैसेजेस हम शामिल कर रहे हैं। भावना मल्होत्रा, नरेश मल्होत्रा, नीटू लाडो कोयल मल्होत्रा, पापाजी चंद, नानक चंद मल्होत्रा, पीयूष कोयल, भाविका डुग्गू सिक्का हमारे साथ हैं। और साथ ही मैसेज आता है हमारे पास, ये जो मैसेज है ये ईमेल में मैं शामिल कर चुकी हूँ, एंजल भाटिया का। और मोहम्मद सईद अब्बासी, निकत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान अबान और आपके सभी फैमिली मेम्बर्स हमें सुन रहे हैं, पसंद कर रहे हैं प्रोग्राम। तो आप सबकी रिक्वेस्ट के गाने भी हम यहाँ प्ले कर रहे हैं। शमशूल, कमर राही, शाहीन, फातिमा, अनु खान, अदनान खान, फैजान खान, आबाद खान सब प्रोग्राम को सुन रहे हैं और खूबसूरत फ्लावर्स के इमोजी हम तक पहुंचा रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही मैसेज आता है मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब का, मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा और शबिस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लुबना, यश मंसूरी और नवासा नुमैर मंसूरी। आइए सुनते हैं मिलकर अनाड़ी फिल्म से ये गाना।

तो वही मैसेज आता है गौरी शंकर जी का नांगलोई से और कहते हैं अपराजिता बेटा राम राम, फिल्म जब याद किसी की आती है से एक गाना सुनवा दीजिए। अगला मैसेज हमारे पास आता है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव का वास्तव फिल्म से आप एक गाना सुनना चाहते हैं। और इसके बाद भी मैसेजेस हमें मिल रहे हैं, सुनील असवाल देवीखेत पौड़ी से आप हमें मैसेज लिखकर भेजते हैं और साथ ही मैसेज आता है संजय ढींगिया नमन और अपार ढींगिया का। खूब सारे आपने इमोजीज भेजे हैं हमें, जिसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलती हूँ बड़ा वाला। और संबल से छोटे अंसारी आलम अंसारी हमारे साथ हैं, प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं, एनी सॉन्ग ऐसा लिखकर भेजते हैं, यानी कि आप कोई भी गाना सुनना चाहते हैं। राकेश कुमार, मनीष कुमार, उमेश कुमार खयाला विष्णु गार्डन से प्रोग्राम सुन रहे हैं और नमस्ते जी लिखकर भेजते हैं। अगला जो मैसेज आया है आप सुनना चाहते हैं साजन फिल्म से एक गाना, समस्तीपुर बिहार से मीरा सिंह, ज्योति सिंह रोहतास बिहार से मैसेज करते हैं, सोनम सिंह अनामिका सिंह भी हैं आपके साथ। और इसी फिल्म से एक और मैसेज, गाना सुनने का मैसेज मिलता है हमें, जिसमें है वसीम अकरम, रुबीना वसीम, आरिज, नदीम अकरम, शमीम अकरम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा और मोहम्मद आसिफ खान, निगत परवीन भी हैं आपके साथ।

बहुत सारे मैसेजेस हम तक पहुंच रहे हैं और अगला जो मैसेज आया है हमारे पास व्हाट्सएप पर, वो हमें मिलता है मौसम फिल्म से गाना सुनने के लिए। और मैसेज भेजने वाले अंबेडकर कॉलोनी से हैं, सुरेंद्र कुमार, माधुरी सिंह, आराध्या सिंह, अनंत और कायरा। अगला मैसेज हमारे पास आता है हुकुम करमकर, सुनीता, हार्दिक, प्राची और तनु करमकर का, महबूब की मेहंदी फिल्म से आप एक गाना सुनना चाहते हैं। और इसके साथ ही अगला मैसेज, ये मैसेज मैं शामिल कर चुकी हूं, इसलिए अब मैं ईमेल की तरफ बढ़ती हूं। बहुत सारी ईमेल्स हैं आपकी जो हमारे पास आ गई हैं। संजोग फिल्म से आप एक गाना सुनना चाहते हैं, उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, कीसू दासु, अर्णव आनंद, सत्यम आनंद, मुन्ना भगत, गुड्डी भगत। पश्चिम बंगाल से आप प्रोग्राम सुन रहे हैं। और स्वर्ण सिंह का भी मैसेज मिलता है हमें लोहगढ़ ठाकुरावाला से, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल, अविराज, आप सब प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं। बब्बल साहब मैसेज करते हैं मोहाली से, आपके साथ हैं ओम प्रकाश मल्होत्रा। इशाक मोहम्मद का भी मैसेज मिलता है हमें, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर फातिमा, छत्तीसगढ़ रायपुर से मोहम्मद इमरान, परवीन, मोहम्मद हसनैन, रजा, गौसैया, फातिमा, आप सबको पसंद आ रहा है प्रोग्राम। उग्रसेन यादव है हमारे साथ और आपके साथ है शकुंतला यादव, गरिमा, दिल फिल्म से गाना सुनने की रिक्वेस्ट आपने हमें लिख भेजी है। इसके बाद मैसेज मिलता है हमें जयराम खोरवाल का, उत्तम नगर दिल्ली से, आपके साथ हैं सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल और राजकुमार, फिल्म से आप एक गाना सुनने की रिक्वेस्ट हमें लिख भेजते हैं। राजू मिगलानी भी हैं हमारे साथ, प्रेम बंधन फिल्म से आप एक गाना सुनना चाहते हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इश्क फिल्म से गाना सुनने की रिक्वेस्ट शीशपाल वर्धन, दिग्दर्शन गौर, निसार अली, दिनेश वर्मा, अफरोज शेख ने लिखकर भेजी है। तो ये गाना आप तक मैं पहुंचा रही हूं, लेकिन चाहती हूं, थोड़ा लालच आ रहा है कि प्रिल्यूड म्यूजिक पर कुछ और नाम शामिल कर दूं, नहीं तो आपकी नाराजगी फिर देखनी पड़ेगी, है ना। निशा और प्रज्ञा, प्रतिमा कठेरिया, बेद बाबू कठेरिया, समस्त कठेरिया परिवार हमारे साथ हैं।

की मानता नहीं फिल्म से आपने टाइटल ट्रैक की जो है रिक्वेस्ट हमें लिख भेजी है। ये गाना खूबसूरत जो बहुत से लोगों के दिल के करीब है, इसका टाइटल ट्रैक अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाज़ में मैं पहुंचा रही हूं आप तक आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 पर।

जॉन डिकोस्ट्रो, रोजी पर्ल विलिस डिकोस्ट्रो का मैसेज हमें मिलता है। तलाश फिल्म से आप एक गाना सुनना चाहते हैं। प्रकाश वर्मा का भी मैसेज मिला है। उत्तम कुमार भगत, नरेंद्र डोम, अब्दुल गफार, और मैसेज आता है लालगिरी का, किशन मंजनी, मोहम्मद कमर, संदीप मक्कड़, किशन मंजनी, हीरामणि वर्मा, सरफुद्दीन अंसारी, राशिद हुसैन अंसारी, संदीप मक्कड़, आप सब हमें मैसेज लिखकर भेजते हैं। और साथ ही मैसेज आता है स्वर्ण सिंह, अंकित कांगड़ा का भी, और गाने की रिक्वेस्ट जो है वो कौन सी है पहचानेंगे आप? अरे टाइम कम है, मैं बता देती हूँ। दामिनी फिल्म से ये गाना हम आप सब तक पहुँचा।

छोड़े जा रही हूँ आपको इस गाने के साथ, लेकिन इस बातें के साथ कि समाचारों के उस पार एक बार फिर से होगी आपसे मुलाकात, और वैसे मैं आपके साथ 6 बजे तक रहूंगी यहाँ, तो आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। श्री सिंह ने नई दिल्ली में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ उद्योग सहभागिता सम्मेलन विमर्श 2026 में ये बात कही। श्री सिंह ने कहा कि डीआरडीओ तथा उद्योग के बीच साझेदारी भारत को रक्षा विनिर्माण का वैश्विक केन्द्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
1: टीडीएफ के माध्यम से स्टार्टअप्स को ग्रांट्स दिए जा रहे हैं और अनेक टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन स्टेज तक पहुंच चुकी हैं। आईडेक्स ने भी डिफेंस इनोवेशन के लिए एक नया इकोसिस्टम भी तैयार किया है, जहां स्टार्टअप्स हमारी वास्तविक ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स के आधार पर सॉल्यूशंस विकसित कर रहे हैं। अब डीआरडीओ और इंडस्ट्री की पार्टनरशिप केवल प्रोडक्शन तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। रिसर्च, डिजाइन, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन और मैन्युफैक्चरिंग की पूरी वैल्यू चेन में साझेदारी हमें बढ़ानी होगी।
0: रक्षा मंत्री ने कहा कि डीआरडीओ ने मिसाइल से लेकर रडार, लड़ाकू विमान से लेकर पनडुब्बी और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली से लेकर एआई तक हर क्षेत्र में अपनी क्षमता साबित की है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने आज यमुना नदी के पुनरुद्वार के लिए किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, केंद्रीय गृह सचिव, केंद्रीय जल संसाधन सचिव और संबंधित राज्यों के मुख्य सचिव भी उपस्थित रहे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि शिक्षा जीवन में सुधार लाने के सबसे बेहतर माध्यमों में से एक है। चेन्नई में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इस समय पूरी दुनिया में अनिश्चितता का माहौल है। उन्होंने कहा कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों में युद्ध जैसी स्थिति के कारण आर्थिक परिस्थितियां अस्थिर दिखाई दे रही हैं। हालांकि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत और स्थिर गति से आगे बढ़ रही है तथा देश की आर्थिक वृद्धि दर 7.8% है। वित्त मंत्री ने कहा कि तमिलनाडु में कई अंतर्राष्ट्रीय निवेश हुए हैं जो देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सतत विकास ढांचे में चक्रीय अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों को समाहित करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया है। गुजरात के गांधीनगर में महात्मा मंदिर में आयोजित विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच के 10वें संस्करण के उद्घाटन में श्री यादव ने कहा कि विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व ईपीआर विनियमों और मिशन लाइफ जैसी पहले चक्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण कदम है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसका संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। ये सम्मेलन भारत में पहली बार आयोजित किया जा रहा है। सभी सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए 2 अक्टूबर से विशेष अभियान शुरू होगा। ये अभियान 31 अक्टूबर तक चलेगा। लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह कल नई दिल्ली में इस अभियान की प्रगति की निगरानी के लिए समर्पित ऑनलाइन वेब पोर्टल लॉन्च करेंगे। अमरीका की एक संघीय अदालत ने ट्रंप प्रशासन द्वारा विदेशी छात्रों और पत्रकारों के रहने की अवधि पर लगाई गई सख्त सीमाओं के नियम पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि इस नीति को लागू करने से अमरीका की अर्थव्यवस्था और उच्च शिक्षा प्रणाली को अधिक नुकसान हो सकता है। ट्रंप प्रशासन ने इस साल जुलाई में इस नियम को अंतिम रूप दिया था। भारत का राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन आज अपना 67वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस लोक सेवा प्रसारक की शुरुआत 1959 में ऑल इंडिया रेडियो के अंतर्गत एक प्रायोगिक टेलीविजन सेवा के तौर पर हुई थी। आज राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस हर साल 15 सितंबर को भारत के महानतम इंजीनियरों में से एक मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृहमंत्री अमित शाह ने भी एम विश्वेश्वरैया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 2020 क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। पहले मैच में रविवार को भारत ने 7 विकेट

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं आपके साथ अपराजिता, और आइए सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गाना मिशन कश्मीर फिल्म से।

0: For two posts of Deputy Chief Medical Officer Specialist through direct recruitment, with one post each in medicine and surgery. The post carries a pay scale of 60,000 to 1,80,000 and has an upper age limit of 42 years as on 1st August 2026. Applications in the prescribed format, along with self-attested supporting documents and photographs, should reach the Secretary, Paradeep Port Authority, District Jagatsinghpur, Odisha 754142 by registered post on or before 16 September 2026. Government employees should apply through proper channel and produce an NOC at the time of the interview. Selection will be made as per the prescribed selection criteria. For details, do refer to the website, that is at www.paradeepport.gov.in. Indian Space Research Organization, ISRO, Department of Space, Government of India, has invited online applications from meritorious graduates for scientists, engineer SC posts in electronics, mechanical and computer science at ISRO centers, units and the Physical Research Laboratory, PRL. A total of 175 vacancies available across the 6 post codes. The maximum age limit is 28 years as on 16 September 2026 with applicable relaxations for eligible categories. Selected candidates will be appointed in level 10 as per the 7th CPC along with admissible allowances and benefits. The application fee is 250 rupees and 750 rupees is the processing fee, subject to the refund provisions specified in the notification. The last date for online registration is 16th September 2026. Interested candidates can apply and obtain further details through the official ISRO website. For details, do refer to www.isro.gov.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीष शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। सैनिक स्कूल नगरोटा जम्मू आमंत्रित कर रहा है इन पदों को भरने के लिए आवेदन। प्रयोगशाला सहायक रसायन विज्ञान, वार्ड बॉय, बैंड मास्टर, पीईएम, पीटीआई सह मैट्रन महिला और काउंसलर, ये सभी पद अनुबंध के आधार पर भरे जाने हैं। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.sainikschoolnagrota.com। विस्तार निदेशालय आमंत्रित कर रहा है इन पदों को भरने के लिए आवेदन। फोटोग्राफिक अधिकारी एक रिक्ति, ज्येष्ठ अनुवादक एक रिक्ति, सहायक विस्तार अधिकारी एक रिक्ति, आशुलिपिक ग्रेड 1 3 रिक्तियां, फोटोग्राफर 2 रिक्तियां, उच्च श्रेणी लिपिक 9 रिक्तियां तथा स्टाफ कार ड्राइवर 1 रिक्ति। इन पदों से संबंधित विस्तृत जानकारियों के लिए देखिए विस्तार निदेशालय की वेबसाइट www.agriwelfare.nic.in तथा www.krishivistar.gov.in। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना को आवश्यकता है पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड 1, प्रबंधक पर्यवेक्षक, लॉन्ड्री प्रबंधक, मैनिफोल्ड तकनीशियन और वरिष्ठ प्लम्बर की। वरिष्ठ प्लम्बर पद के लिए 4 रिक्तियां उपलब्ध हैं, मैनिफोल्ड तकनीशियन के लिए 2, जबकि अन्य शेष सभी पदों के लिए 1-1 रिक्ति उपलब्ध है। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना की वेबसाइट www.aimspatna.edu.in। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग विश्व की सबसे बड़ी मुक्त विद्यालयी शिक्षा प्रणाली है। संस्थान आमंत्रित कर रहा है लेखाधिकारी के एक पद को भरने के लिए आवेदन। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.nios.ac.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
2: This program was produced and presented by the News Services Division.

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार, स्टूडियो की घड़ी में दोस्तों बज गए हैं शाम के 4:30, यानी वक्त है आपकी न्यूज मैगजीन परिक्रमा का। दोस्तों, आधा घंटे की हमारी इस मुलाकात में होंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार। चलेंगे हम अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास, जानेंगे उनसे क्या कुछ है खास साज हमारे लिए उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर तो रहती है हमारी बराबर नजर, और फिर हम याद करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को है जिनकी आज पुण्यतिथि या जन्मदिन। दोस्तों, परिक्रमा के संघ के साथ मैं हूं मुनीश शर्मा, और मेरे साथ हैं अभिषेक मुखोपाध्याय। नमस्कार अभिषेक।
2: हेलो, नमस्कार मुनीश। हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल दोस ट्यून इन टू द न्यूज मैगजीन प्रोग्राम परिक्रमा ऑन 100.1 FM गोल्ड। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय, विथ मी इज ऑफ कोर्स माय को होस्ट मुनीश। वेल लिसनर्स, शी वॉज नोन फॉर द इंजीनियस प्लॉटिंग एंड मिस डिरेक्शंस इन अर नॉवेल्स। She built plots resistant to cliches with shocking, unfair in a fair way twists, like in a book, The Murder of Roger Ackroyd. She used expert red herrings, hidden clues, and double meaning statements to trick readers into looking the wrong way. Secondly, she created unforgettable and underestimated sleuths like Hercule Poirot and Miss Jane Marple. And thirdly, her stories focus on deep flaws, desires, and dark human motivations rather than dry parlor games. Her characters act out of realistic, hidden secrets that drive them into cruelty. Yes, we are talking about none other but the Queen of Mystery, Agatha Christie, who is known for mastery in clever plotting, iconic under-the-radar detectives, and deep human psychology. And today we celebrate her birthday, and we shall talk about her in some detail later in the program. But first of all, we start off with the news headlines at this hour.
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है।
2: चीफ मिनिस्टर्स ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान एंड दिल्ली साइन किशाऊ मल्टीपर्पज डैम प्रोजेक्ट एग्रीमेंट फॉर रिजुविनेशन ऑफ द यमुना रिवर।
1: पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, भारत सतत विकास के अंतर्गत चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच की बैठक गांधीनगर में शुरू।
2: प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हेल्स इंजीनियर्स एंड कर्मयोगीज ऑफ नेशन बिल्डिंग।
1: अमरीकी अदालत ने विदेशी छात्रों और पत्रकारों के लिए ट्रंप प्रशासन के लिए वीजा नियमों पर रोक लगा दी है।
2: IMD forecasts heavy rainfall over Punjab, Delhi, Kutch, Tamil Nadu, Assam and Meghalaya today.
1: Assam और मेघालय में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज शाम दिल्ली में अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा।
2: And now, listeners, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about National Engineers Day. Well, Munish, National Engineers Day has been celebrated today to honor the birth anniversary of Moksha Gundam Vishweswaraya, one of India's greatest engineers.
1: जी हाँ, ये दिन हर साल 15 सितंबर को विश्वेश्वरैया के योगदान को स्मरण करने और देश के विकास में इंजीनियरों की भूमिका का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है।
2: मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया वॉज एन इंडियन सिविल इंजीनियर, एडमिनिस्ट्रेटर एंड स्टेट्समैन हु सर्व्ड एज द 19th दीवान ऑफ मैसूर फ्रॉम 1912 टू 1918। विश्वेश्वरैया'स बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एज इंजीनियर्स डे इन इंडिया, श्रीलंका एंड तंजानिया।
1: और हम ये कैसे भूल सकते हैं अभिषेक कि उन्हें अक्सर आधुनिक मैसूर का निर्माता भी कहा जाता है। विश्वेश्वरैया ने ब्रिटिश भारत सरकार के लिए एक सिविल इंजीनियर के तौर पर और बाद में मैसूर राज्य के प्रधानमंत्री के रूप में काम किया। हमारे संवाददाता से लेते हैं कुछ और जानकारी।
3: मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, वन ऑफ इंडियाज ग्रेटेस्ट इंजीनियर्स, इज रिनाउंड फॉर हिज पायनियरिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस टू इंजीनियरिंग। ही ट्रांसफॉर्म्ड द कंट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू इनोवेटिव डिजाइंस, विजनरी प्लानिंग एंड प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस दैट कंबाइंड टेक्निकल एक्सीलेंस विद सोशल इम्पैक्ट।

0: beyond his work as an economist, statesman and writer, it is his extraordinary achievements as an engineer that continue to inspire generations, setting a benchmark for problem solving, innovation and nation building. Awarded the Bharat Ratna in 1955, his visionary ideas continue to guide economic planners. His life remains an enduring inspiration, cementing his place as a monumental figure in India's history. As India embarks on its decade, a decade of rapid technological innovation and transformative growth, the role of engineers becomes increasingly vital. The growing number of skilled engineering graduates reflects the success of government initiatives in promoting education, research and innovation, enabling India to take a leading position in the global technological landscape. These efforts are key to achieving the vision of Viksit Bharat 2047, where India becomes a developed, technologically advanced and self-reliant nation. India's engineering progress has achieved global recognition, driving technological leadership in fields such as artificial intelligence, semiconductor design and quantum computing. These advancements are reflected in India's steadily rising position in the Global Innovation Index, underscoring its dynamic and progressive engineering ecosystem. As India celebrates National Engineers Day 2026, it is evident that engineers are not only the torchbearers of the nation's technological progress, but also the architects of its future. Supported by sustained government initiatives and a vibrant ecosystem of research and innovation, India's engineers are poised to drive the nation towards a Viksit Bharat 2047, ensuring progress that is inclusive, sustainable and transformative. Valsa Williams for Parikrama.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम विश्वेश्वरैया को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एम विश्वेश्वरैया इंजीनियरिंग के क्षेत्र में असाधारण प्रतिभा के धनी थे और राष्ट्र निर्माण की उनकी सोच आज भी नागरिकों को प्रेरित कर रही है।
2: महान इंजीनियर्स की हमारी विरासत में एक ऐसा रत्न भी हमें मिला जिसके कार्य आज भी लोगों को अचंभित कर रहे हैं और वे थे भारत रत्न डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया। उन्हीं की याद में 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। उनके पद चिन्हों पर चलते हुए हमारे देश के इंजीनियर पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। मैं इस अवसर पर सभी इंजीनियरों को उनकी निर्माण शक्ति को आदरपूर्वक नमन करता हूँ।
3: Yes, and today we are celebrating the people who turn ideas into reality, engineers, the builders of a stronger and smarter India.
1: हाईवे, पुल और मेट्रो नेटवर्क से लेकर पावर प्लांट, बंदरगाह और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तक इंजीनियर ही आज के भारत को आकार दे रहे हैं। भारत माला, सागर माला, पीएम गतिशक्ति और स्मार्ट सिटी जैसे प्रोजेक्ट्स उनकी विशेषज्ञता और इनोवेशन से ही आगे बढ़ रहे हैं।
3: एंड द कॉन्ट्रीब्यूशन गोज फार बियॉन्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। इंजीनियर्स आर ड्राइविंग इंडियाज प्रोग्रेस इन स्पेस, डिफेंस, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल इनोवेशन। प्लेटफॉर्म्स लाइक आधार, यूपीआई एंड डिजी लॉकर हैव ट्रांसफॉर्म द वे मिलियंस ऑफ इंडियंस लिव एंड वर्क।
1: सरकार अगली पीढ़ी के लिए भी नए अवसर मुहैया करा रही है। स्किल इंडिया, अटल इनोवेशन मिशन, स्टार्टअप इंडिया, इंस्पायर और मेरिट स्कीम जैसी पहल युवा इंजीनियरों को स्किल डेवलप करने, नए आइडिया पर रिसर्च करने और इनोवेटिव समाधान तैयार करने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं।
3: यस, एंड नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज द इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी इज बीन ऑब्जर्व टुडे।
1: लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने से कहीं ज्यादा है। ये भागीदारी, समानता, अभिव्यक्ति की आजादी, मानवाधिकार, बातचीत और जवाबदेह शासन के बारे में है।
3: Yes, and today as we observe International Day of Democracy 2026, let us take a journey through time, a journey that takes us back thousands of years to explore India's own democratic traditions.
1: जब हम लोकतंत्र शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारे मन में आधुनिक संसद, चुनाव और संविधान की बात आती है, लेकिन सबकी भागीदारी वाली शासन व्यवस्था की कहानी बहुत पुरानी है। प्राचीन भारत में लगभग 1500 ईसा पूर्व के वैदिक काल में ही सभा और समिति जैसी संस्थाओं ने सार्वजनिक मामलों में अहम भूमिका निभाई। चर्चा, सलाह मशविरा और आम सहमति शासन व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं थी।
3: यस मनीष, एंड द डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन कंटिन्यूड इन डिफरेंट फॉर्म्स। Ancient Buddhist Republican communities, often described as the Gana Sanghas, developed systems in which groups of people participated.

0: बिल्कुल अभिषेक, गांव के स्तर पर भी स्थानीय स्वशासन की परंपराएं भारतीय समाज का एक अहम हिस्सा बन गईं। ये ऐतिहासिक परंपराएं हमें याद दिलाती हैं कि अपने समुदाय से जुड़े फैसलों में लोगों की भागीदारी का विचार भारत में बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है।
1: Yes, that's right, Munish. And now let's fast forward to modern India, and we find democracy on an extraordinary scale. India is the world's largest democracy with more than 1.4 billion people. Citizens from different religions, languages, cultures and social backgrounds participate in elections and choose their representatives.
0: और भारतीय लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। हर वयस्क नागरिक को वोट देने का अधिकार है, चाहे उसकी संपत्ति, लिंग या धर्म कुछ भी हो।
1: In 1950, India adopted its written constitution, which established a framework based on justice, liberty, equality and fundamental rights.
0: और लोकतंत्र संसद या राज्य विधानसभाओं तक ही नहीं रुकता। गांवों, कस्बों और शहरों में स्थानीय प्रतिनिधि अपने समुदायों पर शासन करने में भाग लेते हैं। महिलाओं ने स्थानीय लोकतांत्रिक संस्थाओं में भी तेजी से महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
1: डेमोक्रेसी बिकम स्ट्रॉन्गर व्हेन पीपल लिसन, डिस्कस, पार्टिसिपेट एंड फाइंड कॉमन ग्राउंड।
0: और अब हम अपने अगले विषय की ओर बढ़ते हैं अभिषेक। भारत का पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर दूरदर्शन आज अपना 67वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर की शुरुआत 1959 में ऑल इंडिया रेडियो के तहत एक एक्सपेरिमेंटल टेलीविजन सर्विस के तौर पर हुई थी।

जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से हमारे किसानों को भी लगातार सशक्त बना रहा है। और दोस्तों, अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि क्या कुछ है खास आज उनके पास। दोस्तों, ओडिशा को 12 महीने 13 त्योहारों की धरती के तौर पर जाना जाता है। इनमें से पश्चिमी ओडिशा के सांस्कृतिक जीवन में नुआखाई का एक खास स्थान है।

0: गणेश चतुर्थी के अगले ही दिन मनाया जाने वाला ये त्योहार इस इलाके का सबसे अहम कृषि उत्सव है, जो नई फसल, आभार और आपसी मेलजोल का जश्न मनाता है।
1: द वर्ड नुआखाई कम्स फ्रॉम नुआ मीनिंग न्यू एंड खाई मीनिंग फूड। On this auspicious day, people offer the first harvest of the season, particularly newly harvested paddy or nabanna, to their presiding deities before partaking of it themselves. According to traditions, the festival dates back to the 14th century and is associated with Chauhan King Ramaideva, the founder of Patna state, now Balangir. Over the centuries, Nuakhai has become an integral part of the cultural identity of Western Odisha. In Sambalpur, the new crop is offered to Goddess Samaleswari. Similarly, people worship Patneswari in Balangir, Sureswari in Sonpur and Manikeswari in Kalahandi. The festival begins with prayers and traditional rituals. Women rise early, clean their homes and prepare special dishes. People dress in beautiful Sambalpuri saris and traditional attire, adding color and vibrancy to the celebrations. One of the most cherished tradition is Nuakhai Juhar, the exchange of greetings and seeking blessings from elders. Families come together while many who live away from home return to their native places to celebrate the festival with their loved ones. In rural areas, people also worship their paddy fields and pray for a good harvest and favorable weather. Nuakhai is therefore not merely a festival of the new crop. It is a celebration of gratitude, family, social harmony and deep bond between people and their land. For Parikrama, Supriti Mishra, Akashvani, Sambalpur.
2: In a unique initiative towards creating awareness about health risks of substance abuse, a museum showcasing the harmful effects of substance abuse on the human body has been set up at the Indira Gandhi Government Medical College and Research Institute in Puducherry. We have more from a correspondent.
3: The museum features human organ specimens that demonstrate the pathological changes caused by substance abuse. It seeks to provide visitors with a direct understanding of how addictive substances can damage vital organs. The museum was unveiled as part of the initiatives of the State Tobacco Control Cell under the Health Department. Inaugurating this unique initiative, Director of Health in Puducherry, Dr. Sevel, stressed the need to make educational institutions free from tobacco and narcotic substances. He emphasized the importance of preventive awareness among students to keep them away from drugs. The new museum is expected to serve as an educational and awareness facility for students and the general public, bringing home the health consequences of the substance abuse to actual human organ specimens and visual exhibits. For Parikrama, this is Bibinasnath, Akashwani News, Puducherry.
0: दोस्तों, छत्तीसगढ़ की समृद्ध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पुरातात्विक विरासत को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के अंतर्गत छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड ने जापान के मात्सुयामा स्थित अहिमे यूनिवर्सिटी के 17 सदस्यों वाले एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल के लिए विशेष हेरिटेज टूर का आयोजन किया है और ब्यौरा दे रहे हैं रायपुर से हमारे संवाददाता विकल्प शुक्ला।
4: अकादमिक और शोध सहयोग के उद्देश्य से 12 से 14 सितंबर तक छत्तीसगढ़ में एनआईटी रायपुर द्वारा होस्ट किए गए जापानी प्रतिनिधिमंडल ने बीती 14 सितंबर को प्राचीन ऐतिहासिक नगरी सिरपुर का भ्रमण कर छत्तीसगढ़ की उस विरासत को करीब से जाना जिसमें बौद्ध, हिंदू और जैन संस्कृति का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल ने अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों के लिए सिरपुर में विशेष हेरिटेज टूर की व्यवस्था की थी। महानदी के तट पर बसा सिरपुर प्राचीन काल में श्रीपुर के नाम से जाना जाता था और दक्षिण कोसल की राजधानी के रूप में इसका महत्वपूर्ण स्थान रहा है। वर्तमान सिरपुर में हुए पुरातात्विक उत्खननों से बौद्ध विहारों, हिंदू मंदिरों, जैन अवशेषों तथा अन्य प्राचीन संरचनाओं का विस्तृत संसार सामने आया।

0: darkness is your ally. You merely adopted the dark. I was born in it, molded by it. I didn't see the light until I was already a man. By then, it was nothing to me but blinding. The shadows betray you because they belong to me.
1: और दोस्तों, आज है जयंती अमर कथा शिल्पी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की। हुगली जिले के गांव देवानंदपुर में हुआ था उनका जन्म 15 सितंबर 1876 को, और इस दुनिया को कहा उन्होंने अलविदा 16 जनवरी 1938 को। बांग्ला के अमर कथा शिल्पी और सुप्रसिद्ध उपन्यासकार जिनकी रचनाओं का अनुवाद दुनिया की अनेक भाषाओं में हुआ। शरद चंद्र ने 18 साल की उम्र में 12वीं पास की और इन्हीं दिनों बासा यानी घर नाम से एक उपन्यास लिखा, लेकिन ये रचना छप न सकी। कॉलेज की पढ़ाई को बीच में ही छोड़कर वे 30 रुपए मासिक के क्लर्क होकर पहुंच गए बर्मा, जो आज म्यांमार के नाम से जाना जाता है। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की कथा साहित्य की प्रस्तुति जिस रूप स्वरूप में हुई, लोकप्रियता के तत्व ने उनके पाठक की आस्वाद में वृद्धि ही की। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय अकेले ऐसे भारतीय कथाकार भी हैं जिनकी ज्यादातर कालजयी कृतियों पर फिल्में बनी और अनेक धारावाहिक सीरियल भी बने हैं। इनकी कृतियां देवदास, चरित्रहीन, परिणीता, श्रीकांत के साथ तो ये बार बार घटित हुआ है। आइए सुनते हैं उन्हीं की एक मशहूर कृति देवदास पर कई बार बनी फिल्मों में से एक में से ये संवाद और गीत।
2: ऐसी जगह से उठकर जाने की ताकत नहीं है ना, कभी तो यहाँ पड़ा रहता हूँ, बस देखता रहता हूँ तुम्हारे मुंह की तरफ। कभी मैं बिल्कुल बेहोश नहीं होता, कुछ होश रह ही जाता है। होश से कह दो तभी होश ना आने पाए।
3: Yes, and Sarat Chandra Chattopadhyay was posthumously, he won the 1978 Filmfare Award for Best Story for Swami in 1977.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली के 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति से

0: जिनफिंग के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये जानकारी दी।
1: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और तीन पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
0: जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर 70 लाख रुपए के पुरस्कार की पाकिस्तान की घोषणा पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस तरह के दिखावे नए नहीं हैं।
1: हम लोगों ने कई दफा देखा है कि इस प्रकार का आंख में धूल झोंकने वाली हरकत पाकिस्तान करता रहा है। इससे एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर के नाम पे अनाउंसमेंट करने की जरूरत नहीं है, उनको एक्शन लेना चाहिए क्योंकि उनको खुद ही पता है कि लोग कहाँ हैं, उनको अरेस्ट करना चाहिए।
0: ओमान के तट पर वाणिज्यिक जहाज MTEL गाइया पर हमले से संबंधित प्रश्न पर श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों, चलदल के सदस्यों, आम नागरिकों और असैन्य बुनियादी ढांचे पर हमले भारत के लिए अस्वीकार्य हैं। उन्होंने कहा कि भारत उस क्षेत्र में मुक्त और सुरक्षित नौवहन का आग्रह करता है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि संघर्षों और विरोधाभासों से जूझ रही दुनिया में नई दिल्ली में आयोजित सफल ब्रिक्स शिखर सम्मेलन उल्लेखनीय है। नई दिल्ली में एक समारोह में उन्होंने नई दिल्ली घोषणा पत्र को बड़ी उपलब्धि बताया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत वैश्विक चुनौतियों पर अपने दृष्टिकोण को अधिक आत्मविश्वास के साथ व्यक्त कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश के हित तेजी से दुनिया भर से जुड़ रहे हैं और भारत से विश्व की अपेक्षाएं भी बढ़ी हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा उद्योग के बीच साझेदारी भारत को रक्षा विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। रक्षा मंत्री ने कहा कि DRDO ने मिसाइल से लेकर रडार, लड़ाकू विमान से लेकर पनडुब्बियों और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली से लेकर AI तक हर क्षेत्र में अपनी क्षमता साबित की है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने आज यमुना नदी के पुनरुद्धार के लिए किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में यह समझौता हुआ। इससे पहले इस वर्ष जून में गृहमंत्री अमित शाह ने इस संबंध में इन प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी। बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि परियोजना की 90% लागत केंद्र सरकार द्वारा और शेष 10% लागत 6 भागीदार राज्यों द्वारा वहन की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नुआखाई के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। श्री मोदी ने कहा कि ये पर्व किसान, फसल और भाईचारे का उत्सव है और ये सद्भाव की भावना को मजबूत करता है। ओडिशा के प्रमुख पर्व नुआखाई का अर्थ है नया खाना। इसे धान की नई फसल आने पर मनाया जाता है। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स आज 778 अंक की गिरावट के साथ 74,004 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 280 अंक गिरकर 23,119 पर बंद हुआ। भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा 2020 क्रिकेट मैच आज शाम 7:30 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। पहले मैच में भारत ने 7 विकेट से जीत दर्ज की थी। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। तीसरा मैच बृहस्पतिवार को दिल्ली में ही खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, दिल्ली, कच्छ, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पुदुचेरी, केरलम, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने मछुआरों को कल तक अरब सागर में और शनिवार तक दक्षिण पश्चिम अरब सागर के पश्चिम मध्य अरब सागर से सटे कुछ हिस्सों में न जाने की सलाह दी है। शनिवार तक बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर में भी समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। The External Affairs Ministry has said that several issues came during the discussion between Prime Minister Narendra Modi and Chinese President

हर बार की तरह आज भी मैं प्राचिता ले आई हूँ आप सबके लिए सवालों का पिटारा, जो होगा हमारी 80s की ब्लॉकबस्टर हिट फिल्मों से। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि AIRFM गोल्ड 100.1 पर टाइम हो गया है गाते गुनगुनाते का। और इससे पहले कि मैं आपसे कुछ सवाल पूछूं जिनके जवाब आप हमें लिखकर भेजें, सुन लेते हैं ये गाना डिस्को डांसर से।

तो भाई आज का जो पहला सवाल है, या यूं कहें कि पहली पहेली आप सबके लिए जो है, वो है प्रकाश मेहरा की एक सुपरहिट फिल्म से, जिसे तेलुगु और तमिल में भी बनाया गया। इस फिल्म की एक खास बात ये भी है कि फिल्म में हीरो की जो माँ बनी है, वो पहले कई फिल्मों में हीरो के साथ हीरोइन के रोल में नजर आई है, लेकिन इस फिल्म में वो पहली बार हीरो की माँ के किरदार में नजर आई। एक और दिलचस्प बात ये भी है कि पूरी फिल्म में उन दोनों का एक साथ एक भी सीन नहीं है। अगर आपने पहचान ली है ये कौन सी फिल्म है जिसमें मेन लीड्स के अलावा रंजीत, बिंदु, सुरेश ओबेरॉय, जीवन और ओम प्रकाश जैसे कलाकारों ने काम किया, तो लिख भेजिए अपना आंसर हमारे ईमेल आईडी पर, जो कि है क्या आप जानते हैं, fmgoldaiadelhi@gmail.com। और अगर आपने आज पहली बार ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, तो मैं आपको बता दूं कि आप चाहते हैं अगर कि जल्द से जल्द आपके आंसर हम तक पहुंचे, तो आप ईमेल के सब्जेक्ट कॉलम में फिल्म का नाम लिखकर जल्दी से सेंड कर दें। सुनवा रही हूं तब तक आपको उमराव जान से ये खूबसूरत गीत।

0: एक ब्रेक ले रहे हैं अभी और वापस आकर जानेंगे कि किसने लिखकर भेजा है सही जवाब। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल।
1: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
2: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
3: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
4: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
5: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
6: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV

0: का ज्यादा रिस्क?
1: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
2: HIV एड्स से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

बिल्कुल, ये सफर ऐसे ही चल रहा है और आपके जवाब हम तक पहुंच गए हैं, तो मैं जल्दी से बता देती हूं कि पहला सही जवाब हमें किसने लिखकर भेजा है। नवीन भाटिया साहब ने मोती नगर से लिखा है पहला सही जवाब। दूसरे नंबर पर आते हैं धीरज अरोड़ा, दयाशंकर झा और सोनम। और तीसरे नंबर पर बाजी मारी है नागेंद्र ठक्कर ने। आप तीनों को बहुत बहुत बधाई। जगदीश बजाज ने उसके बाद, और सुदर्शन अनीता सिमरनमुखी ने, प्रणव शिंदे, पवन के कासेरा, शशि भूषण, दरवेश मोड़, इद्रिस सैफी का आंसर सही नहीं है, बाकी जिनके मैंने नाम लिए इन सब ने सही जवाब लिखकर भेजा। प्रफुल्ल मोहत प्रफुल्ल, आपने बिल्कुल सही बताया। भगवती सिंह है हमारे साथ। नवीन किशोर का मैसेज आता है हमारे पास दौलूपुरा से, और प्रफुल्ल मोहत प्रफुल्ल इनका नाम शायद दूसरी बार भी आ गया है, और हमें सही जवाब लिख भेजा है उमेश कुमार साहब ने खयाला से, और मोहम्मद सईद अब्बासी निगत, परवीन शाहनवाज, सरफराज फरदीन, सुहान अरजान अब्बान ने भी सही बता दिया है। फिल्म का नाम है लावारिस, और इसमें मैं आपको ये बता दूं कि हीरा के रोल में नजर आए अमिताभ, और मोहिनी का रोल प्ले किया जीनत अमान ने, और राखी बनी अमिताभ की माँ, जिसका मैंने आपको हिंट दिया था कि ये दोनों साथ में हीरो हीरोइन की जोड़ी में नजर आए हैं। पर इस फिल्म में पहली बार राखी ने अमिताभ की माँ का किरदार निभाया, और ये अलग बात है कि वो दोनों साथ में नहीं नजर आए इस फिल्म में। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं, उसके बाद मैं आपको लावारिस फिल्म से गाना भी सुनवाऊंगी। 1980 में एक एक्शन ड्रामा फिल्म आई जिसे डायरेक्ट किया राज खोसला ने, और जिसकी कहानी लिखी सलीम जावेद की जोड़ी ने। इस फिल्म के गानों को कंपोज किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने, और इस फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। अगर आपने बहुत ध्यान से सुना होगा तो मैंने ये इस शो के स्टार्टिंग में ही कहा था कि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ब्लॉकबस्टर हिट्स ऑफ 80s। तो इस फिल्म के गाने जो है उसे कंपोज किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। ये फिल्म बनी धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर तले, और धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बनने वाली ये पहली फिल्म रही। मेन लीड्स के अलावा इस फिल्म में प्रेम चोपड़ा, अमरीश पुरी, हेलन और प्राण ने भी एक्टिंग की। इस फिल्म का नाम पहचान लीजिए जल्दी से, और लिख भेजिए हमें fmgoldaiadelhi@gmail.com पर फिल्म का नाम। जल्दी से जल्दी भेजना है, तभी तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में आएंगे। तब तक मैं आपको सुनवा रही हूं लावारिस फिल्म से ये गाना।

बिल्कुल, आपके जवाब हम तक पहुंच रहे हैं और बहुत सारे इस बार सही जवाब आए हैं। तो मैं पहले तो नाम शामिल करती हूं और उसके बाद बताती हूं कि फिल्म का नाम क्या है और फिर अगला सवाल अपना पूछती हूं। नवीन भाटिया साहब ने मोतीनगर से पहला सही जवाब लिखा, नागेंद्र ठक्कर दूसरे नंबर पर आते हैं और रोहित ठाकुर हैं गुरुग्राम से तीसरे नंबर पर। बहुत बहुत बधाई जी आप सभी को। और ये नवीन भाटिया और नागेंद्र ठक्कर तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड में ज्यादातर रहते हैं, ऐसा मैंने देखा है अपने शो में। इसके बाद हमें नवीन किशोर साहब का भी सही जवाब मिलता है और दालूपुरा से आप हमारे साथ हैं अमित नरूला हैं, इदरिस सैफी, भगवती सिंह, धीरज अरोड़ा, दयाशंकर झा, तन्नू झा और सही जवाब लिख भेजते हैं गौरव गुरनानी। आपने बिल्कुल सही पहचाना है। और इसके बाद जगदीश बजाज विकासपुरी से सही सही बताते हैं, प्रणव शिंदे हैं हमारे साथ, दरवेश मोड़ ने भी बिल्कुल सही लिखकर भेजा है और विकास कुमार, शशि भूषण, ललित कुमार, सुदर्शन, अनीता सिमरन मुखी, बबलेश पवार बाड़मेर राजस्थान से बताते हैं सही सही, गिरीश वैशाली ज्योत्सना, अशोक शाणे वडोदरा से बिल्कुल सही जवाब लिखकर भेजते हैं, विरमगाम गुजरात से अजीत भावसार, जयंती नाशिकार का भी सही जवाब आता है और आप मुंबई से हमारे साथ हैं, प्रफुल्ल मोहत, प्रफुल्ल सतप्रकाश सनौठिया, रोहिणी से बताते हैं सही सही, डीबी राणा साहब का नेहरू विहार दिल्ली से सही जवाब आता है, उमेश कुमार साहब खयाला से लिखते हैं सही जवाब, प्रकाश गोगिया हैं हमारे साथ दिल्ली से, मोहम्मद सईद अब्बासी, निकट परवीन, शाहनवाज सरफराज, परदीन सुहान, अरजान अबान आपने भी बिल्कुल सही बताया और राजकोट से

जैमिन जैन का सही जवाब मिलता है। उग्रसेन यादव हैं हमारे साथ और आप सभी ने बिल्कुल सही पहचाना कि फिल्म का नाम है दोस्ताना। और भाई इस फिल्म में एक्टिंग की अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा और जीनत अमान ने। इस फिल्म से जो है गाना भी आपको जरूर सुनवाऊंगी। लेकिन अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आप सबके लिए है 1980 में आई एक ऐसी फिल्म से जिसके सभी गाने सुपर डुपर हिट थे। फिल्म का म्यूजिक दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ म्यूजिक डायरेक्टर की श्रेणी में फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। वैसे रिलीज के टाइम पर इस फिल्म ने कुछ खास कमाल नहीं किया, लेकिन बाद में इस फिल्म की गिनती कल्ट क्लासिक फिल्मों में की जाने लगी। तो फिर अगर आप पहचान चुके हैं ये किस फिल्म की बात मैंने की जिसे सुभाष घई ने जो है बनाया, तो वो आप जरूर हमें लिखकर भेजें। फिल्म का नाम आपको लिखना है fmgold@gmail.com पर। और यहां मेरी गति थोड़ी धीमी इसलिए हो गई, मुझे लगा कहीं ऐसा तो नहीं मैंने आपको ज्यादा हिंट्स दे दिए, फिर मुझे लगा चलिए कोई नहीं मैं ये भी बता देती हूं आपको कि ये जो फिल्म है ये सुभाष घई की फिल्म है। तो कुछ ज्यादा हिंट्स हो जाते हैं और ऐसा मेरे साथ हमेशा होता है, थोड़ा दरिया दिल हो जाती हूँ जब जैसे ही शो आगे बढ़ने लगता है, मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा लिसनर्स इसमें पार्टिसिपेट कर सके। तो आप जल्दी से फिल्म का नाम लिख भेजिए और मैं आपको सुनवा रही हूँ दोस्ताना फिल्म से ये गाना, जरूर पसंद आएगा आपको और आपने सुना भी होगा ये, क्योंकि ये है ही एक बिल्कुल सोने के बराबर का गाना, सोने यानी गोल्ड के बराबर का गाना।

कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

स्वागत एक बार फिर आप सभी का आप ही के अपने गाते गुनगुनाते में। और आपके बहुत सारे जवाब सही जवाब हम तक पहुंच रहे हैं। तो पहला सही जवाब लिखकर हमें भेजा है एक बार फिर से नवीन भाटिया साहब ने, और दूसरे नंबर पर आते हैं नागेंद्र ठक्कर। तीसरे नंबर पर सही जवाब देने वाले हैं अमित नरूला। बहुत बहुत मुबारकबाद आप तीनों को। और इसके बाद भी हमें सही जवाब लिखकर भेजा ललित कुमार हैं नोएडा से, और उसके बाद रोहित ठाकुर गुरुग्राम से सही जवाब लिखते हैं, उमेश कुमार साहब खयाला से हैं। सही जवाब देने वालों में बबलेश पवार हैं गांधी चौक बाड़मेर से, अतुल अग्रवाल गाजियाबाद से, जगदीश बजाज विकासपुरी से, दरवेश मोड़ और मोहम्मद सईद अब्बासी और इनके परिवार ने बुलंदशहर से बताया सही जवाब, इदरीस सैफी, नवीन किशोर, प्रफुल मोहद, प्रफुल आप सब सही जवाब लिखकर भेज रहे हैं। गौरव गुरनानी है, विकास कुमार, अजीत भावसर, डीबी राणा। और इस जवाब में ऐसा लगा जैसे, वैसे मैं आपको बता दूं कि फिल्म का नाम है कर्ज और हीरो फिल्म के साथ थोड़ी कंफ्यूजन दिखी, कई लोगों ने हीरो भी लिखकर भेजा, लेकिन सही जवाब है कर्ज जिसका जिक्र मैंने किया। और डीबी राणा साहब नेहरू विहार से हैं। जैमिन जैन का भी मैसेज आता है, उग्रसेन यादव सही जवाब लिखकर भेजते हैं। सुनीता अनीता सिमरन सुदर्शन अनीता सिमरन मुखी भी बताते हैं सही जवाब। सतप्रकाश सोनाठिया रोहिणी दिल्ली से, शशि भूषण है हमारे साथ, ऋषि टीना है और जयंती नाशिकार भी हैं। विरमगाम गुजरात से अजीत भावसर ने बिल्कुल सही जवाब लिखकर भेजा है। फारूक अली खान, फैजी फराज, फरीन, फाहिरा, ताहिरा ने भी बिल्कुल सही बताया है। प्रकाश गोगिया साहब हैं दिल्ली से, आप सही बताते हैं जवाब। मधु किरण हैं, प्रणव शिंदे हैं और भारती, आप सबने बिल्कुल सही बताया है कि फिल्म का नाम है

0: कर्ज, और आप सुन भी रहे हैं गाना इस फिल्म से।
1: किसी को दिल दिया, मैंने भी दिया।
0: ऋषि कपूर ने मोंटी का किरदार इसमें निभाया और राज किरण रवि वर्मा के रोल में नजर आए। सिमी गिरेवाल इसमें कामिनी का रोल प्ले करती नजर आई। टीना मुनीम ने टीना का किरदार निभाया और प्राण साहब कबीरा के रोल में नजर आए। आइए सुनते हैं ये बहुत ही मजेदार गाना किशोर साहब की आवाज में।

भाई आप लोगों के लिए इतने सारे सवाल, ट्रिविया, इन्फॉर्मेशन ढूंढ कर लाने में और यहाँ आपसे सवाल पूछने में बहुत अच्छा लगता है। और ये जो मेहनत है ना, ये सफल हो जाती है जब आप सब इतने मज़े के साथ उन सभी सवालों के आंसर्स हमें लिखकर भेजते हैं और इसे इंजॉय भी करते हैं। वो पता चलता है आपकी स्पीड ऑफ सेंडिंग आंसर से। तो एक बहुत ही खूबसूरत गाना है बेताब फिल्म से, इसके साथ आपको मैं यहाँ छोड़े जा रही हूँ।

खास ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और FM गोल्ड हमेशा सुनते रहिएगा। आप जानते हैं कि जैसा कहते हैं ना, सुख में दुख में दोनों में जो संगीत है ना, वो आपका सच्चा साथी होता है, सच्चा हमसफर होता है। इस गाने के बाद आप सुन सकेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये जानकारी दी।
1: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और तीन पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
0: जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर 70 लाख

0: लाख रुपए के पुरस्कार की पाकिस्तान की घोषणा पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस तरह के दिखावे नए नहीं हैं।
1: हम लोगों ने कई दफा देखा है कि इस प्रकार का आंख में धूल झोंकने वाली हरकत पाकिस्तान करता रहा है। इससे एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर के नाम पे अनाउंसमेंट करने की जरूरत नहीं है, उनको एक्शन लेना चाहिए क्योंकि उनको खुद ही पता है कि लोग कहाँ हैं, उनको अरेस्ट करना चाहिए।
0: ओमान के तट पर वाणिज्यिक जहाज MTEL गाइया पर हमले से संबंधित प्रश्न पर श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों, चालक दल के सदस्यों, आम नागरिकों और असैन्य बुनियादी ढांचे पर हमले भारत के लिए अस्वीकार्य हैं। उन्होंने कहा कि भारत उस क्षेत्र में मुक्त और सुरक्षित नौवहन का आग्रह करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता रक्षा बलों, अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा उद्योगों के बीच निर्बाध सहयोग के जरिए ही हासिल की जा सकती है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने मिसाइल से लेकर रडार तक, लड़ाकू विमानों से लेकर पनडुब्बियों तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में क्षमताओं का प्रदर्शन किया है। खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से ने कहा है कि खेलों में प्रगति राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है। मिजोरम में आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्रीमती खड़से ने कहा कि सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। भारत ने HIV एड्स के उपचार के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में सहायता के लिए आज बोत्सवाना को 10 टन एंटी रेट्रोवायरल दवाएं भेजी हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि इससे भारत के ग्लोबल साउथ साझेदारों के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने की देश की प्रतिबद्धता का पता चलता है। झारखंड उच्च न्यायालय ने 11वीं और 13वीं JPSC परीक्षाओं की नियुक्तियां रद्द करने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 18 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस आदेश के बाद याचिकाकर्ताओं और इन परीक्षाओं में चयनित कर्मचारियों को संबंधित पदों पर बने रहने की अनुमति दी गई, जिनकी नियुक्तियां सरकारी अधिसूचना से प्रभावित हुई थीं। केरलम के बिजली मंत्री सनी जोसेफ ने कहा है कि राज्य में बिजली की अत्यधिक कमी को देखते हुए सरकार उच्च दरों पर बिजली खरीदने पर विचार कर रही है। उन्होंने बिजली कटौती की समस्या के तुरंत समाधान का भरोसा दिलाया। इस बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता वी मुरलीधरन ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि बिजली कटौती से जनता त्रस्त है। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स आज 778 अंक की गिरावट के साथ 74,004 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 280 अंक गिरकर 23,119 पर बंद हुआ। भारत और अफगानिस्तान के बीच 2020 क्रिकेट मैच आज शाम 7:30 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। पहले मैच में 7 विकेट से जीत दर्ज कर भारत 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है। तीसरा मैच बृहस्पतिवार को दिल्ली में ही होगा। मौसम विभाग ने आज हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, दिल्ली, कच्छ, दक्षिण आंतरिक, कर्नाटक, पुदुचेरी, केरलम, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने मछुआरों को कल तक अरब सागर में और शनिवार तक दक्षिण पश्चिम अरब सागर के पश्चिम मध्य अरब सागर से सटे कुछ हिस्सों में न जाने की सलाह दी है। शनिवार तक बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर में भी समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं प्राची प्रिया। श्रोताओं, शहर के बाजार में मिलने वाला बांस का एक साधारण सा थैला अपने भीतर बदलाव की एक बड़ी कहानी समेटे हो सकता है। ये कहानी एक छोटे से गांव के पारंपरिक शिल्प से शुरू होकर आधुनिक उद्यम, रोजगार और राष्ट्रीय नीति में बदलाव तक पहुंच सकती है। गुरुग्राम में आयोजित सरस आजीविका मेले में असम की विशाखा दीदी की ऐसी ही कहानी सामने आई। वर्ष 2014 में उन्होंने बांस का थैला बनाया। स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद उन्होंने अपने ससुर के बांस शिल्प उद्यम को नए डिजाइनों के साथ फिर से आगे बढ़ाया। सरकारी सहायता और प्रदर्शनियों के जरिए उन्हें बड़े बाजारों तक एक बड़ी लंबी चौड़ी पहुंच मिली। वर्ष 2025 में उन्होंने भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भाग लिया और बांस उत्पादों की बिक्री से 2 लाख रुपए की कमाई की। विशाखा दीदी की यात्रा बताती है कि पारंपरिक संसाधन और स्थानीय हुनर को सही अवसर, बाजार और सरकारी सहयोग मिले तो वो एक सफल उद्यम का रूप ले सकता है। श्रोताओं, बांस भारत के अनेक समुदायों की पारंपरिक आजीविका से लंबे समय से जुड़ा रहा है, लेकिन एक समय पुराने नियामक प्रावधानों के कारण इसकी आर्थिक क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा था। वर्ष 2017 में सरकार ने बांस को पेड़ की श्रेणी से हटाकर इसे कड़े वन नियमों से मुक्त करने का महत्वपूर्ण कदम उठाया। इस बदलाव ने बांस क्षेत्र में नवाचार, उद्यमिता और मूल्यवर्धन के नए रास्ते खोले। आज इसका प्रभाव विशेष रूप से पूर्वोत्तर भारत में दिखाई दे रहा है, जहां बांस रोजगार, व्यवसाय और नवाचार का माध्यम बन गया है। आइए अब विस्तार से समझते हैं कि किस तरह बांस पारंपरिक शिल्प से आगे बढ़कर आधुनिक उद्यम, कृषि, विनिर्माण और टिकाऊ आजीविका का आधार बन रहा है।
2: श्रोताओं, बांस क्षेत्र में बदलाव की कई कहानियां देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही हैं। सिक्किम में गैंगटॉक के पास फैशन डिजाइनर और सतत विकास की प्रणेता चिमी ओंगमू भूटिया का लक्सटल डिजाइन स्टूडियो इसका एक उदाहरण है। महिलाओं द्वारा संचालित ये विनिर्माण उद्यम बांस से हस्तशिल्प, अगरबत्ती, फर्नीचर और आंतरिक सज्जा की वस्तुओं सहित कई उत्पाद तैयार करता है। त्रिपुरा में विजय सूत्रधार ने बांस उत्पादों के निर्माण को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी को अपनाया है। नागालैंड में दीमापुर के आसपास स्वयं सहायता समूह बांस आधारित खाद्य उत्पादों में मूल्यवर्धन कर रहे हैं। वहीं खोरोलो क्रिएटिव क्राफ्ट्स जैसे स्थानीय उद्यम फर्नीचर और हस्तशिल्प का उत्पादन कर रहे हैं। मिजोरम के मामेत जिले में बांस के ऊतक संवर्धन यानी पौध तैयार करने की तकनीक और पॉलीहाउस प्रबंधन के जरिए वैज्ञानिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये उदाहरण बताते हैं कि बांस का क्षेत्र अब केवल कच्चे बांस या पारंपरिक हस्तशिल्प तक सीमित नहीं है, इसमें तकनीक, डिजाइन, प्रसंस्करण और आधुनिक बाजार के जरिए नए अवसर पैदा हो रहे हैं। लेकिन इतने बड़े बदलाव के लिए केवल कुशल कारीगर पर्याप्त नहीं है, इसके लिए प्रौद्योगिकी, प्रसंस्करण सुविधाएं, प्रशिक्षण और मजबूत बाजार संपर्क भी जरूरी है। यहीं पर सरकारी सहायता की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। राष्ट्रीय बांस मिशन बांस किसानों, विनिर्माताओं और विक्रेताओं के लिए खेती, प्रसंस्करण और बाजार तक पहुंच पर ध्यान केंद्रित करता है। इसके साथ ही गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री उपलब्ध कराने के लिए नर्सरियों को भी सहायता दी जाती है। मध्य प्रदेश के विजय पाटीदार का अनुभव बताता है कि बांस किस तरह से किसानों के लिए दीर्घकालिक आजीविका का साधन बन सकता है। वर्ष 2019 में पारंपरिक खेती से लगातार नुकसान होने के बाद उन्होंने बांस की खेती शुरू की। बांस मिशन के सहयोग से उन्होंने करीब 4000 बांस के पौधे लगाए। 2 वर्षों के भीतर उन्होंने बांस की बल्ली यानी पोल्स बेचकर लगभग 75,000 रुपए कमाए। बांस की खेती के साथ साथ उन्होंने अंतर फसल के रूप में मिर्च, शिमला मिर्च, अदरक और लहसुन भी उगाए। इस तरह बांस उनके लिए केवल एक फसल नहीं बल्कि दीर्घकालिक आजीविका का माध्यम बन गया। श्रोताओं, बांस से जुड़े बदलाव का एक महत्वपूर्ण पहलू इसकी प्रौद्योगिकी और व्यावसायिक उपयोगिता का विस्तार भी है। नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच यानी एन NCTAR ने खाद्य और कृषि प्रसंस्करण, निर्माण सामग्री, विनिर्माण मशीनरी, नवीकरणीय ऊर्जा और औद्योगिक उत्पादों सहित कई व्यावसायिक अनुप्रयोगों में बांस प्रौद्योगिकी को समर्थन दिया है। इन प्रयासों से प्रतिवर्ष लगभग 3 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं और बांस उत्पादों का मूल्य संवर्धन 10% से बढ़कर 70% तक हुआ है। बांस की नई संभावनाओं का एक उदाहरण इंजीनियर्ड बांस है। इसे कच्चे बांस के रेशों, पट्टियों या छोटे टुकड़ों को आपस में जोड़कर और दबाकर तैयार किया जाता है। इंजीनियर्ड बांस और नए डिजाइन से फर्नीचर को वास्तुकारों, डिजाइनरों और इंटीरियर डेकोरेटरों का ध्यान मिल रहा है। आपदा राहत और पुनर्वास के लिए अब तक 42 लाख वर्ग फुट से अधिक इंजीनियर्ड बांस संरचनाओं का निर्माण किया गया है। छत्तीसगढ़ में करीब 20,000 बच्चों के लिए 576 स्कूल कक्ष इंजीनियर्ड बांस से बनाए गए हैं। ये दिखाता है कि बांस अब उन निर्माण क्षेत्रों में भी अपनी जगह बना रहा है जो कभी मुख्य रूप से पारंपरिक औद्योगिक सामग्रियों से जुड़े माने जाते थे।
1: श्रोताओं, बांस क्षेत्र में बदलाव की कहानी केवल उत्पादों और तकनीक तक सीमित नहीं है। इसकी मूल्य श्रृंखला में महिलाओं की भागीदारी भी लगातार महत्वपूर्ण होती जा रही है। महिलाओं के स्वयं सहायता समूह बांस आधारित उत्पादन और उद्यमों के जरिए आय, रोजगार और आत्मनिर्भरता के नए अवसर तैयार कर रहे हैं। आइए अब जानते हैं कि बांस आधारित उद्यमों ने महिलाओं की

0: जीविका को किस तरह मजबूत किया है और प्रशिक्षण तथा क्षमता विकास इस बदलाव में किस तरह मददगार साबित हो रहे हैं।
1: श्रोता, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में बांस आधारित अगरबत्ती पहल महिलाओं की बदलती आजीविका का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। गढ़चिरौली अगरबत्ती परियोजना यानी GAP ने वर्ष 2012 में जिले भर में उत्पादन केंद्र शुरू किए। वर्ष 2020 तक इस परियोजना के 32 केंद्र थे। इनमें लगभग 90% श्रमिक महिलाएं थी। प्रत्येक महिला की मासिक आय लगभग 5,000 रूपए तक पहुँच गयी। रोजगार के दिनों में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई। जहाँ पहले महिलाओं को साल में करीब 45 से 60 दिन का काम मिलता था, वहीं ये बढ़कर 225 दिनों से अधिक हो गया। काम घर के करीब होने लगा और शारीरिक रूप से कम थकाऊ भी हुआ। इसके साथ महिलाओं को नए कौशल, आत्मविश्वास और नेतृत्व के अवसर मिले। इस पहल ने आय के स्रोत के रूप में वनों पर निर्भरता को भी कम किया। श्रोताओं, ऐसी कहानियों के पीछे क्षमता विकास और प्रशिक्षण की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। CSIR राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान यानी CSIR NERI नागपुर ने जून 2026 में महिला स्वयं सहायता समूह के लिए बांस हस्तशिल्प पर 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। इस प्रशिक्षण का विषय था फ्लाई एश डंप पर उगाए गए बांस से बने हस्तशिल्प के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूह का सशक्तिकरण। प्रशिक्षण में बांस की कटाई, उपचार और प्रसंस्करण, हस्तशिल्प उत्पादन, मूल्यवर्धित उत्पादों का विकास, उद्यमिता, ब्रांडिंग, विपणन और उत्पाद डिजाइन जैसे क्षेत्रों में व्यवहारिक कौशल प्रदान किए गए। इस पहल ने ये भी दिखाया कि पुनः प्राप्त फ्लाई एश डंप स्थलों को उत्पादक परिदृश्यों में बदला जा सकता है। इससे स्थानीय समुदायों के लिए पर्यावरणीय और सामाजिक आर्थिक दोनों तरह के लाभ पैदा हो सकते हैं।
0: श्रोताओं, बांस की पूरी कहानी को देखें तो इसमें एक तरफ किसान है, दूसरी तरफ कारीगर और स्वयं सहायता समूह है। इनके साथ तकनीक, प्रशिक्षण, प्रसंस्करण और बाजार जुड़ रहे हैं। यही जुड़ाव बांस को एक पारंपरिक संसाधन से आगे ले जाकर आधुनिक मूल्य श्रृंखला का हिस्सा बना रहा है। वर्ष 2017 में नियामक बदलाव के बाद बांस क्षेत्र में नवाचार और उद्यमिता के लिए नए अवसर खुले। राष्ट्रीय बांस मिशन जैसे प्रयासों ने खेती, प्रसंस्करण और बाजार तक पहुंच को समर्थन दिया। वहीं NECTAR जैसी संस्थाओं के माध्यम से बांस के नए व्यावसायिक उपयोगों को बढ़ावा मिला। आज बांस से थैले और हस्तशिल्प ही नहीं बल्कि अगरबत्ती, फर्नीचर, आंतरिक सज्जा की वस्तुएं, खाद्य उत्पाद, निर्माण सामग्री और इंजीनियर्ड संरचनाएं भी तैयार हो रही हैं। इससे बांस की मूल्य श्रृंखला अधिक विविध और मूल्य संचालित बन रही है। श्रोताओं, बांस की कहानी अब केवल एक पौधे या पारंपरिक शिल्प की कहानी नहीं रह गई है, ये लोगों, संभावनाओं और परिवर्तन की कहानी बन रही है। पूरे भारत में बांस आज आजीविका, उद्यम और स्थायी अवसरों का माध्यम बन रहा है। इसलिए भारत में बांस की कहानी अब केवल इस बारे में नहीं है कि बांस से क्या बनाया जा सकता है, ये इस बारे में है कि जब किसी पारंपरिक संसाधन को प्रौद्योगिकी, उद्यम और अवसर से जोड़ा जाता है तो स्थानीय समुदायों के लिए कितने नए रास्ते खुल सकते हैं। इसी के साथ कार्यक्रम विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। इस कार्यक्रम को तैयार किया था हमारे सहयोगी उत्पल कुमार ने, प्रस्तुति सहायक अलका सिंह। नमस्कार।
2: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। नवदिल्ल्या प्रतिपादितं यत् खाती प्रदेशे वाणिज्यिक पोतानां, सामुद्रिक यात्रिणां, नागरिकाणां तथा नागरिक मूल संरचनायाः लक्ष्यकरणं भारताय अस्वीकार्यमस्ति। रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः रक्षाक्षेत्रे आत्मनिर्भरतां प्राप्तुं सशस्त्र बलानां, रक्षानुसंधान विकास संघटन संस्थायाः तथा उद्योग जगतः मध्ये अधिक सहकारस्य आह्वानं कृतवान्। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली चेत्येतेषां मुख्यमंत्रिभिः यमुना नद्याः पुनरुद्धाराय किशाऊ बहुउद्देशीय बंध परियोजना संबद्धे संधौ हस्ताक्षराणि कृतानि। अमेरिकायाः न्यायालयेन वैदेशिक छात्राणां वार्ताहराणां च कृते ट्रम्प प्रशासनेन निर्धारितेषु नूतन पारगमनानुमतिपत्र नियमेषु प्रतिबन्धः स्थापितः। अपि च पुरुष क्रिकेट क्रीडायां भारतम् अद्य सायं नवदिल्ल्याम् अफगानिस्तानं विरुध्य द्वितीयायां विंशति प्रतिविंशति अन्ताराष्ट्रिय स्पर्धायां क्रीडिष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। नवदिल्ल्याम् आयोजितस्य 18तमस्य ब्रिक्स शिखर सम्मेलने प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना चीनदेशस्य राष्ट्रपतिना सह वार्तालापः कृतः इति विदेशमन्त्रालयेन संसूचितम्। नवदिल्ल्यां साप्ताहिक वार्ताहर सम्मेलनस्य समये मन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीरजायसवालः अवदत् यत् तयोः वार्तालापस्य समये प्रधानमन्त्री सबलं प्रतिपादितवान् यत् उभौ पक्षौ परस्परं मूलचिन्ताविषये संवेदनशीलतां दर्शयितव्यम्। ओमानस्य तटसमीपे वाणिज्यिकपोतस्य एमटीएल गैया इत्यस्य उपरि कृते आक्रमणसम्बन्धि प्रश्नस्य उत्तरं ददन् श्रीजयसवालः उक्तवान् यत् अस्मिन् प्रदेशे वाणिज्यिकपोतानां समुद्रीयकर्मकराणां नागरिकाणां तथा नागरिकमूलसंरचनायाः लक्ष्यीकरणं भारताय अस्वीकार्यमस्ति। पाकिस्तानद्वारा जैशे मोहम्मद संघटनस्य प्रमुखाय मसूद अजहर इत्यस्मै पाकिस्तानस्य 70 लक्ष रूप्यकाणां पारितोषकस्य घोषणासम्बन्धि प्रश्नस्य उत्तरं ददन् विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीरजायसवालः उक्तवान् यत् पाकिस्तानस्य एतादृशानि कौशलानि जनवञ्चनायाश्च प्रयत्नाः नूतनाः न सन्ति। भारतं पूर्वमपि एतादृशान् प्रयत्नान् दृष्टवान् अस्ति। श्रीजायसवालः उक्तवान् यत् पाकिस्तानं केवलं घोषणाः न कृत्वा दृढकार्याणि कुर्यात्, यतः एतादृश्यः घोषणाः अन्ततः निष्फलाः एव भवन्ति। रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः अद्य उक्तवान् यत् भारतं रक्षाक्षेत्रे आयातेषु आश्रितं न भवेत्, अपितु आत्मनिर्भरता दिशि अग्रे गच्छेद् इति सुनिश्चेतुं प्रशासनेन विविधाः उपायाः कृताः सन्ति। सः बलं दत्तवान् यत् रक्षाबलानां अनुसंधान विकास संस्थानां तथा उद्योग जगतः मध्ये निर्बाध सहकारेण आत्मनिर्भरता प्राप्तुं शक्यते। असौ प्रौद्योगिकीं शीघ्र स्वीकरणाय तथा भारतस्य रक्षानिर्माण पारिस्थितिकी तन्त्रस्य सुदृढीकरणाय अधिकसंवादस्य सह विकासस्य सह उत्पादनस्य च आवश्यकतायां बलं दत्तवान्। नवदिल्ल्याम् ऐषमः रक्षानुसंधान विकास संघटन उद्योग समन्वय उपवेशनम् विमर्श इत्येतं संबोधयन् श्री सिंहः उक्तवान् यत् रक्षानुसंधान विकास संघटन संस्थया युद्ध विमानेभ्यः आरभ्य पनडुब्बी पर्यन्तं अथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर्यन्तं च विविधेषु क्षेत्रेषु स्वकीयाः क्षमताः प्रदर्शिताः सन्ति। रक्षामंत्री उक्तवान् यत् विगतेषु कतिपयेषु वर्षेषु रक्षाक्षेत्रे कृताः परिष्काराः अभूतपूर्वाः सन्ति तथा अनेके महत्वपूर्णाः निर्णयाः स्वीकृताः येन अस्मिन् क्षेत्रे व्यापक परिवर्तनं जातम्।
3: टीडीएफ के माध्यम से स्टार्टअप्स को ग्रांट्स दिए जा रहे हैं और अनेक टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन स्टेज तक पहुंच चुकी हैं। आईडेक्स ने भी डिफेंस इनोवेशन के लिए एक नया इकोसिस्टम भी तैयार किया है जहां स्टार्टअप्स हमारी वास्तविक ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स के आधार पर सॉल्यूशंस विकसित कर रहे हैं। अब डीआरडीओ और इंडस्ट्री की पार्टनरशिप केवल प्रोडक्शन तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। रिसर्च, डिजाइन, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन और मैन्युफैक्चरिंग की पूरी वैल्यू चेन में साझेदारी हमें बढ़ानी हो।
2: उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली चेत्येतेषां नगराणां मुख्यमंत्रिभिः अद्य यमुना नद्याः पुनरुद्धाराय किशाऊ बहुउद्देशीय बंध परियोजना संबद्धे संधौ हस्ताक्षराणि कृतानि। नवदिल्ल्यां केन्द्रीय गृहमन्त्रिणः अमितशाहस्य उपस्थितौ अस्मिन् संधौ हस्ताक्षराणि जातानि। अस्मिन् अवसरे केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल, केन्द्रीय गृह सचिव, केन्द्रीय जल संसाधन सचिव तथा संबद्ध राज्याणां मुख्य सचिवाश्च उपस्थिताः आसन्। अस्य वर्षस्य जून मासे केन्द्रीय गृहमंत्री एतेषां राज्याणां मुख्यमंत्रिभिः सह अस्मिन् विषये उपवेशनस्य अध्यक्षता

0: Good evening and welcome to Market Mantra. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor Prachi Priya.
1: नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है. श्रोताओं, स्टूडियो में आज चर्चा के लिए हमारे साथ विराजमान हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ ए के भट्टाचार्य. महोदय, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन.
2: नमस्कार, धन्यवाद.
1: चर्चा शुरू करेंगे मगर उससे पहले आइए सुने सुर्खियां.
0: Benchmark domestic stock market indices decline. Sensex falls nearly 800 points. Nifty settles at 23,119.

0: Country's overall workforce participation rate, WPR, increases to 52.8% in August, highest level since March this year. And in the global crude oil market, Brent crude rises by 0.4%.
1: प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में गिरावट, सेंसेक्स लगभग 800 अंक लुढ़का, निफ्टी 23,119 पर बंद हुआ। देश की कुल कार्यशक्ति भागीदारी दर अगस्त माह में बढ़कर 52.8% हो गई है, इस वर्ष मार्च के बाद सबसे ऊंचा स्तर है। और ब्रेंट क्रूड कच्चे तेल की कीमत लगभग आधा प्रतिशत बढ़ी।

0: And before we take our main stories in detail, here is an important disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: श्रोताओं, जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे समक्ष एके भट्टाचार्य जी विराजमान हैं. उनसे हम तमाम आर्थिक खबरों पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे. लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं कि दिन के अंतराल में दोनों ही प्रमुख शेयर सूचकांकों ने कैसा व्यवहार किया. प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक आज गिरावट के साथ बंद हुए. सेंसेक्स 778 अंक यानी 1% की गिरावट के साथ 74,004 पर बंद हुआ. वहीं निफ्टी 280 अंक यानी 1.2% फिसलकर 23,119 पर स्थिर हुआ. बाजार के व्यापक स्तर पर भी भारी बिकवाली देखी गई. निफ्टी मिड कैप 100 सूचकांक 2% से अधिक और निफ्टी स्मॉल कैप 100 सूचकांक लगभग 2.5% नीचे आया. शुरुआत में बाजार गैपअप के साथ खुले, लेकिन वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण जल्दी ही अपनी बढ़त गंवा दी. इसके बाद दोनों सूचकांक नीचे आ गए और पूरे ही सत्र के दौरान चौतरफा बिकवाली के कारण बाजार में गिरावट देखी गई.
0: Benchmark domestic equity indices ended sharply lower today. Sensex plunged 778 points, or 1%, to close at 74,004. Nifty shed 280 points, or 1.2%, to settle at 23,119. The broader market also witnessed a sharp decline, with the Nifty Midcap 100 index falling 2.1% and the Nifty Small Cap 100 index losing 2.4%. Earlier, the markets opened with a gap up but soon realized it erased their initial gains and amid rising global uncertainties. Both the stock market indices then turned lower and remained on a downward trajectory for the rest of the session as a broad-based sell-off swept across the board.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 23 कंपनियों के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई. सबसे अधिक नुकसान उठाने वाली कंपनियों के शेयरों में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 6%, इंडिगो 4% और टाइटन तथा बजाज फिनसर्व 3% से अधिक नीचे आए. वहीं एचसीएल टेक 4%, इन्फोसिस 3.5% से अधिक और टेक महिंद्रा के शेयर 2.3% की बढ़त के साथ बंद हुए.
0: In the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, 26 out of the 28 sectors edged downward. Among the top underperformers, a capital goods shed 4.2%, realty lost 3.9%, and industrials dropped 3.6%. In contrast, information technology gained 1.9% and focused IT rose 1.5%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was negative, as shares of 3,381 companies declined, 1,109 companies advanced, and 194 companies remain unchanged.
1: और अब जान लेते हैं रुपए का हाल. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में आज 41 पैसे कमजोर होकर 95.96 रुपए पर बंद हुआ. भट्टाचार्य जी, जिस तरीके की हम वैश्विक अनिश्चितताएं देख पा रहे हैं, हमने देखा कि 10-year ट्रेजरी यील्ड वो लगभग 5% को छू करके लौटा और बंद हुआ लगभग 5% पर. ऐसे में जो उभरता बाजार है, यानी कि अगर मैं स्पेसिफिकली भारत के बाजार की बात करूं, उस पर क्या असर पड़ता आप देख पा रहे हैं?
2: देखिए, आपने ठीक ही कहा है कि जो वैश्विक स्थिति जो है
1: जी,
2: वो भारत के स्टॉक मार्केट के ऊपर काफी प्रभाव डाल रहा है इस वक्त. पर मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ वैश्विक स्थिति इसके ऊपर प्रभाव डाल रही है. हमारे देश में भी जो एक आर्थिक जो स्थिति है वो भी एक कारण है. पहली बात तो है कि जो हमारी जो कच्चे तेल की दाम

0: जो है
1: जी
0: वो करीबन $108 पर बैरल ब्रेंट क्रूड ऑयल आ गई है। ये कुछ महीने पहले ये 78, 70, 80 में मंडरा रही थी, अब उसके 80 से बढ़कर 108 में आना। और आप जानते ही हैं कि हमारी जो भारत की जो जो आयात के ऊपर, तेल का आयात के ऊपर जो निर्भरशीलता है वो करीबन 80 से 85% के ऊपर है। तो उससे हमारी जो देश की जो जो फाइनेंसेस जो हैं, कंपनियों की जो कॉस्ट स्ट्रक्चर जो है उसमें काफ़ी प्रभाव डालता है। इसीलिए एक तो स्टॉक मार्केट में उसी का प्रभाव देखने को मिल रहा है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, आपने जो कहा
1: जी
0: कि जो वैश्विक बाजार में,
1: जी
0: पर्टिकुलरली जो अमेरिकन बाजार में जो यील्ड की जो जो जो जो 5% तक आ गई है, उसका ये एक दिन का ये आकलन नहीं है। ये बहुत सालों से जो सरकारों की फिस्कल एक्सेसेस जो हो रही थी, उसी का कारण हम देख रहे हैं कि जो यील्ड, मतलब जो बॉन्ड के जो दाम जो हैं वो गिर रहे हैं और इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है। उससे क्या हो रहा है कि जो FII जो है उनको एक इजी एक ऑप्शन मिल रहा है। वो इजी ऑप्शन वो स्टॉक मार्केट से, हमारे स्टॉक मार्केट से बाहर जाकर अपने अमेरिकन स्टॉक मार्केट में या बॉन्ड पेपर्स में वो अपने आप को निवेश कर रहे हैं, क्योंकि दाम नीचे हो गए हैं और इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है। तो उनकी जो रिटर्न्स जो हैं वो अचानक ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव लग रही हैं। और तीसरा बात जो है, मैं अभी कहता हूँ
1: जी
0: ये कि जो हमारी जो हमारे देश में जो इन्फ्लेशन का जो सिचुएशन जो है, मुद्रास्फीति जिसे हम कहेंगे,
1: जी
0: वो CPI का नंबर अभी कल परसों आया था, उसमें अगस्त का नंबर 4.8% में आया है।
1: जी
0: उसकी यही दर्शाता है कि हमारे देश में जो इन्फ्लेशनरी पोटेंशियल जो है और WPI थोक मूल्य जो है वो करीबन 9% के ऊपर है। तो 9% थोक मूल्य के ऊपर है और खुदरा मूल्य में 4.8% में है। तो इसको दिखाकर जो इन्फ्लेशन की जो ट्रेजेक्टरी जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मौद्रिक नीति के लिए अच्छी नहीं है। तो अगर अक्टूबर में जो जो एक डर कहिए या एक आशा थी या निराशा थी कि इंटरेस्ट रेट शायद बढ़ जाएंगे, वो भी है। और कल फेड का भी निर्णय है कि वो किस तरह से वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाए। बहुत लोगों का मानना है कि कल ही शायद फेड अपना इंटरेस्ट रेट शायद बढ़ा दे। तो उससे क्या होगा कि जो सारी जो वैश्विक स्थिति और भारतीय आर्थिक स्थिति और मार्केट की जो आउटलुक जो है उसमें एक एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, उसी को दर्शा रहा है आज का स्टॉक मार्केट।
2: AKB, you mentioned about how important the interest rates are because of how the RBI will possibly react in its MPC meeting on October 7. If the repo rate goes up, clearly that would also mean that lending rates would go up and the valuation of banking stocks is also affected. Today, the big hit in the domestic stock market, since we've already spoken about global uncertainty and how inflation is being linked to costs and business performance, Bank Nifty took a hit. It went down by 812 points. Is that likely to continue? Because banking performance has been very good as far as the corporates are concerned. Their net interest margins have improved. NPAs have come down. Why is it that banks took a hit today?
0: Well, let me first clarify a couple of points that you raised. The first point that you mentioned was about what was your first point? The first point,
2: sir, I asked you about Bank Nifty, which took a hit today, and RBI's monetary policy meeting will take place, where there is
0: the Reserve Bank
2: assumption
0: of,
2: that the you know it'll go up by 25 basis
0: no,
2: points.
0: No, the Reserve Bank of India's problem is that the liquidity in the economy is very, very high because of $100 billion of inflows coming in. So if the government and the RBI have to tame the inflation, it has to control the liquidity. Now, to control the liquidity, it must raise interest rates. So therefore, इन्फ्लेशन

0: are clearly making a killing.
1: Well, there's no doubt that the OPEC and the other producing countries are going to benefit from this. This is, to my mind, par for the course. What it also means that this money that they are making will have to be used, invested in some places, and if it is going to be West Asian oil producers who are making more money, then I would say there is a medium to long-term positive impact for countries in Asia, particularly India, which gain indirectly from more business, more investment, more manufacturing activities in that part. So while in the short term, India faces the impact of higher crude oil prices, its trade deficit may widen a bit, but if the oil prices do not stay elevated at unreasonably high prices like they are today, if they settle down, I would say that it's not an unmitigated disaster.
0: Let's have a look now at the bullion market.
2: भारतीय सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने का मूल्य समाचार तैयार किए जाने तक 0.7% की गिरावट के साथ 1,50,902 रुपये प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था, जबकि चांदी मामूली गिरावट के साथ 2,28,741 रुपये प्रति किलोग्राम पर चल रही थी।
0: AKB, your comments on silver prices, which are relatively stable, but gold. One was expecting it to really pick up, but do you see the geopolitical uncertainty and really the tendency towards buying debt as securities, well, by arbitrages as a reason why gold prices are coming down?
1: Gold is and silver also are become instrument for investing your surplus resources, is a store of value, and which is what we are seeing right now, where Indians are investing in gold. As a matter of fact, India imports a lot of gold and silver as well. So this is what exactly is happening.
2: बहुत बहुत धन्यवाद भट्टाचार्य जी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए.
1: नमस्कार.
0: And before we close, a reminder of the headlines. Domestic benchmark, domestic stock market indices decline. Sensex falls nearly 800 points. Nifty settles at 23,119. The country's overall workforce participation rate increases to 52.8% in August, the highest level since March this year. And in the global crude oil market, Brent crude rises by 0.4%. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा. विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई. नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये जानकारी दी.
5: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए. दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और तीन पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए.
4: जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर 70 लाख रुपए के पुरस्कार की पाकिस्तान की घोषणा पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस तरह के दिखावे नए नहीं हैं.
5: हम लोगों ने कई दफा देखा है कि इस प्रकार का आंख में धूल झोंकने वाली हरकत पाकिस्तान करता रहा है. इससे एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर के नाम पे अनाउंसमेंट करने की जरूरत नहीं है, उनको एक्शन लेना चाहिए क्योंकि उनको खुद ही पता है कि लोग कहां हैं, उनको अरेस्ट करना चाहिए.
4: ओमान के तट पर वाणिज्यिक जहाज MTEL गाइया पर हमले पर श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों, चालक दल के सदस्यों, लोगों और असैन्य बुनियादी ढांचे पर हमले भारत के लिए

0: अस्वीकार रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत उस क्षेत्र में मुक्त और सुरक्षित नौवहन का आग्रह करता है। देश के 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने आज यमुना नदी का अविरल प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए किशाऊ बहुउद्देश्य परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली शामिल हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने विश्वास व्यक्त किया कि यह परियोजना पूरी होने पर इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय बन जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने किशाऊ परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया है। केंद्र सरकार लगभग 90% और 10% राज्य सरकारें खर्च करेंगी। श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पानी से जुड़ा यह 10वां विवाद है जो अब सुलझने वाला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता रक्षा बलों, अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा उद्योग के बीच निर्बाध सहयोग के जरिए ही हासिल की जा सकती है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने मिसाइल से लेकर रडार तक, लड़ाकू विमानों से लेकर पनडुब्बियों तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में क्षमताओं का प्रदर्शन किया है। अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम तथा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने आज राजस्थान के एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में डिजिटल लर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। 16 करोड़ रुपए से अधिक की कुल लागत से ये स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए जाएंगे। सरकार जनजातीय विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत और अमरीका के बीच 22वां संयुक्त सैन्य अभ्यास समारोह आज उत्तराखंड में आयोजित किया गया। ये सैन्य अभ्यास उत्तराखंड के औली और राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में एक साथ आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं की संयुक्त सैन्य क्षमता को बढ़ाना है। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स आज 778 अंक की गिरावट के साथ 74,004 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 280 अंक गिरकर 23,119 पर बंद हुआ। दिल्ली में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। पहले मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया था। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मौसम विभाग ने आज हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, दिल्ली, कच्छ, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पुदुचेरी, केरलम, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने मछुआरों को कल तक अरब सागर में और शनिवार तक दक्षिण पश्चिमी अरब सागर में न जाने की सलाह दी है। शनिवार तक बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर में भी समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। India today termed the targeting of commercial shipping, seafarers, civilians and civilian infrastructure in West Asia region as completely unacceptable following the attack on a vessel off the coast of Oman. External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal stated this while replying to a query during a media briefing in New Delhi today.
2: This attack happened off the coast of Oman. It was a Panama flagged ship on which we had 14 Indian nationals or seafarers, of which 13 have been rescued, and we deeply thank the Omani authorities for rescuing our nationals. One Indian national is missing. Search and rescue operations continue with the help of the Omani authorities, and our embassy is in close touch. We urge that free and safe navigation and flow of commerce through international waterways in the region be restored at the earliest.
1: On talks between Prime Minister Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping on the sidelines of the 18th BRICS summit held in New Delhi recently, Mr. Jaiswal said several issues were discussed during the meeting. He said the Prime Minister referred to India's concerns and underlined that both sides should show sensitivity to each other's core concerns.
2: Several issues came up during the discussions. Prime Minister referred to Indian concerns as well and underlined those that both sides should show sensitivity to each other's core concerns and be guided by the three mutual

0: सुर्खियों में
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए वर्ल्ड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम 2026 सतत विकास के लिए हरित अर्थव्यवस्था पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पर्यावरणविद मुकुल सानवाल और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।
2: आज से गुजरात गांधीनगर में एक विशेष आयोजन शुरू हुआ है, वर्ल्ड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम। और इस सम्मेलन का मकसद है कि विश्व भर में सर्कुलर इकोनॉमी की चर्चा को और तेज किया जाए। और जैसा कि अगर थीम की ही बात करें तो थीम रखी गई है सर्कुलर इकोनॉमी ट्रांजिशन फॉर पीपल एंड प्रॉस्पेरिटी। तो आज हम इस सम्मेलन के हवाले से ही सर्कुलर इकोनॉमी पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पर्यावरणविद मुकुल सानवाल कार्यक्रम में शामिल हैं, बहुत स्वागत है आपका।
3: धन्यवाद।
2: तो सबसे पहले मैं थीम पर ही आऊंगा। जैसा कि इस फोरम की थीम है सर्कुलर इकोनॉमी ट्रांजिशन फॉर पीपल एंड प्रॉस्पेरिटी, तो जो सर्कुलर इकोनॉमी है, सबसे पहले तो इस कॉन्सेप्ट को हम आपसे संक्षेप में और आसान शब्दों में समझेंगे और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि कैसे लोगों की समृद्धि के लिए, आर्थिक तरक्की के सही तरीके को अपनाने के लिए सर्कुलर इकोनॉमी का अपनाया जाना जरूरी है।
3: सर्कुलर इकोनॉमी शब्द का शुरुआत हुई थी विकसित देशों से और ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे समझने के लिए कि ये देखा गया है

0: कि औसतन इस विश्व में एक व्यक्ति 13 टन मटेरियल का प्रयोग हर साल करता है। 13 टन मटेरियल, जिसमें पत्थर भी है, स्टील भी है, अन्य पदार्थ भी है, एक औसतन। पर इसकी मुख्य बिंदु यह है कि विकसित देशों में वो 6 गुना ज्यादा प्रयोग करते हैं मटेरियल का अन्य लोगों की तुलना में। तो हम जब देखते हैं, कहीं प्रोस्पेरिटी देखते हैं, विकास देखते हैं, तो हमको लगता है कि हमको भी उसी तरह से अगर हो जाए तो कैसा रहेगा। हम भूल जाते हैं उनका पदार्थों का प्रयोग 6 गुना ज्यादा है। और इसी के साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि ये बढ़ता जा रहा है। अब जो सर्कुलर इकोनॉमी की बात भारत से शुरू हुई है
1: जी,
0: कि व्यक्ति और समाज को आगे बढ़ाना है, इसको सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में 2018 में इस बात की थी, और अब पर्यावरण मंत्री ने गांधीनगर ने भी उसी की चर्चा की है। और प्रधानमंत्री मोदी जहां भी जब बात करते हैं विश्व नेताओं से या संयुक्त राष्ट्र संघ में, इस बात पर चर्चा देते हैं कि हमको लाइफ पर जोर देना है, कि व्यक्ति और समाज कि हमारी लाइफस्टाइल, हमारी दिनचर्या, हमारा कंजम्पशन कम होना चाहिए
1: जी।
0: तो ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि हम जब अब तुलना करते हैं कि वो 6 गुना ज्यादा क्यों है और उसका सोल्यूशन कहाँ निकलेगा, तो उनका सोल्यूशन है कि हम प्रोडक्शन पैटर्न को चेंज करें, हम अपने आर्थिक जो उत्पादन होता है उस पर हम अंकुश लगाएं। हमारे यहाँ क्योंकि इतना कम प्रयोग होता है, ये कहा गया है प्रधानमंत्री से, जैसे मैंने कहा शुरू हुआ था 2018 में संयुक्त राष्ट्र में, कि हमको अपना ही जो हम प्रयोग करते हैं, जो उपयोग करते हैं, उसको हम कम करें। ये दो बहुत बड़े, दो अलग दिशाएं हैं
1: जी।
0: अब महत्व जो भारत कह रहा है, जो मंत्री जी ने कहा गांधीनगर में, उसका ये है कि अब हम भी विकसित होंगे, अन्य देश भी विकसित होंगे, उद्योग बढ़ेगा। तो अगर हम अभी से अपना कंजम्पशन जो हम प्रयोग करते हैं अगर हम सीमित रखेंगे, उसको ज्यादा बर्बाद नहीं करेंगे, तो आगे चल के फायदा होगा। इसका ये महत्व है कि हम उनकी तुलना में ये ना देखें कि जो पदार्थ निकल रहे हैं फैक्ट्री से, कैसे उसको उपयोग करें या उसको रिसाइकल करें, रीयूज करें, पर जो हम खरीद रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, व्यक्ति या समाज कर रहा है, उस पर अगर परिवर्तन होगा तो बुनियादी रूप से आगे चल के जो फैक्ट्री से निकल रहा है उसका कम वेस्ट होगा, उसका कम प्रदूषण होगा।
1: आपने जैसा कि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के वक्तव्य का उल्लेख किया, तो उसी से जुड़ा हुआ मैं ये प्रश्न आपसे अगला पूछना चाहूंगा। जैसा उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि जो सर्कुलर इकोनॉमी है, ये हमारा सतत विकास का एक प्राचीन नजरिया है, हमारी प्राचीन संस्कृति में यह रचा बसा है।
2: सर्कुलरिटी मस्ट एक्सटेंडेड बियॉन्ड वेस्ट मैनेजमेंट, इट कॉल्स फॉर एम्बाइडिंग सर्कुलर इकोनॉमी प्रिंसिपल्स इनटू द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। फॉर इंडिया दिस इज एन इम्पॉर्टेंट मूवमेंट बिकॉज आवर ब्रिक्स चेयरशिप हैज प्लेस्ड सर्कुलर इकोनॉमी अलोंग साइड सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल्स।
1: आप कैसे देखते हैं कि जो हमारा सर्कुलर इकोनॉमी का या चीजों को रिसाइकल करके दोबारा से इस्तेमाल करने का एक पुराना तरीका था, उसे आज के इस दौर में वापस लाने की कितनी जरूरत है? और आपने मिशन लाइफ का की बात की, जिसका प्रधानमंत्री ने भी बार बार उल्लेख किया है और उसे अपनाने पर जोर दिया है, तो कैसे हम अपने पुराने तरीकों को वर्तमान जीवन शैली में अपनाकर अपनी अर्थव्यवस्था को एक नया मोड़ दे सकते हैं?
0: देखिए, संयुक्त राष्ट्र ने एक अनुकलन किया था, अनुकलन में ये बात आई कि ग्लोबल लेवल पर सिर्फ रिसाइकल या सर्कुलर इकोनॉमी सिर्फ 10% है। इतना राजकीय देशों ने, विकसित देशों ने जितने जोर लगाया है, पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिर्फ 10% है। अगर हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो प्रयोग है, एक इसी तरह से रिसर्च का आकलन है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, भारत में हम इतना विकास हो चुका है, फिर भी ग्लोबल एवरेज से हम आधे हैं। तो भारत एक जो दिशा अपना रहा है अपने विकास के लिए, व्यक्तिगत विकास के लिए, सामाजिक या आर्थिक विकास के लिए, वो एक अलग दिशा है अन्य देशों की तुलना में। भारत का आर्थिक विकास तेजी से चल रहा है, पर हमारा कंजम्पशन अभी अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है। ग्रीन हाउस गैस इमिशंस विश्व एवरेज से आधे हैं। तो ये क्यों है ऐसा? वो इसलिए है कि हमारी सभ्यता इंडस्ट्री के पनपने से नहीं सामने आई है, पर एक प्राचीन सभ्यता जो थी, जो हमारी विचारधाराएं थी, वो शुरू से ही ये थी कि हम प्रकृति को माँ गंगा कहते हैं, उदाहरण है
1: जी।
0: हम प्रकृति को नष्ट करके अपना विकास नहीं देखते हैं। हमारे यहाँ शुरू से रहा है कि नेचर के साथ मिलकर ही हमारा विकास होगा, नेचर को नष्ट करके नहीं होगा। इसीलिए जो सड़कें बन रही हैं, अन्य उत्पादन हो रहा है, उसका असर नेचर पर, उसका असर वातावरण पर क्या होता है, उस पर एक डिबेट, चर्चा होती रहती है। जो डिबेट, चर्चा

0: वहां नहीं है, वो इसीलिए है क्योंकि हमारे सभ्यता का, हमारी संस्कृति का एक ये भाग रहा है शुरू से।
1: जी, आम नागरिक की निश्चित तौर पर जागरूकता की इसमें जरूरत है, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है प्रोड्यूसर्स की, उत्पादकों की, जिसको लेकर भारत सरकार ने भी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक जो कार्यक्रम है वो शुरू किया है, और इसमें आज केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी इसका जिक्र किया कि 83,000 से ज्यादा जो उत्पादक हैं वो इसमें अब रजिस्टर हो चुके हैं और अपनी जो जवाबदेही है उत्पादन को लेकर उसको लेकर वो अपनी जवाबदेही तय कर रहे हैं। तो कितना जरूरी है उद्योगों की ओर से, उत्पादकों की ओर से, कि वो सर्कुलर इकोनॉमी में अपनी जवाबदेही या अपनी जिम्मेदारी तय करें, जिससे कि एक संतुलित जो विकास है वो आगे चलकर हो सके।
0: हम सिर्फ विकास की बात नहीं कर रहे हैं, न करनी चाहिए, हमको संतुलित विकास की बात करनी चाहिए। संतुलित विकास तभी होगा जब कुछ अन्य पहलुओं पर भी ध्यान दिया जाएगा, सिर्फ उत्पादन पर ही नहीं ध्यान दिया जाएगा। आजकल एक चर्चा चल रही है कि जो पदार्थ बेचे जाते हैं उसके अंदर क्या है, उसकी लेबलिंग सही होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि उसका सीधा असर हमारे सेहत पर होता है। इसी तरह से जो मंत्री जी ने बात कही है वो यही है कि इसी तरह से हमको सुनिश्चित करना है कि जो चीज कोई उत्पादन करके बेचता है उसको इस पर ध्यान देना है कि सिर्फ बेचना ही पर्याप्त नहीं है, पर उसका असर क्या हो रहा है उसको भी उसी को देखना है। ये नहीं कि शासन अलग से देखेगा या समाज अलग से देखेगी, जो उत्पादन करके बेच रहा है उसको भी देखना है, उसकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। ये एक नई दिशा आ रही है, इस पर चर्चा होगी, इसका विरोध होगा, पर आगे चल के क्योंकि प्रधानमंत्री ने इस बात को एक पॉलिसी इशू बनाया है, एक नीति का विषय बनाया है, तो कुछ ना कुछ इसमें हल निकलेगा, समय लगेगा पर निकलेगा। इसमें यह है कि जो चीज आप बेच रहे हैं उसका अगर नुकसान हो रहा है तो उसको वापस भी आप ही लीजिए, जो बच जाता है, प्लास्टिक बच जाता है या बोतल बच जाती है उसको आप लीजिए, उसकी आप ही जिम्मेदारी लीजिए और अपने बिजनेस प्लान में उसको सम्मिलित करिए। उसको ये मत सोचिए कि ये आपके आयात निर्यात से कुछ भिन्न है, ये उसी का भाग है। ये बहुत बड़ी नई दिशा आ रही है और मेरे ख्याल से इसका असर होगा, क्योंकि पर्यावरण पर ही नहीं अब ह्यूमन हेल्थ, हमारी सेहत पर भी इसका असर पड़ रहा है, और उससे फिर लेके समाज को, शासन को, आगे चल के वृद्धों की देखरेख या उनकी चिकित्सा पर जो खर्च करना पड़ता है वो इससे कहीं ज्यादा है।
1: मैं चर्चा में, जैसा कि शुरू में आपने जिक्र किया, उसी पर वापस आना चाहूंगा कि विकसित देश जिस तरह से पर्यावरण में, चाहे वो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हो या प्रदूषण के मामले में उनका कॉन्ट्रीब्यूशन हो, इसको लेकर एक बहुत बड़ा ये मसला वैश्विक स्तर पर रहा है। हम इस फोरम की ही चर्चा करें तो इसमें अगर देखें तो लगभग 65 से ज्यादा देश शामिल हुए हैं, और इसमें ज्यादातर वो देश हैं जो ग्लोबल साउथ हैं, जो विकासशील देश हैं। ऐसे में क्या संदेश देता है ये फोरम की विश्व स्तर पर, जो विकासशील देश हैं वो अपने विकास के मॉडल को एक सर्कुलर मॉडल की तरह से जो प्रस्तुत कर रहे हैं पूरी दुनिया के सामने और विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, तो कैसे विश्व स्तर पर आने वाले समय में ये एक बहुत बड़ा संदेश होगा और संतुलित विकास की ओर जिस तरह से बढ़ना हमें जरूरी है पूरी दुनिया को, उसकी तरफ एक सीख होगी।
0: देखिए, आपने बहुत अहम बात कही, क्योंकि ये जो इवेंट हो रहा है या ये जो चर्चा हो रही है गांधीनगर में, इसकी पहल फिनलैंड और नेदरलैंड से आई है, और नेदरलैंड में अगर आप देखेंगे तो वहां पे साइकिलों का बड़ा भारी प्रयोग होता है आवागमन के लिए
1: जी।
0: उनकी संतुलित विकास और उनकी वेस्ट या सर्कुलर इकोनॉमी पर ध्यान बहुत पहले से रहा है फिनलैंड, नेदरलैंड, इस तरह के अन्य देशों में। जब ये उनने पहल की है तो वो अपने अन्य विकसित देशों पर भी ध्यान दे रहे हैं जो ज्यादा प्रयोग करते हैं, ज्यादा वेस्ट करते हैं, और विकासशील देशों पर भी ध्यान दिया जा रहा है कि इस देखिए अगर आपने वो रास्ता अपनाया तो फिर दुनिया में बहुत भारी असर पड़ेगा, व्यक्तियों पर असर पड़ेगा, और हो सकता है कुछ पदार्थों की कमी भी बन जाए, और अगर प्रदूषण जल स्तर पर पहुंचता है तो उसका भी असर होगा। कि हम विकासशील देशों की तरफ देखते हैं, उनकी समृद्धि को देखते हैं, हम ये नहीं देखते हैं कि उसमें कमियां क्या हैं, और हम अगर उसी स्तर पर पहुंचना है तो क्या कोई अलग रास्ता है जिससे हम पहुंच सकते हैं। मिशन लाइफ वो अलग रास्ता दिखा रहा है, भारत को ही नहीं अन्य विकासशील देशों को, कि जब आप अपने को ऊपर उठाएंगे, अपने ग्रोथ करेंगे, अपना वेलबींग का स्तर ऊंचा करेंगे, तो इन चीजों पर भी पहल रखिए कि उस तरह से अगर हमको नहीं बढ़ना है, हमको कुछ अपना ही अलग दिशा निकालनी है। और मेरे ख्याल से सबसे बड़ा लास्टिंग इसका कॉन्ट्रीब्यूशन यही होगा कि हम एक चर्चा शुरू होगी कि एक दूसरी दिशा भी है, एक ही दिशा नहीं है, और वो दूसरी दिशा में मेरे ख्याल से भारत अग्रणी है।
1: एक आंकड़ा अंत में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, उससे संबंधित मेरा ये प्रश्न होगा कि जैसे नीति आयोग ने एक अपनी आर्थिक लाभ की एक रिपोर्ट में कहा है कि नीति आयोग का अनुमान है कि अगर

0: सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल भारत अपनाता है तो भारत बहुत बड़ी संख्या में कच्चे माल की बचत कर सकता है और आर्थिक लाभ भी भारत को इसका होगा। रिसोर्स एफिशिएंसी के जब हम बात करते हैं तो इस मामले में भारत सर्कुलर इकोनॉमी से बहुत कुछ हासिल कर सकता है। और इसका दूसरा उदाहरण हमने आज फोरम में भी देखा, ऐसे कई 125 से ज्यादा स्टार्टअप्स ने अपनी प्रदर्शनी लगाई है वहां, जो इस रिसोर्स एफिशिएंसी को दर्शा रहे हैं कि कैसे सर्कुलर इकोनॉमी के तहत हम उद्योगों को स्थापित कर सकते हैं। तो भारत विकास के जिस मॉडल को लेकर आगे बढ़ रहा है, जिसमें उद्योग तो है, विकास तो है, लेकिन साथ में सतत विकास पर भी फोकस है, तो ये कैसे एक मॉडल पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत हो सकता है?
1: इसका एक जीता जागता उदाहरण है सीमेंट इंडस्ट्री।
0: बिल्कुल
1: सीमेंट हमारा भारत का जो कोयला है उसमें करीब 40% फ्लाई ऐश होती है। एक पदार्थ ऐसा है जिसको फेंका जाता था, जिसका उपयोग सीमेंट में नहीं होता है। उसको लोगों ने सीमेंट के साथ मिला के कंक्रीट की ईंट बनाना शुरू किया। अब अगर आप देखते हैं कि उस कंक्रीट की सीमेंट की ईंटों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, एक नया उद्योग खुल गया। एक इंडस्ट्री का वेस्ट दूसरा इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल हो गया और उसका उपयोग समाज में शुरू हो गया, क्योंकि उसमें स्थिरता भी उतनी है और उसमें खर्चा भी कम होता है, क्योंकि वो एक ही आकार की ईंट होती है, उसको तोड़ने की, उसको जमाने की जरूरत नहीं पड़ती जिस तरह से पुरानी ईंट जमाई जाती थी। तो कई इस तरह के उदाहरण सामने आते हैं। प्रश्न इसमें ये होता है जो बात पहले भी आई कि अभी तक हम विकसित देशों की तरफ देख रहे थे कि वहां जो हुआ है उसी को हमको अपनाना है और सबसे अच्छा वहीं हुआ है। प्रधानमंत्री ने 2018 में जब मिशन लाइफ की बात की, कंजम्पशन पैटर्न पर ध्यान दिया संयुक्त राष्ट्र संघ में, तो उससे एक नई दिशा इसमें ये थी कि हमको कुछ और चीजें देखनी है, कंजम्पशन देखना है और प्रोडक्शन की तरफ ही सिर्फ नहीं देखना है, क्योंकि अब हम अर्बनाइजेशन हो रहा है, हम विकसित हो रहे हैं, तो हम किस तरह कौन सी दिशा अपनाएंगे, विकास का क्या परिभाषा देंगे, वो महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि हमारी आबादी उनसे कहीं ज्यादा है। अगर इतनी आबादी में भारत ही नहीं, अफ्रीका, एशिया, ये जो अन्य विकासशील देश ऊपर आ रहे हैं, उनकी आबादी वेस्ट से कहीं ज्यादा है, 5 गुना 4 गुना ज्यादा है। अगर इतनी बड़ी संख्या की आबादी वही मॉडल अपनाएगी तो गाड़ी आगे नहीं चलेगी, बहुत नुकसान होगा। एक नई दिशा दिखाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री भूपेन्द्र जी यही कह रहे हैं कि भाई हमारी तरफ भी देखो, हमारे यहाँ भी कुछ ऐसा हो रहा है जिसको और लोग अपना सकते हैं, और एक नई दिशा दी जा रही है जिसका असर पर्यावरण पर ही नहीं पर हमारी सेहत के ऊपर भी होगा।
0: बहुत धन्यवाद मुकुल सानवाल जी, आपने कार्यक्रम में अपने महत्वपूर्ण विचार हमारे श्रोताओं के सामने रखे और सर्कुलर इकोनॉमी को लेकर जो भारत का विजन है और जो समय की मांग है उस पर आपने बहुत सी जानकारियां हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू।
2: अभी आप सुन रहे थे वर्ल्ड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम 2026 सतत विकास के लिए हरित अर्थव्यवस्था पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पर्यावरणविद मुकुल सानवाल और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।
3: सुर्खियों में

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज और ये वक्त है सांझ ढले का। सांझ ढले में मैं विमलेश स्वागत करती हूँ आप सभी का। नमस्कार।

जी हाँ, फिल्म उत्सव से आपने ये बेहतरीन सा गीत सुना लता मंगेशकर और आशा भोसले जी की आवाज़ में। और अब एक और प्यारा सा गीत जो मुझे भी बहुत पसंद है और आपको भी बहुत पसंद आएगा, आइए सुनते हैं इस गीत को फिल्म अनाड़ी से मुकेश जी की आवाज़ में।

0: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
1: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
2: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
3: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
4: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
0: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं, तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
5: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

जी हाँ, बस वो नज़र होनी चाहिए जो हमें पहचान सके, नहीं तो बहुत नज़रें ऐसी होती हैं जो हमें अक्सर मिलती हैं लेकिन नज़र किसी एक पर थमती है, और वो अगर नज़र थम जाए तो समझे कि वो बस नज़र आप ही की है और आप ही के लिए बनी है, उन निगाहों से आपका पुराना नाता है। फिलहाल जैसे FM गोल्ड के साथ आपका बहुत बेहतरीन और पुराना नाता है, और ये इस प्रोग्राम का अंतिम गीत होगा जो अभी आप सुनने वाले हैं। फिल्म नमकीन से मैं विमलेश आपसे अनुमति चाहती हूँ। नमस्कार।

आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। देश के 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने आज यमुना नदी का अविरल प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए किशाऊ बहुउद्देश्य परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। दिल्ली सरकार ने विद्यार्थियों के लिए 10,000 सुरक्षित और किफायती हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू की। आशा कार्यकर्ताओं के निर्धारित मासिक प्रोत्साहन को दोगुना कर 3,000 रूपये से बढ़ाकर 6,000 रूपये करने का निर्णय लिया गया। दिल्ली नगर निगम ने 296 दैनिक वेतनभोगी सफाई कर्मचारियों को नियमित कर दिया है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने रैपिडो संचालित करने वाली कंपनी रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर गुमराह करने वाले विज्ञापन के लिए 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है और भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा 2020 क्रिकेट मुकाबला दिल्ली में जारी है। और अब समाचार विस्तार से। देश के 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने आज यमुना नदी का अविरल प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए किशाऊ बहुउद्देश्य परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली। इस समझौते पर नई दिल्ली में केंद्रीय गृहमंत्री

0: अमित शाह की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर श्री शाह ने विश्वास व्यक्त किया कि यह परियोजना पूरी होने पर इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय बन जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने किशाऊ परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया है। दिल्ली मंत्रिमंडल ने किशाऊ बहुउद्देश्यीय परियोजना को लेकर हुए महत्वपूर्ण समझौते पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस परियोजना को वर्षों से लंबित विषय का समाधान बताते हुए केंद्र सरकार तथा संबंधित राज्यों के सहयोग की सराहना की गई। एक रिपोर्ट।
1: जून माह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में छह राज्यों के बीच परियोजना को लेकर सहमति बनी थी, जिसे अब समझौते के रूप में औपचारिक रूप दिया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि किशाऊ परियोजना के समझौते से दिल्ली को 109.9 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिल सकेगा, जिससे राजधानी की पेयजल जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण मदद मिल सकेगा। साथ ही यमुना नदी में पर्यावरण के लिए जरूरी जल प्रवाह को बेहतर करने में भी मदद मिलेगा। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि पानी की कमी दिल्ली की बड़ी चुनौतियों में से एक है और इस परियोजना के आगे बढ़ने से राजधानी की जल सुरक्षा मजबूत बनेगी और कम पानी वाले समय में राजधानी को अतिरिक्त पानी उपलब्ध हो सकेगा। उन्होंने कहा कि परियोजना का महत्व केवल राजधानी को मिलने वाले अतिरिक्त पानी तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे यमुना नदी में पर्यावरण के लिए जरूरी जल प्रवाह को बेहतर करने में भी मदद पहुंचाना है, जो यमुना के पुनर्जीवन और पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने किशाऊ परियोजना को आगे बढ़ाने में सहयोग के लिए पांचों राज्यों को भी धन्यवाद दिया है। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली सरकार ने छात्र छात्राओं के लिए 10,000 सुरक्षित और किफायती हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इसके लिए स्थानों की पहचान के साथ साथ तय समय सीमा में योजना लागू करने के लिए एक विशेष नीति भी तैयार की जा रही है।
2: दिल्ली सरकार ने ये तय किया है कि 10,000 बच्चों के लिए सरकार हॉस्टल बनाएगी, जहां उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी और इकोनॉमिक एकोमोडेशन की चिंता की जाएगी। ये हॉस्टल गर्ल्स के लिए भी बनाए जाएंगे और बॉयज के लिए भी। यहां पर किसी भी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में पढ़ने वाला विद्यार्थी आकर के अपना हॉस्टल फैसिलिटी ले सके, और इसके लिए हमने अलग अलग विभाग जो हॉस्टल बना सकते हैं उनके साथ में मीटिंग्स करी है, लोकेशंस को ट्रेस आउट किया है और पॉलिसी भी ड्राफ्ट करना।
0: श्रीमती गुप्ता ने कहा कि राजधानी में सरकार का प्रयास है कि विद्यार्थियों को रहने के लिए सुरक्षित और सहयोगी माहौल मिले, ताकि वे उचित वातावरण में रहकर पढ़ाई कर सकें और अपने भविष्य की ओर आगे बढ़ सकें।
2: हम ऐसे हॉस्टल्स बनाएंगे कि जहां देश भर से अलग अलग राज्यों से आने वाले पेरेंट्स अपने बच्चों को निश्चिंत होकर के यहां पर छोड़ सके, और बच्चा भी इस चिंता में ना रहे क्या खाना है, कहां रहना है, बल्कि वो अपने सपनों पे कॉन्सेंट्रेट कर सके।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में आज मंत्रिपरिषद की बैठक में आशा कार्यकर्ताओं के निर्धारित मासिक प्रोत्साहन को दोगुना कर 3,000 रूपये से बढ़ाकर 6,000 रूपये करने का निर्णय लिया गया है। ये वृद्धि राजधानी के सभी कार्यरत आशा कार्यकर्ताओं पर लागू होगी और अन्य प्रोत्साहन पहले की तरह जारी रहेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि आशा कार्यकर्ता दिल्ली की प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान भी आशा कार्यकर्ताओं ने महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की थीं। दिल्ली सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आज दिल्ली सचिवालय में छात्रों के रहने की व्यवस्था और सुरक्षा के लिए गठित हाई पावर्ड कमेटी की पहली बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में छात्रों के लिए सुरक्षित, सुलभ और बेहतर आवास व्यवस्था के साथ साथ पूरी दिल्ली में छात्रों की सुरक्षा और सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए मिलकर काम करने पर जोर दिया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
3: हर खबर से जुड़े रहिए, जहां भी हो expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें।
0: दिल्ली नगर निगम ने वर्षों से सेवारत 296 दैनिक वेतनभोगी सफाई कर्मचारियों को नियमित कर दिया है। ये निर्णय लंबे समय से सेवारत सफाई कर्मचारियों के लिए सम्मान, सुरक्षा और स्थायित्व की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर महापौर प्रवेश सिंह बाही ने कहा कि राजधानी की स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने में

0: एमसीडी के सभी 12 जोनों में 40 विध्वंस कार्रवाई की गई। इसके अलावा 16 संपत्तियों को सील किया गया, जबकि लागू भवन मानदंडों और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर 4 विध्वंस आदेश पारित किए गए। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज जेजे क्लस्टर पुनर्वास पहलों की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि बैठक में दिल्ली झुग्गी और जेजे पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन नीति 2026 के तहत बेहतर आवास और रहने की स्थिति पर चर्चा की गई। श्री संधू ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे निवासियों के संपर्क में रहें, उनकी समस्याओं को सुने और उनका तेजी से समाधान भी सुनिश्चित करें। दिल्ली की उपमहापौर डॉ मोनिका पंत ने आज दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के वार्ड संख्या 144 स्थित नेहरू नगर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में सफाई व्यवस्था, पार्कों, गलियों और नागरिक सुविधाओं का जायजा लिया। ये निरीक्षण राजधानी को स्वच्छ, सुंदर और हरित बनाने के लिए उपमहापौर द्वारा चलाए जा रहे दिल्ली को कूड़े से आजादी अभियान के तहत किया गया। दिल्ली सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आज वर्ल्ड स्किल्स शंघाई 2026 के लिए रवाना होने वाली भारतीय टीम को शुभकामनाएं दी हैं। राजधानी में आयोजित एक कार्यक्रम में खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए श्री सूद ने कहा कि खिलाड़ियों का कौशल, उनका आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प नए भारत की ताकत और आकांक्षाओं को दर्शाता है। श्री सूद ने खिलाड़ियों से आह्वान किया कि वे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर देश का मान बढ़ाएं और युवा भारतीयों को भी प्रेरित करें।
1: मैं कौशल भवन में आप सभी के चेहरों पर वो एनर्जी देख रहा हूँ, वो चमक देख रहा हूँ, आंखों में डिटर्मिनेशन देख रहा हूँ, जो मुझे पूरा विश्वास दिलाता है कि आप लोग शंघाई में सिर्फ एक ग्लोबल कंपटीशन का हिस्सा बनने नहीं जा रहे हैं। आप 140 करोड़ भारतवासियों के टेक्निकल एक्सीलेंस, डिसिप्लिन, प्रिसीजन और हमारे बदलते आत्मविश्वास का परचम फहराने जा रहे हैं। ऐसे क्रिटिकल मोमेंट में स्किलिंग की डेफिनेशन और उसके अप्रोच को रिविजिट बहुत जरूरी है।
0: दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता आज दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में 69वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। एक सोशल मीडिया पोस्ट में विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि यह सम्मेलन संसदीय कामकाज और लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने के बारे में विचारों और अनुभवों के आदान प्रदान के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद एनडीएमसी बृहस्पतिवार को चरक पालिका अस्पताल में एक रक्तदान शिविर का आयोजन करेगी। ये शिविर सवेरे 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। एनडीएमसी ने कहा कि शिविर का उद्देश्य नागरिकों को आगे आने और किसी की जान बचाने में योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
2: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA ने रैपिडो संचालित करने वाली कंपनी रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर गुमराह करने वाले विज्ञापन के लिए 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। एक रिपोर्ट।
3: उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि ये जुर्माना गलत ट्रेड प्रैक्टिस, गलत अनुबंध और डार्क पैटर्न के लिए लगाया गया है। इसमें राइड कंफर्म होने से पहले राइडर से ज्यादा पैसे देने के लिए कहा जाता था। ये कार्रवाई भारत में चल रहे कैब और बाइक टैक्सी एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म की सेक्टर वाइड जाँच के बाद की गयी है। जाँच के दौरान CCPA ने पाया कि रैपिडो का एल्गोरिदम कन्फर्म शेमिंग जैसा था, जो डार्क पैटर्न की रोकथाम और रेगुलेशन के लिए 2023 के दिशा निर्देशों के अंतर्गत पहचाना गया डार्क पैटर्न है। इसमें उपभोक्ता को ज्यादा पैसे देने के लिए सहमत नहीं होने पर राइड खोने का डर पैदा करता है। मंत्रालय ने कहा कि रैपिडो के खिलाफ ये कार्रवाई CCPA के राइड हेलिंग और बाइक टैक्सी प्लेटफॉर्म पर एडवांस टिप और डार्क पैटर्न प्रैक्टिस की बड़ी जांच का हिस्सा है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: भारत का राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन आज अपना 67वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस लोक सेवा प्रसारक की शुरुआत 1959 में ऑल इंडिया रेडियो के अंतर्गत एक प्रायोगिक टेलीविजन सेवा के तौर पर हुई थी। हमारे संवाददाता ने बताया कि दूरदर्शन अपनी कई बेहतरीन सेवाओं जैसे सैटेलाइट और डायरेक्ट टू होम सर्विस के जरिए शत प्रतिशत

0: आदि तक पहुंचने वाला माध्यम है।
1: 15 सितंबर 1959 को दूरदर्शन की स्थापना के साथ भारत में टेलीविजन प्रसारण की शुरुआत हुई। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसी दिन दूरदर्शन के पहले प्रसारण का उद्घाटन किया था। वर्ष 1982 में दिल्ली एशिया खेलों के दौरान रंगीन टेलीविजन की शुरुआत ने दूरदर्शन के प्रसारण और दर्शकों की संख्या को नई ऊंचाई दी। वर्तमान में दूरदर्शन के 35 सैटेलाइट चैनल और 66 स्टूडियो केंद्र हैं। ये 24 से अधिक भाषाओं और विभिन्न बोलियों में कार्यक्रम प्रसारित करता है। दूरदर्शन ने रामायण, भारत, हम लोग, बुनियाद, चाणक्य, मालगुडी डेज, शक्तिमान, चित्रहार, फौजी सर्कस और उड़ान जैसे कई लोकप्रिय और यादगार धारावाहिक भी प्रसारित किए। आरजू के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल ने नई दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन, दिल्ली जंक्शन और आनंद विहार टर्मिनल पर डिजिटल लॉकर की सुविधा शुरू की है। वाणिज्यिक पहल के अंतर्गत प्रदान की गई ये सुविधा यात्रियों को सामान के अस्थायी भंडारण के लिए एक सुरक्षित, सुविधाजनक और परेशानी मुक्त विकल्प प्रदान करती है। भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 6 ओवर में 1 विकेट पर 41 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। राजधानी दिल्ली में आज मौसम सामान्य रहा। मौसम विभाग ने बताया कि कल राजधानी में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। एक बार फिर देश के 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने आज यमुना नदी का अविरल प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए किशाऊ बहुउद्देश्य परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। दिल्ली सरकार ने विद्यार्थियों के लिए 10,000 सुरक्षित और किफायती हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू की। आशा कार्यकर्ताओं के निर्धारित मासिक प्रोत्साहन को दोगुना कर 3,000 रुपए से बढ़ाकर 6,000 रुपए करने का निर्णय लिया गया है। दिल्ली नगर निगम ने 296 दैनिक वेतन भोगी सफाई कर्मचारियों को नियमित किया। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने रैपिडो संचालित करने वाली कंपनी रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर गुमराह करने वाले विज्ञापन के लिए 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। और भारत अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मुकाबला दिल्ली में जारी। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये जानकारी दी।
1: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और तीन पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
0: जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर 70 लाख रुपए के पुरस्कार की पाकिस्तान की घोषणा पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस तरह के दिखावे नए नहीं हैं।
1: हम लोगों ने कई दफा देखा है कि इस प्रकार का आंख में धूल झोंकने वाली हरकत पाकिस्तान करता रहा है। इससे एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर के नाम पे अनाउंसमेंट करने की जरूरत नहीं है, उनको एक्शन लेना चाहिए क्योंकि उनको खुद ही पता है कि लोग कहाँ हैं, उनको अरेस्ट करना चाहिए।
0: ओमान के तट पर वाणिज्यिक जहाज MTEL गाइया पर हमले पर श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों, चालक दल के सदस्यों, लोगों और असैन्य बुनियादी ढांचे पर हमले भारत के लिए अस्वीकार्य हैं। उन्होंने कहा कि भारत उस क्षेत्र में मुक्त और सुरक्षित नौवहन का आग्रह करता है। देश के 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने आज यमुना नदी का अविरल प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए केशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली शामिल हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने विश्वास व्यक्त किया कि यह परियोजना पूरी होने पर

0: इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय बन जाएगी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने किशाऊ परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया है। इसमें केंद्र सरकार लगभग 90 और राज्य 10% का खर्च करेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज गुजरात में विभिन्न रेलवे परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने नमक कंटेनर ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री वैष्णव ने शिवलाखा, भीमासर, देवलिया और चंदीसर स्थित 4 गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल राष्ट्र को समर्पित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नमक कंटेनर ट्रेन से नमक के परिवहन में सुविधा होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता रक्षा बलों, अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा उद्योग के बीच निर्बाध सहयोग के जरिए ही हासिल की जा सकती है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने मिसाइल से लेकर रडार तक, लड़ाकू विमानों से लेकर पनडुब्बियों तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में क्षमताओं का प्रदर्शन किया है। देश में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लोगों की समग्र कार्यबल भागीदारी दर WPR अगस्त में बढ़कर 52.8% हो गई है, जो मार्च 2026 के बाद से उच्चतम स्तर है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के मासिक श्रम बल और बेरोजगारी आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण WPR में 1.3% की वृद्धि हुई है और यह 55.8% पर पहुंच गई है। शहरी WPR में 0.5% की गिरावट दर्ज हुई है और यह अगस्त माह में 47% रही है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA ने रैपिडो संचालित करने वाली कंपनी रोपिन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर गुमराह करने वाले विज्ञापन के लिए 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि यह जुर्माना गलत ट्रेड प्रैक्टिस, गलत अनुबंध और डार्क पैटर्न के लिए लगाया गया है। दिल्ली में भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 8 ओवर में 1 विकेट पर 51 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। पहले मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया था। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। श्रृंखला का तीसरा और आखिरी मुकाबला बृहस्पतिवार को दिल्ली में ही खेला जाएगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renuka. India today termed the targeting of commercial shipping, seafarers, civilians and civilian infrastructure in West Asia region as completely unacceptable following the attack on a vessel off the coast of Oman. External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal stated this while replying to a query during a media briefing in New Delhi today.
2: This attack happened off the coast of Oman. It was a Panama flagship on which we had 14 Indian nationals or seafarers, of which 13 have been rescued, and we deeply thank the Omani authorities for rescuing our nationals. One Indian national is missing. Search and rescue operations continue with the help of the Omani authorities, and our embassy is in close touch. We urge that free and safe navigation and flow of commerce through international waterways in the region be restored at the earliest.
1: On talks between Prime Minister Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping on the sidelines of the 18th BRICS summit held in New Delhi recently, Mr. Jaiswal said several issues were discussed during the meeting. He said the Prime Minister referred to India's concerns and underlined that both sides should show sensitivity to each other's core concerns. On the 70 lakh rupee reward announced by Pakistan on Jaish-e-Mohammed chief Masood Azhar, the MEA spokesperson said such gimmicks and attempts at hoodwinking by Pakistan are not new. Chief ministers of 6 states today signed the Kishau Multipurpose Dam Project Agreement for the rejuvenation of the Yamuna River. These states are Uttar Pradesh, Uttarakhand, Himachal Pradesh, Haryana, Rajasthan and Delhi. The agreement was signed in the presence of Union Home Minister Amit Shah in New Delhi. Speaking on the occasion, Mr. Shah expressed confidence that once the project is completed, it will become an important chapter in history. Mr. Shah said the central government will bear approximately 90% of its financial burden, while the remaining 10% will be borne by the participating states.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz और ये वक्त है अब मधुरिमा का। मधुरिमा में मैं विमलेश स्वागत करती हूँ आप सभी का। जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम किसी न किसी राग के बारे में आपको जानकारी देते हैं, तो आज जिस राग का जिक्र है प्रोग्राम में उस राग का नाम है राग दरबारी। आइए सुनते हैं इस राग पर आधारित ये पहला गीत।

राग दरबारी प्रोग्राम मधुरिमा में। और अगर हम राग दरबारी के आरोह की बात करते हैं तो इसमें स ध और प म प ग म रे स है, और इसका जो गंधार स्वर है ग और धेवत है ध। निषाद में सभी स्वर कोमल लगते हैं। इसका गाने का जो समय है रात्रि का दूसरा पहर है।

कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

जी हाँ, राग दरबारी पर आधारित ये बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन संगीत आपने सुना। और राग दरबारी जो है शास्त्रीय संगीत का एक अत्यंत गंभीर राजसी और लोकप्रिय राग है। थाट इसका आसावरी है, जाति जो है इसकी संपूर्ण है। वादी स्वर रे और संवादी स्वर प है। इसी जानकारी के साथ अब राग दरबारी को यहीं समेटने का जो है वक्त आ चुका है। और फिलहाल के लिए मैं विमलेश आपसे अनुमति चाहती हूँ और आपको इस गीत के साथ छोड़े जाती हूँ। नमस्कार।

नमस्कार। स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का यह नया रंग जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। दिल्ली में भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा 2020 क्रिकेट मुकाबला जारी। जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबला हरारे में खेला जा रहा है। ब्रेंडल टेनर ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा। कॉमनवेल्थ क्यू स्पोर्ट्स चैंपियनशिप के लिए भारत की 18 सदस्यीय टीम की घोषणा। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने मिजोरम स्पोर्ट्स इकोसिस्टम की समीक्षा की। और वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप पहली बार अफ्रीका में आयोजित होगी। केनिया को 2029 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी मिली।

0: कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं क्रिकेट से, जहां भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है। भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। पहले मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया था। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। श्रृंखला का तीसरा और आखिरी मुकाबला बृहस्पतिवार को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में ही खेला जाएगा। और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी विशेष। क्या मौजूदा स्थिति है इस मुकाबले की विशेष?
1: प्रशांत, अगर मुकाबले की बात करें तो भारत का दबदबा एक बार फिर से देखने को मिला है। भारतीय टीम ने पहले गेंदबाजी का फैसला करके अफगानिस्तान को बिल्कुल बैक फुट पर रखा है। अफगानिस्तान ने 13.5 गेंदों में 97 रन पर 5 विकेट गंवा दिए हैं और अभी दारविश रसूली और मोहम्मद नबी क्रीज पर मौजूद हैं।
0: 97 रन पर 5 विकेट अफगानिस्तान के हो गए। और किन बल्लेबाजों ने कैसा किया है प्रदर्शन अफगानिस्तान का आज के मुकाबले में विशेष?
1: अफगानिस्तान के कप्तान इब्राहिम जादरान ने अच्छी शुरुआत दिलाने की कोशिश करी, लेकिन अपने स्टार्ट को वो बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाए। उन्होंने 33 गेंदों पर 37 रन बनाए, जिसमें 6 चौके शामिल थे। इसके अलावा रहमानुल्लाह गुरबाज 0 पर आउट हो गए और सिद्दिकुल्लाह अटल 12 ही रन बना सके। उसके बाद गुलबदीन नाइब भी 8 गेंदों पर 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अजमतुल्लाह उमरजई, जिन्होंने पिछले मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया था, वो भी इस मुकाबले में कोई खास प्रदर्शन नहीं कर सके।
0: और अगर भारतीय गेंदबाजों की बात की जाए तो पिछले मुकाबलों में भी उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था। आज कैसा रहा है भारतीय गेंदबाजों का प्रदर्शन अब तक?
1: प्रशांत, जसप्रीत बुमराह की जो कसी हुई गेंदबाजी है उसका रिवॉर्ड मिला है अर्शदीप सिंह, अक्षर पटेल और रवि बिश्नोई, नीतीश कुमार रेड्डी, इन सभी को। बुमराह ने 2 ओवर में 1 मेडन डाला है और 9 रन दिए हैं। केवल 4.5 की इकोनॉमी से उन्होंने गेंदबाजी की है। वहीं अर्शदीप की बात करें तो उन्होंने 2 ओवर में 14 रन देकर 1 विकेट हासिल किया है और अक्षर पटेल अपना स्पेल समाप्त कर चुके हैं। 4 ओवर में 28 रन देकर 1 विकेट लिया उन्होंने। रवि बिश्नोई ने भी आज अपनी गेंदबाजी से काफी प्रभावित किया है, जिन्होंने 3 ओवर में 21 रन देकर 1 विकेट लिया है। वहीं नीतीश कुमार रेड्डी भारतीय टीम की काफी सारी उम्मीदों को आगे लेकर जाते हुए 2 ओवर में 13 रन देकर 2 विकेट लिए।
0: कई खिलाड़ियों की वापसी हुई और श्रोताओं को बता दें कि अफगानिस्तान ने 14 ओवर में 5 विकेट पर 100 रन बना लिए। और विशेष, अगर भारतीय टीम की बात की जाए, इस श्रृंखला से वरुण चक्रवर्ती चोट के कारण बाहर हो गए। कितना चिंताजनक है ये खबर भारतीय टीम के दृष्टिकोण से?
1: जाहिर तौर पर प्रशांत, ये खबर भारतीय प्रशंसकों के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है, क्योंकि चोट के बाद जब वरुण ने श्रृंखला के पहले मुकाबले में वापसी की थी तो दमदार प्रदर्शन किया था। उन्होंने 4 ओवर में महज 4 की इकोनॉमी रेट से 16 रन देकर 1 विकेट लिया था। और प्रशांत, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि एशियन गेम्स में भी वरुण के खेलने पर अभी संशय बना हुआ है।
0: अब चलते हैं सीधे जिम्बाब्वे के हरारे में, जहां जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबला जारी है। पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट पर 294 रन बनाए। मैट रनशो ने सर्वाधिक 109 रन की शतकीय पारी खेली। कूपर कॉनली ने 51 रन का अहम योगदान दिया। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया था। 3 मैचों के श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 18 सितंबर और तीसरा और आखिरी मैच 20 सितंबर को खेला जाएगा। विशेष, पहले मुकाबले की अगर बात की जाए तो बहुत ही रोमांचक मोड़ पर है, और क्या हाल है इस वक्त मुकाबले का?
1: प्रशांत, अभी जिम्बाब्वे जो है उनको जीत के लिए 51 गेंदों पर 80 रन की जरूरत है। जब ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजी करने के लिए क्रीज पर आई थी उनकी टीम, तो ऑस्ट्रेलिया की पारी लड़खड़ाती हुई नजर आई थी। 107 रन पर 4 विकेट उन्होंने गंवा दिए थे, लेकिन मैट रेनशो ने अपनी शानदार शतकीय पारी से ऑस्ट्रेलिया की पारी को संभाला और साथ ही साथ उनको 294 रन के बड़े स्कोर तक ले जाने में अहम योगदान दिया। उनका साथ निभाया ओलिवर पीक ने और एलेक्स कैरी ने, जिन्होंने अहम साझेदारियां करते हुए टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। अगर बात करें अभी हम जिम्बाब्वे की, तो वहां उनके जो मुख्य खिलाड़ी रहे उन्होंने ज्यादा कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया। कप्तान सिकंदर रजा ने 76 गेंदों पर 57 रन बनाए। वो चाहते तो एक बड़ी पारी खेलने की और कोशिश कर सकते थे और जिम्बाब्वे को एक अच्छी स्थिति में ले जा सकते थे, लेकिन अभी ब्रेड इवांस और वेलिंगटन मसगाडजा क्रीज पर मौजूद है और एक तरह से औपचारिकता ही बची है इस मुकाबले में।
0: जी,
1: ऑस्ट्रेलिया जो है पूरी तरह से हावी है।
0: विशेष, आज के मुकाबले में कई रिकॉर्ड बने हैं, सचिन का भी रिकॉर्ड टूटा है।
1: जी बिल्कुल प्रशांत, आज ब्रेंडन टेलर ने सचिन तेंदुलकर के सबसे लंबे वनडे करियर का रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया है।
0: जी,
1: टेलर ने 2004 में डेब्यू किया था और उनका वनडे करियर अब तक 22 साल 146 दिन का हो गया है।
0: जी,
1: सचिन का जो करियर रहा वो 22 साल और 91 दिन का था। टेलर जिम्बाब्वे के सबसे सफल बल्लेबाजों में से भी एक है। अपने वनडे करियर में टेलर 205 पारियों में 6704 रन बना चुके हैं। वहीं जिम्बाब्वे की ओर से दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं, उनसे आगे सिर्फ एंडी फ्लावर हैं, जिन्होंने सर्वाधिक 6786 रन बनाए हैं।
0: और विशेष मुकाबले में और कौन सा रिकॉर्ड ध्वस्त हुआ आज?
1: एक यूनिक रिकॉर्ड बना है प्रशांत, आज मैट रेनशॉ ने आज जो है अपने करियर का पहला वनडे शतक तो लगाया ही, साथ ही साथ जिम्बाब्वे की धरती पर ओडीआई का सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाले ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज बन गए हैं, और इसके साथ ही वह जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया सीरीज में सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं।
0: अब देखना दिलचस्प होगा कि मुकाबला किस ओर रुख लेता है। अहमदाबाद पहली बार कॉमनवेल्थ क्यू स्पोर्ट्स चैंपियनशिप की मेजबानी के लिए तैयार है। आयोजन भारत में होने जा रहा है, जिसके दूसरे संस्करण के लिए 18 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। ये चैंपियनशिप 7 से 10 अक्टूबर तक वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होगी। एक रिपोर्ट।
2: इस प्रतियोगिता में इंग्लिश बिलियर्ड्स, स्नूकर, 10 बॉल पूल, हे बॉल और ब्लैक बॉल जैसे लगभग 46 कॉमनवेल्थ देशों के क्यू खिलाड़ी एक साथ आएंगे। वर्ल्ड कॉन्फेडरेशन ऑफ बिलियर्ड्स स्पोर्ट्स और कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स के समर्थन से आयोजित यह टूर्नामेंट BSFI के 100 साल पूरे होने के समारोह का भी प्रमुख आकर्षण होगा। 2025 में मॉरिशस में पहले संस्करण में 5 मेडल जीतने के बाद भारत कॉन्फिडेंस के साथ चैंपियनशिप में उतरेगा, जिसमें विमेंस हेबॉल में विद्या पिल्लई का गोल्ड और मेंस हेबॉल में शिवम अरोड़ा और विमेंस 10 बॉल पूल में चित्रा मगी माई राज के सिल्वर मेडल शामिल हैं। तीनों मेडलिस्ट को इस साल की चैंपियनशिप में डायरेक्ट एंट्री मिली है। भारत की सबसे बड़ी मेडल उम्मीदों में से एक विद्या पिल्लई है, जो मौजूदा कॉमनवेल्थ विमेंस हेबॉल चैंपियन है, जिन्होंने पिछले साल मॉरिशस में साउथ अफ्रीका की मरीना जैकब्स पर एक शानदार शूटआउट जीत हासिल करके गोल्ड मेडल जीता था। भारतीय टीम में जाने माने इंटरनेशनल परफॉर्मर और उभरते हुए टैलेंट का भी अच्छा मिश्रण है। महिलाओं के दल में मौजूदा IBSF महिला वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन अनुपमा रामचंद्रन, रेवन्ना उमादेवी के साथ भारत के इंग्लिश बिलियर्ड्स चुनौती का नेतृत्व करेंगी, जबकि 2026 एशियाई महिला स्नूकर चैंपियन कीर्तना पांड्यान, श्रुति लक्ष्मी नारायणन और इशिका शाह के साथ स्नूकर में देश के अभियान का नेतृत्व करेंगी। पुरुषों की टीम में सिद्धार्थ पारेख, लक्ष्मण रावत और संदीप गुलाटी जैसे अनुभवी खिलाड़ी हैं। इसके साथ ही युवा टैलेंट रियान रजमी और पारस गुप्ता भी हैं। चैंपियनशिप में पुरुषों और महिलाओं के 10 मेडल सेट होंगे, जिनमें बिलियर्ड्स इस साल कॉमनवेल्थ क्यू स्पोर्ट्स चैंपियनशिप प्रोग्राम में पहली बार शामिल होगा।

0: करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
1: युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे ने आइजोल के अपने दौरे के दौरान मिजोरम में स्पोर्ट्स इकोसिस्टम का रिव्यू किया। इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने, एथलीटों को सपोर्ट करने और नॉर्थ ईस्ट के स्पोर्ट्स टैलेंट के लिए ज्यादा मौके बनाने पर बल दिया।
2: We need to develop sports infrastructure as well as our youth also, because our youth is the future of the India and for Viksit Bharat. So from central government and always our prime minister are trying to build youth for nation building.
1: ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस लक्ष्य के अनुरूप है जिसमें देश में मजबूत खेल संस्कृति विकसित करने और युवाओं को आगे बढ़ाने के ज्यादा मौके देने की बात कही गई थी। रक्षा खडसे ने आइजोल में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेंटर का भी दौरा किया और एथलीटों, कोच और स्पोर्ट्स स्टाफ से बातचीत की। एथलीटों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने उनकी ट्रेनिंग, प्रतिस्पर्धी अनुभवों और उम्मीदों के बारे में सुना और खेल में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उनके समर्पण की सराहना की। और अब बात करते हैं एथलेटिक्स पर। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप पहली बार अफ्रीका में आयोजित होगी। केन्या के नैरोबी को 2029 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी मिली है। वहीं जर्मनी के म्यूनिक शहर को 2031 संस्करण की मेजबानी सौंपी गई है। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
3: वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के आयोजन का फैसला बुडापेस्ट में हुई 242वीं वर्ल्ड एथलेटिक्स काउंसिल की बैठक में लिया गया। केन्या की राजधानी नैरोबी ने रोम, म्यूनिक और लंदन जैसी मजबूत दावेदारियों को पीछे छोड़ते हुए मेजबानी हासिल की। अफ्रीकी देश पहले भी कई मल्टीनेशनल इवेंट्स होस्ट करते रहे हैं। युगांडा के कंपाला ने 2017 में वर्ल्ड क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप होस्ट की थी। इससे पहले नैरोबी ने उसी साल वर्ल्ड अंडर 18 चैंपियनशिप की मेजबानी भी की थी। बोत्सवाना के गेबोरोन ने इस साल की शुरुआत में वर्ल्ड एथलेटिक्स रिलीज की मेजबानी की थी, जो अफ्रीका में होने वाला उस इवेंट का पहला एडिशन था। हालांकि ये पहली बार होगा जब ओलंपिक के बाद एथलेटिक्स का सबसे बड़ा इवेंट वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप किसी अफ्रीकी देश में होगा। केन्या वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के इतिहास में दूसरा सबसे सफल देश है। जर्मनी 2031 में तीसरी बार वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का अगला संस्करण 10 से 19 सितंबर 2027 तक पेइचिंग में आयोजित होगा। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
1: और अब बात कार्यक्रम में एशियन गेम्स की। एशियन गेम्स की शुरुआत 1951 में भारत की मेजबानी में हुई थी। इस वर्ष एशियन गेम्स के 20वें संस्करण का आयोजन जापान के आईची नागोया में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक किया जाएगा। भारतीय टीम जापान में दमदार प्रदर्शन के लिए तैयार है। आइए जानते हैं एशियन गेम्स में कैसा रहा है भारत का सफर, किस खेल और खिलाड़ी के नाम सर्वाधिक पदक रहे हैं।
4: 1951 में आयोजित एशियन गेम्स में 11 देशों ने हिस्सा लिया था। अब ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया OCA के सभी 45 सदस्य देश नियमित तौर पर एशियन गेम्स में हिस्सा लेते हैं। कुछ विशेष आमंत्रित टीमें भी होती हैं। भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल है जो एशियन गेम्स के हर संस्करण का हिस्सा रहा है। भारतीय एथलीटों ने एशियन गेम्स में अपने दमदार प्रदर्शन से देश का नाम रोशन किया है और पूरी दुनिया में अपनी क्षमता का लोहा मनवाया है। भारत ने 1951 में आयोजित पहले एशियन गेम्स में 15 स्वर्ण, 16 रजत और 20 कांस्य सहित कुल 51 पदक जीते थे। वहीं हांगझोउ में आयोजित एशियन गेम्स 2022 में भारतीय टीम ने 28 स्वर्ण, 38 रजत और 40 कांस्य सहित कुल 106 पदक जीते और चौथी सफल टीम रही थी। हांगझोउ एशियन गेम्स भारत के लिए अब तक के सबसे सफल खेल रहे हैं। एशियन गेम्स के इतिहास में भारत सर्वाधिक पदक जीतने वाले देशों की सूची में 5वें स्थान पर है। भारत ने पिछले 19 संस्करणों में 183 स्वर्ण, 238 रजत और 357 कांस्य सहित कुल 778 पदक जीते हैं। भारत को एशियन गेम्स में सबसे ज्यादा पदक एथलेटिक्स में मिले हैं। एथलेटिक्स में 85 स्वर्ण, 102 रजत और 96 कांस्य सहित भारत ने कुल 283 पदक अपने नाम किए। इसके अलावा भारत को निशानेबाजी में 80, कुश्ती में 65 और मुक्केबाजी में 61 पदक मिले हैं। एशियन गेम्स के इतिहास में भारत की सबसे सफल एथलीट PT उषा रही हैं। PT उषा ने 4 स्वर्ण और 7 रजत सहित कुल 11 पदक जीते हैं। सर्वाधिक पदक जीतने वाले देशों में पहले स्थान पर चीन, दूसरे स्थान पर जापान, तीसरे स्थान पर दक्षिण कोरिया और ईरान चौथे स्थान पर है। चीन ने 1674 स्वर्ण, 1105 रजत और 791 कांस्य सहित 3570 पदक जीते हैं। जापान ने 1084 स्वर्ण, 1104 रजत और 1054 कांस्य पदक सहित कुल 3242 पदकों पर अपना कब्जा जमाया है।

0: भारतीय दल हांगझोउ एशियन गेम्स के सर्वाधिक 106 पदकों के रिकॉर्ड को भी और बेहतर करने की कोशिश करेगा। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
1: और चलते चलते श्रोताओं, आपको बता दें कि अफगानिस्तान ने 17वें ओवर में 6 विकेट पर 118 रन बना लिए। मोहम्मद नबी 14 और राशिद खान 4 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। और इस वक्त जसप्रीत बुमराह अपना तीसरा ओवर लेकर भारत के लिए लेके आए। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और सुझाव स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत ने कहा, चीन के साथ मुख्य चिंताओं को दूर करने में आपसी सम्मान, हित और संवेदनशीलता को मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। भारत ने कहा, खाड़ी क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों को निशाना बनाना अस्वीकार्य। लाल सागर में बिगड़ती स्थिति पर चिंता व्यक्त की। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया, लोगों से व्यापारियों को 2,000 रूपये से अधिक के यूपीआई लेन देन पर लगने वाला 0.4% शुल्क व्यापारियों पर लगेगा। लोगों के बीच होने वाले लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। हौसी हमले की अटकलों के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की और दिल्ली में भारत तथा अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच जारी। और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यह जानकारी दी।
3: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और 3 पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
2: श्री जायसवाल ने कहा कि भारत और रूस के बीच ऊर्जा सहयोग द्विपक्षीय साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। उन्होंने कहा कि दोनों देश परमाणु क्षेत्र में भी लंबे समय से सहयोग कर रहे हैं। सम्मेलन से अलग विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और सऊदी अरब के विदेश मंत्री की बैठक के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि दोनों पक्षों ने हौसी विद्रोहियों के मुद्दे पर विचार विमर्श किया। भारत ने सऊदी अरब पर हाल के हौसी हमले की निंदा की। भारत लाल सागर क्षेत्र में बिगड़ती स्थिति से बेहद चिंतित है। श्री जायसवाल ने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान अर्बन मोबिलिटी सहित कई उपलब्धियां हासिल हुई हैं।
3: 50 के लगभग आउटकम्स हैं अलग अलग क्षेत्रों में और ये सब विकास आधारित आउटकम्स हैं और इन सभी पे लोगों के लिए अवसर पैदा होंगे। जब अर्बन मोबिलिटी की बात कही है, वहाँ भी हमारे देश में कई एक और ब्रिक्स देश में ई मोबिलिटी पर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे काफी काम हो रहा है। तो ब्रिक्स देश आपस में अपने अपने उनके जो उनका एक्सपीरियंस है उसको साझा कर सकते हैं और फिर ये एक प्रस्ताव है और इस प्रस्ताव पर लोगों को अब ध्यान देना है और उसको देखना है किस प्रकार से इसको आगे ले जाया जाए।
2: जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर 70 लाख पाकिस्तानी रुपए के पुरस्कार की पाकिस्तान की घोषणा पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस तरह के दिखावे नए नहीं हैं।
3: हम लोगों ने कई दफा देखा है कि इस प्रकार का आंख में धूल झोंकने वाली हरकत पाकिस्तान करता रहा है। इससे एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर के नाम पे अनाउंसमेंट करने की जरूरत नहीं है, उनको एक्शन लेना चाहिए क्योंकि उनको खुद ही पता है कि लोग कहाँ हैं, उनको अरेस्ट करना चाहिए।
2: ओमान के तट पर वाणिज्यिक जहाज MTEL गाइया पर हमले पर श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों, चालक दल के सदस्यों, लोगों और असैन्य बुनियादी ढांचे पर हमले भारत के लिए अस्वीकार्य हैं। उन्होंने कहा कि भारत उस क्षेत्र में मुक्त और सुरक्षित नौवहन का आग्रह करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता रक्षा बलों, अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा उद्योगों के बीच निर्बाध सहयोग के जरिए ही हासिल की जा सकती है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने मिसाइल से लेकर रडार तक, लड़ाकू विमानों से लेकर पनडुब्बियों तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में क्षमताओं का प्रदर्शन किया है।
4: आज 2026 में DRDO ने मिसाइल से लेकर रडार्स तक, कम्बैट एयरक्राफ्ट से लेकर सबमरीन तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में अपनी कैपेबिलिटी साबित की है। डिफेंस सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए DRDO आज एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, इस सच्चाई को ही कोई नकार नहीं सकता।
2: देश के 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने आज यमुना नदी का अविरल प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली शामिल हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि श्री नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पानी से जुड़ा ये 10वां विवाद है जो अब सुलझने वाला है। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस समझौते का स्वागत किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि एक ऐतिहासिक समझौता है।
5: आज एक बहुत बड़ा समझौता 6 राज्यों के बीच में हुआ है, जिसका फायदा सिंचाई का भी होगा, पीने के पानी का भी होगा, पर्यावरण की दृष्टि से भी होगा। ये समझौता आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार देश के अंदर जल बंटवारे को लेकर के लंबित इन प्रकरणों का समाधान हो रहा है।
2: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के प्रयासों से ये समझौता संभव हो पाया है।
6: किसाऊ परियोजना हस्ताक्षर हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की पहल और सक्रिय प्रयासों से ही कई वर्षों से लंबित इस विषय पर राज्यों के बीच आज सहमति बनाने का रास्ता साफ हुआ है।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
7: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
8: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
7: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि व्यक्तियों के बीच UPI से कितनी भी राशि के लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। छोटे व्यापारियों के लिए 2,000 रूपये तक का लेन देन निःशुल्क रहेगा। इस प्रकार व्यक्तियों से व्यापारियों को लगभग 96% लेन देन अप्रभावित रहेगा। 2,000 रूपये से ज्यादा के व्यक्ति से व्यवसायी लेन देन पर 0.4% का मामूली MDR लगेगा, जबकि 75,000 रूपये और उससे अधिक के हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए MDR की सीमा 300 रूपये प्रति लेन देन होगी।

0: रही। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जैव E3 नीति और जैव प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए भारत पादप और मानव जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में एक साथ प्रगति देख रहा है। नई दिल्ली में डॉ सिंह ने कहा कि आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी को ऐसी तकनीकों में परिवर्तित किया जाना चाहिए जो कृषि संबंधी वास्तविक चुनौतियों का समाधान कर सकें और किसानों को लाभ पहुंचा सकें। खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से ने कहा है कि खेलों में प्रगति राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है। मिजोरम में आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्रीमती खड़से ने ये बात कही।
1: We need to develop sports infrastructure.
2: हमें खेलों के बुनियादी ढांचे के साथ साथ युवाओं के विकास पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि हमारे युवा ही विकसित भारत का भविष्य है। केंद्र सरकार लगातार राष्ट्र निर्माण के लिए युवाओं को तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं।
1: यूथ फॉर्मेशन बिल्डिंग।
0: अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम तथा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने आज राजस्थान के एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में डिजिटल लर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। 16 करोड़ रुपए से अधिक की कुल लागत से ये स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए जाएंगे। नई दिल्ली में जनजातीय कार्य मंत्रालय की सचिव रंजना चोपड़ा ने कहा कि इन विद्यालयों के विद्यार्थी IIT और नीट प्रवेश परीक्षा में बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं।
3: इस साल जितने भी हमारे 500 से ऊपर स्कूल हमारे ऑपरेशनल हैं, उनमें से 450 से अधिक बच्चे IIT JEE एडवांस क्वालिफाई किए हैं और 350 से अधिक बच्चे नीट करे हैं। तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि जो बच्चे एडवांस क्लियर करे हैं और नीट क्लियर करे हैं, वो जरूर किसी न किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेंगे।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। हौसी हमले की अटकलों के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से सऊदी अरब और प्रमुख क्षेत्रीय समुद्री मार्गों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। नए चेतावनी हमले और सैन्य झड़पों की खबरें लगातार मिल रही हैं। सऊदी अरब में आज मक्का, जेद्दा और तैफ में बहुत कम समय के लिए आपातकालीन चेतावनी जारी की गई। उधर यमन के हौसी विद्रोहियों ने आज दावा किया कि सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों के तैज प्रांत पर हमले में 3 लोग मारे गए हैं। यमन में नए सिरे से शुरू हुई इस लड़ाई से नागरिकों की जान खतरे में है और लाल सागर से होकर गुजरने वाले जहाजों के लिए भी खतरा उत्पन्न हो गया है। भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त फिलिप ग्रीन ने वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती भूमिका की सराहना की है। श्री ग्रीन ने क्वाड संगठन की बढ़ती सक्रियता पर बल दिया। श्री ग्रीन ने भारत के राजनयिक नेतृत्व, विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर की भूमिका की प्रशंसा की। भारत ने HIV/AIDS के उपचार के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में सहायता के लिए आज बोत्सवाना को 10 टन एंटी रेट्रोवायरल दवाएं भेजी हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि इससे भारत के ग्लोबल साउथ साझेदारों के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने की देश की प्रतिबद्धता का पता चलता है। उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने रैपिडो संचालित करने वाली कंपनी रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर गुमराह करने वाले विज्ञापन के लिए 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना गलत ट्रेड प्रैक्टिस, गलत अनुबंध और डार्क पैटर्न के लिए लगाया गया है। इसमें राइड कन्फर्म होने से पहले राइडर्स से ज्यादा पैसे लेने के लिए कहा जाता था। केरलम के बिजली मंत्री सनी जोसेफ ने कहा है कि राज्य में बिजली की अत्यधिक कमी को देखते हुए सरकार उच्च दरों पर बिजली खरीदने पर विचार कर रही है। उन्होंने बिजली कटौती की समस्या के तुरंत समाधान का भरोसा दिलाया। इस बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता वी मुरलीधरन ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि बिजली कटौती से जनता त्रस्त है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
5: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 74,004 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 23,119 पर स्थिर हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 41 पैसे कमजोर होकर 95 रुपए 96 पैसे पर बंद हुआ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नुआखाई के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा कि ये पर्व किसान

0: मंथन।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर जगवीर सिंह और आकाशवाणी संवाददाता प्राची प्रिया।
2: नमस्कार, कार्यक्रम मंथन में आप सबका अभिनंदन। श्रोताओं, आज का विषय है स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर। इस पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित हैं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में वरिष्ठ वैज्ञानिक और सलाहकार डॉक्टर जगवीर सिंह। महोदय, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन।
3: बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार आपको।
2: करते हुए कि स्वच्छ सागर और सुरक्षित सागर अभियान जो है ये क्या है, मैं चाहूंगी कि आप इस पर प्रकाश डालें।
3: जो अभी हम देख रहे हैं कि कुछ जो इकोलॉजिकल चुनौतियां देखें तो उसमें सागर से संबंधित, ओशन संबंधित काफी बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं हम लोग। और यदि हम जलवायु परिवर्तन का भी देखें तो उसका भी प्रभाव एक पड़ रहा है, वो तो है ही है। साथ में हम लोगों की कुछ जो मानव जनित जो गतिविधियां हैं, विशेष करके प्लास्टिक का अत्यधिक प्रयोग, सिंगल यूज प्लास्टिक का, उससे इकोलॉजिकल एक डिसबैलेंस पैदा हो रहा है। तो इसके लिए अब आवश्यकता है कि हम लोग समुद्र की ओर, जिनको हम समुद्र देवता भी बोलते रहे हैं, उसकी तरफ ध्यान दें, जिससे कि इकोलॉजिकल बैलेंस में हम सहभागी हो सकें और अपने खुद के हित के लिए बहुत आवश्यक है।
2: महोदय, स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान ने 2022 में 75 दिनों और 75 लोकेशन से 17 सितंबर में इसकी शुरुआत की थी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। आज इसके विस्तार को अगर हम देखें और जनभागीदारी को अगर हम देखें तो आपके लिहाज से आप इसे कैसा आंकते हैं?
3: बिल्कुल, आपने सही कहा कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने बाकी मंत्रालयों के साथ में मिलकर के 2022 में इसकी शुरुआत की थी, स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर। और आपको जानकर हर्ष होगा कि उस समय, जैसा कि 75 वर्ष आजादी के हम लोग मना रहे थे, तो माननीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उनका जो एक रहा मार्गदर्शन, जो एक सोच रही कि एक ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और हम लोग इसको एक दिन की बजाय इसको 75 डेज का हम लोग करें एक्टिविटी। और उसके चलते हुए हम लोगों ने 75 डे लॉन्ग एक एक्टिविटी की थी, जो स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर की शुरुआत हुई। और जो 17 सितंबर को उस समय इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे था, जो कि मैं बताना चाहूंगा आपको कि हर वर्ष तीसरे शनिवार को पड़ता है सितंबर में, ये तो 2022 में जो तीसरा शनिवार था वो 17 सितंबर का था। तो उसी के अनुसार हम लोगों ने 75 डेज लॉन्ग एक्टिविटी की थी, जिसमें हमारे साथ में बाकी मंत्रालय भी शामिल थे, विशेष करके इंडियन कोस्ट गार्ड और साथ में एनएसएस, यूथ अफेयर, ये सभी लोग हमारे साथ में थे और शिपिंग एंड पोर्ट भी हमारे साथ शामिल था। तो वो एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी साबित हुई। और हम बताना चाहेंगे यहाँ पर कि जब ये शुरुआत की थी तो उस समय था कि हम लोग जैसे कि 75 डेज, 75 ईयर ऑफ आजादी और साथ में 75 लोकेशंस एट द कोस्ट, ये हम लोग एक पकड़ में साथ चले थे। और हम लोगों ने अनुरोध किया था बाकी सभी जो हमारे संगठन हैं, जितने भी हैं, जो स्वयंसेवी संगठन हैं, छात्र वर्ग है और यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशंस को भी हमने, इरेस्पेक्ट ऑफ एनी रिलीजन, मैं बात कर रहा हूँ, सभी के साथ हम लोगों ने एक अपील की थी और परिणाम जो हुए बहुत ही उत्साहजनक थे वो।
2: आपने जिन 75 लोकेशंस की बात की है, अलग अलग लोकेशंस, मैं ये मान करके चलती हूँ क्योंकि जगह अलग अलग है तो अलग अलग तरह की वहाँ पर अनुभूतियाँ रही होंगी, तो कैसा रहा हर जगह पर काम करना, किस तरीके से वहाँ पर काम किया गया?
3: मैं बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने जो परिकल्पना की थी, हम लोग जिस काम को लेकर चले थे, वो 75 जगह के लिए 75 कोस्टल लोकेशंस, और एक बहुत ही अच्छी भावना के साथ हम लोग चले थे। और हम लोगों ने अपील की थी, अनुरोध किया था सभी से के सहयोग करें इस काम में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको और हमारे जो श्रोता हैं आकाशवाणी के, उनको बहुत खुशी होगी जानकर के, और जो हमारे साथ शामिल रहे हैं इस कार्य में, मैं उनको बहुत बधाई देते हुए मैं बताना चाहूंगा कि जब हमारे साथ में युवा छात्र, यूनिवर्सिटी, कॉलेज और संगठन, जो स्वयंसेवी संगठन, साथ में स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशंस, सभी लोग जब जुड़े मंत्रालयों के अलावा, तो 836 स्थानों पर ये एक्टिविटी हुई, जो स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर बजाय 75 प्लेसेस के 836 लोकेशंस में हुआ। और उसमें भी आपको जानकर के बहुत खुशी होगी कि हम लोगों की जो कल्पना थी कि हर एक लोकेशन पर 75 हमारे खुद के एम्प्लॉय, सरकारी लोग और साथ में बाकी छात्र लोग शामिल होंगे।
2: युवा भागीदारी आप इतनी महत्वपूर्ण क्यों देखते हैं इस परिपेक्ष में, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी।
3: इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2022 से ही हम एक बात देख रहे हैं कि वैसे भी बहुत योगदान रहा ही है हमेशा कि एनएसएस विशेष करके और साथ में जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के बाकी जो ब्रांचेज हैं, उसमें वो लोग बढ़ चढ़ के हमारे साथ में आए थे। और अभी तो हमारे साथ में स्काउट्स गाइड भी इसमें जुड़ गए हैं और एनसीसी भी साथ में था, तो उसके चलते हुए एक और साथ में जो और यूनिवर्सिटी कॉलेज जुड़े और जाकर स्वयंसेवी संगठन जुड़े, उसके चलते हुए यह संभव हो पाया कि इतनी सारी जगह पर 836 लोकेशंस में, और वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा 1,25,000 से ज्यादा लोग बाग उसमें सहभागी हुए। और यदि आप देखें कि बाकी जो था, जैसे कि उसी समय था कि गवर्नमेंट ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर काफी जोर दिया था कि उसको हमको इरेडिकेट करना है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक बड़ी मात्रा में वहां से सिंगल यूज प्लास्टिक हटाया गया 2022 में।
2: जी, हम ये सिंगल यूज प्लास्टिक जो है वो बहुत ही एक तरीके से, अगर मैं कहूं कि ये खतरा है हमारे पूरे मैनकाइंड के लिए, तो ऐसे में समुद्र में जो पहुंचने वाला प्लास्टिक है, हम पढ़ते हैं, जानते हैं, देखते हैं कि वो धीरे धीरे माइक्रो प्लास्टिक में बदल जाता है, जैसा कि आपने शुरुआत में भी बताया। और इसी पर मैं आगे आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि ये जो फूड चेन में अल्टीमेटली ह्यूमन तक आता है, क्योंकि वो जो माइक्रो प्लास्टिक पानी में जो जीव जंतु हैं उन्होंने उसे कंज्यूम किया और फिर वही सी फूड जो है हम तक आ रहा है, तो इस चीज को अगर हम ध्यान में रखते हुए देखें, उस लिहाज से ये अभियान हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण बन जाता है।
3: ये एक आपने बिल्कुल सही कहा है कि माइक्रो प्लास्टिक जो भी अभी अध्ययन हुए हैं कुछ, उसमें वो ह्यूमन बॉडी में पहुंचा हुआ पाया गया है।
2: जी,
3: तो वो वाकई एक बुरी खबर है,
2: बहुत ही बड़ा खतरा
3: है और बुरी खबर है। और आपको याद होगा अच्छी तरह से, सभी हम लोग जानते हैं कि वर्ष 2022 में भारत पार्लियामेंट ने पास किया जिसमें कि सिंगल यूज प्लास्टिक इज बैंड, तो वो एक सरकारी तरीके से जो एक नियम बना वो एक बड़ा नियम है। नियम केवल काम नहीं करेगा, अकेला नियम, हम लोगों का जो बिहेवियरल चेंज है उसकी बहुत आवश्यकता है। तो उसके चलते हुए जैसे ये स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर एक अभियान जब चलाया गया 2022 में, जैसे मैं बताया कि एक विशेष परिकल्पना के साथ में चलाया गया, उद्देश्य के साथ चलाया गया, ये उसके तुरंत बाद ही था। और इसका जो उद्देश्य था वो ये था कि बिहेवियरल चेंज भी हो लोगों में, बजाय सिंगल यूज प्लास्टिक के हम लोग कपड़े के थैले का उपयोग करें। और मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें कि इसके तुरंत ही हमारा जो मंत्रालय है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, हम लोग हर वर्ष पृथ्वी दिवस का आयोजन करते हैं और सपोर्ट करते हैं। इस वर्ष भी लगभग जगह जगह पर ये किया गया 200 विद्यालयों में, और वहां पर हम लोगों ने इसको बढ़ावा दिया कि हम लोग पर्यावरण प्रकृति संरक्षण का ध्यान दें और हम लोग थैले का उपयोग करें, कपड़े के थैले का, बजाय प्लास्टिक जैसी चीजों के। तो ये एक बिहेवियरल चेंज की अवस्था। दूसरा जो सरकार ने कहा है, जो सरकार का जोर है कि रिड्यूस रिसाइकिल रीयूज, तो एक परिवर्तन जो सुखद देखा जा रहा है कि ना केवल सरकारी संस्थाएं बल्कि जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं इस पर काफी ध्यान देना शुरू किया उन्होंने, और लोगों में भी विशेषकर विद्यार्थियों में चेंज आया है कि वो प्लास्टिक के बजाय वो लोग बाकी, चाहे वो कपड़े के बैग हों या फिर जूट के थैले, उसका उपयोग काफी मात्रा में बढ़ाया धीरे धीरे।
2: क्योंकि आपने व्यवहारिक स्तर पर बदलाव की बात की है, जो कि समाज में बहुत ही निजी तौर पर शुरू हो सकता है कि हमारा व्यवहार किस तरीके से पर्यावरण के प्रति रहे। ऐसे में और इस बारे में जानकारी बढ़ाने

0: फैलाने की कोशिश की गई हो इस 4 साल के अंतराल में?
1: हाँ, ये अभी एक परिवर्तन बहुत बड़ा देखने में आ रहा है। आपने देखा होगा, स्वयं भी आपने नोटिस किया होगा कि जब से ये स्वच्छता ही सेवा, तो जब से ये कैंपेन विशेषकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे जब किया ये, तो उसके बाद में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है समाज में कि लोग बाग सफाई के प्रति, वैसे तो हम लोग पहले भी जागरूक थे और भी ज्यादा जागरूक हुए हैं, सजग हो गए हैं, और विशेषकर कुछ चीजों के लिए जैसे कि प्लास्टिक का उपयोग करना, कुछ इधर उधर फेंकना, उस पर बहुत कमी आई है। अब बहुत सुधार है वो, और ये बात बहुत सुखद है कि हमारे यहाँ पर एक विशेष करके जो हम लोगों की पर पार्टी रही है, जो एक हम लोगों प्राचीन काल की जो पद्धति रही है कि हम लोग हमेशा जो प्रकृति के लिए संरक्षण के लिए उसको पूजनीय मानते रहे हैं, और चाहे वो जल हो, तो हमने जल को पानी नहीं, हमने जल देवता ही कहा, वायु देवता, अग्नि देवता, समुद्र देवता, तो हम लोगों का एक जो सम्मान रहा है प्रकृति के प्रति, वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर बैठा हुआ है। और साथ में जो हमारे जो संविधान में जो अगर आप देखेंगे विशेष करके जो अनुबंध हैं कुछ, वो भी प्रकृति के संरक्षण और उचित उपयोग पर जोर देते हैं।
0: एक सप्ताह भर इस अभियान को मनाया जाएगा जो कि आज से शुरुआत है। कौन कौन सी ऐसी परियोजनाएं इस अभियान के अंतर्गत होंगी जो उत्साह वर्धन का काम करेंगी युवाओं में और जो वहां के रिहायशी जो लोग हैं उनके लिए?
1: इसमें देखिए, पूरा एक हफ्ते का ये प्रोग्राम रखा गया। इसको माननीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के जो मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने 1 सितंबर को लॉन्च किया था डिजिटली। उसके बाद में 12 से 19 सितंबर तक का ये एक हफ्ते का प्रोग्राम है, क्योंकि 19 सितंबर को इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे भी है इस समय। एज आई टोल्ड यू, एक हफ्ते की जो गतिविधियां वो इस तरह की रही हैं हम लोगों की कि जिसमें कि सब लोग ठीक से जुड़ सकें। जैसे कि 12 तारीख को शुरुआत हुई तो इनॉग्रल डे था वो, जहां पर ईस्ट कोस्ट में अगर हम देखें वेस्ट बंगाल के दीघा में, वहां पर एक्टिविटी हमारे यहाँ के संयुक्त सचिव वहां पर थे और डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट थे वहां पर, बाकी साइंटिस्ट और वहां के स्टूडेंट्स दीघा बीच में 12 तारीख को। उसी समय अगर हम देखें वेस्ट कोस्ट पर तो गुजरात यूनिवर्सिटी में लगभग 1000 स्टूडेंट्स और पार्टिसिपेंट्स थे, जो कि एक कॉन्फ्रेंस उन्होंने आयोजित की थी, कॉन्फ्रेंस ऑन कोस्टल इकोलॉजिकल सेफ्टी एंड सस्टेनेबिलिटी। तो उसमें इतना ये इम्पोर्टेंट विषय है कि वहां पर माननीय राज्य गृह मंत्री भी आए थे, माननीय नित्यानंद राय जी, उसमें माननीय जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के जो मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी भी, उन्होंने ऑनलाइन कनेक्ट किया था, और साथ में जो वैलिडिटी सेशन था उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय सचिव डॉक्टर टी श्रीनिवास कुमार उसमें थे। उसी समय आपको बताना चाहूंगा कि हर एक कोस्टल स्टेट से उसमें सहभागिता थी, उसमें सभी लोग वहां मौजूद थे, और वहां पर एक प्लेज भी ली गई, एक शपथ ली गई, जो कि समुद्र के प्रति जागरूकता और रखरखाव और ध्यान के लिए थी। 12 के बाद में 13 तारीख को संडे ऑन साइकिल, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स, उन्होंने संडे ऑन साइकिल प्रोग्राम स्वच्छता ही स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर के लिए उन्होंने लगभग 3000 से अधिक स्थानों पर किया। और इसके बाद में आपको बताना चाहूंगा कि 14 तारीख को भी मैराथन हुआ, 15 को भी एक्टिविटीज हैं, और अगर देखें 16 तारीख को ओजोन दिवस मनाया जाता है, तो हमारे जो विभाग हैं जैसे भारत मौसम विज्ञान विभाग और बाकी विभाग, वो लोग पूरे देश में जगह जगह पर ओजोन दिवस मना रहे हैं। और इसके बाद में अगर हम देखेंगे 17 तारीख को एक प्लेज का सभी जगह, प्लेज और ह्यूमन चेन, जो कि समुद्र के प्रति अपनी जागरूकता और समुद्र का रखरखाव के लिए है।
0: जी, इतनी महत्वपूर्ण बातें आपने बताई समुद्र को लेकर के, उसके संरक्षण को लेकर के, पर्यावरण को लेकर के। एक बहुत ही बड़ा अभिन्न अंग है ब्लू इकोनॉमी, जो बहुत सारे जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। एक साफ समुद्र मछुआरों, कोस्टल बिजनेस और लाखों तटीय परिवारों की जो रोजी रोटी है उसको बहुत ही महीन स्तर पर प्रभावित करता है। ऐसे में अगर हम इस अभियान की परिकल्पना को देखें और पिछले 4 साल में किए गए जो हमारे कर्म हैं इसके प्रति और जो हमारा डेडिकेशन, जो समर्पण रहा है, इस लिहाज से इसकी महत्ता कितनी बढ़ जाती है?
1: इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका बार बार उल्लेख किया है, ब्लू इकोनॉमी की जो इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जो समुद्र हैं वो हम लोगों को काफी उनकी जानकारी है नहीं, और जितना हमको मिल रहा है उतना ही हमको जानकारी नहीं है। आपको बताना चाहूंगा कि मोर देन 50% ऑक्सीजन हम लोगों को समुद्र से मिलती है, और सरकार का जो एक विजन है, जो सोच है, जिस तरह की अब लोग हम मिशन मोड में काम कर रहे हैं, तो एक परिकल्पना है 2035 तक हम लोग 7-8% जीडीपी का हिस्सा ब्लू इकोनॉमी के माध्यम से होगा। और यहां तक आप देखें कि वर्तमान में जो भी हम लोगों के प्रयास चल रहे हैं सरकार के, भारत सरकार के, लगभग 40 करोड़ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कारोबार से जुड़े हुए हैं उससे संबंधित, और प्रोपोर्शनेटली उम्मीद के आस्ती आप अंदाज लगा सकती हैं कि 2035 में निश्चित तौर पर एक उसमें बहुत अच्छा इजाफा होगा। बहुत
0: बहुत धन्यवाद।

0: डॉक्टर जगवीर सिंह जी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए और हमसे इतनी महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए।
1: धन्यवाद प्राची जी, आपका भी और आकाशवाणी का बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर जगवीर सिंह और आकाशवाणी संवाददाता प्राची प्रिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप का नंबर है हमारा 9289094044।
3: मंथन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति सी चिनफिंग के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये जानकारी दी।
1: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और तीन पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि सम्मेलन के दौरान अर्बन मोबिलिटी सहित कई उपलब्धियां हासिल हुई हैं। जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर 70 लाख पाकिस्तानी रुपए के पुरस्कार की पाकिस्तान की घोषणा पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस तरह के दिखावे नए नहीं हैं। ओमान के तट पर वाणिज्यिक जहाज MTEL गाइया हमले पर श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों, चालक दल के सदस्यों, लोगों और असैन्य बुनियादी ढांचे पर हमले भारत के लिए अस्वीकार्य हैं। उन्होंने कहा कि भारत उस क्षेत्र में मुक्त और सुरक्षित नौवहन का आग्रह करता है। हुती हमलों की अटकलों के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से सऊदी अरब और प्रमुख क्षेत्रीय समुद्री मार्गों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। नए चेतावनी हमले और सैन्य झड़पों की खबरें लगातार मिल रही हैं। सऊदी अरब में आज मक्का, जेद्दा और तैफ में बहुत कम समय के लिए आपातकालीन चेतावनी जारी की गई। उधर यमन के हुती विद्रोहियों ने आज दावा किया कि सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों के तैज प्रांत पर हमले में 3 लोग मारे गए हैं। यमन में नए सिरे से शुरू हुई लड़ाई से नागरिकों की जान खतरे में है और लाल सागर से होकर गुजरने वाले जहाजों के लिए भी खतरा उत्पन्न हो गया है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि व्यक्तियों के बीच UPI से कितनी भी राशि के लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। छोटे व्यापारियों के लिए 2,000 रूपये तक का लेन देन निःशुल्क रहेगा। इस प्रकार व्यक्तियों से व्यापारियों को लगभग 96% लेन देन अप्रभावित रहेगा। 2,000 रूपये से ज्यादा के व्यक्ति से व्यवसायी लेन देन पर 0.4% का मामूली MDR लगेगा, जबकि 75,000 रूपये और उससे अधिक के हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए MDR की सीमा 300 रूपये प्रति लेन देन होगी। मंत्रालय ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि व्यवसायी या कारोबारी का ये शुल्क UPI से भुगतान करने वाले ग्राहकों पर न लगाएं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता रक्षा बलों, अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा उद्योग के बीच निर्बाध सहयोग के जरिए ही हासिल की जा सकती है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने मिसाइल से लेकर रडार तक, लड़ाकू विमानों से लेकर पनडुब्बियों तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में क्षमताओं का प्रदर्शन किया है।
2: I20

0: 26 में डीआरडीओ ने मिसाइल से लेकर राडार्स तक, कम्बैट एयरक्राफ्ट से लेकर सबमरीन्स तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में अपनी कैपेबिलिटीज साबित की है। डिफेंस सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए डीआरडीओ आज एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, इस सच्चाई को ही कोई नकार नहीं सकता।
1: भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में आयोजित 69वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भाग ले रहा है, जो 19 सितंबर तक चलेगा। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश कर रहे हैं। सम्मेलन में भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के 32 पीठासीन अधिकारी और 18 सचिव भी शामिल हैं, जो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के सदस्य हैं। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पश्चिम बंगाल के हिमालयी क्षेत्र, केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल में गरज चमक और तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश हो सकती है। दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में अफगानिस्तान ने भारत को 160 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 10 ओवर में 2 विकेट पर 117 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। The Ministry of External Affairs has said several issues were discussed during the meeting between Prime Minister Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping on the sidelines of the 18th BRICS summit held in New Delhi recently. Addressing media in New Delhi this evening, External Affairs Ministry spokesperson Randeep Jaiswal said the Prime Minister referred to India's concerns and underlined that both sides should show sensitivity to each other's core concerns.
3: Several issues came up during the discussions. Prime Minister referred to Indian concerns as well and underlined those that both sides should show sensitivity to each other's core concerns and be guided by the three mutuals, mutual respect, mutual interest and mutual sensitivity.
2: The spokesperson said External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar held a meeting with the Saudi Foreign Minister on the sidelines of the BRICS summit. During the meeting, they discussed regional and international developments. Mr. Jaiswal said that the issue of the Houthis was also discussed. There was recently an attack on Saudi Arabia, which India condemned. Mr. Jaiswal said New Delhi is deeply concerned with the escalation in the situation in the Red Sea region. On the attack on commercial vessel MTL Gaia off the coast of Oman, Mr. Jaiswal said targeting commercial shipping, seafarers, civilians and civilian infrastructure in the region is unacceptable to India. When asked about the reward of 70 lakh Pakistani rupees announced by Pakistan on Jaish-e-Mohammed chief Masood Azhar, the spokesperson said such gimmicks and attempts at hoodwinking by Pakistan are not new. He said Pakistan must take concrete action rather than making announcements that are ultimately of no consequence. Defence Minister Rajnath Singh today emphasized that self-reliance in defence sector can be achieved through seamless collaboration among the defence forces, research and development institutions and the industry. He called for greater dialogue, co-development and co-production to accelerate technology adoption and strengthen India's defence manufacturing ecosystem. The Defence Minister was addressing the DRDO Industry Synergy Meet, Vimarsh 2026 in New Delhi. The Finance Ministry today clarified that there will be no charges at all for person-to-person P2P UPI transactions, irrespective of the amount transferred. The ministry said that payments to merchants, P2M, up to 2,000 rupees along with transactions covered under the zero MDR framework for small merchants will also remain free. The ministry said that consequently, approximately 96% of all P2M transactions will remain unaffected. It said that MDR will apply only to specified merchant transactions above 2,000 rupees. Chief Ministers of six states today signed the Kishau Multipurpose Dam Project Agreement for the rejuvenation of the Yamuna River. These states are Uttar Pradesh, Uttarakhand, Himachal Pradesh, Haryana, Rajasthan and Delhi. The agreement was signed in the presence of Union Home Minister Amit Shah in New Delhi. Speaking on the occasion, Mr. Shah expressed confidence that once the project is completed, this event will become an important chapter in history. He said that the central government has declared the Kishau project a national project. Mr. Shah said the central government will bear approximately 90% of its financial burden, while the remaining 10% will be borne by the participating states. In Saudi Arabia, civil defense activated emergency alerts in Mecca, Jeddah and Taif today. Alerts had also been issued and lifted in six cities, including Yanbu, Saudi Arabia's main Red Sea oil port. Saudi Arabia today issued fresh but very brief emergency alerts in Mecca, Jeddah and Taif in the context of potential Houthi attacks. The alerts were lifted in just few minutes, with authorities saying the danger had passed. Meanwhile, a Houthi official today claimed that Saudi warplanes struck Taiz province of Yemen, killing three people, while Human Rights Watch accused the Houthi rebels of possible war crimes with its attacks on commercial vessels. In men's cricket, Afghanistan have set a target of 160 runs for India in the second T20 international in Delhi. Put into bat first, hosts Afghanistan scored 159 runs, losing 8 wickets in stipulated 20 overs. And that is the end of this news bulletin.
4: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं शक्ति प्रताप सिंह। मुख्य समाचार। भारत ने कहा, चीन के साथ मुख्य चिंताओं को दूर करने में आपसी हित और संवेदनशीलता को मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। खाड़ी क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों को निशाना बनाने को भारत ने अस्वीकार्य बताया, साथ ही लाल सागर में बिगड़ती स्थिति पर भी चिंता व्यक्त की। हौसी हमले की अटकलों के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की। अमरीकी अदालत ने विदेशी छात्रों और पत्रकारों के लिए ट्रंप प्रशासन के नए वीजा नियमों पर रोक लगाई। और अफगानिस्तान ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत को 160 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये जानकारी दी।
5: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और तीन पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
4: श्री जायसवाल ने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान अर्बन मोबिलिटी सहित कई उपलब्धियां हासिल हुई हैं।
5: 50 के लगभग आउटकम्स हैं अलग अलग क्षेत्रों में और ये सब विकास आधारित आउटकम्स हैं और इन सभी पे लोगों के लिए अवसर पैदा होंगे। जब अर्बन मोबिलिटी की बात कही है, वहाँ भी हमारे देश में कई एक और ब्रिक्स देश में ई मोबिलिटी पर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे काफी काम हो रहा है। तो ब्रिक्स देश आपस में अपने अपने उनके जो उनका एक्सपीरियंस है उसको साझा कर सकते हैं और फिर ये एक प्रस्ताव है और इस प्रस्ताव पर लोगों को अब ध्यान देना है और उसको देखना है किस प्रकार से इसको आगे ले जाया जाए।
4: जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर 70 लाख रुपए के पुरस्कार की पाकिस्तान की घोषणा पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस तरह के दिखावे नए नहीं हैं।
5: हम लोगों ने कई दफा देखा है कि इस प्रकार का आंख में धूल झोंकने वाली हरकत पाकिस्तान करता रहा है। इससे एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर के नाम पे अनाउंसमेंट करने की जरूरत नहीं है, उनको एक्शन लेना चाहिए क्योंकि उनको खुद ही पता है कि लोग कहां हैं, उनको अरेस्ट करना चाहिए।
4: ओमान के तट पर वाणिज्यिक जहाज MTEL गैया पर हमले पर श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों, चालक दल के सदस्यों, लोगों और असैन्य बुनियादी ढांचे पर हमले भारत के लिए अस्वीकार्य हैं। उन्होंने कहा कि भारत उस क्षेत्र में मुक्त और सुरक्षित नौवहन का आग्रह करता है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत और रूस के बीच ऊर्जा सहयोग द्विपक्षीय साझेदारी को महत्वपूर्ण स्तंभ है। उन्होंने कहा कि दोनों देश परमाणु क्षेत्र में भी लंबे समय से सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत इस ऊर्जा सहयोग को रूस के साथ और आगे ले जाने का इच्छुक है। भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त फिलिप ग्रीन ने वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती भूमिका की सराहना की है। श्री ग्रीक ने क्वाड संगठन की बढ़ती सक्रियता पर बल दिया। उन्होंने कृषि, प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रों में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच सहयोगों के अवसर पर जानकारी दी। श्री ग्रीन ने भारत के राजनयिक नेतृत्व, विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर की भूमिका की प्रशंसा की। भारत और अमेरिका के बीच 22वां संयुक्त सैन्य अभ्यास समारोह आज उत्तराखंड में आयोजित किया गया। इस सैन्य अभ्यास उत्तराखंड के औली और राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में एक साथ आयोजित किया जा रहा है। अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं की संयुक्त सैन्य क्षमता बढ़ाना है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से सऊदी अरब और प्रमुख क्षेत्रीय समुद्री मार्गों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। नई चेतावनी, हमले और सैन्य झड़पों की खबरें लगातार मिल रही हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि सऊदी अरब में आज मक्का, जेद्दा और तैफ में बहुत कम समय के लिए आपातकालीन चेतावनी जारी की गई।
6: सऊदी अरब ने आज मक्का, जेद्दा और ताइफ के लिए बहुत थोड़ी देर के लिए इमरजेंसी अलर्ट जारी किए। ये अलर्ट संभावित हूथी हमलों को देखते हुए जारी किए गए थे। कुछ ही मिनटों बाद इन्हें हटा दिया गया और अधिकारियों ने कहा कि खतरा टल गया है। इससे पहले सऊदी अरब के प्रमुख रेड सी ऑयल पोर्ट यानबू के लिए भी अलर्ट जारी किया गया था, जिसे बाद में हटा लिया गया। सोमवार को खमेस मुशेत, अबा और ताइफ पर हूथी हमलों में 13 लोग घायल हुए और कई घरों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने इन हमलों का तोड़ जवाब देने की बात कही है। उधर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में सोमवार को एक और जहाज पर प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ। इस स्ट्रेटेजिक जलमार्ग से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों की संख्या सोमवार को घटकर सिर्फ 4 रह गई, जबकि एक दिन पहले यह संख्या 10 थी। दुबई से आकाशवाणी न्यूज के लिए मनीष शिवा।
4: अमेरिका की एक संघीय अदालत ने ट्रंप प्रशासन द्वारा विदेशी छात्रों और पत्रकारों के रहने की अवधि पर लगाई सख्त सीमाओं के नियम पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि इस नीति को लागू करने से अमेरिका की अर्थव्यवस्था और उच्च शिक्षा प्रणाली को अधिक नुकसान हो सकता है। ट्रंप प्रशासन ने इस वर्ष जुलाई में इस नियम को अंतिम रूप दिया था। यमन के हौसी विद्रोहियों ने आज दावा किया कि सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों के तैंस प्रांत पर हमले में 3 लोग मारे गए हैं, जबकि मानवाधिकार निगरानी संस्था ह्यूमन राइट्स वॉच ने हौसी विद्रोहियों पर वाणिज्यिक जहाजों पर हमले का आरोप लगाया है। यमन में नए सिरे से शुरू हुई लड़ाई से आम नागरिकों की जान खतरे में है और लाल सागर से होकर गुजरने वाले जहाजों के लिए भी खतरा उत्पन्न हो गया है। यमन में ईंधन की कमी और बढ़ते संघर्ष के कारण जिबूती में शरण लेने वाले लोगों की आवाजाही बाधित हुई है। संयुक्त राष्ट्र की प्रवासन एजेंसी ने बताया कि यमन के और अधिक नागरिक नौकाओं की जिबूती जाने को तैयार हैं। जिबूती में वर्तमान में यमन के 2000 से अधिक नागरिक शरण लिए हुए हैं। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि व्यक्तियों के बीच यूपीआई से कितनी भी राशि के लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। मंत्रालय ने कहा कि छोटे व्यापारियों के लिए 0 MDR रूपरेखा के अंतर्गत 2000 रूपये तक का लेन देन निःशुल्क रहेगा। इस प्रकार व्यक्तियों के व्यापारियों को लगभग 96% लेन देन अप्रभावित रहेंगे। MDR केवल 2000 रूपये से अधिक की विशिष्ट व्यापारी लेन देन पर ही लागू होगा। मंत्रालय ने कहा कि MDR ना तो कर है, ना ही सरकार या NPCI द्वारा वसूला जाने वाला प्रभार। NPCI ने कहा कि संशोधित UPI मर्चेंट डिस्काउंट रेट फ्रेमवर्क को चुनिंदा व्यापारिक लेन देन के लिए शुरू किया गया है। ये 15 अक्टूबर से लागू होगा। बांग्लादेश की प्रतिबंधित आवामी लीग ने 2024 के छात्र नेतृत्व वाले विद्रोह से जुड़े मानवता विरोधी अपराधों पर अपने 7 वरिष्ठ नेताओं की मौत की सजा के बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण के फैसले को कड़ी आलोचना की है। आवामी लीग का कहना है कि न्यायिक प्रक्रिया को जल्दबाजी में पूरा किया गया, जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक कानून के मूलभूत और सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त सिद्धांतों की अवहेलना है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के सूचना और प्रसारण सलाहकार डॉक्टर जाहिद उर रहमान ने आज कहा कि भारत में रह रहे भगोड़े और दोषी लोगों को सौंपना दोनों देशों के बीच रिश्ते आसान बनाने के लिए जरूरी शर्त है। मीडिया से बातचीत में सलाहकार ने कहा कि कोई भी आरोपी अदालत में पेश हो सकता है, क्योंकि ज्यू न्यायपालिका अब पूरी तरह आजादी से काम कर रही है। श्री रहमान ने कहा कि बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त के साथ बैठक के दौरान भी यह मुद्दा विशेष रूप से उठाया गया। दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में अफगानिस्तान ने भारत को 160 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारतीय टीम ने 14वें ओवर में 3 विकेट खोकर 142 रन बना लिए हैं। पहले मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया था। 3 मैचों की श्रृंखला में भारतीय टीम 1-0 से आगे है। श्रृंखला का तीसरा और आखिरी मुकाबला बृहस्पतिवार को दिल्ली में ही खेला जाएगा। भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में आयोजित 69

में राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भाग ले रहा है जो 19 सितंबर तक चलेगा। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश कर रहे हैं। सम्मेलन में भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के 32 पीठासीन अधिकारी और 18 सचिव भी शामिल हैं जो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के सदस्य हैं। सचिवालय ने बताया कि श्री हरिवंश 69वीं संसदीय परिषद की महासभा को राष्ट्रमंडल के नए नेतृत्व के अवसर, लोकतंत्र और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को मजबूत करने के लिए संसदीय कार्रवाई विषय पर संबोधित करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने कहा, चीन के साथ मुख्य चिंताओं को दूर करने में आपसी हित और संवेदनशीलता को मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। खाड़ी क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों को निशाना बनाने को भारत ने अस्वीकार्य बताया। साथ ही लाल सागर में बिगड़ती स्थिति पर भी चिंता व्यक्त की। हौसी हमले की अटकलों के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की। अमरीकी अदालत ने विदेशी छात्रों और पत्रकारों के लिए ट्रंप प्रशासन के नए वीजा नियमों पर रोक लगाई। और अफगानिस्तान ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत को 160 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

बीन का जादू फिल्म से महेंद्र कपूर और सुमन कल्याणपुर की मधुर आवाज में, बीडी मिश्रा की कलम से निकले और एसएन त्रिपाठी के दिए संगीत से सजे इस गीत जैसा ही है ये साथ भी, जो चला आ रहा है जन्म जन्म और युगों युगों से। आपका और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल का, और मैं अभिनीत शुक्ला आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ प्यार भरे गीतों का ये गुलदस्ता जिसे कहा जाता है हर सिंगार। स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। अब आगे चलते हुए अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म मिलन से लता मंगेशकर और मुकेश का गाया हुआ, शब्द रचना आनंद बख्शी की और इससे सुरबद्ध किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की सुपरहिट जोड़ी ने।

आप भी गाइए ना। दिल की उमंगे हैं जवान, गाइए ना, क्या मुश्किल है, सरगम बताऊं।

मुनीम जी फिल्म से गीता दत्त और हेमंत कुमार ने तो अपने जज्बात कुछ अलग ही सुरीले अंदाज में जाहिर कर दिए, लेकिन अगर आपके दिल की बातें अनकही रह जाएं, तो उन्हें गीतों के माध्यम से बयां करने हम यहां हरसिंगार में आपके लिए चुन चुन के गानों को पेश करते हैं ना। वैसे इस गीत को लिखा था शैलेंद्र ने और संगीत था SD बर्मन का। साथियों, हम वापस लौटेंगे एक बेहद ही छोटे से अंतराल के बाद। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए FM 100.1 MHz पर आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

तो दोस्तों, कार्यक्रम हर सिंगार में हम आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं अमतुल हई वफा की कलम से निकली गजल की इस छलक के साथ। मोहब्बत का उनसे ना इकरार करना कि मोहब्बत का उनसे ना इकरार करना, बस आंखों ही आंखों में इजहार करना। तो इसी बात पर आइए सुनते हैं सीआईडी फिल्म से ये गाना, मोहम्मद रफी और गीता दत्त की आवाज में। गीतकार जन निसार अख्तर और संगीत है ओपी नैयर का।

सीआईडी के जैसे ही फिल्म पेइंग गेस्ट में भी देवानंद ने ही मुख्य भूमिका अदा की। गीत को अपनी आवाज दी आशा भोसले और किशोर कुमार ने, बोल लिखे मजरू सुल्तानपुरी ने और इसे संगीत से सजाया एसडी बर्मन ने। और साथियों, इस गीत के साथ ही हरसिंगार की यात्रा में रुकने का समय भी अब आने ही वाला है, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं फिल्म चोरी चोरी से लता मंगेशकर और मन्ना डे का गाया हुआ, शैलेंद्र का लिखा और शंकर जयकिशन द्वारा संगीतबद्ध किया ये गीत।

और दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि अब समय हो रहा है समाचार सुनने का, तो कार्यक्रम हर सिंगार को आज के लिए यहीं पर देते हैं विराम। आप सुनते रहिए FM 100.1 MHz पर आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल। जल्द वापस लौटेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज ये जानकारी दी।
1: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और तीन पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान अर्बन मोबिलिटी सहित कई उपलब्धियां हासिल हुई हैं। जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर 70 लाख पाकिस्तानी रुपए के पुरस्कार की पाकिस्तान की घोषणा पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस तरह के दिखावे नए नहीं हैं। ओमान के तट पर वाणिज्यिक जहाज MTEL गाइला हमले पर श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों, चालक दल के सदस्यों, लोगों और असैन्य बुनियादी ढांचे पर हमले भारत के लिए अस्वीकार्य हैं। उन्होंने कहा कि भारत उस क्षेत्र में मुक्त और सुरक्षित नौवहन का आग्रह करता है। हूती हमलों की अटकलों के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से सऊदी अरब और प्रमुख क्षेत्रीय समुद्री मार्गों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। नई चेतावनी, हमले और सैन्य झड़पों की खबरें लगातार मिल रही हैं। सऊदी अरब में आज मक्का, जेदा और तर्फ में बहुत कम समय के लिए आपातकालीन चेतावनी जारी की गई। उधर यमन के हूती विद्रोहियों ने आज दावा किया कि सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों के तैज प्रांत पर हमले में 3 लोग मारे गए। यमन में नए सिरे से शुरू हुई लड़ाई से नागरिकों की जान खतरे में है और लाल सागर से होकर गुजरने वाले जहाजों के लिए भी खतरा उत्पन्न हो गया है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि व्यक्तियों के बीच UPI से कितनी भी राशि के लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। छोटे व्यापारियों के लिए 2000 रुपए तक का लेन देन निःशुल्क रहेगा। इस प्रकार व्यक्तियों से व्यापारियों को लगभग 96% लेन देन अप्रभावित रहेगा। 2000 रुपए से अधिक के व्यक्ति से व्यवसाय लेन देन पर 0.4% का मामूली MDR लगेगा, जबकि 75,000 रुपए और उससे अधिक के हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए MDR की सीमा 300 रुपए प्रति लेन देन होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, रक्षा बलों, अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा उद्योग के बीच निर्बाध सहयोग के जरिए ही हासिल की जा सकती है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने मिसाइलों से लेकर राडार तक, लड़ाकू विमानों से लेकर पनडुब्बियों तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में क्षमताओं का प्रदर्शन किया है।
2: आज 2026 में DRDO ने मिसाइल से लेकर राडार तक, कम्बैट एयरक्राफ्ट से लेकर सबमरीन तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में अपनी कैपेबिलिटीज साबित की है। डिफेंस सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए DRDO आज एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, इस सच्चाई को ही कोई नकार नहीं सकता।
0: भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में आयोजित 69वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भाग ले रहा है, जो 19 सितंबर तक चलेगा। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश कर रहे हैं। सम्मेलन में भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के 32 पीठासीन अधिकारी और 18 सचिव भी शामिल हैं, जो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के सदस्य हैं। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज 17वीं सदी के कवि संत मकूल दास महाराज की स्मृति में भारत सरकार के डाक विभाग द्वारा जारी स्मारक डाक टिकट का विमोचन किया। श्री सिंधिया ने संत मलूकदास को आध्यात्मिक शक्ति का वाहक बताया और देश में मुश्किल दौर में भी सनातन धर्म की मूल भावना को बनाए रखने में उनके योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि आज भारत जिस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है, उसके पीछे केवल आर्थिक विकास नहीं बल्कि गहरा सांस्कृतिक आत्मविश्वास भी है, जो दूसरे देशों से उसे अलग बनाता है। दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान ने भारत को 160 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में भारत ने 14 ओवर और 5 गेंद में 3 विकेट खोकर 163 रन बनाकर मैच जीत लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Renuka. The Ministry of External Affairs has said several issues were discussed during the meeting between Prime Minister Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping on the sidelines of the 18th BRICS summit held in New Delhi recently. Addressing media in New Delhi this evening, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said the Prime Minister referred to India's concerns and underlined that both sides should show sensitivity to each other's core concerns.
1: Several issues came up during the discussions. Prime Minister referred to Indian concerns as well and underlined those that both sides should show sensitivity to each other's core concerns and be guided by the three mutuals, mutual respect, mutual interest and mutual sensitivity.
3: The spokesperson said External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar held a meeting with the Saudi Foreign Minister on the sidelines of the BRICS summit. During the meeting, they discussed regional and international developments. Mr. Jaiswal said that the issue of the Houthis was also discussed. There was recently an attack on Saudi Arabia, which India has condemned. Mr. Jaiswal said New Delhi is deeply concerned with the escalation in the situation in the Red Sea region. On the attack on commercial vessel MT El Gaya off the coast of Oman, Mr. Jaiswal said targeting commercial shipping, seafarers, civilians and civilian infrastructure in the region is unacceptable to India. The Finance Ministry today clarified that there will be no charges at all for person-to-person P2P UPI transactions, irrespective of the amount transferred. The ministry said that payments to merchants P2M up to 2,000 rupees along with transactions covered under the zero MDR framework for small merchants will also remain free. The ministry said that consequently, approximately 96% of all P2M transactions will remain unaffected. It said that MDR will apply only to specified merchant transactions above 2,000 rupees. Chief ministers of six states today signed the Kishaw Multipurpose Dam Project Agreement for the rejuvenation of the Yamuna River. These states are Uttar Pradesh, Uttarakhand, Himachal Pradesh, Haryana, Rajasthan, and Delhi. The agreement was signed in the presence of Union Home Minister Amit Shah in New Delhi. Speaking on the occasion, Mr. Shah expressed confidence that once the project is completed, this event will become an important chapter in history. He said that the central government has declared the Kishaw project a national project. Mr. Shah said the central government will bear approximately 90% of its financial burden, while the remaining 10% will be borne by the participating states. In Saudi Arabia, civil defense activated emergency alerts in Mecca, Jeddah and Taif today. Alerts had also been issued and lifted in six cities, including Yanbu, Saudi Arabia's main Red Sea oil port. Saudi Arabia today issued fresh but very brief emergency alerts in Mecca, Jeddah and Taif in the context of potential Houthi attacks. The alerts were lifted in just a few minutes, with authorities saying the danger had passed. Meanwhile, a Houthi official today claimed that Saudi warplanes struck Taiz province of Yemen, killing three people, while Human Rights Watch accused the Houthi rebels of possible war crimes with its attacks on commercial vessels. The Delhi government has announced to double the fixed monthly incentive for ASHA workers from 3,000 rupees to 6,000 rupees. This decision was taken at a cabinet meeting chaired by Chief Minister Rekha Gupta in New Delhi today. She said that the increase in the monthly incentive was an important step towards recognizing ASHA workers' contribution and ensuring their financial

0: Mantra. Good evening and welcome to Market Mantra. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor Prachi Priya.
1: नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है. श्रोताओं, स्टूडियो में आज चर्चा के लिए हमारे साथ विराजमान हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ ए के भट्टाचार्य. महोदय, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन.
2: नमस्कार, धन्यवाद.
1: चर्चा शुरू करेंगे मगर उससे पहले आइए सुने सुर्खियां.
0: Benchmark domestic stock market indices decline. Sensex falls nearly 800 points. Nifty settles at 23,119. Country's overall workforce participation rate WPR increases to 52.8% in August, highest level since March this year. And in the global crude oil market, Brent crude rises by 0.4%.
1: प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में गिरावट. सेंसेक्स लगभग 800 अंक लुढ़का. निफ्टी 23,119 पर बंद हुआ. देश की कुल कार्यशक्ति भागीदारी दर अगस्त माह में बढ़कर 52.8% हो गई है. इस वर्ष मार्च के बाद सबसे ऊंचा स्तर है. और ब्रेंट क्रूड कच्चे तेल की कीमत लगभग आधा प्रतिशत बढ़ी.

0: And before we take our main stories in detail, here is an important disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: श्रोताओं, जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे समक्ष एके भट्टाचार्य जी विराजमान हैं। उनसे हम तमाम आर्थिक खबरों पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं कि दिन के अंतराल में दोनों ही प्रमुख शेयर सूचकांकों ने कैसा व्यवहार किया। प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक आज गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 778 अंक यानी 1% की गिरावट के साथ 74,004 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 280 अंक यानी 1.2% फिसलकर 23,119 पर स्थिर हुआ। बाजार के व्यापक स्तर पर भी भारी बिकवाली देखी गई। निफ्टी मिड कैप 100 सूचकांक 2% से अधिक और निफ्टी स्मॉल कैप 100 सूचकांक लगभग 2.5% नीचे आया। शुरुआत में बाजार गैप अप के साथ खुले, लेकिन वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण जल्दी ही अपनी बढ़त गंवा दी। इसके बाद दोनों सूचकांक नीचे आ गए और पूरे ही सत्र के दौरान चौतरफा बिकवाली के कारण बाजार में गिरावट देखी गई।
0: Benchmark domestic equity indices ended sharply lower today. Sensex plunged 778 points or 1% to close at 74,004. Nifty shed 280 points or 1.2% to settle at 23,119. The broader market also witnessed a sharp decline, with the Nifty Midcap 100 index falling 2.1% and the Nifty Small Cap 100 index losing 2.4%. Earlier, the markets opened with a gap up but soon realized it erased the initial gains and amid rising global uncertainties. Both the stock market indices then turned lower and remained on a downward trajectory for the rest of the session as a broad-based sell-off swept across the board.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 23 कंपनियों के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। सबसे अधिक नुकसान उठाने वाली कंपनियों के शेयरों में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 6%, इंडिगो 4% और टाइटन तथा बजाज फिनसर्व 3% से अधिक नीचे आए। वहीं एचसीएल टेक 4%, इन्फोसिस 3.5% से अधिक और टेक महिंद्रा के शेयर 2.3% की बढ़त के साथ बंद हुए।
0: In the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, 26 out of the 28 sectors edged downward. Among the top underperformers, the capital goods shed 4.2%, realty lost 3.9% and industrials dropped 3.6%. In contrast, information technology gained 1.9% and focused IT rose 1.5%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was negative, as shares of 3,381 companies declined, 1,109 companies advanced and 194 companies remain unchanged.
1: और अब जान लेते हैं रुपए का हाल। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया एक डॉलर की तुलना में आज 41 पैसे कमजोर होकर 95.96 रुपए पर बंद हुआ। भट्टाचार्य जी, जिस तरीके की हम वैश्विक अनिश्चितताएं देख पा रहे हैं, हमने देखा कि 10-year ट्रेजरी यील्ड वो लगभग 5% को छू करके लौटा और बंद हुआ लगभग 5% पर। ऐसे में जो उभरता बाजार है, यानी कि अगर मैं स्पेसिफिकली भारत के बाजार की बात करूं, उस पर क्या असर पड़ता आप देख पा रहे हैं?
2: देखिए, आपने ठीक ही कहा है कि जो वैश्विक स्थिति जो है
1: जी,
2: वो भारत के स्टॉक मार्केट के ऊपर काफी प्रभाव डाल रहा है इस वक्त। पर मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ वैश्विक स्थिति इसके ऊपर प्रभाव डाल रही है। हमारे देश में भी जो एक आर्थिक जो स्थिति है वो भी एक कारण है। पहली बात तो है कि जो हमारी जो कच्चे तेल की दाम जो है
1: जी,
2: वो करीबन 108 डॉलर पर बैरल ब्रेंट क्रूड ऑयल आ गई है। ये कुछ महीने पहले ये 78 70 80 में मंडरा रही थी, अब उसके 80 से बढ़कर 108 में आना। और आप जानते हैं कि हमारी जो भारत की जो आयात के ऊपर, तेल का आयात के ऊपर जो निर्भरशीलता है वो करीबन 80-85% के ऊपर है। तो उससे हमारी जो देश की जो फाइनेंसेस जो हैं, कंपनियों की जो कॉस्ट स्ट्रक्चर जो है, उसमें काफ़ी प्रभाव डालता है। इसीलिए एक तो स्टॉक मार्केट में उसी का प्रभाव देखने को मिल रहा है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, आपने जो कहा कि जो वैश्विक बाजार में पर्टिकुलरली जो अमेरिकन बाजार में जो यील्ड की जो जो जो जो 5% तक आ गई है उसका ये एक दिन का ये आकलन नहीं है, ये बहुत सालों से जो सरकारों की फिस्कल एक्सेसेस जो हो रही थी उसी का कारण हम देख रहे हैं कि जो यील्ड मतलब जो बॉन्ड के जो दाम जो है वो गिर रहे हैं और इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है। उससे क्या हो रहा है कि जो एफआईआई जो है उनको एक इजी एक ऑप्शन मिल रहा है, वो इजी ऑप्शन वो स्टॉक मार्केट से हमारे स्टॉक मार्केट से बाहर जाकर अपने अमेरिकन स्टॉक मार्केट में या बॉन्ड पेपर्स में वो अपने आप को निवेश कर रहे हैं क्योंकि दाम नीचे हो गए हैं और इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, तो उनकी जो रिटर्न्स जो है वो अचानक ज्यादा इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव लग रही है। और तीसरा बात जो है मैं अभी कहता हूँ कि जो हमारी जो हमारे देश में जो इन्फ्लेशन का जो सिचुएशन जो है मुद्रास्फीति जिसे हम कहेंगे वो सीपीआई का नंबर अभी कल परसों आया था उसमें अगस्त का नंबर 4.8% में आया है, उसकी यही दर्शाता है कि हमारे देश में जो इन्फ्लेशनरी पोटेंशियल जो है और WPI थोक मूल्य जो है वो करीबन 9% के ऊपर है, तो 9% थोक मूल्य के ऊपर है और खुदरा मूल्य में 4.8% में है, तो इसको दिखाकर जो इन्फ्लेशन की जो ट्रेजेक्टरी जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मौद्रिक नीति के लिए अच्छी नहीं है। तो अगर अक्टूबर में जो जो एक डर कहिए या एक आशा थी या निराशा थी कि इंटरेस्ट रेट शायद बढ़ जाएंगे वो भी है, और कल फेड का भी निर्णय है कि वो किस तरह से वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाए, बहुत लोगों का मानना है कि कल ही शायद फेड अपना इंटरेस्ट रेट शायद बढ़ा दे, तो उससे क्या होगा कि जो सारी जो वैश्विक स्थिति और भारतीय आर्थिक स्थिति और मार्केट की जो

आशा भोसले की आवाज में अजीज कश्मीरी के शब्दों और ओपी नैयर के संगीत में पिरोया हुआ ये गीत था फिल्म ये रात फिर ना आएगी से। वैसे गीत मेरे मनमीत वाली रात तो फिर से आ चुकी है मेरे यानी कि अभिनीत के साथ। तो चलिए जल्दी से सुनते हैं अगला गीत फिल्म दिवाली की रात से तलत महमूद का गाया हुआ, जिसे लिखा नक्श लालपुरी ने और संगीतकार हैं स्नेहल भटकर।

1973 में आई फिल्म जोशीला से किशोर कुमार की आवाज में इस गीत के साथ ही हमारा भी अपने घर का रास्ता देखने का वक्त हो चुका है। तो आज के गीत मेरे मनमीत के साथ ही मुझे यानी कि अभिनीत शुक्ला को दीजिए आज्ञा। आगे आप सुनेंगे समाचार और हमेशा की तरह सुनते रहिए एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल। अपना रखिए अच्छे से ध्यान। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यह जानकारी दी।
1: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और तीन पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान अर्बन मोबिलिटी सहित कई उपलब्धियां हासिल हुई। जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर 70 लाख रुपए पाकिस्तानी के पुरस्कार की पाकिस्तान की घोषणा पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस तरह के दिखावे नए नहीं हैं। ओमान के तट पर वाणिज्यिक जहाज MTEL गाइला हमले पर श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों, चालक दल के सदस्यों, लोगों और असैन्य बुनियादी ढांचे पर हमले भारत के लिए अस्वीकार्य हैं। उन्होंने कहा कि भारत उस क्षेत्र में मुक्त और सुरक्षित नौवहन का आग्रह करता है। हूती हमलों की अटकलों के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से सऊदी अरब और प्रमुख क्षेत्रीय समुद्री मार्गों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। नई चेतावनी, हमले और सैन्य झड़पों की खबरें लगातार मिल रही हैं। सऊदी अरब में मक्का, जेदा और तौफ में बहुत कम समय के लिए आपातकालीन चेतावनी जारी की गई। उधर यमन के हूती विद्रोहियों ने दावा किया कि सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों के तैज प्रांत पर हमले में 3 लोग मारे गए। यमन में नए सिरे से शुरू हुई लड़ाई से नागरिकों की जान खतरे में है और लाल सागर से होकर गुजरने वाले जहाजों के लिए भी खतरा उत्पन्न हो गया है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि व्यक्तियों के बीच UPI से कितनी भी राशि के लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। छोटे व्यापारियों के लिए 2000 रुपए तक का लेन देन निःशुल्क रहेगा। इस प्रकार व्यक्तियों से व्यापारियों को लगभग 96% लेन देन अप्रभावित रहेगा। 2000 रुपए से अधिक के व्यक्तियों से व्यवसाय लेन देन पर 0.4% का मामूली MDR लगेगा, जबकि 75,000 रुपए और उससे अधिक के हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन के लिए MDR की सीमा 300 रुपए प्रति लेन देन होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता रक्षा बलों, अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा उद्योग के बीच निर्बाध सहयोग के जरिए ही हासिल की जा सकती है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने मिसाइल से लेकर राडार तक, लड़ाकू विमानों से लेकर पनडुब्बियों तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में क्षमताओं का प्रदर्शन किया है।
2: आज 2026 में DRDO ने मिसाइल से लेकर राडार्स तक, कम्बैट एयरक्राफ्ट से लेकर सबमरीन्स तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में अपनी कैपेबिलिटी साबित की है। डिफेंस सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए DRDO आज एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, इस सच्चाई को ही कोई नकार नहीं सकता।
0: भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन में आयोजित 69वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भाग ले रहा है। यह 19 सितंबर तक चलेगा। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश कर रहे हैं। सम्मेलन में भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के 32 पीठासीन अधिकारी और 18 सचिव भी शामिल हैं, जो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के सदस्य हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कल नई दिल्ली में कार्यक्रम में अ सेंचुरी ऑफ सर्विस, द RSS इन 100 एक्ट्स ऑफ सेवा नाम की एक पुस्तक का विमोचन किया। ये किताब तेलंगाना की पूर्व राज्यपाल डॉ तमिलीसाई सौंदर्य राजन ने लिखी है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये किताब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS की 100 वर्ष की सेवा, उसकी सामाजिक जिम्मेदारी और राष्ट्र निर्माण में उसके योगदान को दर्शाती है। दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान ने भारत को 160 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में भारत ने 14 ओवर और 5 गेंद में 3 विकेट पर 163 रन बनाकर मैच में जीत हासिल कर ली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 2-0 से आगे है। श्रृंखला का तीसरा और आखिरी मुकाबला बृहस्पतिवार को दिल्ली में ही खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा लेकर आज की रात माधुरी है आप सभी के साथ। नमस्कार। और आज निशिगंधा के बहाने हम बात करेंगे सपनों की। सपने जो हम अक्सर देखते हैं, कभी खुली आंखों से, कभी बंद आंखों से। ख्वाब प्यारे लगते हैं, जब हकीकत से मिलते हैं तो थोड़े भारी लगते हैं। खैर, ख्वाबों के बारे में, सपनों के बारे में बहुत से शेर शायरी, बहुत सी बातें कही गई हैं। आज हम भी उन्हीं में से कुछ बातों को आपस में साझा करेंगे।

ये सपना वही है या नहीं ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ सपने हम सब देखते हैं और भर भर के देखते हैं। खुली आंखों से तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा सपने देखते हैं। वैसे भाई सपने अगर माना जाए तो दो तरह के होते हैं। वही जो मैं कह रही थी कि एक वो जो हम सोते समय आंखों से अचेतन मन में देखते हैं और दूसरे वो जिन्हें हम खुली आंखों से अपने भविष्य को संवारने के लिए देखते हैं। और दोनों ही तरह के सपने हम सबके जीवन, उसकी मानसिकता और कहीं ना कहीं वो हमें प्रेरित भी करते हैं। सोते समय आने वाले सपने हमारे दिमाग की एक स्वाभाविक और कह लें कि जटिल प्रक्रिया है, लेकिन जो हम जागते हुए देखते हैं वो हमारी सोच के कारण हम उन सपनों को देखते हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसा हम देखते हैं।

बात आज निशिगंधा में हम कर रहे हैं सपनों की। सपने कई बार बहुत अजीब सपने आते हैं, ऐसी ऐसी चीजें सपनों में आती हैं जिनके बारे में हम दिन में क्या कभी बात ही नहीं करते, कभी सोचते भी नहीं, ऐसी जगह हमें सपनों में दिख जाती है। और कई बार हमें लगता है हम इसी घर में थे, यहीं थे, लेकिन सब कुछ बदला बदला सा लगता है। ये भी होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हम किसी जानने वाले से बात कर रहे थे सपनों में, लेकिन वो जानने वाला, उसकी शक्ल वैसी नहीं थी जैसी वो हकीकत में नजर आता है। तो सपनों की दुनिया भी बहुत अजीब है। कई बार इन्हीं सपनों में हम उन बिछड़े हुए लोगों को भी देख लेते हैं जिनसे बिछड़े जमाना हो गया है।

तो बहुत सारे चेहरे हमें सपनों में भी मिल जाते हैं, जिन्हें हम हकीकत की जिंदगी में ढूंढते रह जाते हैं। मनुष्य का जीवन जो है ना, वो आकांक्षाओं से भरा हुआ है, और ये सपने ही हैं जो हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। जीवन को एक सही दिशा प्रदान करने के लिए सपनों का होना भी बेहद जरूरी है। सपनों के बिना हमारा जो जीवन है ना, वो बिल्कुल नीरस हो जाता है, उसका उद्देश्य ही नहीं रहता। जब कोई सपना होता है तो हम उसे पूरा करने के लिए पूरा प्रयास भी करते हैं। जैसे किसी को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, खिलाड़ी बनना है, वैज्ञानिक बनना है या सिंगर बनना है, तो उसका भी तो वो सपना देखता है ना, और वही सपना उसे प्रेरित करता है जल्दी उठने के लिए, रियाज करने के लिए, कड़ी मेहनत करने के लिए। और जब वो ये सारी मेहनतों से गुजरता है तो वो निखर जाता है और वो बनता है जो वो बनना चाहता था। तो ऐसे ही खूबसूरत सपने सजाते रहिए और जीवन को आगे, निरंतर आगे बढ़ाते रहिए।

0: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: जी हाँ, आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 MHz पर। रात्रि के 12:37 और हो गए हैं पूरे 27 सेकेंड। आप हैं माधुरी के साथ निशी गंधा के इस सफर में, और आज हम बात कर रहे हैं ख्वाबों की। जी हाँ, ख्वाब तो हम सभी देखते हैं और तरह तरह के देखते हैं। कभी ऐसी ऐसी खूबसूरत जगहों पर जाने के भी ख्वाब देखते हैं कि उनके बारे में सुना है कि धरती पे ऐसी जगहें जन्नत हैं। जी हाँ, आप समझ गए ना, मैं कश्मीर की बात कर रही हूँ। मेरा भी ये ख्वाब है कि कभी मैं कश्मीर जाऊँ। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग जो हैं कश्मीर होकर आए होंगे, लेकिन हाँ, मेरा ख्वाब अभी ख्वाब है।

भाई कश्मीर का सपना तो है, चलिए कभी अगर यूं ना जा सके तो सपने में ही कश्मीर चले जाएंगे। चलिए कोई नहीं, और हम बात कर रहे हैं आज निशिगंधा में सपनों के, सपने उड़ान भरते हुए सपने, बहुत प्यारे खूबसूरत सपने। लेकिन कई बार जिंदगी की हकीकत हमें डराती भी है, हमारे सपने टूटते भी हैं। बहुत सारी चीज़ें करने के ख्वाब हम देखते हैं और कई बार अच्छे अच्छे ख्वाब भी टूट के चकनाचूर हो जाते हैं। और जब ख्वाब टूटते हैं ना, तो सिर्फ ख्वाब ही नहीं टूटते, हम भी कहीं ना कहीं टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। लेकिन जिंदगी है दोस्त, इस बिखराव को भी हमें समेटना होता है। ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले जिंदा हैं, हम वो हैं जिनसे मुश्किलें भी शर्मिंदा हैं। जी हाँ, इसी तरह के हौसले के साथ हमें जिंदगी को आगे बढ़ाना है। और हाँ, ख्वाब देखना नहीं छोड़ना है, चाहे हमारे ख्वाब हमें रुला के ही क्यों ना जाएं।

सपने टूटते हैं, हम ना उम्मीद होते हैं और सपने हमें इसी तरह रुलाते हैं। लेकिन सपने हमें जीवन की राह भी दिखाते हैं, सपने हमें रोमांटिक भी बनाते हैं। और अगला गीत जो मैं आपको सुनवाने वाली हूँ ना, उसके बिना सपनों की ये महफिल कैसे कंप्लीट हो सकती है। जी हाँ, ड्रीम गर्ल की बात करें, वो गाना तो मैं आपको सुनाऊंगी ही, उससे पहले कुछ और भी कहूंगी। और ये देखिए, चंद लाइनें हैं, बड़ी प्यारी हैं, आप तक पहुंचा रही हूं। कि काश कोई हम पर भी इतना प्यार जताती, पीछे से आकर वो हमारी आंखों को छुपाती, सीने से लगाती मुंह बनाती, पर बेगाने राहों पर इस तरह छोड़ कर न जाती। काश कोई हम पर भी, कोई हमारी भी नींदों में आती, ख्वाबों में आती, मुझे चिढ़ाती और लड़के मनाती, दर्द को वो मेरे कम कर जाती, काश कोई हमारे भी ख्वाबों में आती। तो चलिए, इन सब पंक्तियों के बाद अब वो प्यारा गीत, जो ड्रीम्स की बातें हो रही हैं, तो ड्रीम गर्ल को तो आना ही पड़ेगा।

रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।

तो भाई सपने तो ऐसे ही होते हैं, आंखों में आते हैं, समाते हैं, चले जाते हैं। कई लोग अपने ख्वाब पूरे करने के लिए बस अपनी रात भी गंवा बैठते हैं, और बहुत सारे हमारे अभी भी साथी जो हमें सुन रहे होंगे, हो सकता है वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए जाग रहे हों। तो चलिए, रात भी बाकी है, बात भी बाकी है।

0: ने कहा है कि नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये जानकारी दी।
1: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और तीन पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान अर्बन मोबिलिटी सहित कई उपलब्धियां हासिल हुई। जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर 70 लाख पाकिस्तानी रुपए के पुरस्कार की पाकिस्तान की घोषणा पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस तरह के दिखावे नए नहीं हैं। ओमान के तट पर वाणिज्य जहाज MTEL गैला हमले पर श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों, चालक दल के सदस्यों, लोगों और असैन्य बुनियादी ढांचे पर हमले भारत के लिए अस्वीकार्य हैं। उन्होंने कहा कि भारत उस क्षेत्र में मुक्त और सुरक्षित नौवहन का आग्रह करता है। हूती हमलों की अटकलों के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से सऊदी अरब और प्रमुख क्षेत्रीय समुद्री मार्गों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। नई चेतावनी, हमले और सैन्य झड़पों की खबरें लगातार मिल रही हैं। सऊदी अरब में मक्का, जेद्दा और तैफ में बहुत कम समय के लिए आपातकालीन चेतावनी जारी की गई। उधर यमन के हूती विद्रोहियों ने दावा किया कि सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों के तैज प्रांत पर हमले में 3 लोग मारे गए हैं। यमन में नए सिरे से शुरू हुई लड़ाई से नागरिकों की जान खतरे में है और लाल सागर से होकर गुजरने वाले जहाजों के लिए भी खतरा उत्पन्न हो गया है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि व्यक्तियों के बीच UPI से कितनी भी राशि के लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। छोटे व्यापारियों के लिए 2,000 रुपए तक का लेन देन निःशुल्क होगा। इस प्रकार व्यक्तियों से व्यापारियों को लगभग 96% लेन देन अप्रभावित रहेगा। 2,000 रुपए से अधिक के व्यक्ति से व्यवसाय लेन देन पर 0.4% का मामूली MDR लगेगा, जबकि 75,000 रुपए और उससे अधिक के हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन के लिए MDR की सीमा 300 रुपए प्रति लेन देन होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, रक्षा बलों, अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा उद्योग के बीच निर्बाध सहयोग के जरिए ही हासिल की जा सकती है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने मिसाइल से लेकर राडार तक, लड़ाकू विमानों से लेकर पनडुब्बियों तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में क्षमताओं का प्रदर्शन किया है।
2: आज 2026 में DRDO ने मिसाइल से लेकर राडार्स तक, कम्बैट एयरक्राफ्ट से लेकर सबमरीन्स तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में अपनी कैपेबिलिटीज साबित की है। डिफेंस सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए DRDO आज एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, इस सच्चाई को ही कोई नकार नहीं सकता।
0: भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन में आयोजित 69वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भाग ले रहा है। ये 19 सितंबर तक चलेगा। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश कर रहे हैं। सम्मेलन में भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के 32 पीठासीन अधिकारी और 18 सचिव भी शामिल हैं, जो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के सदस्य हैं। औषधि विभाग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत के आह्वान के अनुरूप 1 से 15 सितंबर तक स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन किया। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने बताया कि सभी 7 राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान NIPR, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम PSU और विभागों के सक्रिय भागीदारी के साथ संकाय सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों ने यह स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान कई परिसरों में वृक्षारोपण भी किया गया। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पश्चिम बंगाल के हिमालयी क्षेत्र, केरल और माहे में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन तक अंडमान, निकोबार द्वीप समूह और बिहार में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान ने भारत को 160 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में भारत ने 14 ओवर और 5 गेंद में 3 विकेट पर 163 रन बनाकर मैच जीत लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नवनीत सिंह। The Ministry of External Affairs has said several issues were discussed during the meeting between Prime Minister Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping on the sidelines of the 18th BRICS summit held in New Delhi recently. Addressing media in New Delhi last evening, External Affairs Ministry spokesperson Sandhir Jaiswal said the Prime Minister referred to India's concerns and underlined that both sides should show sensitivity to each other's core concerns.
1: Several issues came up during the discussions. Prime Minister referred to Indian concerns as well and underlined those that both sides should show sensitivity to each other's core concerns and be guided by the three mutuals, mutual respect, mutual interest and mutual sensitivity.
3: The spokesperson said External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar held a meeting with the Saudi Foreign Minister on the sidelines of the BRICS summit. During the meeting, they discussed regional and international developments. Mr. Jaiswal said that the issue of the Houthis was also discussed. There was recently an attack on Saudi Arabia, which India has condemned. Mr. Jaiswal said New Delhi is deeply concerned with the escalation in the situation in the Red Sea region. On the attack on commercial vessel MT El Gaya off the coast of Oman, Mr. Jaiswal said, targeting commercial shipping, seafarers, civilians and civilian infrastructure in the region is unacceptable to India. Finance Ministry has clarified that there will be no charges at all for person-to-person P2P UPI transactions, irrespective of the amount transferred. The ministry yesterday said that the payments to the merchants P2M up to 2,000 rupees along with transactions covered under the zero MDR framework for small merchants will also remain free. The ministry said consequently about 96% of all P2M transactions will remain unaffected. It added that MDR will apply only to specified merchant transactions above 2,000 rupees. NPCI has said that a revised UPI merchant discount rate framework has been introduced on select merchant transactions effective from 15th of next month while keeping UPI free for consumers. Indian parliamentary delegation is participating in the 69th Commonwealth Parliamentary Conference, CPC, being held in Cape Town, South Africa, till the 19th of this month. The delegation is being led by Deputy Chairman of Rajya Sabha, Harivansh. The conference is also being attended by 32 presiding officers and 18 secretaries from state and union territories legislatures of India who are members of the Commonwealth Parliamentary Association. Rajya Sabha Secretariat informed that Mr. Harivansh arrived in Cape Town yesterday and held bilateral meetings with Speaker of the National Assembly Angela Thotuzile Didiza, Deputy Chairperson of the National Council of Provinces of South Africa Pubulan Govinder and Deputy Speaker of National Assembly Anhele Lotriet. Union Health Secretary Punya Salila Srivastav has participated in a stakeholder workshop on strengthening health professional education for cardiometabolic diseases, CMD. The workshop was organized by All India Institute of Medical Sciences, Delhi, under the Partnership for Education of Health Professionals program. In a social media post, the Ministry of Health said, such collaborative platforms are important to align education and training with emerging health needs and strengthen the preparedness of health professionals to address India's growing burden of NCDs. Ministry of Statistics and Program Implementation has said that the overall labor force participation rate LFPR for persons aged 15 years and above has increased to 55.6% in August this year, which was 55.4% in July this year. According to the monthly bulletin for August this year of the Periodic Labor Force Survey of the Ministry, a similar trend has also been observed in rural areas where the LFPR for persons aged 15 years and above increased to 58.2% in August 2026. It was 58% in July this year. Vice President C.P. Radhakrishnan today released a book titled A Century of Service, the RSS in 100 Acts of Seva at a function in New Delhi. And with that, we end this news bulletin.

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। गीत सुहाने लेकर आज की रात माधुरी है आप सभी के साथ। नमस्कार। और गीत सुहाने में हम आपके लिए लेकर आते हैं प्यारे प्यारे पुराने गाने, ओल्ड क्लासिक्स। तो जुड़ जाइए हमारे साथ, एकदम चिपक के बैठ जाइए और इन प्यारे प्यारे गीतों को हम पहुंचाएंगे आप तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ, और ये जो गीत है ये हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए फिल्म सूरज से।

ये प्यारा सा गीत हम आपके लिए लेकर आए थे फिल्म सूरत से, मोहम्मद रफी साहब की आवाज में। आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूं, उसने मुझे छूकर नहीं देखा।

जी हाँ, ये हवा ये नदी का किनारा, इतना प्यारा सा गीत हम लेकर आए थे आपके लिए फिल्म घर संसार से, आशा जी और मन्ना डे के आवाज़ में, संगीत रवि साहब का।

ये दर्द भरा गीत आप सुन रहे थे फिल्म मेरे महबूब से, लता जी और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में, और संगीत दिया नौशाद साहब ने। अगला गीत आप सभी के लिए फिल्म पालकी से।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 1:33 और हो गए हैं पूरे 26 सेकंड। ये सफर है गीत सुहाने का, जिसे लेकर आज की रात माधुरी है आप सभी के साथ। और अभी आपने जो प्यारा सा गीत सुना था वो था फिल्म पालकी से मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में। और अब हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए ये गीत फिल्म गहरा दाग से।

ये बहुत ही प्यारा सा गीत है, जब भी सुनते हैं एकदम वैसे ही दिल को छूता है जैसे लगता है आज ही पहली बार सुना है। फिल्म गहरा दाग से ये गीत सुन रहे थे आप मोहम्मद रफ़ी और आशा जी की आवाज़ में, संगीत रवि साहब का और बोल लिखे शकील बदायूनी ने।

फिल्म जिंदगी से ये गीत सुना आपने मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में, शंकर जय किशन के संगीत से सजा था ये गीत, और बोल लिखे हजरत जयपुरी और शैलेंद्र साहब ने। अब अगला गीत हम लेकर आ रहे हैं आप सभी के लिए फिल्म जिंदगी और ख्वाब से।

तो ये प्यारा सा गीत आपने सुना मुबारक बेगम और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में, शंकर जयकिशन का संगीत और फिल्म थी हमराही। आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ और ये सफ़र है गीत सुहाने का। अगला सुहाना सा गीत है फिल्म संगम से आप सभी के लिए।

ये मेरा फिर प्रेम पत्र पढ़कर तुम नाराज ना होना। खूबसूरत गीत फिल्म संगम से सुना आपने मोहम्मद रफी साहब की आवाज में। शंकर जय किशन के संगीत से सजा था ये गीत, बोल लिखे शैलेंद्र ने। और अगला गीत हम लेकर आ रहे हैं आप सभी के लिए फिल्म तलाश से। गीत सुहाने का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं बहुत ही प्यारे प्यारे गीत। जी हाँ, ओल्ड मेलोडीज। तो गीत सुहाने से ये आखिरी जो नगमा है आज की रात का आप तक पहुंच रहा है फिल्म तलाश से। लता जी, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाज में संगीत दिया है एसडी बर्मन साहब ने।

और इसी के साथ गीत सुहाने की ये महफिल यहीं समाप्त करते हैं। आप जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। अब से कुछ ही देर में प्रसारित किए जाएंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा की। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये जानकारी दी।
1: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और तीन पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक

0: पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
1: श्री जायसवाल ने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान अर्बन मोबिलिटी सहित कई उपलब्धियां हासिल हुई। जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर 70 लाख पाकिस्तानी रुपए के पुरस्कार की पाकिस्तान की घोषणा पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस तरह के दिखावे नए नहीं हैं। ओमान के तट पर वाणिज्य जहाज MTEL गाइला हमले पर श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों, चालक दल सदस्यों और लोगों और असैन्य बुनियादी ढांचे पर हमले भारत के लिए अस्वीकार्य हैं। उन्होंने कहा कि भारत उस क्षेत्र में मुक्त और सुरक्षित नौवहन का आग्रह करता है। हुती हमलों की अटकलों के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से सऊदी अरब और प्रमुख क्षेत्रीय समुद्री मार्गों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। नई चेतावनी, हमले और सैन्य झड़पों की खबरें लगातार मिल रही हैं। सऊदी अरब में मक्का, जेदा और तैफ में बहुत कम समय के लिए आपातकालीन चेतावनी जारी की गई। उधर यमन के हुती विद्रोहियों ने दावा किया कि सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों के तैज प्रांत में हमले में 3 लोग मारे गए हैं। यमन में नए सिरे से शुरू हुई लड़ाई से नागरिकों की जान खतरे में है और लाल सागर से होकर गुजरने वाले जहाजों के लिए भी खतरा उत्पन्न हो गया है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि व्यक्तियों के बीच UPI से कितनी भी राशि के लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। छोटे व्यापारियों के लिए 2,000 रुपये तक का लेन देन निःशुल्क होगा। इस प्रकार व्यक्तियों से व्यापारियों को लगभग 96% लेन देन अप्रभावित रहेगा। 2,000 रुपये से अधिक के व्यक्ति से व्यवसाय लेन देन पर 0.4% का मामूली MDR लगेगा, जबकि 75,000 रुपये और उससे अधिक के हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए MDR की सीमा 300 रुपये प्रति लेन देन होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, रक्षा बलों, अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा उद्योग के बीच निर्बाध सहयोग के जरिए ही हासिल की जा सकती है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने मिसाइल से लेकर राडार तक, लड़ाकू विमानों से लेकर पनडुब्बियों तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में क्षमताओं का प्रदर्शन किया है।
2: आज 2026 में DRDO ने मिसाइल से लेकर राडार्स तक, कम्बैट एयरक्राफ्ट से लेकर सबमरीन्स तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में अपनी कैपेबिलिटी साबित की है। डिफेंस सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए DRDO आज एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, इस सच्चाई को ही कोई नकार नहीं सकता।
1: भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास का 22वां संस्करण कल शुरू हुआ। इसका उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच तालमेल को बेहतर बनाना, नई चुनौतियों का सामना करना और दोनों देशों के बीच रक्षा साझेदारी को और मजबूत करना है। सैन्य अभ्यास का उद्घाटन समारोह उत्तराखंड के औली विदेशी प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यह सैन्य अभ्यास उत्तराखंड के औली और राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में एक साथ आयोजित किया जा रहा है। औषध विभाग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत के आह्वान के अनुरूप 1 से 15 सितंबर तक स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने बताया कि सभी 7 औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान NIPER, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम PSU और विभागों की सक्रिय भागीदारी के साथ संकाय सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों ने ये स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान कई परिसरों में वृक्षारोपण भी किया गया। दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान ने भारत को 160 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में भारत ने 14 ओवर और 5 गेंद में 3 विकेट पर 163 रन बनाकर जीत हासिल कर ली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani, the news read by Navneet Singh. The Ministry of External Affairs has said several issues were discussed during the meeting between Prime Minister Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping on the sidelines of the 18th BRICS summit held in New Delhi recently. Addressing media in New Delhi last evening, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said the Prime Minister referred to India's concerns and underlined that both sides should show sensitivity to each other's core concerns.
0: Several issues came up during the discussions. Prime Minister referred to Indian concerns as well and underlined those that both sides should show sensitivity to each other's core concerns and be guided by the

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और ये वक्त है रात सुरमई का, जिसे लेकर आज की रात माधुरी है आप सभी के साथ। नमस्कार। तो रात सुरमई को आगे बढ़ाने के लिए हम शुरू करते हैं ये गीत, और ये गीत हम लेकर आ रहे हैं फिल्म कर्ज से।

कितने चुलबुलेपन हैं जब एक दूसरे की उम्रें हम पूछा करते थे और वक्त गुजर जाता है, लेकिन वो जो पल है ना, कहीं वक्त की शाख पर ही अटके रह जाते हैं। सच में ये जो उम्र होती है ना जवानी की, 16 17 18 साल, वाह क्या बात होती है, बेफिक्री की उम्र होती है। और हर उम्र में ख्याल आता है इस उम्र का। तिनका उड़ान पर है हवाओं के साथ साथ, मैं चल रहा हूँ सबकी दुआओं के साथ साथ। वक्त सबका आता है, मन छोटा नहीं करना चाहिए। हाँ ये जरूर है कि देर सवेर हो जाती है, और बातों ही बातों में ये बात भी कि तिनका तिनका कांटे तोड़े सारी रात कटाई की, क्यों इतनी लंबी होती है चांदनी रात जुदाई की।

प्यार में अक्सर दिल बड़ा मचलता है, बहुत कुछ कहना होता है पर कहने से डरता है। धड़कते हुए दिल का करार हो तुम, मेरे जिंदगी का पहला प्यार हो तुम। जी हाँ, पहले प्यार की बात ही अलग होती है और बातों में भी क्या क्या अलग होता है, ये बताने वाला है हमारा अगला गीत।

पहले पहले प्यार की बहुत सारी बातें हैं जो गाहे बगाहे याद आ जाती हैं। और सच तो ये भी है कि सबके नसीब में ये पहला प्यार थोड़े ही होता है। चलिए बात आगे बढ़ाते हैं और पहुंचते हैं दिल की चोरी तक। जी हाँ, चोरी में दिल की वो हुनर कर गया, चोरी में दिल की वो हुनर कर गया, देखते ही आंखों में घर कर गया। दहर में मैं खाक बसर ही रहा, उम्र को इस तौर बसर कर गया। और दिल ही नहीं है मंजिले सीना में अब, यहां से वो बेचारा सफर कर गया। चोरी में दिल की वो हुनर कर गया, देखते ही आंखों में घर कर गया। और ये पंक्तियां लिखी मीर तकी मीर साहब ने, और आप तक पहुंचाई है इस नाचीज ने, और अगला गीत भी आप तक पहुंचा रही हूं।

जी आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ और ये सफर है रात सुरमई का और रात्रि के 2:32 और हो चुके हैं पूरे 48 सेकंड।

रात सुरमई के इस सफर में आप सुन रहे हैं बहुत ही खूबसूरत गीत, और उम्मीद करती हूँ कि रात के इस सफर में आपके अच्छे हम सफर साबित होंगे ये गीत। वफा तुझसे ऐ बेवफा चाहता हूँ, वफा तुझसे ऐ बेवफा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ।

लफ्ज बिखर जाएंगे होठों से तबस्सुम की तरह, एहसास की बातें हैं ये, दिल थाम के सुनिए।

आगे चलें या पीछे चलें और चलते रहें, लेकिन रात सुरमई का ये सफ़र अब कह रहा है कि यहीं इसको विराम दिया जाए। तो आखिरी गीत आपकी नज़र करते हुए, गुरेज पा है नया रास्ता किधर जाएं, चलो कि लौट के हम अपने अपने घर जाएं। इसी के साथ दीजिए विदा माधुरी को।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि व्यक्तियों के बीच यूपीआई से कितनी भी राशि के लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। छोटे व्यापारियों के लिए 2000 रुपए तक का लेन देन निःशुल्क रहेगा। इस प्रकार व्यक्तियों से व्यापारियों को लगभग 96% लेन देन अप्रभावित होगा। 2000 रुपए से अधिक के व्यक्ति से व्यवसायी लेन देन पर 0.4% का मामूली MDR लगेगा, जबकि 75,000 रुपए और उससे अधिक के हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन के लिए MDR की सीमा 300 रुपए प्रति लेन देन होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये जानकारी दी।
1: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और 3 पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित

0: होना चाहिए।
1: श्री जायसवाल ने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान अर्बन मोबिलिटी सहित कई उपलब्धियां हासिल हुई। जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर 70 लाख पाकिस्तानी रुपए के पुरस्कार की पाकिस्तान की घोषणा पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस तरह के दिखावे नए नहीं हैं। ओमान के तट पर वाणिज्यिक जहाज MTEL गाइया हमले पर श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों, चालक दल सदस्यों, लोगों और असैन्य बुनियादी ढांचे पर हमले भारत के लिए अस्वीकार हैं। उन्होंने कहा कि भारत उस क्षेत्र में मुक्त और सुरक्षित नौवहन का आग्रह करता है। हूती हमलों की अटकलों के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से सऊदी अरब और प्रमुख क्षेत्रीय समुद्री मार्गों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। नई चेतावनी, हमले और सैन्य झड़पों की खबरें लगातार मिल रही हैं। सऊदी अरब में मक्का, जेदा और तैफ में बहुत कम समय के लिए आपातकालीन चेतावनी जारी की गई। उधर यमन के हूती विद्रोहियों ने दावा किया कि सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों के तैस प्रांत पर हमले में 3 लोग मारे गए। यमन में नए सिरे से शुरू हुई लड़ाई से नागरिकों की जान खतरे में है और लाल सागर से होकर गुजरने वाले जहाजों के लिए भी खतरा उत्पन्न हो गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता रक्षा बलों, अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा उद्योग के बीच निर्बाध सहयोग के जरिए ही हासिल की जा सकती है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने मिसाइल से लेकर राडार तक, लड़ाकू विमानों से लेकर पनडुब्बियों तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में क्षमताओं का प्रदर्शन किया है।
2: आज 2026 में DRDO ने मिसाइल से लेकर राडार तक, कम्बैट एयरक्राफ्ट से लेकर सबमरीन तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में अपनी कैपेबिलिटी साबित की है। डिफेंस सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए DRDO आज एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, इस सच्चाई को ही कोई नकार नहीं सकता।
1: औषध विभाग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत के आह्वान के अनुरूप 1 से 15 सितंबर तक स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने बताया कि सभी 7 राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम PSU और विभागों की सक्रिय भागीदारी के साथ संकाय सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों ने यह स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान कई परिसरों में वृक्षारोपण भी किया गया। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास का 22वां संस्करण कल शुरू हुआ। इसका उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच तालमेल को बेहतर बनाना, नई चुनौतियों का सामना करना और दोनों देशों के बीच रक्षा साझेदारी को और मजबूत करना है। सैन्य अभ्यास का उद्घाटन समारोह उत्तराखंड के औली विदेशी प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यह सैन्य अभ्यास उत्तराखंड के औली और राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में एक साथ आयोजित किया जा रहा है। दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान ने 160 रन बनाए, जवाब में भारत ने 14 ओवर और 5 गेंद में यह लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Navneet Singh. The Ministry of External Affairs has said several issues were discussed during the meeting between Prime Minister Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping on the sidelines of the 18th BRICS summit held in New Delhi recently. Addressing media in New Delhi last evening, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said the Prime Minister referred to India's concerns and underlined that both sides should show sensitivity to each other's core concerns.
4: Several issues came up during the discussions. Prime Minister referred to Indian concerns as well and underlined those that both sides should show sensitivity to each other's core concerns and be guided by the three mutuals, mutual respect, mutual interest and mutual sensitivity.
3: The spokesperson said External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar held a meeting with the Saudi Foreign Minister on the sidelines of the BRICS summit. During the meeting, they discussed regional and international developments. Mr. Jaiswal said that the issue of the Houthi was also discussed. There was recently an attack on Saudi Arabia, which India has condemned. Mr. Jaiswal said, New Delhi is deeply concerned with the escalation in the situation in the Red Sea region. On the attack on commercial vessel MT El Gaya off the coast of Oman,

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हो चुका है 3:11 और 6 सेकंड। हमराही कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ मीना चौहान। कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए कार्यक्रम का आरंभ करते हैं इस गीत के साथ।

जानते हैं दोस्तों, ये जरूरी नहीं कि अगर कोई दूर है तो उससे हम प्यार नहीं करते। कई बार इंसान बहुत दूर होता है लेकिन उसकी याद हर पल हमारे साथ रहती है। फासले सिर्फ कदमों के होते हैं, दिल के नहीं। सच्चा प्यार तो वो है जिसमें सामने न होकर भी कोई दिल के बहुत करीब महसूस हो, उसकी एक आवाज चेहरे पर मुस्कान ले आए और उसकी याद अकेलेपन को भी खूबसूरत बना दे। तो चलिए सुनते हैं इसी एहसास को इस गीत में।

प्यार में सबसे खूबसूरत एहसास होता है किसी की आवाज का इंतजार। दूर बैठे इंसान को बस इतना भरोसा है कि वो मुझे याद कर रहा होगा, मुझे पुकार रहा होगा। मोहब्बत में इंतजार अच्छा लगता है, लेकिन जब इंतजार बहुत लंबा हो जाए ना, तो दिल की बेचैनी भी बढ़ने लगती है। फिर मन करता है कि बस एक आवाज आए और कोई हमें पुकार ले।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हो चुका है 3:28 और 54 सेकंड। कार्यक्रम चल रहा है हमराही, और मैं हूं आपके साथ मीना चौहान।

दोस्तों, मोहब्बत में इंतजार शायद सबसे खूबसूरत एहसासों में एक है। जब किसी खास इंसान के लौटने की उम्मीद दिल में होती है ना, तो वक्त चाहे कितना भी लंबा क्यों ना हो, दिल उसका इंतजार करना नहीं छोड़ता। कभी कभी सामने वाला पास नहीं होता, उसकी आवाज सुनाई नहीं देती, मुलाकात भी नहीं होती, लेकिन फिर भी दिल कहता है कि वो आएगा जरूर, क्योंकि सच्चे प्यार में दूरी हो सकती है लेकिन उम्मीद कभी खत्म नहीं होती।

0: दोस्तों, कभी कभी प्यार में सबसे प्यारी शिकायत यही होती है कि सामने वाला हमसे बातें तो करता है लेकिन दिल की बात नहीं कहता। उसकी बातों में अपनापन भी महसूस होता है और कभी कभी लगता है कि शायद ये सिर्फ हमारी उम्मीद है। मोहब्बत में यही तो उलझन है। कभी उसकी एक छोटी सी बात दिल को यकीन दिला देती है कि प्यार सच्चा है और यही खामोशी मन में सवाल खड़े कर देती है कि क्या वो मुझसे सच में प्यार करता है या यूं ही बातें करता रहता है। तो चलिए सुनते हैं ऐसा ही एक नगमा।
1: यूं ही तुम

कभी कभी मौसम भी दिल की बात कहने लगता है। बादलों का यूं घिरना, हवा का कुछ गुनगुनाना और किसी की याद का अचानक दिल में उतर आना, शायद मोहब्बत का असर कुछ ऐसा ही होता है। जब दिल किसी के ख्यालों में खो जाए तो बादल भी दीवाने लगते हैं और हवाएं भी कोई प्रेम संदेश लेकर आती हुई महसूस होती है। यही तो पुराने गीतों की खूबसूरती है, साधारण से मौसम को भी एक खूबसूरत एहसास में बदल देना। तो चलिए सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही मीना चौहान को दीजिए इजाजत। नमस्कार। 4:10 पर आपके साथ रहूंगी कार्यक्रम अरुणिमा में। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि व्यक्तियों के बीच यूपीआई से कितनी भी राशि के लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। छोटे व्यापारियों के लिए 2,000 रूपये तक का लेन देन निःशुल्क रहेगा। इस प्रकार व्यक्तियों से व्यापारियों को लगभग 96% लेन देन अप्रभावित रहेगा। 2,000 रूपये से अधिक के व्यक्ति से व्यवसाय लेन देन पर 0.4% का मामूली MDR लगेगा, जबकि 75,000 रूपये और उससे अधिक के हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन के लिए MDR की सीमा 300 रूपये प्रति लेन देन होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये जानकारी दी।
1: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और 3 पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान अर्बन मोबिलिटी सहित कई उपलब्धियां हासिल हुई हैं। जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर 70 लाख पाकिस्तानी रुपए के पुरस्कार की पाकिस्तान की घोषणा पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस तरह के दिखावे नए नहीं हैं। ओमान के तट पर वाणिज्यिक जहाज MTEL गाइया हमले पर श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों, चालक दल के सदस्यों, लोगों और असैन्य बुनियादी ढांचे पर हमले भारत के लिए अस्वीकार्य हैं। उन्होंने कहा कि भारत उस क्षेत्र में मुक्त और सुरक्षित नौवहन का आग्रह करता है। हूती हमलों की अटकलों के बीच

0: सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से सऊदी अरब और प्रमुख क्षेत्रीय समुद्री मार्गों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। नई चेतावनी, हमले और सैन्य झड़पों की खबरें लगातार मिल रही हैं। सऊदी अरब में मक्का, जेदा और तैफ में बहुत कम समय के लिए आपातकालीन चेतावनी जारी की गई। उधर यमन के हूती विद्रोहियों ने दावा किया कि सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों की तैज प्रांत पर हमले में 3 लोग मारे गए हैं। यमन में नए सिरे से शुरू हुई लड़ाई से नागरिकों की जान में खतरा है और लाल सागर से होकर गुजरने वाले जहाजों के लिए भी खतरा उत्पन्न हो गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, रक्षा बलों, अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा उद्योग के बीच निर्बाध सहयोग के जरिए ही हासिल की जा सकती है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने मिसाइल से लेकर राडार तक, लड़ाकू विमानों से लेकर पनडुब्बियों तक और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में क्षमताओं का प्रदर्शन किया है।
1: आज 2026 में डीआरडीओ ने मिसाइल से लेकर राडार तक, कम्बैट एयरक्राफ्ट से लेकर सबमरीन तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में अपनी कैपेबिलिटी साबित की है। डिफेंस सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए डीआरडीओ आज एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, इस सच्चाई को ही कोई नकार नहीं सकता है।
0: भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में आयोजित 69वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भाग ले रहा है। ये 19 सितंबर तक चलेगा। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश कर रहे हैं। सम्मेलन में भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के 32 पीठासीन अधिकारी और 18 सचिव भी शामिल हैं जो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के सदस्य हैं। मेघालय कैबिनेट ने कल मेघालय फिल्म टूरिज्म पॉलिसी 2025 में बदलावों को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य मेघालय को फिल्म निर्माण केंद्र के तौर पर बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री कॉनराड के सगमा ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हमने प्रोत्साहन को अधिक लक्षित बनाने के लिए कुछ योग्यता शर्तों में सुधार किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पश्चिम बंगाल के हिमालयी क्षेत्र, केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में गरज चमक के साथ तेज हवा और मूसलाधार बारिश की संभावना है। दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान ने भारत को 160 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में भारत ने 14 ओवर और 5 गेंद में 3 विकेट खोकर यह लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नवनीत सिंह। The Ministry of External Affairs has said several issues were discussed during the meeting between Prime Minister Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping on the sidelines of the 18th BRICS summit held in New Delhi recently. Addressing media in New Delhi last evening, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said, "The Prime Minister referred to India's concerns and underlined that both sides should show sensitivity to each other's core concerns." The spokesperson said External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar held a meeting with Saudi Foreign Minister on the sidelines of the BRICS summit. During the meeting, they discussed regional and international developments. Mr. Jaiswal said, "The issue of the Houthis were also discussed. There was recently an attack on Saudi Arabia, which India has condemned." Mr. Jaiswal said, "New Delhi is deeply concerned with the escalation in the situation in the Red Sea region." On the attack on commercial vessel MT El Gaia off the coast of Oman, Mr. Jaiswal said, "Targeting commercial shipping, seafarers, civilians and civilian infrastructure in the region is unacceptable to India." In Saudi Arabia, civil defense activated emergency alerts in Mecca, Jeddah and Taif yesterday. Alerts had also been issued and lifted in 6 cities, including Yanbu, Saudi Arabia's main Red Sea oil port. Saudi Arabia yesterday issued fresh but very brief emergency alerts in Mecca, Jeddah and Taif in the context of potential Houthi attacks. The alerts were lifted in just a few minutes, with authorities saying the danger had passed. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar emphasized India's strong commitment to multipolarity, rooted in its independent stance and commitment to strategic autonomy, delivering

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हो चुका है 4:10 और 15 सेकंड। अरुणिमा कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ मीना चौहान। कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार।

अरुणिमा कार्यक्रम में शुरुआत हो चुकी है भक्तिमय प्रस्तुति की और आज मैं हूँ इस कार्यक्रम में आपके साथ मीना चौहान। दोस्तों, जब मन बहुत थक जाता है ना, तब दुनिया की भागदौड़ के बीच कहीं सुकून नहीं मिलता, तब इंसान अपने आराध्य की शरण में चला जाता है। वहां न कोई शिकायत रह जाती है, ना कोई सवाल, बस मन में एक विश्वास होता है कि मेरे कान्हा सब देख रहे हैं और सब समझ रहे हैं।

दोस्तों, जब जिंदगी में सुख के पल आते हैं ना, तो हमारे आसपास लोगों की कमी नहीं रहती। खुशियां बांटने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन जब मुश्किल वक्त आता है ना, तब मन भीतर से टूटने लगता है। तब अक्सर वही भीड़ धीरे धीरे कम हो जाती है। शायद इसलिए जिंदगी हमें सिखाती है कि रिश्तों की असली पहचान खुशियों में नहीं, बल्कि मुश्किल समय में होती है। जो आपके बुरे वक्त में आपके साथ आपका हाथ थाम कर खड़ा रहता है ना, वही आपका सच्चा दोस्त होता है। और जब इंसान को लगता है कि अब कोई साथ नहीं है, तब ऊपर वाले पर विश्वास उसे संभालता है। आखिर सुख और दुख दोनों जिंदगी के हिस्से हैं, और हमें बस हर परिस्थिति में अपना हौसला बनाए रखना चाहिए।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हो चुका है 4:27:25 अरुणिमा कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ मीना चौहान। दोस्तों, राधा और मीरा दो नाम, लेकिन प्रेम की दो अलग अलग तस्वीरें। राधा का प्रेम कृष्ण में अपना संसार देखता है, तो मीरा का प्रेम कृष्ण को ही अपना संसार मान लेता है। एक ने प्रेम को जिया और दूसरी ने प्रेम को अपनी भक्ति बना लिया। कभी कभी जिंदगी में भी कोई रिश्ता ऐसा होता है जहां शब्द कम पड़ जाते हैं और भावनाएं ही सब कुछ कह देती हैं। सच्चा प्रेम शायद वही है जिसमें पाने से ज्यादा समर्पण होता है और साथ होने से ज्यादा दिल में बस जाने की चाह होती है। इन्हीं भावनाओं को खूबसूरती से पिरोता फिल्म राम तेरी गंगा मैली का ये गीत सुनते हैं।

दोस्तों, जिंदगी की राह में हर मोड़ पर कोई हमारे साथ चले ये जरूरी तो नहीं। कुछ रास्ते ऐसे भी होते हैं जिन्हें इंसान को अकेले ही तय करना पड़ता है। भीड़ साथ हो तो सफर आसान लगता है, लेकिन अकेले चलना ही हमें अपने भीतर की ताकत से मिलवाता है। कभी पीछे मुड़कर देखिए ना, जो लोग रास्ते में मिले, कुछ पल साथ चले और फिर अपनी अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। शायद यही जिंदगी है, मिलना, बिछड़ना और फिर अकेले चलते रहना।

कहते हैं कि प्रेम जब सच्चा हो ना तो उसे किसी परिचय की जरूरत नहीं होती, बस एक एहसास ही काफी होता है। और कृष्ण की बंसी की धुन में तो जैसे सदियों से उसी प्रेम की पुकार बसी है। बंसी बजती है तो राधा का नाम याद आता है और राधा का नाम आते ही मन में एक ऐसी शांति उतरती है जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल है। राधा कृष्ण का प्रेम हमें यही तो सिखाता है कि सच्चा प्रेम पाने का नाम नहीं बल्कि समर्पण का नाम है, जहां दूरी भी रिश्ते को कम नहीं करती बल्कि प्रेम को और गहरा कर देती है।

सच यानी सत्यम, कल्याण यानी शिवम और सुंदरता यानी सुंदरम, इन तीन शब्दों में जैसे जीवन का पूरा दर्शन समाया हुआ है। खूबसूरती सिर्फ चेहरे में नहीं होती, खूबसूरती तो उस सोच में होती है जो किसी के जीवन में प्रेम, विश्वास और अपनापन भर दे। कभी कभी हम बाहरी सुंदरता को देखकर ठहर जाते हैं, लेकिन समय हमें सिखाता है कि असली सुंदरता मन की होती है, भावनाओं की होती है और उस सच्चाई की होती है जो किसी रिश्ते को उम्र भर खूबसूरत बनाए रखती है।

धन दौलत और सुख सुविधाएं इंसान को कुछ समय के लिए खुशियां दे सकती हैं, लेकिन मन का सुकून तो तभी मिलता है जब दिल में प्रभु का नाम बस जाए। मीरा ने भी तो यही कहा था कि उन्हें संसार की दौलत नहीं चाहिए, उन्हें तो अपने श्याम का प्रेम ही सबसे बड़ा धन लगता है। कि कितनी खूबसूरत बात है ना, जब मन में भक्ति का दीप जलता है तो छोटी छोटी खुशियां भी अनमोल लगने लगती है। प्रभु का नाम ऐसा धन है जिसे ना कोई चुरा सकता है और ना समय इसे कम कर सकता है।

श्रोताओं, इस भक्ति रचना के साथ ही मीना चौहान को अरुणिमा कार्यक्रम से दीजिए इजाजत। नमस्कार। 5:10 पर आपके साथ रहूंगी कार्यक्रम भोर सुहानी में। थोड़ी देर में आप सुनेंगे

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि लोगों के बीच यूपीआई से कितनी भी राशि के लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। छोटे व्यापारियों के लिए 2,000 रुपये तक का लेनदेन निशुल्क रहेगा। इस तरह लोगों से व्यापारियों को लगभग 96% लेनदेन प्रभावित नहीं होगा। 2,000 रुपये से ज्यादा के लेनदेन पर 0.4% का मामूली MDR लगेगा, जबकि 75,000 रुपये और उससे अधिक के हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए MDR की सीमा 300 रुपये प्रति लेनदेन होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली की में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये जानकारी दी।
1: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और 3 पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान अर्बन मोबिलिटी सहित कई उपलब्धियां हासिल हुई हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, रक्षा बलों, अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा उद्योग के बीच निर्बाध सहयोग के जरिए ही हासिल की जा सकती है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने मिसाइल से लेकर रडार तक, लड़ाकू विमानों से लेकर पनडुब्बियों तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में क्षमताओं का प्रदर्शन किया है। भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल दक्षिण अफ्रीका के कैपटाउन में आयोजित 69वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भाग ले रहा है। ये सम्मेलन 19 सितम्बर तक चलेगा। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश कर रहे हैं। सम्मेलन में भारत के राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के विधानसभाओं के 32 पीठासीन अधिकारी और 18 सचिव भी शामिल हैं, जो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के सदस्य हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कल नई दिल्ली में एक समारोह में एक शताब्दी सेवा के 100

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हो चुका है 5:11:07 भोर सुहानी कार्यक्रम में। आज मैं हूं आपके साथ मीना चौहान। कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हरियाली हो, खुला आसमान हो और सामने से जाता हुआ कोई रास्ता, बस मन करता है चलते ही जाए। जिंदगी भी तो कुछ ऐसी ही है ना, रास्ते पहले से तय नहीं होते, लेकिन चलते रहने से मंजिल जरूर मिलती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस कार्यक्रम की।

फूल का काम है खिलना और इंसान का काम है मुस्कुराना। हालात जैसे भी हो, अपने अंदर की खुशी को मुरझाने मत दीजिए, क्योंकि एक मुस्कान कभी कभी पूरे दिन का रंग बदल देती है। तो चलिए सुनते हैं ये मुस्कुराता हुआ गीत।

दोस्तों कुछ बातें कागज पर लिखी जाती हैं और कुछ दिल में, और जब दिल की बात फूलों के रंगों से लिखी जाए ना तो उसका जवाब भी शायद एक मुस्कान ही होता है। तो मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए FM गोल्ड पर कार्यक्रम भोर सुहानी।

दोस्तों, पहाड़ों की अपनी ही एक भाषा होती है। खामोश रहते हैं लेकिन बहुत कुछ कह जाते हैं, और पहाड़ हमें एक और बात सिखाते हैं। ऊंचाई चाहिए तो चढ़ाई से घबराना नहीं चाहिए।

दोस्तों, कभी सुबह का आसमान देखा है आपने गौर से? कभी पहाड़ों को, कभी फूलों से, तो कभी पूरी प्रकृति को। मन में सवाल आता है, आखिर इतनी खूबसूरत दुनिया किसने बनाई? इसी सवाल को गीत में ढालता हुआ एक खूबसूरत नगमा आपके लिए।